ताप हो कहाँ कमावन परया, जब हो कछु न होता, जब एक निरंजन निरंकार प्रभ सब किस आपे करता, अपने कर्तव्य आपे जाने, जिन इहो रचन रचाया, कहो नानक करणहार है आपे सतगुरु परम चुकाया। गौड़ी माला मैला पंजवा, हर दिन अवर क्रिया बिरथे, जब तब संजम कर्म कमाने, यह ओरे मूसे रहाओ, वर्त नेम संजम में रहता, तिनका आद न पाया, आगे चरण और है पाई, उहां कामना आया। तीरथ नाए अर करनी प्रमता, आगे खौर न पावे, उहां कामना आवे, एह बिद ओ लोगन ही पति आवे। चतुर्वेद मुख बचनी उचरे, आगे महल न पाये, बूझे नाही एक सुदाकर, ओ सजनी चाक चखाई है। नानक कह तो यो बिचारा, जे कमावे सो पार ग्रामी, गुर सेवो अर नाम त्यावो, त्यागो मनो गुमानी। गौड़ी माला पंजवा, माधो हर हर हर मुख कही है, हम ते कछु न होवे स्वामी, ज्यों राखो त्यों रही है रहाओ, क्या किस करे के करने हारा, क्या इस हाथ बिचारे, जित तुम लावो तित ही लागा।

पतित पवित लग गुर के पैरे जियो, प्रम को काट किए निर्वैरे जियो, गुर मन की आस पुराई जियो, जिन नाउ पाया सोतनवंता जियो, जिन प्रभ त्याया

गौरी महला पंजवा माज, आओ हमारे राम प्यारे जियो, रैन दिनस सात सात सितारे जियो, संत देव संदेशा पैचरण आरे जियो, खुद दिन कित बिद करिए जियो, संग तुम्हारे मैं करे आनंदा जियो, वन तिन त्रिभवन सुख परमानंदा जियो, सेज सुहावी इहो मन बिद संदा जियो, पेट दर्शन इहो सुख लइए जियो, चरण पखार करी नित सेवा जियो, पूजा अर्चा बंदन देवा जियो, दासन दास नाम जप लेवा जियो, बिनो ठाकुर पह कहिए जियो, इच पुन्नी मेरी मन तन हरिया जियो, दर्शन देखत सब दुख पर हरिया जियो, हर हर नाम जपे जप तरिया जियो, इहो अजर नानक सुख सही है जियो, गौड़ी माज महला पंजवा, सुन सुन साजन मन विच प्यारे जियो, मन तन तेरा इहो जियो पेवारे जियो, विसरना ही प्रभ प्राण आधारे जियो, सदा तेरी शरणाई जियो, जिस मिले मन जीवे पाई जियो, गुरु प्रसादी सो हर हर पाई जियो, सब किछ प्रभ का प्रभ किया जाए जियो, प्रभ को सद बल जाए जियो, एहो निधान जपै वट पागी जियो।

माया मोहड़िया दे बुजार सारता से अखी जिठड़िया कोई जे मूर्ख लोभिया मूल ना सुनी कहा इकस दो चहु क्या गणी सब इकत साध मुठी एक अद नाए रसियड़ा का विरली जाए उठी भगत सच्चे दर सोंदे अनद करें दिन रात रंग रते परमेश्वर है जन नानक तिन बल जात गौ

आओ जित कट वसे पार ब्रह्म सोई सुहावा थाओ जम कंकर नेड़ न आवई रसना हर गुण गाओ सेवा सुरत न जानिया ना जापे आराध ओठ तेरी जग जीवना मेरे ठाकुर अगम आगाज पाए किरपाल गुसाइया नखे सोग संताप तत्ती वाव न लगई सतगुर रखे आप गुर नारायण दया गुर गुर सच्चा सृजनहार गुर तुठ है सब किस पाया जन नानक सद बलिहार गौड़ी माज महला पंजवा हर राम राम राम रामा जप पूरन होए कामा रहाओ राम गोविंद जपेंदियां हुआ मुख पवित्र हर जस सुनिए जिससे सोई पाई मित्र सब पदार्थ सब फला सर्व गुणा जिस माहे क्यों गोविंद मनो विसारिय जिस सिमरत दुख जाहे जिस लड़ लगे जीविय पव जल पई है पार मिर साधु संग उधार होए मुख उजल दरबार जीवन रूप गोपाल जस संत जना की रात नानक उबरे नाम जप दर सच्चे साबास गौड़ी माज महला पंजवा मीठे हर गुण गाओ जिंदु तू मीठे हर गुण गाओ सच्चे सेती रतिया।

सिर जो करे फिट सो जीवन सोए अंचल गह के साध का तरना इव संसार पार ब्रह्म आराधी है उदरे सब परवार साजन बंग सो मित्र सो हर नाम हृदय दे अवगुण सब मिटाए के पर उपकार करे माल खजाना थो कर हर के चरण निदान नानक जाचक।

साधो मन का मान त्यागो, काम क्रोध संगत दुर्जन की ताते ऐन सिपागो रहाओ। सुख दुख दोनों समकर जाने और मान अपमाना, हर शोक ते रह अतीता तिन जग तत पछाना। उस तत निंदा दो त्यागे खोजे पद निर्वाणा, जन नानक ए खेल कथन है किन्हू गुरमुख जाना। गौड़ी महला नावा साधो रचना राम बनाई, एक दिन से एक अस्थिर माने अचरज लख्यो न जाए रहाओ। काम क्रोध मोह बस प्राणी, हर मूरत बिसराई झूठा।

मोह माया पुन भजन राम चित लावो, नानक कहत मुकत पंथ एहो, गुरुमुख होए तुम पावो। गौड़ी मैला नामा को माई पूलियो मन समझावे, वेद पुराण साध मग सुन कर निमख न हर गुण गावे। रहाओ दुर्लभ दे पाए मानस की बिरसा जन्म सिरावे, माया मोह महा संकट बन ता क्यों रुच उपजावे। अंतर बाहर सदा संग प्रभ ता क्यों निहो न लावे, नानक मुक्त ताहि तुम मानो जे कट राम समावे। गौड़ी महला नावा साधो राम शरण विश्रामा, वेद पुराण पढ़े को ए गुण सिमरे हर को नामा। रहाओ लोभ मोह माया ममता कुन औ बिकियन की सेवा, हरख सोग परसे जे नाहिन सो मूरत है देवा। सुर्ग नरक अमृत बिख ए सब क्यों कंचन अर पैसा, उस्तत निंदा ए समझा के लोभ मोह फुन कैसा। दुख सुख ए बांधे जे नाहिन ते तुम जानो ज्ञानी, नानक मुक्त ताहे तुम मानो ए बिद को जो प्राणी। गौड़ी महला नावा मन रे कहा पयो तें बौरा, एनक औद कटे नहीं जाने पयो लोग संघौरा। रहाओ जो तन ते अपनो कर मान्यो, अर सुंदर गृह नारी इनमें कटते रो रे नाहिन, देखो सोच बिचारी। रतन जन्म अपनो तैहारो गोविंद दत्त नहीं जानी, निमख ना लीन पयो चरणन त्यों बिरसा औद सिरानी। कहो नानक सोई नर सुखिया राम नाम गुण गावे, और सगल जग माया मुहिया निरपय पद नहीं पावे। गौड़ी महला नावा नर अचेत पाप से डर रे, दीन दयाल सगल पै पंजन शरण ताहे तुम पर रे। रहाओ वेद पुराण जात गुण गावत ताको नाम ही है मो तर रे, पावन नाम जगत में हर को सिमर सिमर कसमल सब हर रे। मानस देह बौर ने पावे कछु उपाओ मुक्त का कर रे, नानक कहत गा।

निज सिद्ध निर्मल नाम विचार पूरन पूर रहया बिखमार त्रिकुटी छूटी बिमल मजार गुर की मत जिए आई कार। इन विद राम रमत मन मानिया ज्ञान अंजन गुर शब्द पछानिया रहा एक सुख मानिया सहज मिलाया निर्मल बाणी परम चुकाया लाल पहे सुहा रंग माया नगर पही दिख ठाक रहाया उल्ट पही जीवत मर जा गया शब्द रवे मन हर्ष्यों ला गया।

संग्रह बिक पर हर त्या गया, पाए बसे जम का पौ पा गया, साध रहे बादंग अंकारा, चित हर क्यों राता हुक्म अपारा, जात रहे पत के आचारा, दृष्ट पई सुख आत्म तारा, तुझ बिन कोई न देखो मीत, किस सेवो किस देवो चीत, किस पूछो किस लागो पाए, किस उपदेश रहा लिवलाए, गुर सेवी गुर लागो पाए, भगत करी राचो हर नाए, सिखिया दीखिया भोजन पाओ, हुक्म संजोगी निज कर जाओ, गर्भ गतं सुख आत्म त्याना, जोत पई ज्योति माए समाना, लिखत मिटे नहीं शब्द निशाना, करता करना करता जाना, न पंडित न चतर सियाना, न फूलो न परम फुलाना, कथो न कथनी हुक्म पछाना, नानक गुरमुख सह समाना, गौड़ी ग्वारे री महला पहला, मन कुंचर काया उद्याने, गुर अंकस सच शब्द निशाने, राज द्वारे शोभ सुमाने, चतुराई ने चीनिया जाए, बिन मारे क्यों कीमत पाए, रहाओ कर में अमृत तप कर ले, नन्ना कार ना कोई करे, राखे आप वड्याई दे, नील अनिल अगन इत थाई, जल निवरी गुर बूझ बुझाई, मन दे लिया रहत गुण गाई, जैसा कर बाहर सो तैसा, बैस गुफा में आँखों कैसा, सागर डूगर निरपो ऐसा, मुए को कहो मारे कौन, निडरे को कैसा डर कवन, शब्द पछाने कीने पौन, जिन कहया तिन कहन वखानिया, जिन बूझिया तिन सहज पछानिया, देख विचार मेरा मन मानिया, कीरत सूरत मुक्त इक नाई, तही निरंजन रहा समाई, निज कर व्याप रहा निज ठाई।

चीत नानक हर पज नीता नीत गौरी द्वारे री महला पहला ना मन मरे ना कारज होए मन वस दूता दुर्मत दोए मन माने गुरते इक होए निर्गुण राम गुणे वस होए आत्मनिवार बिचारे सोए रहाओ मन पूलो बहुत चिते विकार मन पूलो सिर आवे पार मन माने हर एक अंकार मन पूलो माया कर जाए काम विरुदो रह न खाए हर पद प्राणी रसन रसाए जैवर हैवर कंचन सुत नारी बहुत चिंता पिड़ चाले हारी जुए खेलन काची सारी संपो संची पय विकार हर शोक उबे दरबार सुख सहजे जप हृदय मुरार नजर करे ता मेल मिलाए गुण संग्रह अवगुण शब्द जलाए गुरुमुख नाम पदार्थ पाए बिन नावे सब दुख निवास मनमुख मूर माया चितवास गुरुमुख ज्ञान तुर कर्म लिखियास मन चंचल कावत फुन तावे साचे सूचे मैल न पावे नानक गुरुमुख हर गुण गावे गौरी द्वारे री महला पहला होमे करत्या नह सुखोए मन मत झूठी सच्चा सोए सगल बिगूचे पावे दोए सो कमावे तुर लिखिया होए ऐसा जग देखिया जुआरी सब सुख मांगे नाम बिसारी रहाओ अदिष्ट दिसे ता कहया जाए बिन देखे कहना बिरथा जाए गुरुमुख दीसै सहज सुभाए सेवा सुरत एक निगलाए सुख मांगत दुख आगल होए सगल विकारी हार पर होए एक बिना झूठे मुक्त न होए कर कर करता देखे सोए तृष्णा अगन शब्द बुझाए दूजा परम सहज सुभाए गुरुमति नाम हृदय वसाए साची बाणी हर गुण गाए तन में साचो गुरुमुख पाओ नाम बिना नाही निज खाओ प्रेम परायण प्रीतम राओ नदर करे ता बूझे नाओ माया मोह सर्व जंजाला मन मुख कुचील कुचित जिकराला सतगुर सेवे चूके जंजाला अमृत नाम सदा सुख

नाला गुरमुख बूजे एक लीलाए निज कर वासे साज समाए जमन मरना ठात रहाए पूरे गुर के एमत पाए कथनी कथो ना आवे और गुर पुछ देखिया ना ही दर होर दुख सुख पाने तिसे रजाए नानक नीच कह लिगलाए गौड़ी महला पहला दूजी माया जगत चितवास काम क्रोध अहंकार विनाश।

तरण गगन ने देखो दोए, नारी पुरुष सबाई लोए, रव सस देखो दीपक उजियाला, सर्व निरंतर प्रीतम बाला, कर कृपा मेरा चित लाया, सतगुरु मोको एक बुझाया, एक निरंजन गुरुमुख जाता, दूजा मार शब्द पछाता, एको हुक्म वर्ते सब लोई, एक से सब ओपत होई, राह दोवे खत्म एको जान, गुर के शब्द हुक्म पछाण, सगल रूप वर्ण मन माही, कहो नानक एको सालाही, गौड़ी महला पहला, अध्यात्म कर्म करे ता साचा, मुक्त पेर क्या जाने काचा, ऐसा जोगी जुगत विचार है, पंच मार सात उधार है, रहाओ जिसके अंतर सात वसावे, जोग जुगत की कीमत पावे, राम सत एको गृह उद्यान है, करनी कीरत कर्म समान है, एक शब्द एक पिछला मांगे, ज्ञान ध्यान जुगत सच जागे, पैर अच रहे ना बाहर जाए, कीमत कौन रहे लिवलाए, आपे मेले परम सुपाए, गुर प्रसाद परम पद पाए, गुर की सेवा शब्द विचार, हों में मारे करनी सार, जब तब संजम पाठ पुराण, कहो नानक अपरम परमान, गौड़ी महला पहला, सीमा गही व्रत शील संतोखं, रोग ना व्यापे ना जम दोखं, मुक्त पाए प्रभ रूप न देखं, जोगी को कैसा डर होए, रूख बिरख गृह बार सोए, रहाओ निरपौ जोगी निरंजन त्यावे, अंदिन जागे सच विवलावे, सो जोगी मेरे मन पावे, सो जोगी मेरे मन पावे, काल जाल ब्रह्म अग्नि जारे, जरा मरण गत गर्व निवारे, आप तरह पितरी निस्तारे, सतगुरु सेवे सो जोगी होए, पैरच रहे सो निरपो होए, जैसा सेवे तैसो होए, नर नहीं केवल निरपो ना हो, अनाथे नाथ करे बल चाओ, पुनरप जन्म नाही गुण गाओ, अंतर बार एको जाने, गुर के शब्दे आप पछाने, साचे शब्द दर निशाने, शब्द मरे तिस निज कर वासा, आवे ना जावे चूके आसा, गुर के शब्द कमल पर गासा, जो दिसे तो आप निराशा, काम क्रोध बिख भूख पे आसा, नानक बिरले मिले उदासा, गौड़ी महला पहला, ऐसो दास मिले सुख होई, दुख विसरे पावे सत सोई, दर्शन देख पई मत पूरी, अखट मज्जन चरने तूरी, रहाओ नेत्र संतोखे एक लिव तारा, जेवा सूची हर रसारा, सत करनी अब अंतर सेवा, मंत्र तास्या अलख अपेवा, जय जय देखो तै तै साचा, दिन बूझे जगरत जग काचा, गुर समझावे सोजी होई, गुरमुख बिरला बूझे कोई, कर कृपा राखो रखवाले, बिन बूझे पशु पहे बेताले, गुर कहया अवर नहीं दूजा, किस कहो देख करो अन पूजा, संत हेत प्रभ त्रिपवन तारे, आत्म चीने सो तत विचारे, साच हृदय सच

शैत बाहो मद कीट में खासा, हरणा खसले नखो विदाता, दैत संगारे बिन भगत अभ्यासा, जरा संद काल जमुन संगारे, रकत बीज काल नेम विदारे, दैत संगार संत निस्तारे, आपे सतगुर शब्द विचारे, दूजे पाए दैत संगार।

जन को दुख पचे दुख होई, जन में जय गुर शब्द ना जानिया, क्यों सुख पावे परम पुलानिया, इक तिल फूले बौर पछतानिया, कंस के चांडूर ना कोई, राम ना छीनिया अपनी पत खोई, बिन जगदीश ना राखे कोई, बिन गुर दर्ब ना मेटिया जाए, गुरमत धर्म

चढ़ावो, पाठ पटंबर पहर हटावो, दिन हर नाम कहाँ सुख पावो, क्या पहरो क्या ओढ़ दिखावो, बिन जगदीश कहाँ सुख पावो, रहाओ कानी कुंडल गल मोतियन की माला, लाल निहाली फूल गुलाला, बिन जगदीश कहाँ सुख पाला, नैन सलोनी सुंदर नारी, खोर सिगार करे अत प्यारी, बिन जगदीश पजे नित खुआरी, दर कर महला सेज खाली, एनक फूल बिछावे माली, बिन हर नाम सो देह दुखाली, हैवर गैवर नेजे वाजे, लक्कर नेब खवासी पाजे, बिन जगदीश चूठे दिवाजे, सिद्ध कहावो रिद सिद्ध बुलावो, ताज कुल है सिर खतर बनावो, बिन जगदीश कहाँ सच पावो, खान मलूक कहावो राजा, अबे तबे कूड़े है पाजा, बिन गुर शब्द ना सवर।

पहला सेवा एक ना जानत अवरे पर पंच ब्याज त्यागे कवरे पाय मिले सत साचे सचरे ऐसा राम भगत जन होई हर गुण गाए मिले मल तोई रहाओ ऊंदो कवल सगल संसार है दुर्मत अग्न जगत पर जा रे सो उभरे गुर शब्द विचार है प्रिंग पतंग कुंचर अर मीना मृग मरे सह अपना कीना तृष्णा राज तत नहीं दीना काम चिते कामन हितकारी क्रोध विनाश है सगल विकारी पत मत खोवे नाम विसारी पर कर चीत मन मुख डोलाए गल जेवरी तंदे लपटाए गुरमुख छूटस हर गुण गाए जो तन विधवा पर को दे काम दाम चित पर वसे बिन फिर त्रिपत ना कभू होई पर पल पोथी सिमरत पाठा देव पुराण पढ़े सुन साटा बिन रस राते मन बो नाटा ज्यो चात्रिक जल प्रेम प्यासा ज्यो मीना जल माहे उलासा नानक हर रस की तृप्ताता गौरी मैला पहला हट कर मरे ना लेखे पावे वेद करे बहु पसंद लगावे नाम विसार बहुर पछतावे तू मन हर जियो तू मन सुख नाम विसार सह जम दुख रहाओ चोवा चंदन अगर कपूर माया मगन परम पद दूर नाम विसार है सब कूड़ो कूर नेजे वाजे तख सलाम अद की तृष्णा व्यापे काम बिन हर जाचे भगत ना नाम वाद अंकार नाही प्रभ मेला मन दे पावे नाम सुहेला दूजे पाए अज्ञान दुहेला बिन दम के सौदा नहीं हाट बिन बोहित सागर नहीं वाट बिन गुर सेवे काटे काट सिख को वाह वाह जे वाट दिखावे जिसको वाह वाह जे शब्द सुनावे जिसको वाह वाह जे मेल मिलावे वाह वाह जिसको जिसका इहो जियो गुर सब्जी मत अमृत पियो नाम वडाई तुद पाने दियो नाम बिना क्यों जीवा माए अनदिन जपत रहो तेरी सरनाए नानक नाम रते पत पाए कौड़ी मैला पहला हौ मैं करप देखी नहीं जानिया गुरमुख भगत बिरले मन मानिया हौ हौ करप नहीं सच पाई है हौ मैं जाए परम पद पाई है रहाओ हौ मैं कर राजे बहुत आवे हौ मैं खपे जन्म मर आवे हौ मैं निवरे गुर शब्द विचार है चंचल मत त्यागे पंच संगार है अंतर साच सहज घर आवे राजन जान परम गत पावे सच करनी गुर परम चुकावे निरपो के कर तारी लावे हौ हौ कर मरना क्या पावे पूरा गुर पेटे सोच अगर चुकावे जेसी है तेती क्यों नाही गुरमुख ज्ञान पेट गुण गाही हौ मैं बंधन बंद पवावे नानक राम भगत सुख पावे गौरी मैला पहला प्रथमे ब्रह्मा काले कर आया ब्रह्म कमल पयाल न पाया आज्ञा नहीं लीनी परम पुलाया जो उपजे सो काल संगारिया हम हर राखे गुर शब्द विचारिया रहाओ माया मोहे देवी सब देवा काल न छोड़े बिन गुर की सेवा ओ अविनाशी अलख पेवा सुल्तान खान बादशाह नहीं रहना नामो पूले जम का दुख सहना मैं पर नाम ज्यो राखो रहना चौधरी राजे नहीं किसे मुकाम सा मरे संचे माया दाम मैं तन जी जय हर अमृत नाम रैयत मेहर मुकदम सिकदार है नेचल कोई न दिसे संसार है अफरियो काल कूर सिर मार है नेचल एक सच्चा सत सोई जिनकर साजी तिने सब गोई ओ गुरुमुख जापे तापत होई काजी शेख पेख फकीरा वडे कहावे हो मैं तन पीरा काल न छोड़े बिन सतगुर की तीरा काल जाल जेवा अरनैनी कानी काल सुने बिख बैनी बिन सबदे मूठे दिन रैनी
फिर दे साच वसे हर नाए, काल ना जो है सके गुण गाए, नानक गुरमुख शब्द समाए, गौरी मैला पहला बोले साच मिथ्या नहीं राई, चाले गुरमुख हुकम रजाए, रहे अतीत सच्चे शरणाए, सच कर बैठे काल ना जो है, मन मुख को आवत जावत दुख मोह है, रहाओ अप्यो पियो अकथ कथ रही है, निज कर बैठ सहज कर रही है, हर रस माते एहो सुख कही है, गुरमत चाल नहीं चल नहीं डोले, गुरमत साच सहज हर बोले, पीवे अमृत तत विरोले, सतगुर देखिया दीखिया लीनी, मन तन अर्पयो अंतर गत कीनी, गत मित पाई आत्म चीनी, ओजन नाम निरंजन सार, परम हंस सच ज्योत अपार, जह देखो तह एकंकार, रह निरालम एका सच करनी, परम पद पाया सेवा गुरु चरणी, मन से मन मानिया क्योंकि अंग प्रमणी, इन विद कौन कौन नहीं तारिया, हर जस संत भगत निस्तारिया, प्रभ पाए हम अवर न पारिया, साच महल गुर अलख लखाया, नेचल महल नहीं साया माया, साच संतोखे परम चुकाया, जिनके मन वसिया सच सोई, तिनकी संगत गुरमुख होई, नानक साच नाम मलख होई, बौड़ी महला पहला, राम नाम चित्रा पै जाका, उपजंप दर्शन की जय ताका, राम ना जपो अपार कुमारा, जुग जुग दाता प्रभु राम हमारा, रहाओ गुरमत राम जपै जन पूरा, चित कट अनहत बाजे तूरा, जो जन राम भगत हर प्यार, से प्रभु राखे कृपा तार, जिनके हृदय हर हर सोई, तिनका दर्प परस सुख होई, सर्व जिया में एको रवे, मन मुख अंकारी फिर जूनी पवे, सो बूझे जो सतगुरु पाए, हों में मारे गुर सबदे पाए, अर्ग उर्ग की संग क्यों जाने, गुरमुख संग मिले मन माने, हम पापी निर्गुण को गुण करिए, प्रभु होए दयाल नानक जन करिए, हम पापी निर्गुण को गुण करिए, प्रभु होए दयाल नानक जन करिए, सोलें अष्टपदिया।

की सेवा करें ठाकुर नहीं दिस है, ओखर नीर विरोली है, माखन नहीं दिस है। इस पद जो अखाए ले सो गुरु हमारा, नानक की ने आपको सो अपर अपारा, सब आपे आप वर्तदा आपे परमाया, गुर कृपा से बूझिए सब गम समाया।

मन का सूतक दूजा भाव परमे पूले आवो जाओ मन सूतक कवे न जाए जिचर शब्द न पीजे हर कहनाए राव सबो सूतक जेता मो आकार मर मर जमे वारो वार सूतक अग्न पौने पानी माहे सूतक भोजन जेता किसाहे सूतक कर्म न पूजा होए नाम रते मन निर्मल होए सतगुर सेवे सूतक जाए मरे न जन्मे काल न खाए सातक सिमरत सोध देखो कोए बिन नावे को मुक्त न होए जुग चारे नाम उत्तम शब्द विचार कल में गुरमुख उतरत पार साचा मरे न आवे जाए नानक गुरमुख रह समाए गौड़ी मैला तीजा गुरमुख सेवा प्राण अधारा हर जियो राखो हृदय उर्धारा गुरमुख सोबा सात द्वारा पंडित हर पर तजो विकारा गुरमुख पौजल उतरो पारा रहाओ गुरमुख विचो हो मैं जाए गुरमुख मैल ना लागे आए गुरमुख नाम वसे मन आए गुरमुख कर्म कर्म सच होई गुरमुख अहंकार जलाए दोई गुरमुख नाम रते सुख होई अपना मन प्रबोधो बूझो सोई लोक समझावो सुने ना कोई गुरमुख समझो सदा सुख होई मनमुख डंफ बहुत चतुराई जो किस कमावे सो थाए ना पाई आवे जावे खौर ना काई मनमुख कर्म करे बहुत अभिमाना बग जो लाए बहन चाना जम पकड़िया तभी पछताना बिन सतगुर सेवे मुक्त ना होई गुर प्रसादी मिले हर सोई गुरदाता जुग चारे होई गुरमुख जात पत नामे।

आई। राम पढ़ो मन करो विचार, गुर प्रसादी मैल उतार रहाओ। वाद विरोध ना पाया जाए, मन तन फीका दूजे पाए। गुर कै शब्द सच लिवलाए, हो मैं मैला यो संसारा। नित तीर्थ नावे ना जाए अहंकारा, बिन गुर पेटे जम करे खुआरा। सो जन साचा जे हो मैं मारे, गुर कै शब्द पंच संगारे। आप तरह सगले कुल तारे, माया मोह नट बाजी पाई। मनमुख अंध रहे लपटाई, गुरमुख अलिपत रहे लिवलाई। बहुते पेख करे पेख तारी, अंतर तिसना फिरे अंकारी। आप ना चीने बाजी हारी, कापड़ पहर करे चतुराई। माया मोह अत परम पुलाई, बिन गुर सेवे बहुत दुख पाई। नाम रते सदा बैरागी, ग्रही अंतर साच लिव लागी। नानक सतगुर सेवे सेवड़ पागी, गौड़ी महला तीजा। ब्रह्मा मूल वेद अभ्यासा, तिस्ते उपजे देव मोह प्यासा। त्रै गुण परमे नाही निज करवासा, हम हर राखे सतगुरु मिलाया। अनदिन भगत हर नाम दृढ़ाया रहाओ। त्रै गुण बाणी ब्रह्म जंजाला, पर वाद वखाणे सिर मारे जमकाला। तत नाचीने बन्ने पंड पराला, मनमुख अज्ञान को मार्ग पाए। हर नाम विसारिया बहु कर्म दृढ़ाए, पवजल डूबे दूजे पाए। माया का मोहताज पंडित कहावे, बिखिया राता बहुत दुख पावे। जम का गल जेवड़ा नित काल संतावे, गुरुमुख जमकाल ने

हों मैं मार सच लिव लाई, सदा रहे हर नाम लिव लाई। सतगुर सेवे से जन निर्मल पवित्ता, मन स्यों मन मिलाए सब जग जीता। इन विद कुशल तेरे मेरे नीता, सतगुरु सेवे सो फल पाए। हृदय नाम विच्चों आप गवाए, अनहद बाणी शब्द वजाए। सतगुरु ते कवन कवन ना सीधो मेरे पाई, भगती सीधे दर शोभा पाई। नानक राम नाम वड्याई, गौड़ी महला तीजा। त्रै गुण वखाणे परम न जाए, बंधन न टूटे मुक्त न पाए। मुक्त दाता सतगुरु जुग माहे, गुरमुख प्राणी परम गवाए। सहज तुन उपजे हर

नानक पावन हारा, मर जमे फिर वारो वारा, अंधे गुरु ते परम न जाई, मूल छोड़ लागे दूजे पाई, बिखा माता बिख माए समाई, माया तर मूल जंत्र परमाए, हर जियो विसरिया दूजे पाए, जिस नजर करे सो परम गत पाए, अंतर साच बार साच वरताए, साच न छपे जे को रखे छपाए, ज्ञानी बूझे सह सुबाए, गुरुमुख साथ रहा लिवलाए, हों मैं माया शब्द जलाए, मेरा प्रभ साचा मेल मिलाए, सतगुरु दाता शब्द सुनाए, तावत राखे ठाक रहाए, पूरे गुरते सोजी पाए, आपे करता सृष्ट सिर्ज जिन गोई, तिस बिन दूजा अवर न कोई, नानक गुरमुख बूजे कोई, गौड़ी महला तीजा, नाम अमोलक गुरमुख पावे, नामो सेवे नाम सह समावे, अमृत नाम रसना नित गावे, जिसनो कृपा करे सो हर रस पावे, अंधिन हृदय जपो जगदीसा, गुरमुख पावो परम पद सुखा, रहाओ हृदय सुख पया प्रगास, गुरमुख गावे सच गुण दास, दासन दास नित होवे दास, गृह कुटुंब मैं सदा उदास, जीवन मुक्त गुरमुख को होई, परम पदार्थ पावे सोई, त्रै गुण मेटे निर्मल होई, सहजे साथ मिले प्रभ सोई, मोह कुटुंब स्यों प्रीत न होए, जा हृदय वस्या सच सोए, गुरमुख मन बेदिया अस्थिर होए, हुकम पचाने बूझे सच सोए, तू करता मैं अवर न कोए, तुझ सेवी तुझ ते पत होए, कृपा करें गावा प्रभ सोए, नाम रतन सब जग में लोए, गुरमुख बाणी मीठी लागी, अंतर बिकसे अंधिन लिव लागी, सहजे सच मिलिया प्रसादी, सतगुर पाया पूरे वड पागी, हों मैं ममता दुर्मत दुख नास, जब हृदय राम नाम गुणतास, गुरमुख बुद्ध प्रगति प्रभ जास।

सतगुर ते जो मोह फेरे ते वे मुख बुरे दिसन अंजन बद्दे मारियन फिर वेला ना लहन हर हर राखो कृपा तार सतसंगत मेलाए प्रभ हर हृदय हर गुणसार रहाओ से भगत हर पाव दे जो गुरमुख पाए चलन आप छोड़ सेवा करन जीवत मोए रहन जिसदा पिंड प्राण है तिसकी सिरकार ओहो क्यों मनो विसारी है हर रखिए हृदय तार नाम मिले पत पाये नाम मनिए सुख होए सतगुर ते नाम पाये कर्म मिले प्रभ सोए सतगुर ते जो मोह फेरे होए प्रम दे ना टिकन तर्क असमान ना चले विच विस्ता पह पचन इहो जग परम पुलाया मोह ठगौली पाए जिना सतगुर पेटिया तिन नेड़ ना पिटै माए सतगुर सेवन सो सोहणे हौमै मैल गवाए।

मन करहला गुरु गोविंद समाल रहाओ, मन करहला विचारिया मन मुख फाथिया महाजाल, गुरुमुख प्राणी मुक्त है हर हर नाम समाल, मन करहला मेरे प्यारिया सत्संगत सतगुर पाल, सत्संगत लग हर त्याये हर हर चले तेरे नाल, मन करहला वड पादिया हर एक नजर निहाल, आप छाए छुट्टी है सतगुर चरण समाल, मन करहला मेरे प्यारिया विच देही जोत समाल, गुरु नौ निज नाम विखा लिया हर दात करी दयाल, मन करहला तू चंचला चकराई छड़ विकराल, हर हर नाम समाल तू हर मुक्त करे अंतकाल, मन करहला बड पागिया तू ज्ञान रतन समाल, गुर ज्ञान खड़ग हथ तारिया जम मारे अड़ा जमकाल, अंतर निधान मन करहले प्रम पवे बार पाल, गुर पुरख पूरा पेटिया हर सज्जन लगड़ा नाल, रंग रतड़े मन करहले हर रंग सदा समाल, हर रंग कदे ना उतरे गुर सेवा शब्द समाल, हम पंखी मन करहले हर तरवर पुरख अकाल, वड पागी

जब यो मन में करत गुमाना तब यो बावर फिरत बिगाना जब यो हुआ सगल की रीना ताते रमैया कट कट चीना सहज सुहेला फल मस्कीनी सतगुर अपने मोहे दान दीनी रहाओ जब किसको यो

मैं मुश्किल पारी जब इन करने हार पछाता तब इसनो नाही किस ताता जब इन अपनो बांधियो मोहा आवे जाए सदा जम जोहा जब इसते सब बिन से परमा पेद नाही है पार ब्रह्मा जब इन किच कर माने पेदा तब ते दुख दंड अर खेदा जब इन एको एक ही बूझिया तब ते इसनो

कर कृपा जो सतगुर मिलियो, मन मंदिर में दीपक जलियो, जीत हार की सोजी करी, तो इस कर की कीमत परी। करन करावन सब किछ एक है, आपसे बुद्ध विचार विवेक है, दूर ना ने

आस जपत पाव अपदा जाए तावत मनुआ आवे खाए जास जपत फिर दुख ना लागे जास जपत ए हो मैं पागे जास जपत वस आवे पंचा जास जपत हृदय अमृत संचा जास जपत ए तृष्णा बुझे जास जपत हर दरगे सिजे जास जपत कोट मिटे अपराध जास जपत हर होवे साध जास जपत मन शीतल होवे जास जपत मल सगली खोवे जास जपत रतन हर मिले बहुर न छोड़े हर संग हिले जास जपत कई बैकुंठ वास जास जपत सुख सह निवास जास जपत ए अग्न न पोहत जास जपत एहो काल न जोहत जास जपत तेरा निर्मल माथा जास जपत सगला दुख लाता जास जपत मुश्किल कछु न बने जास जपत सुन अनहत तुने जास जपत ए निर्मल सोए जास जपत कमल सीधा होए गुर शुभ दृष्ट सब ऊपर करी जिसके हृदय मंत्र दे हरी अखंड कीर्तन तिन भोजन चूरा कहो नानक जिस सतगुरु पूरा गौड़ी महला पंजवा गुर का शब्द हृदय अंतर तारे पंच जना स्यों संग निवारे दस इंद्री कर राखे वास ताके आत्मे होए प्रगास ऐसी दृढ़ता ताके होए जाको दया मया प्रभ सोए रहाओ साजन दुष्ट जाके एक समान है जेता बोलन तेता ज्ञान है जेता सुनना तेता नाम जेता पेखन तेता ध्यान सहजे जागन सहजे सोए सहजे होता जा

जो इस मारे तिसे वड्याई, जो इस मारे तिसका दुख जाई। ऐसा कोई जे दुबदा मार दवावे, इसे मार राज जोग कमावे। रहाओ जो इस मारे तिसको पौना है, जो इस

सो तनवंता, जो इस मारे सो पतवंता, जो इस मारे सोई जति, जो इस मारे तिस होवे गति, जो इस मारे तिसका आया गनी, जो इस मारे सो नहीं चलतनी, जो इस मारे सोवड पागा, जो इस मारे सो अंधिन जागा, जो इस मारे सो जीवन मुक्ता।

इस मारी बिन थाई न पड़े, कोट कर्म जाप तप करे, इस मारी बिन जन्म न मिटे, इस मारी बिन जमते नहीं छूटे, इस मारी बिन ज्ञान न होई, इस मारी बिन झूठ न तोई, इस मारी बिन सब किछ मैला, इस मारी बिन सब किछ जौला, जाको पै कृपाल कृपा निज, तिस पै खलासी होई।

मन अपने में फिर चेत बिनस जाहे माया के हेत हर अविनाशी तुमरे संग मन मेरे रच राम के रंग जा के काम उतरे सब भूख जा के काम ना जो है दूत जा के काम तेरा वड गमर जा के काम होवे तू अमर जा के

जाके ऊन नाही काहू बात, एक आप अनेक पात, जाकी दृष्ट होए सदा निहाल, मन मेरे कर्ता की काल, ना को चतुर नाही को मूड़ा, ना को हीन नाही को सूरा, जित को लाया तित ही लागा, सो सेवक नानक जिस पागा, गौड़ी महला पंजवा, बिन सिमरन जैसे सर्प आर जारी, त्यों जीवें साकत नाम बिसारी, एक निमक जो

बोले पूर साकत मुखकारा, बिन सिमरन गर्दब की न्याई, साकत थान परिष्ट फिराई, बिन सिमरन कूकर हर काया, साकत लोभी बंद न पाया, बिन सिमरन है आत्म काती, साकत नीच तिस कुल नहीं जाती, जिस पया कृपाल तिस सत्संग मिलाया, कहो नानक गुर जगत तराया, गौड़ी महला पंजवा, गुर के बचन मोह परम गत पाई, गुर पूरे मेरी पैज रखाई, गुर के बचन त्यायो मोह नाओ, गुर प्रसाद मोह मिलिया थाओ, रहाओ, गुर के बचन सुन रसन वखाणी, गुर कृपा ते अमृत मेरी बाणी, गुर के बचन मिटिया मेरा आप, गुर की दया ते मेरा वड प्रताप, गुर के बचन मिटिया मेरा परम, गुर के बचन पेख्यो सब ब्रह्म, गुर के बचन कीनो राज जोग, गुर के संग तरिया सब लोग, गुर के बचन मेरे कार्य सिद्ध, गुर के बचन पाया नाउ निद, जिन जिन कीनी मेरे गुर की आशा, तिसकी कटिये जम की फासा, गुर के बचन जागिया मेरा कर्म, नानक गुर पेटिया पार ब्रह्म, गौड़ी महला पंजवा, किस गुर को सिमरों सास सास, गुर मेरे प्राण सतगुर।

अपना दासरा आपे मुल लियो, आपे लायो अपना प्यार, सदा सदा तिस गुरु को करी नमस्कार। कल कलेश पै परम दुख लाथा, कहो नानक मेरा गुर समराथा। गौड़ी मैला पंजवा, मिल मेरे गोविंद अपना नाम देहो, नाम बिना त्रिग त्रिग असनेहो, रहाओ नाम बिना जो पहरे खाए, जो कूकर जूठन में पाए, नाम बिना जेता व्योहार, जो मृतक मिथ्या सिगार, नाम विसार करे रस भोग, सुख सुपने नहीं तन में रोग, नाम त्याग करे अनकाज, बिनस जाए चूठे सब पाज, नाम संग मन प्रीत न लावे, कोट कर्म कर तो नरक जावे, हर का नाम जिन मन ना आरादा, चोर की न्याय जम पुरबादा, लाख अडंबर बहुत विस्तारा।

खोजत फिरे असंख अंत ना पारिया, सेई होए भगत जिना कृपारिया, हों वारिया हर वारिया। रहाओ सुन सुन पंथ डराओ बहुत पहारिया, मैं तक्की और संता लेहो उबारिया। मोहन लाल अनूप सर्व साधारिया, गुर निव निव लागो पाए देहो दिखारिया। मैं किए मित्र अनेक इक्कस बलिहारिया, सब गुण किसी नाहे हर पूर पंडारिया। चौं दिस जपिए नाउ सूख सवारिया, मैं आही और तुहार नानक बलिहारिया। गुर काढ़ियो पूजा प्रसार मोह कुपारिया, मैं जीत्यो जन्म अपार बहुर नहारिया। मैं पायो सर्व निदान अथक कथारिया, हर दरगे शोभावंत बाल उडारिया। जन नानक लगा रतन अमो

नारायण हर रंग रंगो, जप जेवा हर एक मंगो, राव तज हो मैं गुरु ज्ञान पजो, मिल संगत तुर कर्म लिखियो, जो दी सैसो संग न गयो, साकत मूड लगे पचमोयो, मोहन नाम सदा रव रहयो, कोट मदे किने गुरमुख लयो, हर संतन कर नमो नमो, नौ निद पावे अतुल सुखो, नैन अलोवो साध जनो, हृदय गावो नाम निदो, काम क्रोध लोभ मोह तजो, जन्म मरण दोहते रहयो, दुख अंधेरा करते मिट्यो, गुर ज्ञान दृढ़ायो दीप बलियो, जिन सेव्या सो पार परयो, जन नानक गुरमुख जगत करयो। महला पंजवा गौड़ी, हर हर गुर गुर करत परम गए, मेरे मन सब सुख पायो, रहाओ बल तो जल तो तौ क्या, गुर चंदन शीत लायो, अज्ञान अंधेरा मिट गया, गुर ज्ञान दी पायो, पावक सागर गहरो, चर संतन नाव तरायो, ना हम कर्म ना कर्म सुच, प्रभ गह पूजा अपायो, पौ खंडन दुख पंजनो, भगत वचल हर नायो, अनाथ नाथ कृपाल दीन, समरथ संत ओटायो, निर्गुनी आरे की बेनती, देहो दर्श हर आयो, नानक शरण तुहारी ठाकुर, सेवक द्वारे आयो। गौड़ी महला पंजवा, रंग संग बिखिया के पोगा, इन संग अंध ना जानी, हौ संचो हौ खाटता सगली अवध बिहानी, रहाओ हौ सूरा प्रधान हो, को नाही मुझे समानी, जो बनवंत अचार कुलीना, मन में होए गुमानी, जो उलझायो बाद बुद्ध का, मर्त्या नहीं विसरानी, पाई मीत बंदव सके, पाछे तिन्हों को संपानी, जित लागो मन बासना, अंत साई प्रगटानी, आंग बुद्ध सुच कर्म कर, ए बंधन बंदानी, दयाल पुरख।

बिन करवास नाही पुछो सखी सहेलिया, बिन नाम प्रीत प्यार नाही वसे साथ सुहेलिया। सच मन सज्जन संतोख मेला, गुरमती सो जानिया नानक नाम ना छोड़े साथन, नाम सहज समानिया। मिल सखी सहेलियो हम फिर रावेहा, गुर पुछ लिखोगी जियो शब्द स्नेहा। शब्द साचा गुर दिखाया मन मुखी पछतानिया, निकस जातो रह अस्थिर जाम सच पछाणिया। साच की मत सदा नौतन

हम कर साजने आया। मिलवर नारी मंगल गाया, गुण गाए मंगल प्रेम रहसी, मुंद मन उमा हो साजन रहन से दुष्ट व्यापे, साच जप सच लाहो कर जोड़ सातन करे बिनती, रैन दिन रस पिनिया नानक पिर तन।

रह न साके बिखम रहन कनेरिया, नह नींद आवे प्रेम पावे सुन बेनंती मेरिया। बाजो प्यारे कोई न सारे, एक लड़ी कुर लाए नानक सातन।

हर प्रीत प्यारे शब्द विचारे किसी का सो होवे पुन दान अनेक नावन क्यों अंतर मल तोवे नाम बिना गत कोय न पावे हाथ निग्रह बे बाणे नानक सच कर सब

तेरा मैल सच्चा जियो, नाम सच्चा वापारो, नाम का वापार मीठा, भगत लाहा अंदिनो, जिस बाज वखर कोई न सूजे, नाम लेवो खिन खिनो, परख लेखा नदर साची, कर्म पूरे पाया, नानक नाम।

सा तन बिनो करे जियो हर के गुण सारे खिन पल रह न सके जियो बिन हर प्यारे बिन हर प्यारे रह न सके गुर बिन महल न पाई है जो गुर कहे सोई पर की जय तिसना अग्न बुझाई है हर साचा सोई तिस बिन अवर न कोई बिन सेवे सुख न पाए नानक सा तन मिले मिलाई जिसनो आप मिलाए तन रैन सुहेलड़िए जियो हर स्यो चित लाए सतगुर सेवे पाओ करे जियो विच्चों आप गवाए हर गुण गाए अन दिन लागा पाओ सुन सखी सहेली जी की मेली गुर के शब्द समाओ हर गुण सारी ताकंत प्यारी नामे तरी प्यारो नानक कामन ना प्यारी राम नाम गलहारो तन एक लड़ी जियो बिन ना प्यारे दूजे पाए मुठी जियो बिन गुर शब्द करारे बिन शब्द प्यारे कौन

नानक कामन सदांग राती हर जियो आप मिलाए। ता मिली है हर मेले जियो हर बिन कौन मिलाए, बिन गुर प्रीतम अपने जियो कौन परम चुकाए। गुर परम चुकाए यूं मिली है माए तासा तन सुख पाए। गुर सेवा बिन कोर अंधार बिन गुर मग न पाए। कामन रंग राती सहजे माती गुर कै शब्द विचारे, नानक कामन हर वर पाया।

कापर तन सुहावे जा पिर पावे गुरमति चित लाये सदा सुहागन जा सतगुर सेवे गुर के अंक समाये गुर शब्द मेला ता पिर रावी लाहा नाम संसारे नानक कामन ना प्यारी जा हर के गुण सारे सा तन रंग माने जियो अपने नाल प्यारे एनस रंग राती जियो गुर शब्द विचारे गुर शब्द विचारे हों मैं मारे इन बिद मिलो प्यारे सा तन सुहागन सदा रंग राती साचे नाम प्यारे अपने गुर मिल रही है अमृत गई है दुबदा मार निवारे नानक कामन हर भर

अन ना पानी, पानी अन ना पावे मरिए हावे, बिन फिर क्यों सुख पाये। गुर आगे करो बिनंती जे गुर पावे, ज्यों मिले तिवे मिलाये, आपे मेल ले सुखदाता, आप मिलिया कर आए, नानक कामन सदा सुहागन, ना फिर मरे न जाए। गौड़ी महला तीजा, कामन हर रस बेदी जियो, हर कै सह सुवाए, मन मोहन मोह लिया जियो, दुबदा सह समाए, दुबदा सह समाए, कामन वर पाए, गुरमती रंग लाए, एहो शरीर पूर कुसत परिया, गल काई पाप कमाए, गुरमुख भगत जित सहज तुन उपजे, बिन भगती मैल न जाए, नानक कामन पिरे प्यारी, विच्चों आप गवाए, कामन पिर पाया जियो, गुर के पाए प्यारे, रैन सुख सुती जियो, अंतर उधारे, अंतर उधारे मिलिए प्यारे, अंदिन दुख निवारे, अंतर महल फिर रावे कामन, गुरमति विचारे, अमृत नाम पिया दिन राती, दुबदा मार निवारे, नानक सच मिली सुहागन, गुर कै हेत अपारे, आवो दया करे जियो प्रीतमत प्यारे, कामन बिनो करे जियो सच शब्द सिगारे, सच शब्द सिगारे हों मैं मारे, गुरमुख कार सवारे, जुग जुग एको सच्चा सोई, बूझे गुर विचारे, मनमुख काम व्यापी मोह संतापी, किस आगे जाए पुकारे, नानक मनमुख थाउ न पाए, बिन गुर अत प्यारे, मुंद एयानी पोली निगुनिया जियो, फिर अगम अपारा, आपे मेल मिलिए जियो, आपे बख्शनहारा, अवगुण बख्शनहारा, कामन कंत प्यारा, कट कट रहा समाई, प्रेम प्रीत पाए भगती पाई है, सतगुरु बूझ बुझाए, सदा आनंद रहे दिन राती, अंदिन रहे लिवलाई, नानक सहजे हर वर पाया, सातन नौनिद पाई, गौड़ी महला तीजा, माया सर सबल वरते जियो, क्यों कर दुत्तर तरिया जाए, राम नाम कर बोहता जियो, शब्द खेवट विच पाए, शब्द खेवट विच पाए, हर आप लंगाए, इन विद दुत्तर तरिए, गुरमुख भगत प्राप्त होवे, जीव त्या यो मरिए, खिन में दाम नाम किलविख काटे, पए पवित्र शरीरा, नानक राम नाम निस्तारा, कंचन पए मनूरा, स्त्री पुरुष काम व्यापे जियो, राम नाम की विद नहीं जानी, मात पिता सुत पाई खरे प्यारे जियो, डूब मोए बिन पानी, डूब मोए बिन पानी गत नहीं जानी, होमे ताप संसारे, जो आया सो सबको जासी, उबरे गुर विचारे, गुरमुख होवे राम नाम वखाणे, आप तरह कुल तारे, नानक नाम वसे कट अंतर, गुरमत मिले प्यारे, राम नाम बिन को थिर नाही जियो, बाजी है संसारा, दृढ़ भगत सच्ची जियो, राम नाम वा पारा, राम नाम वा पारा अगमा पारा, गुरमती तन पाईए, सेवा सुरत भगत के साची, विच्चों आप गवाईए, हम मत हीन मूरख मुगद अंधे, सतगुरु मार्ग पाए, नानक गुरमुख शब्द सुहावे, अंदिन हर गुण गाए, आप कराए करे आप जियो, आपे शब्द सवारे, आपे सतगुरु आप शब्द जियो, जुग जुग भगत प्यारे, जुग जुग भगत प्यारे, हर आप सवारे, आपे भगती लाए, आपे दाना आपे बीना, आपे सेव कराए, आपे गुण दाता अवगुण काटे, हृदय नाम वसाए, नानक सद बलिहार।

आग गवाए। सदा हर रस पाए जा हर पाए, रसना सबक सुहाए। नाम प्याए सदा सुख पाए, नाम रहे लिवलाए। नामे उपजै नामे बिनसै, नामे सच समाए। नानक नाम गुरमति पाईए, आपे ले लवाए। ए विदानी चाकरी पिया जियो, तन छोड़ परदेस सिधाए। दूजे किने सुख न पायो पिया जियो, बिख्या लोभ लुवाए। बिख्या लोभ लुभाए परम पुलाए, ओ क्यों कर सुख पाए। चाकरी विदानी खरी दुखाली, आप वेच धर्म गवाए। माया बंधन टिके नाही, छिन छिन दुख संताए। नानक माया का दुख तदे चूके, जा गुर सबदी चितलाए। मन मुख मुकुट गवार पिरा जियो, सबद मन ना वसाए। माया का परम अंग पिरा जियो, हर मार्ग क्यों पाए। क्यों मार्ग पाए बिन सतगुरु पाए, मन मुख आप गणाए। हर के चाकर सदा सुहेले, गुरचरणी चित लाए। जिसनो हर जियो कृपा करे, सदा हर के गुण गाए। नानक नाम

एक बिनो करो जियो सुन कंत प्यारे, मेरा मन तन मोह लिया जियो, देख चलत तुम्हारे चलता तुम्हारे देख मोही, उदास तन क्यों की रहे, गुणवंत ना दयाल बाला सर्व गुण परपूरे, फिर दोष ना ही सुख दाते हो विछड़ी बुरे आरे, बिनवंत नानक दया तारो कर आवो नहा प्यारे, हो मन अर्पी सब तन अर्पी अर्पी सब देसा, हो सिर अर्पी तिसमी प्यारे जो प्रभ दे संदेसा, अर्पिया ता शीश सो पान गुर पे संग प्रभु दिखाया, खिन माहे सगला दुख मिटिया मनो चिंदिया पाया, दिन रैन रलिया करे कामन मिटे सगल अंदेसा, बिनवंत नानक कंत मिलिया लोड़ते हम जैसा, मेरे मन अंध भया जियो वजी वादाई, कर लाल आया प्यारा सब तिखा बुझाई, मिलिया ता लाल गोपाल ठाकुर सखी मंगल गाया, सब मीत बंदप हरख उपजिया दूध ठाउ गवाया, अनहतवा जे वजह कर में फिर संग सेज विछाई, बिनवंत नानक सहज रहे हर मिलिया कंत सुखदाई।

पैन दाना जमपाल तिन को लगे नाही जो एक मन प्यावे मन बचन कर्म जे तुद आराधे से सबे फल पावे मल मूत मूड जे मुग्ध होते से देख दर्शो ज्ञाना बिन वंत नानक राज निचल पूरन पुरुष भगवाना मोहन तू सुफल फलिया।

बेअंत गुण तेरे कथे न जाहे, सतगुर पुरख मुरारे बिनवंत नानक टेक राखी, जित लग तरिया संसारे। गौरी महला पंजवां श्लोक। पतित असंख

संत जप मना तू राम नारायण गोविंदा हर माधो त्याए मना मुरार मुकंदे कटिये काल दुख पातो दुख हरण दीन शरण श्री तार चरण कमल आराध्य जम पंख बिखरा अगन सागर निमक सिमरत साधिय कल मले दहता शुद्ध करता दिन सरण आराधो बिनवंत नानक करो कृपा गोपाल गोविंद माधो सिमर मना दामोदर दुख हर पै पंजन हर राया श्री रंगो दयाल मनोहर भगत वचल बिरदाया भगत वचल पुरख पूरन मने चिंदिया पाई है तम अंग कूप ते उधार है नाम मन वसाई है सुर सिद्ध गण गंधर्व मुन जन गुण अंक भगती गाया बिनवंत नान

बेअंत अगम अपारो शरण जोग समरथ मोहन सर्व दोष बिदारो रोग शोक सब दोख बिन से जपत नाम मुरारी बिनवंत नानक करो कृपा समरथ सब कल धारी गुण गाओ मना अचुत अविनाशी सबके ऊंच दयाला दिसंबर देवन को एक सर्व करे प्रतपाला प्रतपाल महादयाल दाना दया तारे सब किसे काल कंटक लोभ मोह नाशे जी जाके प्रभु बसे सो प्रसन्न देवा सफल सेवा पई पूरन काला बिनवंत नानक इच्छ पुन्नी जप

संते मान त्याग कर भगत खगौरी मोहे साधु मनते सखी वस आया फिर छोड़ न जाई ते रीत पली भगवंत नानक जरा मर।

गोविंद गाय कल कलेश मिटे क्रम नासे मन चिंदिया फल पाइए पार ब्रह्म पूरन परमेश्वर नानक नाम ते आइए। सखी इच करी नित सुख मनाई प्रभु मेरी आस पुजाए चरण प्यासी दर्स बैरागन पेखो थान सवाए खोज लहो हर संत जना संग समरथ पुरख मिलाए नानक तिन मिलिया।

ये मेरी नींद भली, मैं आप नड़ा फिर मिलिया, प्रमुख होयो सांत सह स्वामी, परगास तया कौल खिलिया, वर पाया प्रभ अंतर जामी, नानक सुहाग न टलिया।

परमेश्वरा। गुरुदेव सखा अज्ञान पंजन, गुरुदेव बंधक सहोदरा। गुरुदेव दाता हर नाम उपदेश है, गुरुदेव मंत्र निरोधरा। गुरुदेव शांत सत बुद्ध मूरत, गुरुदेव पारस परस्परा। गुरुदेव तीरथ अमृत सरोवर, गुरु ज्ञान मजन अपरंपरा। गुरुदेव करता सब पाप हरता, गुरुदेव पतित पवित्रा। गुरुदेव आद जुगाद जुग जुग, गुरुदेव मंत्र हर जप उदरा। गुरुदेव संगत प्रभ मेल कर कृपा, हम मूड पापी जित लग तरा। गुरुदेव सत गुर पार ब्रह्म परमेश्वर, गुरुदेव नानक हर नमस्कारा। श्लोक आपे किया कराया आपे करने जोग, नानक एको रव रहा दूसर हुआ न होग। पौड़ी ओम साध सत गुर नमस्कार, आद मद अंत निरंकार। आपे सुन आपे सुख आसन, आपे सुनत आप ही जासन। आपन आपे उपायो, आपे बाप आप ही मायो। आपे सुखम आपे।

प्रीत साध रज राचे तंदे कहां ब्यापे ताहू जो एक छाद अनकते न जाहू जा कही है दियो प्रभु नाम नानक साध पूरन भगवान। श्लोक अनिक

आज्ञा दृढ़ जाके उसन सीत समसर सब ताके ज्ञानी तत् गुरुमुख बिचारी नानक जाको कृपा धारी। श्लोक आमन आए सृष्ट में बिन बूझे पस्तोरे नानक गुरुमुख सो बुझे जाके पाग मथोर। पौड़ी या युग में एक को आया जन्मत मोयो मोनी माया गर्भ कुंट में उर्ग तप करते सास सास सिमरत त्रब रहते उर्ज परे जो छोड़ छदाना देवन हार मने बिसराना तारो कृपा जिसे गुसाई इत उत नानक तिस बिसरो नाही। श्लोक आ

ए साजन कछ कहो उपाया, जाते तरो विषम ए माया, कर कृपा सत्संग मिलाए, नानक ताके निकट न माए। श्लोक। किर्त कमावन शुभ अशुभ कीने, तिन प्रव्याप, पस आपन हो।

या जुग जित जित आपे लायो सो सो पायो जो आप दिवायो ओवा का अंत न जाने को जो जो करे सो फुन हो एक के सगला विस्तारा नानक आप सवार नहारा श्लोक

जोड़ा ते रंग एक कै नानक गूड़ा रंग पौड़ी रारा रंगो या मन अपना हर हर नाम जपो जप रसना रे रे दरगे कह न को आओ बैठ आदर सुख देऊ।

माते या माया में जन्मे मरना जो जो हुक्म तिवे त्यों करना को ऊन ना को पूरा को सुगर ना को मूरा जित जित लावो।

गमिय जास रसन हर हर जस पनिय आए बसे साधु के संगे आम दिन नाम त्यावे रंगे आवत सो जन नामे राता जाको दया मया विदाता एक आवन फिर जोन ना आया नानक हर के दर्श समाया श्लोक यास जपत मन होए आनंद बिनसे दूजा पाओ दुख दर्द किसना बुझे नानक नाम समाओ। पौड़ी जैया जारो दुर्मत दो किसे त्याग सुख सहजे सो यैया जाए परो संत सरना जे आसर एया पव जल करना यैया जन्म न आवे सो एक नाम ले मने परो यैया जन्म न हारिये गुरपूरे की टेक नानक ते सुख पाया जाके ही रे एक। श्लोक अंतर मन तन बस रहे पीत ऊत के बीत गुरपूरे उपदेशया नानक जपिये नीत। पौड़ी अंदिन सिमरो तास को जो अंत सहाय होए ए बिखिया दिन चार छे छार चलियो सब कोए ताको मार

पूरक कुंभक रेचक कर माता ज्ञान ध्यान तीरथ स्नानी सोम पाक अपरस उद्यानी राम नाम संग मन नहीं एता जो कछ तीनो सो अनेता ओ आते उत्तम गनो चंडाला नानक जे मन बसे गोपाला। श्लोक कुंट चार दह दुष्प्रमे कर्म किरत की रेख सुख दुख मुक्त जोन नानक लिखियो लेख। पौड़ी तक्का कारण करता सो लिखियो लेख न मेटत को।

खर्च खजाना नाम तंग या भगतन की रास खिमा गरीबी आनंद सहज जपत रहे गुणतास खेले बिगसे अनद स्यो जा को होत कृपाल सदीव गनीव सुहावने राम नाम गृह माल खेद ना दुख ना दान के।

लोग आस अनित गुरमुख मिटाए नानक नाम अरोग पौड़ी गद्दा गोविंद गुण रमो सास सास जपनीत कहां विशासा देह का बिलम

गुर प्रसाद सिमरत रहे जाहु मस्तक पाग नानक आए सफल ते जाको प्रिय सुहाग। श्लोक कोखे शास्त्र देव सब आम न कस्तो कोए आप जुगा दी।

फूले को मन जो आवे सरना, नाम तत्कल महे पुनः चरना, काल काल अनेक पछतावे, बिन हर भगत कहां थित पावे, कोल महारस अमृत ते पिया, नानक हर गुरु जाको दिया। श्लोक गाने काले सब दिवस सास,

चीन अनेक जोन जन्मे मरे आत्म राम न चीन ज्ञान ध्यान ताहू को आए कर कृपा जे आप दिवाए गणती गणी नहीं को छूटे काची गागर सर पर फूटे।

सभागा चार कुंट देह दुष्क्रम आयो पई कृपा तब दर्शन पायो। चार विचार बिन सो सब दुआ साध संग मन निर्मल हुआ।

ठाड़ सियानप बहु चतुराई, संतन की मन टेक टिकाई, चार की पुत्री परमगत पाई, नानक जाको संत सहाई। श्लोक

जो जाने हो भगत ज्ञानी आगे ठाकुर तिल नहीं मानी। जो जाने मैं कथनी करता व्यापारी बसदा जो फिरता साध संग जे

पौड़ी। सज्जा चूरन मिटे तुम्हारो, राम नाम स्यो कर व्योहारो, चूरत चूरत साकत मुआ, जा कह हृदय होत पाओ बिया। चरह कसम मल पाप तेरे मनुआ, अमृत कथा संत संग सुनुआ, चरह काम क्रोध दुष्टाई, नानक जा को कृपा गुसाई। श्लोक। यतन करो तुम अनक विद।

ज्ञानत सोई संत सोए प्रमते की चत पिन अंधकूप ते ते कढ़ो जे होवो सो प्रसन्न ना कह।

जाके मन तन नाम बसाही, नाम निधान गुरुमुख जो जपते, बिख माया में ना ओए खपते। नन्ना कार ना होता ता कहो, नाम मंत्र गुर दीनो जा कहो। निध निधान हर अमृत पूरे, तें बाजे नानक अनहद तूरे। श्लोक

पौड़ी। पप्पा परमित पार न पाया, पथित पावन अगम हर राया। होत पुनीत कोट अपराधु, अमृत नाम जपह मिल साधु। पर पच त्रोह मोह मिटनाई, जाको राखो आप गुसाई। पाप साओ छत्र सिर सो, नानक दूसर अवर्ण को। श्लोक। फाहे काटे मिटे गमन, फतेह परी मन जीत। नानक गुर ते चित पाई, फिरन मिटे नितनीत। पौड़ी। पप्पा फिरत फिरत तू आया, दुर्लभ देह कल युग में पाया। फिर या अवसर चरे न हाथा, नाम जपो तो कटिए फासा। फिर आवन जान न होई, एक जपो जप सोई। करो कृपा प्रभु।

तैं पंजन अग दुख नास मने अराध हरे संत संग जे रिद बस्यो नानक ते ना प्रमे पौड़ी पब्बा परम मिटावो अपना या संसार सगल है सुखना परमेश्वर नर देवी देवा परमेश्वर साधिक ब्रह्मेवा परम परम मानुख डह काए दुतर महा विखम ए माए गुरुमुख।

मन मूर्ख कह करें पुकार। जो मांगे तो मांगे दिया, जाते कुशल न काहू थिया। मांगन मांगता एक मांग, नानक जाते।

एकत साध संग पतियाना, दुख सुख उआ के समत बिचारा, नरक सुरग रहत अवतारा, ताहू संग ताहू निर्लेपा, पूरन कट कट पुरख बिसेखा, उआ रस में उआहू सुख पाया, नानक लिपत नहीं ते माया। श्लोक। यार मीत सुन साजनो, बिन हर छूटन नाहे, नानक ते बंधन कटे, गुर की चरणी पाहे। पौड़ी। यैया जतन करत बहु विदिया, एक नाम बिन कह लोस दिया, याहू जतन कर होत छुटारा, वाहू जतन साध संगारा, या उबरन तारे सबको, वाहे जपे बिन उबर न हो, याहू तरन तारन समराथा, राख लेहो निर्गुण नरनाथा, मन बच कर्म जे आप जवनाई, नानक ते मत प्रगति।

विद ना बनाए गुरपुरे संजम कर दिया नानक तो फिर दुख ना थिया। श्लोक वासुदेव सर्वत्र में ऊन ना कतु उठाए अंतर बाहर संग है नानक काय दुराए। पौड़ी वाह वैर न करिए काहू खट खट अंतर ब्रह्म समाऊ वासुदेव जल थल में रविया गुर प्रसाद विरले ही गवया। वैर विरोध मिटे ते मनते हर कीर्तन गुरमुख जो सुनते वर्ण चिन्ह सगले ते रहता नानक हर हर गुरमुख जो कहता। श्लोक हौ हौ करत बिहानिया साकत मुगद अजान रलक मुए जो त्रिखावंत नानक कीर्त कमान। पौड़ी राड़ा राड़ मिटे संग साधु

सोदत सोदत सोद बिचारा, बिन हर पदन नहीं छुटकारा। सास सास हम पूलन हारे, तुम समरथ अगनत अपारे। शरण परे की राख दयाला।

पाव जल ते काडो प्रभु नानक तेरी टेक पौड़ी। खेलत खेलत आयो अनक जोन दुख पाए, खेद मिटे साधु मिलत सतगुरु बचन समाए। खिमा गई सच संचयो।

खरा दिलासा गुर दिया, आए मिले भगवंत। आपन किया करें आप, आगे पाछे आप, नानक सो सराही है जे कट कट रहा ब्याप। श्लोक। आए प्रभ शरणागति कृपा निध दयाल, एक अक्षर हर मन बस्त नानक होत निहाल। पौड़ी। अक्षर में त्रिभवन प्रभ धारे, अक्षर कर कर वेद विचारे, अक्षर शास्त्र सिमरत पुराना, अक्षर नाद कथन वख्याना, अक्षर मुक्त जुगत पै परमा, अक्षर कर्म कीर्त सुच परमा, दृष्टमान अक्षर है जेता, नानक पार ब्रह्म निर्लेपा। श्लोक। हाथ कलम अगम मस्तक लिखावती, उर्ज रहो सब संग अनूप रूपावती, पुस्तक कह न जाए मुखों तुहारिया, मोही देख दर्श नानक बलिहारिया। पौड़ी। हे अच्युत हे पार।

हे गोविंद हे गुण निधान जाके सदा विवेक। हे अपरंपर हर हरे है भी होवन हार, हे संत के सदा संग निधारा आधार। हे ठाकुर हूँ दासरो मैं निर्गुण गुण नहीं कोए, नानक दी जय नाम दान राखो ही है परोए। श्लोक गुरुदेव मात

गुरुदेव दाता हर नाम उपदेश है, गुरुदेव मंत्र निरोधरा, गुरुदेव शांत सत बुद्ध मूरत, गुरुदेव पारस परस्परा, गुरुदेव तीर्थ अमृत सरोवर, गुर ज्ञान मज्जन अपरंपरा, गुरुदेव करता सब पाप हरता, गुरुदेव पतित पवित करा, गुरुदेव आद जुगाद जुग जुग, गुरुदेव मंत्र हर जप उदरा।

सतगुरु प्रसाद। आद गुर ए नमः है, जुगाद गुर ए नमः है, सतगुर ए नमः है, श्री गुरुदेव ए नमः है। अष्टपदी सिमरो सिमर सिमर सुख पावो, पल पले स्तन माय मिटाओ। सिमरो जास विसंगर एक है ना।

तब के सिमरन दूख जंग से, तब के सिमरन काल पर हरे, तब के सिमरन दुश्मन तरे, तब सिमरत कछ बिघन न लागे, तब के सिमरन अन दिन जागे, तब के सिमरन पौ न व्यापे, तब के सिमरन दुख न संतापे, तब के सिमरन साध के संग सर्व निधान नानक हर रंग, प्रभ के सिमरन हृदय सिद्ध नौ निध, प्रभ के सिमरन ज्ञान ध्यान तत बुद्ध, प्रभ के सिमरन जप तप पूजा, प्रभ के सिमरन बिनसै दूजा, प्रभ के सिमरन तीर्थ स्नानी, प्रभ के सिमरन दरगह मानी, प्रभ के सिमरन होय सो भला, प्रभ के सिमरन सो फल फला, से सिमरन जिन आप सिमराए, नानक का कैला गुपाए, प्रभ का सिमरन सबसे ऊंचा, प्रभ के सिमरन उदरे मूचा, प्रभ के सिमरन तृष्णा बुझे, प्रभ के सिमरन सब किछ सुझे, प्रभ के सिमरन नाही जन त्रासा, प्रभ के सिमरन पूर्ण आशा, प्रभ के सिमरन मन की मल जाए, अमृत नामृत माही सुनाए, प्रभ जी बसे स्वाद की रसना, नानक जन का दासन दसना, प्रभ को सिमरे से तनवंते, प्रभ को सिमरे से पतवंते, प्रभ को सिमरे से जन प्रवान, प्रभ को सिमरे से पुरुष प्रदान, प्रभ को सिमरे से बेमोहताजे, प्रभ को सिमरे से स्वर्ग के राजे, प्रभ को सिमरे से सुखवासी, प्रभ को सिमरे सदा अविनाशी, सिमरन से लागे जिन आप दयाला, नानक जन की मंगैर वाला, प्रभ को सिमरे से पर उपकारी, प्रभ को सिमरे तिन सब बलिहारी, प्रभ को सिमरे से मुख सुहावे, प्रभ को सिमरे तिन सुख बिहावे, प्रभ को सिमरे तिन आत्म जीता, प्रभ को सिमरे तिन निर्मल रीता, प्रभ को सिमरे तिन अनंत घनेरे, प्रभ को सिमरे बसे हर नेरे, संत कृपा ते अन दिन जाग, नानक सिमरन पूरे भाग, प्रभ के सिमरन कारज पूरे, प्रभ के सिमरन कभो न झूरे, प्रभ के सिमरन हर गुण बानी, प्रभ के सिमरन सह समानी, प्रभ के सिमरन नेचल आसन, प्रभ के सिमरन कमल विगासन, प्रभ के सिमरन अनहद जुनकार, सुख प्रभ सिमरन का अंत न पार, सिमरे से जन जिन को प्रभ नया, नानक तिन जन सरनी पया, हर सिमरन कर पद प्रगटाए, हर सिमरन लग बेत उपाए, हर सिमरन तय सुध जति दाते, हर सिमरन नीच चौ कुंट जाते, हर सिमरन तारी सर करना, सिमर सिमर हर कारण करना, हर सिमरन की ओ सगल अकारा, हर सिमरन में आप निरंकारा, कर कृपा जिस आप बुझाया, नानक गुरुमुख हर सिमरन तिन पास लोक, दीन दर दुख पंजना, कट कट नाथ अनाथ, शरण तुम्हारी आयो, नानक के प्रभु साथ, अष्टपदी जय मात पिता सुत नीत न भाई, मन उहा नाम तेरे संग सहाय, जय मां प्यान दूत दम गले, तह केवल नाम संग तेरे चले, जय मुश्किल होवे अत भारी, हर को नाम खिन माए उदारी, अंत पुने चरण कर्क नहीं तरे, हर को नाम कोट पाप पर हरे, गुरुमुख नाम जपो मन मेरे, नानक पावो सुख घनेरे, सगल सृष्ट को राधा दुखिया, हर का नाम जपत हो सुखिया, लाख करोरी बंदना करे, हर का नाम जपत निस्तर है, अनेक माया रंग सिखना बुझावे, हर का नाम जपत आभावे, जे मार के हो जाति के लाते, हर नाम संगोत सोएला, ऐसा नाम मन सदा ते आई है, नानक गुरमुख परम गत पाई है, छूटत नहीं कोट लखबाही, नाम जपत ने पार कराही, अनेक विघन जय आए संगारे, हर का नाम तत्काल उधार है, अनेक जोन जन्म मर जाम, नाम जपत पावे विश्राम, हो मैला मल कभू न धोवे, हर का नाम कोट पाप खोवे, ऐसा नाम जपो मन रंग, नाम पाई है साध के संग, जे मार्ग के गने जाए न कोसा, हर का नाम उहा संतोषा, जे पैंदे महा अंग गुबारा, हर का नाम संग जियारा, जहां पंख तेरा को न सियानू, हर का नाम तह नाल पहचानू,
जय मां प्याम सत बो काम तै हर के नाम की तुम ऊपर छाम जहाँ त्रिखा मन तुझ आकर खै तै नानक हर हर अमृत बरख है भगत जना की बरकर नाम संत जना के मन विश्राम हर का नाम दास की ओट हर के नाम उदरे जन कोट हर दस पर संत दिन रात हर हर औसत साध कमाट हर जन के हर नाम निधान पार ब्रह्म जन की नो दान मन तन रंग रते रंग एक है नानक जन के बिरत विवेक है हर का नाम जन को मुक्त जुगत हर के नाम जन को तृप्त भूत हर का नाम जन का रूप रंग हर नाम जपत तब करे न भंग हर का नाम जन की वडियाई हर के नाम जन शोभा पाई हर का नाम जन को भोग जोग हर नाम जपत पछवाए वियोग जन वाता हर नाम की सेवा नानक पूजे हर हर देवा हर हर जन के माल खजीना हर तन जन को आप कर दीना हर हर जन के ओट सतानी हर प्रताप जन अवर न जानी ओत पोत जन हर रस राते सुन समाद नाम रस माते आठ पैर जन हर हर जपे हर का पगत प्रकट नहीं छपे हर की पगत मुक्त बहु करे नानक जन संकेते तरे पार जात एव हर को नाम काम तेन हर हर गुण गाम सबसे उत्तम हर की कथा नाम सुनत दर्द दुख लथा नाम की महिमा संत हृदय वसे संत प्रताप दीर्घ सब नसे संत का संगवड भागी पाये संत की सेवा नाम ध्याये नाम तुल कछ अगर न होए नानक गुरमुख नाम पावे जन कोए श्लोक बहु शास्त्र बहु सिमृति पेखे सर्व तंडोल पूजस नाही हर हरे नानक नाम अमोल अष्टपदी जाप ताप ज्ञान सब ज्ञान खत शास्त्र सिमृत वख्यान योग अभ्यास कर्म धर्म क्रिया सगल त्याग बन मदे फिरिया अनेक प्रकार की ये बहु जतना पुन दान हो में बहु रतना शरीर कटाए हो मैं कर राती वर्त नेम करे बहु पाती नहीं तुझ राम नाम विचार नानक गुरमुख नाम जपिए एक बार नौ खंड पृथ्वी फिरे चिरजीव है महा उदास कपि सरथी वै अगन माए हो मत प्राण कनक अश्व है वर भूम दान न्योली कर्म करे बहु आसन जैन मार्ग संजम अच्छादन निमख निमख कर शरीर कटावे तो भी हो मैं मेल न जावे हर के नाम संसर कछ नाहे नानक गुरमुख नाम जपत गप पाहे मन कामना तीरथ दे छुटे गर्भ गुमान न मन ते हुटे सोच करे दिन अर रात मन की मैल न तनते जात इस देही को बहु साधना करे मन से कभू न बिख्या करे जल तो वह बहु दे अनीत शुद्ध कहा होए काची वीत मन हर के नाम की महिमा ऊच नानक नाम उदरे पतित बहुमूच बहुत श्यांत जम का पौ व्यापे अनेक जतन कर प्रसन्ना धापे पेट अनेक अगर नहीं बुझे कोट उपार दर गहने सिजय छूट अपना ही ऊप बयाल मोह व्यापे माया जाल अगर करतूत सगली जमदाने गोविंद पदन बिन तिल नहीं माने हर का नाम जपत दुख जाए नानक बोले सह सुभाए चार पदार्थ जे को मांगे सात जना की सेवा लागे जे को अपना दुख मिटावे हर हर नाम हृदय सदगावे जे को अपनी शोभा लोरे साध संग ए हो मैं चोरे जे को जन्म मरण से डरे सात जना की सरनी परे जिस जन को प्रभु दर्श प्यासा नानक तो कह बल बल जासा सगल पुरुख में पुरुख प्रदान साफ संग जाका मिटे अभिमान आपस को जो जाने नीचा सो गनिये सबसे ऊंचा जाका मन होए सगल की रीना हर हर नाम तिन कट कट चीना मन अपने ते बुरा मिटाना पेखे सगल सृष्टि साजना सुख दुख जन सम दृष्टेता नानक पाप पुन नहीं लेपा निर्तन को तन तेरो

आपन संग आप प्रवराते तुमरी युस्तक तुमते होए नानक अवर न जानस कोए। सर्व कर्म में श्रेष्ठ कर्म हर को नाम जप निर्मल कर्म, सगल क्रिया में उत्तम क्रिया साध संग जुर्मत मल हिरिया।

उबारिया बार व्यवस्था तुझे प्यार है दूध पर जोबन पोजन सुख सूद बिर पया ऊपर साख सैन मुख पियाओ बैठ को देन यो निर्गुण गुण कछु न बूझे बख्श लियो तो नानक सीजे जे प्रसाद तर ऊपर सुख बसे सुत प्रात मीत बनता संग हसे जे प्रसाद पीवे शीतल जला सुखदाई पवन पावक अमूला जे प्रसाद पोगे सब रसा सगल समग्री संग साथ बसा जीने हस्त पाव कर नेत्र रसना तिसे त्याग अवर संग रचना ऐसे दोख मूड अंग व्यापे नानक काड लेहो प्रव्यापे आद अंत जो राखनहार तिस्यों प्रीत न करे गवार।

दूरे जाकी टैल पावे दगे मान किसे बिसारे मुग्ध अजान सदा सदा यो पूलन हार नानक राखन हार अपार रतन त्याग कौडी संगरचे साच छोड़ झूठ संग मचे जो छदना सो अस्थिर कर माने जो होवन सो दूर पराने छोड़ जाए किसका श्रम करे संग सहाई किसका हरे चंदन लेप उतारे धोए गर्दब प्रीत पसंद संग होए अंधकूप में पतित विकराल नानक काड लियो प्रभु दयाल करतूत पशु की मानस जात लोक पचारा करे दिन रात बाहर पेट अंतर मल माया छप सुनाए कछ करे छिपाया बाहर ज्ञान त्याग स्नान अंतर व्यापे लोभ सुहान अंतर अगन बाहर तन सुहा गल पाथर कैसे करे अथाह जाके अंतर बसे प्रभ आप नानक ते जन सह समात सुन अंधा कैसे मार्ग पावे कर गए लिहो और निभावे कहां बुझारत बूझे डोरा निष्कैय तो समझे पोरा कहां विषण पद गावे गुंग जतन करे तो भी सुरभंग कह पिंगल पर्वत पर भवन नहीं होत उहा उस गवन करतार करुणा में दीन बेनती करे नानक तुमरी कृपा करे संग सहाई सो आवे ना चीत जो बैराई तासो प्रीत बलुआ के गृह पीतर बसे अनंत केल माया रंग रसे देर कर माने मने प्रतीत काल न आवे मूड़े चीत बैर विरोध काम क्रोध मोह झूठ विकार महालोक त्रोह त्याहु जुगत बिहाने कई जन्म नानक राख लियो आपन कर करम तू ठाकुर तुम पै अरदास जियो पिंड सर तेरी रास तुम मात पिता हम बार तेरे तुमरी कृपा में सूख गनेरे

जाके मन लागा प्रभ मीठा, सर्व सुख ताहू मन बूठा। जिस जन अपना हुकुम मनाया, सर्व थोक नानक तिन पाया। अगनत साओ अपनी देरास, खात पीत बरते अनत उलास। अपनी अमान कछ बहुर सावले, अज्ञानी मनी रोस करे। अपनी प्रतीत आप ही खोवे, बहुर उसका विश्वास ना होवे। जिसकी बस्त किस आगे राखे, प्रभु की आज्ञा माने माथे। उसते चौगन करे निहाल, नानक साहिब सदा दयाल।

आए। गोविंद भजन दिन बिरथे सब काम, जो किरपन के निरारख दाम। तन तन के जन जे कट बस्यो हर नाओ, नानक ता कह बल बल जाओ। रहत अवर कछ अवर कमावत, मन नहीं प्रीत मुखो गंध लावत। जानन हार प्रभु प्रवीन, बाहर पेख न काहू पीन। और उपदेश आप न करे, आवत जावत जन में मरे। जिसके अंतर बसे निरंकार, तिसकी सीख करे संसार। जो तुम पाने तिन प्रभु जाता, नानक पुंजन चरण पर आता। करो बेनती पार ब्रह्म सब जाने, अपना किया आपे माने। आपे आप

ता के जे प्रसाद तुझको ना पहुंचे मन साथ साथ सिमरो प्रभु ऊचे जे प्रसाद पाई दुर्लभ दे नानक ता की भगत करे जे प्रसाद अपूखन पहरी जय मन ते सिमरत क्यों आलस की जय जे प्रसाद अस्वारी मन तिस प्रभु को कभू ना बिसारी।

जे प्रसाद तेरी पत्र है, गुर प्रसाद नानक जस कहै। जे प्रसाद सुने करन नाद, जे प्रसाद पेखे विस्माद। जे प्रसाद बोले अमृत रसना, जे प्रसाद सुख सहजे बसना। जे प्रसाद हस्त कर चले, जे प्रसाद संपूर्ण फले। जे प्रसाद परम गत पावे, जे प्रसाद सुख सह समावे। ऐसा प्रभ त्याग अवर कत लागो।

जूरे जे प्रसाद तू पावे साच रे मन मेरे तू तासो राच जे प्रसाद सबकी गत होए नानक जाप जपे जप सोए आप जपाए जपे सोनाओ आप गवाए सोहर गुन गाओ।

खोत। साध के संग मिटे अभिमान, साध के संग प्रगटे सो ज्ञान, साध के संग बुझे प्रभ नेरा, साध संग सब होत निवेरा, साध के संग पाए नाम रतन, साध के संग एक ऊपर जतन, साध की महिमा बरने कौन प्राणी, नानक साध की शोभा प्रभ माए समानी, साध के संग अगोचर मिले, साध के संग सदा प्रफुल्ले, साध के संग आवे बस पंचा, साध संग अमृत रस गुंचा, साध संग होए सबकी रेन, साध के संग मनोहर बैन, साध के संग न कथू धावे, साध संग अस्थित मन पावे, साध के संग माया ते पिन, साध संग नानक प्रभ सो प्रसन्न।

प्रभु बने आई। साध के संग न कभू धावे, साध के संग सदा सुख पावे, साध संग बस अगोचर लहे, साधु के संग अजर सहे, साध के संग बस है थान ऊंचे, साधु के संग महल पहुंचे, साध के संग दृढ़ सब धर्म, साध के संग केवल पारब्रह्म, साध के संग पाए नाम।

ब्रह्म ज्ञानी की दृष्ट अमृत बरसी, ब्रह्म ज्ञानी बंधन से मुक्ता, ब्रह्म ज्ञानी की निर्मल जुगता, ब्रह्म ज्ञानी का पूजन ज्ञान, नानक ब्रह्म ज्ञानी का

सकल आकार ब्रह्म ज्ञानी आप निरंकार ब्रह्म ज्ञानी की शोभा ब्रह्म ज्ञानी बनी नानक ब्रह्म ज्ञानी सर्व का तनी। श्लोक उर्दारे जो अंतर नाम सर्व में पेख है भगवान निमख निमख ठाकुर नमस्कार है नानक ओ अपरस सगल निस्तार है। अष्टपदी।

पक्ष प्रेत मुगध पाथर को उतार है। सर्व रोग का औखद नाम कल्याण रूप मंगल गुण गाम। काहू जुगत कितह न पाई है कर्म, नानक किस मिले जिस लिखिया तुर कर्म।

कुमार अष्टपदी, कई कोट होए पुजारी, कई कोट आचार व्यवहारी, कई कोट पै तीर्थवासी, कई कोट बन क्रमे उदासी, कई कोट वेद के स्रोते, कई कोट तपीसर होते, कई कोट आपम ध्यान तारे, कई कोट कब काब विचारे, कई कोट नर्तन नाम ध्यावे, नानक करते का अंत न पावे, कई कोट पै अभिमानी, कई कोट अंत अज्ञानी, कई कोट कृपन कठोर, कई कोट अभिज आत्म निकोर, कई कोट पर दर्द को हिर है, कई कोट पर दुख न करे, कई कोट माया श्रम माहे, कई कोट परदेश परमाहे, जित जित लाभ हो तित तित लगना, नानक करते की जाने करता रचना, कई कोट सिद्ध जति जोगी, कई कोट राजे रस भोगी, कई कोट पंखी सर्प उपाए, कई कोट पाथर बिरख मिट जाए, कई कोट पवन पानी बैसंतर, कई कोट देश भूमंडल, कई कोट सस्यर सूर नक्षत्र, कई कोट देवदान इंद्र सिर छत्र, सगल समग्री अपने सूत धारे, नारक जिस जिस पावे तिस तिस निस्तारे, कई कोट राजस्ताम सातक, कई कोट वेद पुराण सिमरत हर शास्त्र, कई

नानक आप अलिप्त रहा भरपूर। कई कोट पताल के वासी, कई कोट नरक सुर्ग निवासी, कई कोट जन्मे जीवे मरे, कई कोट बहुजो नी फिरे।

हुक्मे तार अदर रहावे, हुक्मे उपजे हुक्म समावे, हुक्मे ऊंच नीच व्यवहार, हुक्मे अनेक रंग प्रकार, कर कर देखे अप

जो पावे सो कार करावे, नानक दृष्टि अवर न आवे। कहो मानस ते क्या होए आवे, ज्योतिष पावे सोई करावे। इसके हाथ होए ता सब पिछले, ज्योतिष पावे सोई करे। अनजानत भिक्षा में रचे, जे जानत आपन आप बचे। परमे पूला दे दिस्तावे, निमक माए चार कुंट फिर आवे। कर कृपा।

कबहु सिद्ध साधक मुख ज्ञान, कबहु कीट हस्त पतंग होए जिया, अनेक जोन परमे परमिया, नाना रूप जो स्वागी दिखावे, जो प्रभ पावे तिवेन चावे, जो

नानक दर्द गले अष्टपदी। जिसके अंतर राग अभिमान सो नरक पाती होवत स्वान। जो जाने में जो बनवंत सो होवत विस्ता का जंत।

सारे अनित तपस्या करे अंकार, नरक सुरग सिर सिर अवतार। अनित जतन कर आत्म नहीं द्रवे, हर दरगे को कैसे गवे।

जाए प्रभु कृपा ते बंधन टूटे गुरु प्रसाद नानक हों छूटे सहस खटे लखो सावे तृप्त न आवे माया पाछे पावे अनेक भोग दुखिया के करे न तृप्त आवे खप खप मरे बिना संतोष नहीं को राजे सुपन मनोरथ बिरथे सब काजे नाम रंग सर्व सुख होए बड़ पागी किसे प्राप्त होए करण

रचया समाए, आप उपदेश है समझे, आपे रचया सब के साथ, आप तीनों आपन विस्तार, सब कछ उसका ओ करने हार, उसते तिन कहो किस होए, स्थान सनंतर एक कैसोए, अपने चलित आप करने हार, कौतुक करे रंग अपार, मन में आप मन अपने माहे, नानक कीमत कह न जाए, सत सत सत प्रभ स्वामी, गुरु प्रसाद किने वख्यानी, सच सच सच सब कीना, कोट मदे किने बिरले चीना।

जाने नाम संग जिसका मन मानिया नानक तिने निरंजन जानिया गुरु प्रसाद आपन आप सुजय तिसकी जानू तृष्णा बुझय साध संग हर हर जस कहत सर्ग रोग ते ओ हर जन रहत अंजन कीर्तन केवल ख्यान ग्रस्त में सोई निर्वाण एक ऊपर जिस जन की आशा तिसकी कटिए जन की फासा पार ब्रह्म की जिस मन भूख नानक तिसे न लागे दुख जिसको हर प्रभु मन चित आवे सो संत सुहेला नहीं बुलावे जिस प्रभु अपना कृपा करे सो सेवक कहो किसते डरे जैसा सा तैसा दृष्टाया अपने कार्य में आप समाया सोदत सोदत सोदत सीजिया गुरु प्रसाद तक सब बुझिया जब देखो तब सब किस मूल नानक सो सुखम सोई अस्थूल न किस जन्म न किस मरे आपन चलित आप ही करे आवन जावन दृष्ट अंदृष्ट आज्ञाकारी तारी सब श्रेष्ठ आपे आप सगल में आप अनेक जुगत रखाप उठाप अविनाशी नाही किस खंड तारण तार रहे हो ब्रह्मांड अलख अभेद पुरुष प्रताप आप जपाए त नानक जाप जिन प्रभु जाता सो सोभावंत सगल संसार उदरे तिन

सगल देवहारे अवगाहे। पिता के जन्म के जाने पूत, सगल परोई अपने सूत। सुमत ज्ञान त्यान जिन दे, जन दास नाम त्यावे से। त्यो गुण में जाको भरमाए, जन्म मरे फिर आवे जाए। ऊंच नीच तिसके स्थान, जैसा जनावे तैसा नानक जान। नाना रूप नाना जाके रंग, नाना तेख करे एक रंग। नाना विद कीनो विस्तार, प्रभु अविनाशी एकंकार। नाना चलत करे खिन माहे, पूर्यो पूरन सब ठाए। नाना विद कर दंत बनाई, अपनी कीमत आपे पाए। सब कब तिसके सब तिसके ठाओ, जब जब जीवे नान खरनाओ। नाम के तारे सगले जंत, नाम के तारे खंड ब्रह्मंड। नाम के तारे सिमरत वेद पुराण, नाम के तारे सुनन ज्ञान ध्यान। नाम के तारे आगाश पताल, नाम के तारे सगल आकार। नाम के तारे पुरिया सब भवन, नाम के संग उदरे सुन श्रवण। कर कृपा जिस अपने नाम लाए, नानक चौथे पद में सो जनगत पाए। रूप सत जा का सत स्थान, पुरुष सत केवल प्रधान। करतूत सत सत जा की बाणी, सत पुरुष सब माए समानी। सत कर्म जा की रचना सत, मूल सत सत उत्पत्त। सत करनी निर्मल निर्मली, जिसे बुझाए तिसे सब पली। सत नाम प्रभुता सुखदाई, विश्वास सत नाम गुर ते पाई। सत बचन साधु उपदेश, सत ते जन जा कैर रह प्रवेश। सत निरत बूझे जे कोए, नाम जपत्ता की गत होए। आप सत की आसव सत, आपे जाने अपनी मित गत। जिसकी सृष्टि हो करने हार, और न बूझ करत विचार। करते की मित न जाने किया, नानक ज्योतिष पावे सो वर्तिया। बिस्मन बिस्म पे बिस्माद, जिन बूझिया तिस आया स्वाद। प्रभ के रंग रात जन रहे, गुर के बचन पदार्थ लहे। ओए दाते दुख काटन हार, जाके संग करे संसार। जन का सेवक सो वड पागी, जन के संग एक लिव लागी। गुण गोविंद कीर्तन जन गावे, गुर प्रसाद नानक फल पावे। श्लोक आद सच जुगाद सच, है भी सच नानक होसी भी सच। अष्टपदी चरण सत सत प्रसन्हार, पूजा सत सत सेवदार। दर्शन सत सत पेखनहार, नाम सत सत त्यावनहार। आप सत सत सबधारी, आपे गुण आपे गुणकारी। शब्द सत सत प्रभक्ता, सुरत सत सत जस सुनता। बुझनहार को सत सब होए, नानक सत सत प्रभ सोए। सत स्वरूप हृदय जिन मानिया, करण करावन तिन मूल पछानिया। जहाँ कह हृदय विश्वास प्रभ आया, सत ज्ञान तिस मन प्रगटाया। कहते निर्भो होए बसाना, जिसते उपजा तिस माए समाना। बस्त माए ले बस्त गडाई, ताको पिन ना कहना जाई। बूझे बूझन हार विवेक, नारायण मिले नानक एक। ठाकुर का सेवक आज्ञाकारी, ठाकुर का सेवक सदा पुजारी। ठाकुर के सेवक के मन प्रतीत, ठाकुर के सेवक की निर्मल रीत। ठाकुर को सेवक जाने संग, प्रभु का सेवक नाम के रंग। सेवक को प्रभु पालन हारा, सेवक की राखे निरंकारा। सो सेवक जिस दया प्रभु धारे, नानक सो सेवक साथ साथ समारे। अपने जन का प्रदाता कह, अपने सेवक की सर पर राखे। अपने दास को दे बढ़ाई, अपने सेवक को नाम जपाई। अपने सेवक की आप पत राखे, ताकि दत्मित कोई न लाखे। प्रभु के सेवक को कोना पहुँचे, प्रभु के सेवक पूछते ऊँचे। जो प्रभु अपनी सेवा लाया, नानक सो सेवक दैन प्रगटाया। नीकी कीरी महफल राखे, पसंद करे लश्कर कोट लाखे। जिसका साफ न काटत आप, ताको राखत दे कर हाथ। मानस जतन करत बहु पाक, तिसके कर्तव्य से जात। मारे न राखे और न कोए, सर्व जिया का राखा सोए। काहे सोच करे रे प्राणी।

जप नानक प्रभ अलख विडाणी। बारंबार बार प्रभ जपी है, पी अमृत इहो मन तंत्र पी है। नाम रतन जिन गुरमुख पाया, तिस किछ अवर नाहीं दृष्टाया। नाम तन नामो रूप रंग, नामो सुखर नाम का संग। नाम रस जो जंत्र स्थाने, मन तन नामे नाम समाने। उठत बैठत सोवत नाम, कहो नानक जन कह सब काम। बोलो जस जे बै दिन रात, प्रभ अपने जन की नीदात। करें भगत आत्म कह चाहे, प्रभ अपने सो रहे समाए। जो हो आहो वत सो जाने, प्रभ अपने का हुक्म पछाने। तिसकी महिमा कौन बखानो, तिसका गुण कह एक न जानो। आठ पैर प्रभ बसे हजूरे, कहो नानक से जन पूरे। मन मेरे तिन की ओट ले, मन तन अपना तिन जन।

पात्मिता में अवश्य आप सगली छाड़ तिस जन की तू सेवा नाग आवन जान न होवी तेरा नानक तिस जन के पूजो सब तेरा। श्लोक

अष्टपदी सतगुरु सिख की तरह प्रतपाल सेवक को गुर सदा दयाल सिख की गुर दुरमत मल हिरे गुर बचनी हर नाम उचरे सतगुरु सिख के बंधन काटे गुर का सिख विकार ते हाटे सतगुरु सिख को नाम तन दे गुर का सिख वड पागी है सतगुरु सिख का हल्क पलक सवार नानक सतगुरु सिख को जी नाल समार है गुर के गृह सेवक जो रहे गुर की आज्ञा मन में सह आपस को कर कछ न जनावे हर हर नाम हृदय सत्यावे मन बेचे सतगुर के पास तिस सेवक के कारज रास सेवा करत होए ने कामी किसको हो प्राप्त स्वामी अपनी कृपा जिस आप करे नाम सो सेवक गुर की मत ले बीस विश्वे गुर का मन माने सो सेवक परमेश्वर की गत जाने सो सतगुरु जिस हृदय हर नाओ अनेक बार गुर को बल जाओ सर्व निदान जी का दाता आठ पैर पार ब्रह्म जन राता ब्रह्म में जन जन में पार ब्रह्म एक आप नहीं कच भरम सह स्यान लिया न जाइए नानक ऐसा गुर बड़ पागी पाइये सफल दर्शन पेखत पुनीत परसत चरण गत निर्मल रीत पेखत संग राम गुण रवे पार ब्रह्म की दरगे गवे सुनकर बचन करन आघाने मन सुन दो खासम पतियाने पूरा गुर अख्यो जाका मंत्र अमृत दृष्ट पेखे हो संत गुण बेअंत कीमत नहीं पाए नानक जिस पावे तिस लय मिलाए जीवा एक पुस्तक अनेक सतपुर पूरन विवेक काहू बोल न पहुँच प्राणी अगम अगोचर प्रब निर्वाणी निराहार निर्वैर सुखदाई ताकि कीमत किने न पाई अनेक भगत बंधन मुक्त करे चरण कमल हृदय सिमरे सब बलिहारी सतगुर अपने नानक जिस पर साथ ऐसा प्रभ जपने क्यों हर रस पावे जन कोए अमृत पीवे अमर सोए उस पुरख का नाही कदे विनाश जाके मन प्रगटे गुण पास आठ पैर हर का नाम ले सच उपदेश सेवक को दे मोह माया के संग ना लेप मन में राखे हर एक अंधकार दीपक प्रगासे नानक परम मोह दुख तैसे नासे तपत माए ठाट वरताई अंग भया दुख नाठे भाई जन्म मरण के मिटे अंदेशे साधु के पूर्ण उपदेशे पौ चूका निरपौ हो बसे सगल व्याद मंगते खैन से जिसका साथ तिन कृपा भारी साध संग जप नाम मुरारी थित पाई चूके क्रम गवन सुन नानक हर हर दस श्रवन निर्गुण आप सरगुण भी ओही कलाकार जिन सगली मोही अपने चरित प्रभ आप बनाए अपनी कीमत आपे पाए हर बिंदु जाना ही कोए सर्व निरंतर को सोए पोत पोत रव्या रूप रंग कहे प्रभा साध कै संग रच रचना अपनी कल तारी अनेक बार नानक बलिहारी श्लोक

भजन बिखिया सगली छार, हर हर नाम कमावना नानक इहो दम सार। अष्टपदी संत जना मिल करो विचार, एक सिमर नाम आधार, अवर उपास पर मीत विसारो, चरण कमल उदमय उधारो, करण कारण सो प्रभ संगरक्ष, दृढ़ कर गहो नाम हर वक्त, यो तन संचो हो वो भगवंत, संत जना का निर्मल मंत, एक आस राखो मन माहे, सर्व रोग नानक मिट जाहे, जिस तन को चार कुंठ उठ धावे, सो तन हर सेवा ते पावे, जिस सुख को नित बाचे मीत, सो सुख साधु संग परीत, जिस शोभा को करे पली करनी, सा शोभा पज हर की सरनी, अनक उपावी रोग न जाए, रोग मिटे हर औखद लाए, सर्व निदान में हर नाम निदान, जप नानक दरगे परवान, मंत्र बोधो हर कहनाए, दैर्य स्थावत आवे ठाए, ताको विघ्न न लागे कोए, जाके हृदय बसे हर सोए, कल पाती ठांडा हर नाओ, सिमर सिमर सदा सुख पाओ, पौ बिन से पूरन होए आस, भगत पाए आत्म प्रगास, चित कर जाए बसे अविनाशी, कहो नानक काटी जम फासी, तत विचार कहे जन साचा, जन्म मरे सो काचो काचा, आवागमन मिटे प्रभु सेव, आप त्याग शरण गुरुदेव, त्यों रतन जन्म का होए उधार, हर हर सिमर प्राण आधार, अनेक उपाव न छूटन हारे, सिमरत सासत वेद विचारे, हर की भगत करो मन लाए, मन बंशत नानक फल पाए, संग ना चाल तेरे धना, तू क्या लपतावे मूर्ख मना, सुत मीत कुटम अर्बनता, इनसे कहो तुम कवन सनाता, राज रंग माया विस्तार, इनसे कहो कवन छुटकार, अस हस्ती रथ असवारी, चूठा डंप चूट पासारी, जिन दिए तिस बुझे ना बेगाना, नाम विसार नानक पछताना, गुर की मत तू ले आने, भगत बिना भो डूबे स्याने, हर की भगत करो मन मीत, निर्मल होए तुम्हारे चीत, चरण कमल राखो मन माहे, जन्म जन्म के किल बिट जाए, आप जपो अगरा नाम जपाओ, सुनत कहत रहत गत पाओ, सार भूत सत हर को नाओ, सह सुबह नानक गुन गाओ, गुन गाव तेरी उतरस मैल, बिनस जाए हो मैं विकफैल, हो है अचिंत बसे सुखनाल, साफ ग्रह सर नाम समाल, छाड़ स्यान सगली मना, साफ संग पावे सत घना, हर पूंजी संच करो व्यवहार, इहां सुख दरगे जयकार, सर्व निरंतर एको देख, कहो नानक जाके मस्तक लेख, एको जप एको सलाह, एको सिमर एको मन आहे, एक के गुण गाव अनंत, मंथन जाप एक भगवंत, एक एक एक हर आप, पूरन पूर रहो प्रव्याप, अनेक विस्तार एक ते भय, एक अराज पराशक गए, मंथन अंतर एक प्रवराता, गुरु प्रसाद नानक एक जाता, श्लोक फिरत फिरत प्रभु आया।

अष्टपदी जाचक जन जाचे प्रदान कर कृपा देवो हर नाम साजना की मांगो तूर पादरन मेरी सरदा पूर सदा सदा प्रभ के गुण गावो साथ साथ प्रभ तुम्हें ध्यावो चरण कमल छो लागे प्रीत भगत करो प्रभ की नित नीत एक ओट एको आधार नानक मांगे नाम प्रसार प्रभ की दृष्टि मां सुख होए हर रस पावे बिरला कोए जिन चाख्या से जन तृप्ता में पूरन पुरख नहीं डोलाने सुवर भरे प्रेम रस रंग उपजे चाव साध के संग परे शरण आम सब त्याग अंतर पर गास आम दिन लिवलाग बड़ पागी जपिया प्रभ सोए नानक नाम रते सुख होए सेवक की मनसा पूरी भई सतगुर ते निर्मल मत लई जन को प्रभ होयो दयाल सेवक की नो सदा निहाल बंधन काट मुक्त जन भया जन्म मरण दुख क्रम गया इच्छ पुनी सरदा सब पूरी रव रया सब संग हजूरी जिस पासा तिन लिया मिलाए नानक भक्ति नाम समाए सो क्यों बिसरे जे काल न पाने सो क्यों बिसरे जे की आ जाने सो क्यों बिसरे जिन सब किछ दिया सो क्यों बिसरे जे जीवन जिया सो क्यों बिसरे जे अगन में राखे गुरु प्रसाद को बिरला लाखे सो क्यों बिसरे जे बिकते काडे जन्म जन्म का टूटा गांडे गुरपुरे तक यह बुझाया प्रभ अपना नानक जन त्याया साजन संत करो यो काम आम त्याग जपो हर नाम सिमर सिमर सिमर सुख पावो आप जपो अवरह नाम जपाओ भगत पाए तरिय संसार बिन भक्ति तन हो सी चार सर्व कल्याण सुख निज नाम बूढ़त जाप पाए विश्राम सगल दुख का होत नाश नानक नाम जपो गुण पास उपजी प्रीत प्रेम रस चाओ मन तन अंतर एही सुआओ नेत्रों पेक दर सुख होए मन विकसे साध चरण तोए भगत जना के मन तन रंग बिरला को पावे संग एक बस दीजे कर माया गुरु प्रसाद नाम जप लया ताकि उपमा कहीं न जाए नानक रहया सर्व समाए प्रभु संग दीन दयाल भगत वचल सदा कृपाल अनाथ नाथ गोविंद गोपाल सर्व कटा कर्त कृपाल आद पुरुष कारण करतार भगत जना के प्राण आधार जो जो जपे सो हुए पुनीत भगत पाए लावे मनहित हम निर्गुनियार नीच अजान नानक तुमरी शरण पुरुष भगवान सर्व वैकुंठ मुक्त मोक्ष पाए एक निमख हर के गुण गाए अनेक राज भोग बढ़ियाई हर के नाम की कथा मन भाई बहु भोजन का प्रसंगीत रसना जपती हर हर नीत फली सो करनी सो बातनवंत हृदय बसे पूरन गुरमंत साध संग प्रभ देव निवास सर्व सुख नानक प्रगास श्लोक सर्गुण निर्गुण निरंकार सुन समाधि आप आपन किया नानका आपसे ही फिर जाप अष्टपदी जब अकार यो कचना दृष्टि ताप पाप तुम तब कहते होता जब तारी आपन सुन समाद तब बैर विरोध के संकमात जब इसका वरण चेन ना जापत तब हरक शोक कोप से व्यापत जब आपन आप पार ब्रह्म तब मोह कहा किस होवत भरम आपन खेल आप वर्ती जा नानक करने हार न दूजा जब होवत प्रभ केवल तनी तब बंद मुकत को किसको बनी जब एक है हर अगम अपार तब नरक स्वरूप को कौन अवतार जब निर्गुण प्रभ सह सुवाए तब शिव सकट को कित ठाए जब आपे आप अपनी जोत धरे तब कौन निडर कौन कत डरे आपन चलित आप करने हार नानक ठाकुर अगम अपार अविनाशी सुख आपन आसन तह जन्म मरण को कहां विनाशन जब पूरन करता प्रभु सोए तब जम की त्रास कहो किस होए जब अवगत अगोचर प्रभु एका तब चित्र गुप्त किस पूछत लेखा जब नाथ निरंजन अगोचर अगादे तब कौन छुटे कौन बंधन बाधे
आपन आप ही अचर जा, नानक आपन रूप आप ही उपर जा। जय निर्मल पुरख पुरख पत होता, तै बिन मैल कहो क्या तोता। जय निरंजन निरंकार निर्वाण, तै कौन कौमान कौन अभिमान।

सारा बहु बेअंत उठते ऊंचा नानक आपस को आते पहुंचा। जय आप रचियो प्रपंच आकार त्यो गुण में कीनो विस्तार। पाप पुण्य तह पई कहावत कौ नरक कौ स्वर्ग बंसावत। आल जाल माया जंजाल होमे मोह परम पै पार। दुख सुख मान अपमान अनेक प्रकार की ओब्यान। आपन खेल आप कर देख है खेल संकोच है तो नानक एक है। जय अवगत भगत है आप जय पसरे पासा संत प्रताप। दो पाप का आपे धनी उनकी शोभा उन्हों बनी। आपे कौतक करे अनंत चोज आपे रस को गन निर्जोग। जिस पावे तिस आपन ना इलावे जिस पावे तिस खेल खिलावे। बेसुमार अथा अगनत अतोले जो बुलावो त्यों नानक दास बोले। श्लोक जी जंत के ठाकुरा आपे वर्तनहार। नानक एको पसरिया दूजा कह विस्तार। अष्टपदी आप कथे आप सुनने हार। आपे एक आप विस्तार जात पावे ता श्रेष्ट उपाए। अपने भाणे ले समाए कुमते पिन नहीं किछ होए। आपन सूत सब जगत परोए। जा को प्रभु जियो आप बुझाए सच नाम सोई जन पाए। सो समदर्शी तप का देता नानक सगल श्रेष्ठ का जेता। जी जंत्र सबका कह हाथ दीन दयाल अनाथ को नाथ। जिस राखे तिस कोई न मारे सो मुआ जिस मनो बिसारे। तिस तज अगर कहा को जाए सब सिर एक निरंजन राय। जी की जुगत जा कह सब हाथ अंतर बार जानो साथ। गुण निदान बेअंत अपार नानक दास सदा बलिहार। पूरन पूर रहे दयाल सब ऊपर होत कृपाल। अपने कर्तव्य जाने आप अंतर जामी रहो व्याप।

गोपाल दमोदर दीन दयाल दुख पंजन पूरन कृपाल सिमर सिमर नाम बारंबार नानक जी का यह आधार। उत्तम श्लोक साध के बचन अमलीक लाल ए रतन सुनत कमा

जय जय शब्द अनाहद वाजे, सुन सुन अनद करे प्रभु गाजे। प्रगटे गोपाल महंत कै माथे, नानक उदरे तिन कै साथे,

प्रधान पुरख प्रगट सब लोए, सबसे ऊंच पाए अस्थान, बहुर न हो वे आवन जान, हर तन काट चले जन सोए, नानक जिसे प्राप्त होए। खेम शांत रिद्ध नव निद, बुद्ध ज्ञान सर्व तह सिद्ध,

व्यास सुंदर चतुर तत्व का बेता सुंदर सी एक दृष्टेता ए फल किस जन के मुख भने गुरु नानक नाम बचन मन सुने एहो निधान जपे मन कोए सब जुग में ताकी गत होए गुण गोविंद नाम धुन बाणी सिमरत शास्त्र वेद बखाणी सगल मतांत केवल हर नाम गोविंद भगत के मन विश्राम कोट अपराध साध संग मिटे संत कृपा से जम से छुटे जाके मस्तक कर्म प्रभ पाए साध शरण नानक ते आए जिस मन बसे सुने लाए प्रीत तिस जन आवे हर प्रभ चीत जन्म मरण ता

राम नाम तन संचवै साच सहा भगवंत। उठत बैठत हर पजो साधु संग परीत नानक दुर्म।

नानक संत निर्मल पए, जिन मन वसया सोए पौड़ी। तृतीया त्रै गुण बिखै फल, कब उत्तम कब नीच, नरक सुर्ग प्रम तो कणो, सदा संगारे मीच। हरख सोग सहसा संसार, हौ हौ करत बिहाए, जिनकी ये तिसे न जाननी, चित में अनक उपाय। आद ब्याद उपाद रस, कभो न टूटे ताप, पार ब्रह्म पूरन तनी, नह बूझे परताप। मोह परम बूढ़त कणो, महानरक में वास, कर कृपा प्रभ राख।

जन्म मरण बहु जोन प्रमण कीने कर्म अनेक रचनहार ने सिमरियो मन ना विचार विवेक। पाओ भगत भगवान संग माया लिप्त न रंच नानक बिरले पाये जो ना रचे परपंच। श्लोक खट शास्त्र ऊंचो कहे अंत न पारावार भगत सो है गुण गावते नानक प्रभु के द्वार। पौड़ी खस्ता।

नारद मुन जन सुख व्यास जस गावत गोबिंद रस गी दे हर्षो बीदे भगत रचे भगवंत। मोह मान प्रम बिनस्यो पाई शरण दयाल चरण कमल मन तन बसे दर्शन देख निहाल। लाभ मिले तो ताहिरे साध संग निवलाए खाट खजाना गुण निध हरे नानक नाम त्याए। श्लोक संत मंडल हर जस

भंडार संत संगत में पाई है अंत न पारावार। आप तजो गोविंद पजो शरण परो हर राय, दुख हरे पव जल तरे मन चिंदिया फल पाए। आठ पैर मन हर जपे सफल जन्म परवान, अंतर बाहर सदा संग करने हार पछाण। सो साजन सो सखा मीत जो हर की मत दे, नानक तिस बलिहार।

जम कंकर जोए न सकई, नानक प्रभु दयाल। पौड़ी अष्टमी अष्ट सिद्ध नव निध, सगल पदार्थ पूरन।

हर नाम न जपें करत विपरीत, पर त्रै रमें बकें साध निंद, करन न सुनही हर जस बिंद। हिरे पर दर्ब उदर कहताई, अगर न निवरे तृष्णा न बुझाई, हर सेवा बिन ए फल लागे, नानक प्रभु बिसरत मर जमे अपागे। श्लोक। दस दिस खोजत मैं फिरियो, जत देखो तत सोए, मन बस आवे नानका, जे पूरन कृपा होए। पौड़ी। दसवीं दस द्वार बस कीने, मन संत

एकादशी निकट पेखो हर राम, इंद्री बस कर सुनो हर नाम, मन संतोख सर्व जी दया, इन विद वर्त संपूर्ण भया, तावत मन राखे इकठाए, मन तन शुद्ध जपत हर नाए, सब में पूर रहे पार ब्रह्म, नानक हर कीर्तन कर अटल एव धर्म।

द्वादशी दान नाम स्नान, हर की भगत करो तज मान, हर अमृत पान करो साध संग, मन तृप्ता से कीर्तन प्रवरंग, कोमल बाणी सबको संतोख है, पंचपू आत्मा हर नाम रस कोख है, गुरपूरे ते ए नेचो पाई है, नानक राम रमत फिर जोन न आई है। श्लोक तीन गुणा में व्याप्या पूरन होत न काम, अतित उदाहरण मन बसे नानक छूटे नाम। पौड़ी त्रौदशी तीन ताप संसार, आवत जात नरक अवतार, हर हर भजन ना मन में आयो, सुख सागर प्रभ निमख न गायो, हरक सोग का देह कर बांधियो, दीर्घ रोग माया आसादियो, दिने विकार करत श्रम पायो, नैनी नींद सुपन बरड़ायो, हर विसरत होवत ए हाल, शरण नानक प्रभ पुरख।

कुंट प्रभ आप सगल पवन पूरन प्रताप दशे दिशा रविया प्रभ एक करण आकाश सब में प्रभ टेक जल थल बन पर्वत पाताल परमेश्वर तें बसें दयाल सूखम अस्थूल सगल भगवान।

दुर्मत मिटी हो मैं छुटी सिमरत हर को नाम। शरण गई पार ब्रह्म की मिटिया आवागमन, आप तरे कुटुंब स्यो गुण गोविंद प्रभ रमन। हर की टहल कमावनी जपिए प्रभ का नाम, गुर पूरे ते पाया नानक सुख विश्राम। श्लोक पूरन कब होना।

को उपदेश है को दृढ़ है तिसका होए उदार। किलबिख का तय होए निर्मला जन्म जन्म मल जाए हलत पलत मुख।

सतगुर पुरख दयाल है, जिसनो समत सब कोए, एक दृष्ट कर देखदा मन पावनी ते सिद्ध होए। सतगुर विच अमृत है, हर उत्तम हर पद सोए, नानक कृपा ते।

हर तन खटिया गुरमुख शब्द विचार हो मैं मैल बिख उतरे हर अमृत हर उधार सब कार्य तिनके सिद्ध हैं जिन गुरमुख कृपा तार नानक जो तुर मिले।

रंग स्यों गुरुमुख हर गुण तास जन नानक हर शरणागती हर मेले गुरसावास पौड़ी। तू करता पुरख अगम है किस नाल तू वड़ी है तुद जेवड़ होए सो आखी है तुद जेहा तू है पड़ी है। तू कट कट एक वर्तदा गुरुमुख पर गड़ी है तू सच्चा सब सदा।

जन नानक सुख सवन। महला चौथा, सतगुर दाता दयाल है, जिसनों दया सदा होए, सतगुर अंदरों निर्वै

सेवड पागी जे तुदते आईंदे जिन सतगुर मिली है। सतगुर की बाणी सत स्वरूप है, गुरबाणी बनी है, सतगुर की रीस है, होर कच पिछ बोल दे से कूड़े आर कूड़े चढ़।

बिक माया नो चख मर्दे करिए। श्लोक महला चौथा, सतगुर की सेवा निर्मली, निर्मल जन होए सो सेवा काले। जिन अंदर कपट विकार झूठ, ओए आपे सत्य वख कड्डे जजमाले। सत्यार सिख बह सतगुर पास, कालन कूड़ियार न लबनी किते खाए पाले। जिना सतगुर का आख्या सुखावे नाही, तिना मोह पलेरे फिरे दे गाले। जिन अंदर प्रीत नहीं हर केरी, से किचरक वेरायन मन मुख बेताले। सतगुरु नो मिले सो अपना मन थाए रखे, ओहो आप वरते अपनी वथ नाले। जन नानक इक ना गुर मेल सुख देवे, इक आपे वख कड्डे ठगवाले। महला चौथा, जिना अंदर नाम निदान, हर तिन के काज दे आंदे रास। तिन चूकी मोहताजी लोकन की, हर प्रभ अंग कर बैठा पास। जा करता वल ता सब को वल, सब दर्शन देख करे सावास। साहो पात साहो सब हर का किया, सब जन को आए करे रह रास। गुरपूरे की वड्डी वड्याई, हर वड्डा सेव अतुल सुख पाया। गुरपूरे दान दिया हर नेचल, नित बख्शे चढ़े सवाया। कोई निंदक वड्याई देख न सके, सो करते आप पचाया। जन नानक गुण बोले करते के, भगतानो सदा रखदा आया। कौड़ी, तू साहिब अगम दयाल है वरदाता दाना। तुझ जेवड़ मैं होर को दिस न आवई, तू है सुगड़ मेरे मन पाना। मो कुटंब दिस आमदा, सब चलन हारा आवन जाना। जो बिन सके होरत चित लाए दे, से कूड़ियार कूड़ा तिन माना। नानक सच त्याय तू, बिन सके पच पच मोए अजाना। श्लोक महला चौथा, अगो दे सत पाओ ना दिच्चे, पिछो दे आखिया कम ना आवे। अद विच फिरे मन मुख विचारा, गली क्यों सुख पावे। जिस अंदर प्रीत नहीं सतगुर की, सो कूड़ी आवे कूड़ी जावे। जे कृपा करे मेरा हर प्रभ करता, ता सतगुर पार ब्रह्म नदरी आवे। ता प्यो पीवे शब्द गुर केरा, सब कारा अंदेशा परम चुकावे। सदा आनंद रहे दिन राती, जन नानक अंदिन हर गुण गावे। महला चौथा, गुर सतगुर का जो सिख आखाए, सो पलके उठ हर नाम से आवे। उदम करे पलके परबाती, स्नान करे अमृत शरण आवे। उपदेश गुरु हर हर जप जापे, सब किलविक पाप दोख ले जावे। फिर चढ़े दिवस गुरबाणी गावे, बेंदिया उठ दिया हर नाम से आवे। जो सास गिरास से आए मेरा हर हर, सो गुरु सिख गुरु मन पावे। जिसनो दयाल होवे मेरा स्वामी, तिस गुरु सिख गुरु उपदेश सुनावे। जन नानक धूड़ मंगे तिस गुरु सिख की, जो आप जपे अवरे नाम जपावे। पौड़ी, जो तुद सच त्याय दे, से विरले थोड़े। जो मन चित इक अराध दे, तिनकी बरकत खाए असंख करोड़े। तुदनो सब त्याय दी, से थाए पए जो साहिब लोड़े। जो बिन सतगुर सेवे खांदे पैन दे, से मोए मर जम्मे कोड़े। ओए हाजर मिठा बोल दे, बाहर विस कडे मुख खोले। मन खोटे दया विछोले। श्लोक महला चौथा, मल जूई परया नीला काला, खिदोलड़ा तिन वे मुख है नो पाया। पास न दे कोई बहन, जगत में गू पड़ सगवी। मल लाए मन मुख आया, पराई जो निंदा चुगली। नो वे मुख कर के पेजिया, ओथे भी मुह काला दुआ वे मुखा दा कराया। पढ़ सुनिया सबत जगत विच पाई, वे मुख सने नफरे। पौली पौदी फावा होए कै उठ कर आया। अगे संगति कुड़मी, वे मुख रलना ना मिले। ता वोटी पतीजी फिर आन कर पाया। हलत पलत दोवें गए, नित पुखा कूके तिहाया। तन तन स्वामी करता पुरख है, जिन न्याओ सत बह आप कराया। जो निंदा करे सतगुर पूरे की, सो साचे मार पचाया। एहो अखर तिन आखिया, जिन जगत सब

सब पाप जगते का तिन सिर लया, उस अगे पिछे कोई नाही, जिस अंदर निंदा मोह अंब पया, जे सोयने नो ओ हाथ पाए ता खेहू सेती रल गया, जे गुर की सरनी फिर ओह आवे ता पिछले औगण बख्श लिया, जन नानक अंदिन नाम से आया, हर सिमरत किलविक पाप गया। पौड़ी तू है सच्चा सच तू, सब दू ऊपर तू दीवान, जो तुद सच त्याए दे सच सेवन सच्चे तेरा मान, ओना अंदर सच मुख उजरे सच बोलन सच्चे तेरा तान, से भगत जिन्नी गुरमुख सा लाया।

कोई पुत सिख सेवा करे सतगुरु की, तिस कार्य सब सवारे, जो इच्छे सो फल पाए सी, पुत तन लक्ष्मी खर मेले हर निस्तारे, सब निधान सतगुरु विच जिस अंदर हर उर्धारे, सो पाए पूरा सतगुरु जिस लिखिया लिखत लिलारे, जन नानक मांगे तूर तिन जो गुरसिख मित प्यारे। महला चौथा, जिनको आप दे वड्याई, जगत दी आपे आन तिनको पैरी पाए, डरिये ता जे किछ आप दू कीचे, सब करता अपनी कला वधाए, देखो पाई इहो अखाड़ा हर प्रीतम सच्चे का, जिन अपने जोर सब आन निवाए, अपने आप भगता की रख करे, हर स्वामी निंदका दुष्टा के मौका ले कराए, सतगुर की वड्याई नित चढ़े सवाई, हर कीरत भगत नित आप कराए, अनदिन नाम जपो गुर सिखो, हर करता सतगुर करी वसाए, सतगुर की बाणी सत सत कर जानो गुर सिखो, हर करता आप

सिखा के मोह उजले करे हर प्यारा, गुर का जयकार संसार सबत कराए, जन नानक हर का दास है, हर दासन की हर पैज रखाए पौड़ी। तू सच्चा साहिब आप है सच हमारे, सच पूंजी नाम दृढ़ाए प्रवण जारे थारे, सच सेवे सच वणंजले गुण कथे निरारे, सेवक पाए से जन मिले गुर शब्द सवारे, तू सच्चा साहिब अलख है गुर शब्द लखारे। श्लोक महला चौथा, जिस अंदर ताप पराई होवे तिसदा कदे न होवी पला, ओस दे आखे कोई न लगे नित ओजारी पुकारे खला, जिस अंदर चुगली चुगलो वजे कीता करत्या ओसदा सब गया, नित चुगली करे अनहोंदी पराई मोह कड न सके ओसदा काला भया, कर्म तरती शरीर कल युग विच जेहा को बीजे तेहा को खाए, गला ऊपर तपावस न होई।

जन नानक को सब सोजी पाई, हर दर किया बाता आप सुनाए। मैला चौथा होंदे प्रतख गुरु जो बिछड़े, तिनको दर टोई नाही। कोई जाए मिले तिन निंदका, मोह फिके थुक थुक मोह पाही। जो सतगुर फिटके से सब जगत फिटके, नित पंबल पूसे खाई। जिन गुरु गोपिया अपना से लेंदे तहां फिराई, तिनकी पुख कदे ना उतरे, नित पुखा पुख कुकाही। ओना दा आख्या को ना सुने, नित हौले हौल मराही। सच गुर की वड्याई वेख न सकनी, ओना अगे पिछे थाओ नाही। जो सतगुरु मारे तिन जाय मिले, रेंदी खोंदी सब पत गवाई। कोई अगै कुश्ती गुर के फिटके, जे उस मिले तिस कुष्ट उठाही। हर दिन का दर्शन ना करो, जो दूजे पाए चित लाही। कुर करते आप लिख पाया, तिस नाल क्यों चारा नाही। जन नानक नाम अराधू, तिस अपड़ को ना सकाही। नावे की

तिसको जगत निव्या सब पैरी पया जस वर्त्या लोई, तिसको खंड ब्रह्मंड नमस्कार करें, जिसके मस्तक हाथ तरया गुर पूरे सो पूरा होई, गुर की वड्याई नित चढ़े सवाई अपर को नास कोई, जन नानक हर करते आप बैठ क्या आपे पैज रखे प्रभ सोई पौड़ी। काया कोट अपार है अंदर हट नाले, गुरमुख सौदा जो करे हर वक्त संभाले, नाम निदान हर वणजी है हीरे परवाले, विन काया जे होर से तन खोज दे से मूड बेताले, से उजड़ परम पवाये ज्यो चार मिर्ग पाले। श्लोक महला चौथा। जो निंदा करे सतगुर पूरे की सो औखा जग में होया, नरक कोर दुख खू है ओथे पकड़ ओ टोया, कूक पुकार को ना सुने ओ औखा होय होय रोया, ओन हलत पलत सब गवाया लाहा मूल सब खोया, ओ तेली संदा बलद कर नित पल के उठ प्रभ जोया, हर वेखे सुने नित सब किछ तिद्दू किछ गुज्जा ना।

तिस सतगुर के चरण तोया, गुर सतगुर पिछे तर गया, जो लोहा कार संगोया, जन नानक नाम से आए तू, जप हर हर नाम सुख होया। महला चौथा, वड पागिया सोहागनी, जिना गुरमुख मिलिया हर राय, अंतर जोत प्रगासिया, नानक नाम समाए। पौड़ी, एहो शरीर सब धर्म है, जिस अंदर सच्चे की विच जोत, गुहज रतन विच लुक रहे, कोई गुरमुख सेवक कड्डे कोत, सब आत्म राम पछाणिया, ता इक रविया इको ओत पोत, इक देखिया इक मन्या, इको सुनिया श्रवण स्रोत। जन नानक नाम सलाहे तू, सच सच्चे सेवा तेरी होत। श्लोक महला चौथा, सब रस्तिन कह हृदय है, जिन हर वस्या मन माहे, हर दरगह ते मुख उजले, तिनको सब देखन जाहे, जिन निरपो नाम से आया, तिनको पौ कोई नाहे, हर उत्तम तिनी सरेविया, जिनको तुर लिखिया आहे। ते हर दरगे पे नाई है, जिन हर उठा मन माहे, ओए आप तरे सब कुटम स्यो, तिन पिछे सब जगत छदाहे, जन नानक को हर वेल जन, तिन वेख वेख हम।

0: से जंत भय हरि आवले, जिनी मेरा सतगुरु देखिया जाए। तन तन पिता तन तन कुल, तन तन सो जननी जिन गुरु जनिया माए। तन तन गुरु जिन नाम आराध्या, आप तरिया जिनी दिठा तिना ले छाए। हर सतगुर मेलो दया कर, जन नानक तो वै पाए। पौड़ी सच सच्चा सतगुर अमर है, जिस अंदर हर उधारिया। सच सच्चा सतगुरु पुरख है, जिन काम क्रोध बिख मारिया। जान दिठा पूरा सतगुरु, ता अंदरों मन साधारिया। बलिहारी गुर आपने सदा सदा कुंवारिया। गुरमुख जिता मनमुख हारिया, गुरमुख जिता मनमुख हारिया। श्लोक महला चौथा। कर कृपा सतगुर मेले उन, मुख गुरमुख नाम ते आए थी। सो करे जी सतगुर पावसी, गुर पूरा करी वसाए थी। जिन अंदर नाम निदान है, तिनका पौ सब गवाए थी। जिन रखन को हर आप होए, होर के ती चक चक जाए थी। जन नानक नाम ते आए तू, हर हालत पलत छोड़ाए थी। महला चौथा। गुर सिखा के मन पाव दी, गुर सतगुर की वड्याई। हर राखो पैज सतगुरु की, नित चढ़े सवाई। गुर सतगुर के मन पार ब्रह्म है, पार ब्रह्म छड़ाई। गुर सतगुर तान दीवान हर, तिन सब आन निवाई। जिन्नी दिखा मेरा सतगुर पाव कर, तिन के सब पाप गवाई। हर दरगे ते मुख उजले, बहु शोभा पाई। जन नानक मंगे तूर तिन, जो गुर के सिख मेरे पाई। पौड़ी हौ आप सलाही सिर्फ सच, सच सच्चे की वड्याई। सलाही सच सलाह सच, सच कीमत किने न पाई। सच सच्चा रस जिन्नी चखिया, से तृप्त रहे आघाई। इहो हर रस से ही जान दे, जो गूंगे मिठाई खाई। गुर पूरे हर प्रभ सेविया, मन वजी वधाई।
1: श्लोक महला चौथा। जिना अंदर उमर थल से ही जानन सूलिया। हर जाने से ही बिरहो हौ तिन विट्टों सद कुम कोलिया। हर मेलो

सत संगत में हर उस्तत है, संग साधु मिले प्यारिया। ओए पुरख प्राणी तन जन है, उपदेश करें पर उपकारिया। हर नाम दृढ़ावे हर नाम सुनावे, हर नामे जग निस्तारिया। गुर वेखण को सब कोई लोचे, नव खंड जगत नमस्कारिया। तुद आपे आप रखिया, सतगुर विच गुर आपे तुद सवारिया। तू आपे पूजे पूज करावे।

सतगुरु नो मिले सही जन उबरे जिन हृदय नाम समारिया जन नानक के गुर सिख पुतो हर जप्यो हर निस्तारिया। महला तीजा हो मैं जगत पुलाया दुर्मत बिखिया बिकार सतगुर मिले ता नदर होए मन मुख अंध अंधियार। नानक आपे मेल ले जिसनो शब्द लाए प्यार। पौड़ी सच सच्चे की सिफत सलाह है सो करे जिस अंदर पिजे जिन्नी एक मन एक अरादिया तिनका कंध ना कबहू छिजे। तन तन पुरख सवास है जिन सच रसना अमृत पिजे सच सच्चा जिन मन पामदा से मन सच्ची दरगह लिजे। तन तन जन्म सचियारिया मुख उज्जल सच करिजे। श्लोक महला चौथा साकत जाए निवे गुर आ गए मन खोटे कूड़ कूड़ आरे जा गुर कहे उठो मेरे पाई बह जाहे कुसर बगुलारे। गुर सिखा अंदर सतगुर वरते।

पौड़ी सच सुत्या जिनी आरा दिया जा उठे ता सच चवे से विरले जुग में जानिए जो गुरमुख सच रवे। हौ बलिहारी तिन कहो जे अंदिन सच लवे जिन मंतन सच्चा पामदा से सच्ची दरगे गवे। जन नानक बोले सच नाम सच सच्चा सदा नवे।

जन भगत है सच सच्चा जिनी अरादिया, जिन गुरमुख खोज टंडोलिया तिन अंदरों ही सच ला दिया। सच साहिब सच जिनी सेविया, काल कंटक मार तिनी साध्या। सच सच्चा सबदू वड़ा है, सच सेवन से सच रला दिया। सच सच्चे नू

भाए सतगुर सेती मन रता रखिया बणत बनाए जिहवा सालाहे ना रजई हर प्रीतम चित लाए नानक नावे की मन पुख है मन तृप्त है हर रस खाए पौड़ी सच सच्चा कुदरत जानिए दिन राती जिन बनाया सो सच सलाही सदा सदा सच सच्चे किया वड्याईया सलाही सच सलाह सच सच कीमत किने न पाया जा मिलिया पूरा सतगुरु ता हाजिर नदरी आईया सच गुरमुख जिनी सलाहया तिना पुखा सब गवाईया। श्लोक महला चौथा। मैं मन तन खोज खोजेंदिया सो प्रभ लद्दा लोड़ विस्त

गुरमुख जापै शब्द लिव लाए, हर नाम सुन मन्ने हर नाम समाए, ज्योतिष पावे सो करे कराया, नानक वजदा जंत वजाया। पौड़ी, तू करता सब किछ जानदा, जो जिया अंदर वरते, तू करता आप अगणत है, सब जग विच गणते, सब कीता तेरा वरतदा, सब तेरी बनते, तू कट कट इक वरतदा, सच साहिब चलते, सतगुरु नो मिले सो हर मिले, ना ही किसे परते। श्लोक महला चौथा। एहो मनुआ दृढ़ कर रखी है, गुरमुख लाई है चित, क्यों सास गिरास विसारी है, बहंदियां उठदियां नित, मरण जीवन की चिंता गई, इहो जीड़ा हर प्रभु वस, ज्यों पावे त्यों

दुख विहाए, सतगुर पुरख निर्वैर है आपे लय जिस लाए, नानक दर्शन जिना विखा लियोन तिना दरगे लय छड़ाए। महला तीजा, मनमुख अज्ञान दुर्मत अंकारी, अंतर क्रोध जुए मतहारी, कूड़

0: नानक पूरब लिखिया कमाए पौड़ी।
1: जिनके चित्त कठोर है से बह ना सतगुर पास, ओथे सच वर्तदा कूड़ियारा चित उदास। ओए वल छल कर चत कट दे फिर जाए बह कूड़ियारा पास, विच सच्चे कूड़ न गड्डे मन वेखो को निर्जास। कूड़ियार कूड़ियारी जाय रले सच्चार सिख बैठे सतगुर पास। श्लोक महला पंजवा, रहंदे खोंदे निंदक मारियन कर आपे आहर, संत सहाई नानका वरते सब जाहर। महला पंजवा, मुंडो पुल्ले मुंडते किथे पाइन हाथ, तिन्ने मारे नानका जे करण कारण समरथ।

आपो आपनी आपे पछताणी अजराइल फिरस्ता तिन पीड़े काणी। श्लोक महला पंजवा। सेवक सच्चे साह के सेई परवान, दूजा सेवन नानका से पच पच मोए।

पंजवा अब खद सबे की तेन निंदक का दारू ना है आप पुलाए नानका पच पच जोनी पाहे पौड़ी पंजवा तुस दिता पूरे सतगुरु हर तन सच अखुट सब अंधे

मन मुख मूलों पुल्या विच लभ लोभ अहंकार झगड़ा कर दिया अन दिन गुदरे शब्द ना करे विचार शुद्ध मत करते सब हिरलई बोलन सब विकार दित्ते किते ना संतोखिये अंतर तिसना बहु अज्ञान अंध्यार नानक मन मुखा।

गुरमुख ज्ञान विवेक बुद्ध होए, हर गुण गावे हृदय हार परोए, पवित्र पावन परम विचारी, जे उस मिले तिस पार उतारी, अंतर हर नाम वासना समाणी, हर दर शोभा महा उत्तम बाणी, जे पुरख सुने सो होए निहाल, नानक सतगुरु मिले पाया नाम तन माल। महला चौथा, सतगुरु के जी की सार न जापे, के पूरे सतगुरु पावे, गुर सिखा अंदर सतगुरु वरते, जो सिखा नो लोचे सो गुर खुशी आवे, सतगुर आखे सो कार कमावन, सो जप कमावे, गुर सिखा की काल सच्चा थाए पावे, विन सतगुर के हुक्मे जे गुर सिखा पासों कम कराया लोड़े, तिस गुर सिख फिर नेड़ ना आवे, गुर सतगुर अग्गे को जियो लाए काले, तिस अग्गे

जे बिन सतगुर के मन मने काम कराए सो जंत महा दुख पावे पौड़ी। तू सच्चा साहिब अत वड्डा तुहे जेवर तू वड वड्डे जिस तू मेले सो तुद मिले तू आपे बख्श लह लेखा छड़े जिसनो तू आप मिलाएगा सो सतगुर सेवे मन गड गड्डे। तू सच्चा साहिब सच तू सब जियो पिंड चम तेरा हड्डे ज्यों पावे त्यों।

मन तन नित पावो, नाम सुने नाम संग्रह नामे लिव लावो, गृह तन सब पवित्र होए, हर के गुण गावो, हर नाम वपारी नानका वड पागी पावो। पौड़ी जो तुद पावे सो पला, सच तेरा पाना, तू सब में एक वर्तदा सब माहे समाना, थान थनंतर रव रहा जी अंदर जाना, साध संग मिल पाये मन सच्चे पाना, नानक प्रभ सरना।

जिस सिमरत सुख पाए सब तिखा बुझाई, कर सेवा पार ब्रह्म गुर पुख रह न काई, सगल मनोरथ पुन्या अमरा पद पाई, तुद जेवड़ तू है पार ब्रह्म नानक शरणाई। श्लोक महला पंजवा। डिठड़ो हब ठाए ऊण न काई जाए, नानक लद्दा तिन सुआओ जिना सतगुर पेटिया। महला पंजवा। दामनी चमत्कार त्यों वरतारा जग के, वत्स सुहावी साए नानक नाउ जपंदो तिस्तणी पौड़ी। सिमरत शास्त्र सोध सब किने कीव न जानी, जो जन पेटे साध संग सो हर रंग माणी, सच नाम करता पुरख ए रतना खानी, मस्तक होवे लिखिया हर सिमर पराणी, तो साध

ओए सेवन समरथ अपना बिनसै सब मंदा पतित उदाहरण पार ब्रह्म संत वेद कहंदा भगत वत्सल तेरा बिरद है जुग जुग वर्तंदा नानक जाचे।

नानक सह सह गंत। महला पंजवा विसारे दे मर गए मर भी न सके मूल। वेमुख होए राम ते जो तस्कर उपर सूल। पौड़ी सुख निधान प्रभ एक है अविनाशी सुनिया। जल थल मैयल पूरिया कट कट हर पणिया। ऊंच नीच सब एक समान कीट हस्ती बनिया। मीत सखा सुत बंद पो सब तिस दे जनिया। तुस नानक देव।

बिखै कौड़तन सगल माहे जगत रही लपटाए नानक जन विचारिया मीठा हर का नाम पौड़ी। ए निशानी साधकी जिस पेटत तरिए जम कंकर नेड़ ना आवई फिर बहुड़ ना मरिए पव सागर संसार बिख सो पार उतरिए।

जिन हर उठा चित गाली अल पला लिया कम न आवे मित। महला पंजवा पार ब्रह्म प्रभ दृष्टि आया पूरन अगम विस्माद नानक राम नाम तन कीता पूरे गुर प्रसाद। पौड़ी तो वो ना चली खसम नाल लब मोहे विगुते करतब करन पलेरिया मद माया सुते फिर जून पवायन।

लालच अटिया नित फिरे स्वार्थ करे न कोए जिस गुर पेटे नानका तिस मन वसिया सोए पौड़ी सबे वस्तु कौड़िया सच्चे नाव मिठा साध आया तिन हर जना चक साधी डिठा पार ब्रह्म जिस लिखिया मन तिसे उठा एक निरंजन रव रहा पाव दोया कुठा हर नानक मंगे जोड़ कर प्रभ देवे तुठा। श्लोक महला पंजवा।

पंजवा वत लगी सच्चे नाम की जो बीजे सो खाए तिसे प्राप्त नानका जिसनो लिखिया आए। महला पंजवा मंगना ता सच एक जिस तुस देवे आप जित खादे मन तृप्ति है नानक साहिब दात। पौड़ी लाहा जग में से खटे जिन हर तन रास दुतिया पाओ ना जाननी सच्चे दी आस नेचल एक सरेविया होर सब विनाश पार ब्रह्म जिस विसरे तिस

जन रंग रूप रस बाद के करें प्राणिया, जिस पुलाए आप तिस कल नहीं जानिया, रंग रते निर्वाण सच्चा गावही, नानक शरण द्वार जे तुद पावही पौड़ी। जम्मन मरण ना तिन को जो हर लड़ लागे, जीवत से परवान।

सब निधान कर जिस दे हर करे सो होवे जप जप जीवे संत जन पापा मल तोवे चरण कमल हृदय वसे संकट सब खोवे गुरपुरा जिस पेटी है मर जन्म ना रोवे प्रभ दर्श प्यास नानक घणी कृपा कर देवे श्लोक दखना महला पंजवा पूरी परम वंजाए प्री मोहब्बत हिक तू जिथों वंजे जाए तिथाओ मौजूद सोए महला पंजवा चढ़ के कोड़े।

उचरे हर श्रवणी सुने सो उदरे मिता हर जस लिखे लाए पावनी से हस्त पविता अठ सठ तीर्थ मजना सब पुन तिन किता संसार सागर ते उदरे बिखिया गढ़ जिता नानक लड़ लाए।

महला पंजवा जाचक मंगे नित नाम साहिब करे कबूल नानक परमेश्वर जजमान तिसे भुख ना मूल पौड़ी मन रत्ता गोविंद संग सच भोजन जोड़े प्रीत लगी हर नाम स्यों ए हस्ती कोड़े राज मिलक खुशियां कणी त्याए मुख ना मोड़े ताडी दर प्रभ मंगना दर कदे ना छोड़े नानक।

14 अब मोहे जलत राम जल पाया, राम उदक तन जलत बुझाया, रहाओ मन मारण कारण बन जाये, सो जल बिन भगवंत न पाये। जे पावक सुर नर है जारे, राम उदक जन जलत उबारे, पव सागर सुख सागर माही, पीव रहे जल निखुटत नाही, कह कबीर पज सारंग पानी, राम उदक मेरी तिखा।

नगन फिरत जो पाए जोग, बन का मिर्ग मुक्त सब होग। क्या नांगे क्या बांधे चाम, जब नहीं चीनस आत्म राम। रहाओ मूड मुंडाए जो सिद्ध पाई, मुक्ति पेड़ न गैया काई। बिंद राख जो तरिय पाई, खुश रह क्यों ना परमगत पाई। कहो कबीर सुनो नर पाई, राम नाम बिन किन गत पाई। गौरी कबीर जी संध्या प्रात।

देव कहो कबीर भगत कर पाया, पोले पाए मिले रघुराया। गौड़ी कबीर जी गर्भवास में कुल नहीं जाती, ब्रह्म बिंद ते सब उत्पाती। कहो रे पंडित बामन कब के होए, बामन कह कह जन्म मत खोए। रहाओ जो तू ब्राह्मण ब्रह्मणी जाया, तो आन बाट काहे नहीं आया। तुम कत ब्राह्मण

दो मिल रोई है जो पैरस ना राम ना कहबो उपजत बिनसत रोवत रहबो रहाओ जस देखिए तरवर की छाया प्राण गए कौ का की माया जस जंती मह जियो समाना मुए मरम को का कर जाना।

ज्योति तित लागे कंचुआ फल मोती कवन सो कार जो निरपो कही है पौ पज जाए अभय होए रही है रहाओ। तट तीरथ नहीं मन पति आए चार अचार रहे उरझाए पाप पुन दोए एक समान निज कर पार सजो गुण आन कबीर निर्गुण नाम न रोस इस पर चाय परच रहो एस। गौड़ी कबीर जी जो जन परमित परमन

बिचारी, कहो कबीर एक बुद्ध बिचारी, ना ओ कूटा ना पनिहारी। गौड़ी कबीर जी, अस्थावर जंगम कीट पतंगा, अनेक जन्म किए बहुरंगा, ऐसे कर हम बहुत बसाए, जब हम राम गर्भ होए आए। रहाओ जोगी जति तपि ब्रह्मचारी, कबहू राजा छत्रपत कबहू पेखारी, साकत मरे संत सब जीवे, राम रसायन रसना पीवे। कहो कबीर प्रभ कृपा की जय, हार परे अब पूरा दी जय। गौड़ी कबीर जी की नाल रलाए लिखिया महला पंजवा, ऐसो अचरज देखो कबीर, दद कै पोले बिरोले नीर। रहाओ हरी अंगूरी गधा चरे, नित उठ हाथ ही गय मरे, माता पैसा अमुहा जाए, कुद कुद चरे रसा तल पाए। कहो कबीर प्रगट पई खेड, लेले को चूगे नित पेड, राम रमत मत प्रगटी आई, कहो कबीर गुरसो जी पाई। गौड़ी कबीर जी पंच पदे, ज्यो जल छोड़ बाहर पयो मीना, पूरब जन्म हो तप का ही ना, अब कहो राम कवन गत मोरी, सजीले बनारस मत पई थोरी। रहाओ सगल जन्म शिवपुरी गवाया, मरती बार मगहर उठ आया, बहुत वर्ष तप किया काशी, मरन पया मगहर की बासी। काशी मगहर संबिचारी, ओछी पगत कैसे उतरस पारी, कहो गुर गज शिव सब को जाने, मुआ कबीर रमत श्री राम। गौड़ी कबीर जी, चोआ चंदन मर्दन अंगा, सो तन जले काट के संगा, इस तन तन की कवन बढ़ाई, तरन परे उर्वार न जाई। रहाओ रात जे सोवे दिन करे काम, एक खिन लेहे ना हर को नाम, हाथ ता डोर मुख खायो तंबोर, मरती बार कस बांध्यो चोर, गुरमत रस रस हर गुण गावे, रामे राम रमत सुख पावे। कृपा करके नाम दृढ़ाई, हर हर बात सुगंध बसाई।

दुखे। जमते उलट पए है राम, दुख बिन से सुख कियो विश्राम। बैरी उलट पए है मीता, साकत उलट सुजन पए चीता। अब मोहे सर्व कुशल कर माने।

कोट उपाद उलट पाई सुख सह समाद आप पछाने आपे आप रोग ना व्यापे तीनों ताप।

जिन राम जानिया तिने पछानिया, ज्यो गूंगे साकर मन मानिया, ऐसा ज्ञान कथे बनवारी, मन रे पवन दृढ़ सुखमन नारी, रहाओ सो गुर करो जे बहुर न करना, सो पद रवो जे बहुर न रवना, सो ध्यान करो जे बहुर न तरना, ऐसे मरो जे बहुर न मरना, उल्टी गंगा जमुन मिलावो, बिन जल संगम मन में नावो, लोचा समसर इहो व्यवहारा, तत विचार क्या और विचारा, अब तेज बाय पृथ्वी आकाशा।

मोल अब मोहे राम अपना कर जानिया सह सुभाए मेरा मन मानिया रहाओ ब्रह्मे कथ कथ अंत न पाया राम भगत बैठे कर आया कहो कबीर चंचल मत त्यागी केवल राम भगत निज पागी गौड़ी कबीर जी जिह मरने सब जगत तरासिया सो मरना गुर शब्द प्रगासिया अब कैसे मरो मरन

या बस जो बिख दे मह तारी गौड़ी कबीर जी। बिन सत सती होए कैसे नार पंडित देखो हृदय विचार प्रीत बिना कैसे बदे स्नेहो जब लग रस्ता।

सो निर्मल निर्मल हर गुण गावे, सो पाई मेरे मन भावे। रहाओ जे कट राम रहा परपूर, तिनकी पग पंकज हम तूर।

मुन जो मन मारे है, मन को मार कहो किस तारे रहाओ। मन अंतर बोले सब कोई, मन मारे बिन भगत न होई। कहो कबीर जो जाने पेओ, मन मधुसूदन त्रिभुवन देओ। गौरी कबीर जी। ओए जो दिसे अंबर तारे, किन ओए चीते चीतन हारे। कहो रे पंडित अंबर कास्यों लागा, बूजे बूजन हार सवागा रहाओ। सूरज चंद करें उजियारा, सब में पसरिया।

कहत कबीर पले असवारा, बेद कदेव ते रहे निरारा। गौड़ी कबीर जी जे मुख पांचों अमृत खाए, ते मुख देखत लू कटलाए। एक दुख राम राय काटो।

सुख मांगत दुख आगे आवे, सो सुख हमो न मांगिया पावे। विख्या अजो सुरत सुख आसा, कैसे हुई है राजा राम निवासा। रहाओ इस सुख ते शिव ब्रह्म डराना, सो सुख हमो साच कर जाना। सनकादिक नारद मुन सेखा, तिन भी तन में मन नहीं पेखा। इस मन को कोई खोजो पाई, तन छूटे मन कहाँ समाई। गुर प्रसादी जय दियो नामा, भगत के प्रेम इन्ही है जाना। इस मन को नहीं आवन जाना, जिसका परम गया तिन साच पछाना। इस मन को रूप ना रेखिया काई, हुक्मे जोया हुक्म बूझ समाई। इस मन का कोई जाने पे हो, ए मन लीन पे।

कह कबीर पूरन जग सोई, जाके हृदय अवरना कोई। कौन को पूत पिता को काको, कौन मरे को दे संतापो। हर ठग जग को ठगोरी लाई, हर के वियोग कैसे जियो मेरी माई। रहाओ कौन को पुरख कौन को नारी, या तत लेहो।

आई, जन्म मरण कट परम गत पाई, रहाओ साधु संगत दियो रलाए, पंच दूत ते लियो छड़ाए, अमृत नाम जपो जप रसना, अमोल दास कर लीनो अपना, सतगुर कीनो पर उपकार, काड लीन सागर संसार, चरण कमल

जल थल पूर रहे प्रभ स्वामी, जत पेखो तत अंतर जामी, अपनी भगत आप ही दृढ़ाई, पूरब लिखत मिलिया मेरे पाई, जिस कृपा करे तिस पूरन साज, कबीर को स्वामी गरीब निवाज। जल है सूतक थल है सूतक, सूतक ओपत होई, जन्मे सूतक मुए फुन सूतक, सूतक परज बिगोई, कहो रे पंडिया कौन पवीता, ऐसा ज्ञान जपो मेरे मीता, रहाओ नैनो सूतक बैनो सूतक, सूतक श्रम नहीं होई, उठत बैठत सूतक लागे, सूतक परैर।

हर जस सुने ना हर गुण गावे, बातन ही आसमान गिरावे। ऐसे लोग गुण से क्या कहिए, जो प्रभु किए।

होई। कुशल कुशल करते जग बिन से कुशल भी कैसे होई रहाओ। माटी के कर देवी देवा तिस आ गए जियो देही, ऐसे पितर तुम्हारे।

सुन समाया अंजन माहे निरंजन रही है बौड़ न पवजल पाया। मेरे राम ऐसा खीर बिलोई है गुरमत मनुआ अस्थिर राखो इन विद अमृत पियोई है रहाओ। गुर के बाण बजर कल छेदी प्रगटिया पद परगासा सकत अंधेर जेवड़ी प्रम चूका नेचल शिव कर बासा। तिन बिन बाणे तनुख चढ़ाई है इहो जग बेदिया पाई दह दिस बूढ़ी पवन चुलावे डोर रही लिवलाई। उन मन मनुआ सुन समाना दुबदा दुर्मत पागी कहो कबीर अनुपव इक देखिया राम नाम लिवलागी। गौड़ी बैरागन तिप दे उल्टत पवन चक्र खट पे दे सुरत सुन अनरागी आवे न जाए मरे न जीवे तास खोज बैरागी। मेरे मन मन ही उल्ट समाना गुर प्रसाद अकल पई अवरे नातर था बेगाना रहाओ। निवरे दूर दूर फुन निवरे जिन जैसा कर्म

रात दिन सते नाही, जल नहीं पवन पावक फुन नाही, सतगुर तहां समाही। अगम अगोचर रहे निरंतर, गुर कृपा ते लहिए, कहो कबीर बल जाओ गुर अपने, सत्संगत मिल रही है। गौड़ी पाप पुन दोए बैल बिसाहे, पवन पूजी प्रगास्यो, तृष्णा गुण परी कट पीतर, इन विद टांड बिसाहो। ऐसा नायक राम हमारा, सगल संसार कियो बन जारा, रहाओ काम क्रोध दोए पै जगाती, मन तरा

पंडित गुणी सूर हम दाते ए कहें बद हम ही। जिसे बुझाए सोई बूझे बिन बूझे क्यों रही है, सतगुर मिले अंधेरा चूके इन विद मानक लही है। तज बावे दहने बिकारा हर पद दृढ़ कर।

जोड़न हारो सदा अतीता, ए कही है किस माही। जोड़ी जुड़े ना तोड़ी टूटे, जब लग होए विनाशी, का को ठाकुर का।

सुरत सिमरत दोए कन्नी मुंदा परमित बाहर खिंथा सुन गुफा मैं आसन बैसन कल्प विवर्जत पंथा मेरे राजन मैं बैरागी जोगी मर्त न सोग वियोगी रहाओ खंड ब्रह्मांड में सिंगी मेरा बटुआ सब जग पसमा तारी ताड़ी लागी त्रिपल पलटी है छूटे होए पसारी मन पवन दोए तुम्बा करी है जुग जुग सारद साजी।

गज नव गज दस गज इक्कीस पुरिया एक तनाई साठ सूत नव खंड बेहतर पाठ लगो अधिकाई गई बुनावन माहो कर छोड़े जाए जुलाहो रहाओ गजी न मिनिए तोल न तुलिए पाचन शेर अढ़ाई जो कर पाचन बेग न पावे चगर करे करहाई दिन की बैठ खसम की बरकस ए बेला कति आई।

कर्म कर्म करते बहु संजम अहं बुद्ध मन जा रहे रे सास ग्रास को दातो ठाकुर सो क्यों मनो विसार्यो रे हीरा लाल अम

स्वाद लुभत इंद्री रस प्रेरियो, मदरस लैत बिकारियो रे, कर्म पाग संतन संगाने, कासट लो उधारियो रे, तावत जोन जन्म प्रम थाके, अब दुख कर हम हारियो रे, कह कबीर गुर मिलत महारस, प्रेम भगत निस्तारियो रे, गौड़ी काल भूत की हस्तनी मन बौरा रे, चलत रचियो जगदीश, काम सुआए गज बस परे, मन बौरा रे अंकस कहो शीस, बिखे बाच हर राज समझ मन बौरा रे, निरपय होए न हर पजे, मन बौरा रे गयो न राम जहाज, राव मरकट मुष्टि अनाज की मन बौरा रे, लीनी हाथ पसार, छूटन को सहसा परे।

राम नाम तन कर संचौनी सो तन कथि न जावे। हमरा तन मादो गोविंद तरनी तर यह सार तन कही है। जो सुख प्रभ गोविंद।

आयो लागत पवन खसम बिसरायो जीरा हर के गुना गाओ रहाओ गर्भ जोन में उर्द तप करता तो जठर अगर मैं रहता लख चौरासी जोन प्रम आयो अब के छुटके ठौर न ठायो कहो कबीर पज

दास रमैया गुण गाये जाते पाये परम निधान रहाओ। क्या जप क्या तप संजमो क्या व्रत क्या स्नान जब लग जुगत न जानिए पाओ भगत भगवान। संपै देख ना हरखिए विपत देख ना रोए जो संपै त्यों बिकत है बिदने रचिया सो होए। कह कबीर अब जानिया।

पूर्णा पीजे पग न खिसे हर दर्शन की आशा उड़ो न कागा कारे बेग मिली जय अपने राम प्यारे रहाओ कह कबीर जीवन पद कारण हर की भगत करी जय एक आधार नाम नारायण रसना राम रवि जय रागोड़ी यारवा आस पास कन तुलसी का बिरवा माज बना रस गाऊं रे ओ आकाश रूप देख मोही।

कहा पया नर देवा तोखे क्या जल बोरियो गया था जीरे जाहेगा मैं जाना अवगत समझ आना जत जत देखो।

नाम तेरा आधार मेरा, ज्यों फूल गई है नार, कह कबीर गुलाम कर का, जी आए पावे मार। गौड़ी लख चौरासी जी जोन में, प्रमथ नंद बहुत ठाकोरे, भगत हेत अवतार लियो है, पाग बड़ो बपरा कोरे। तुम जो कहत हो नंद को नंदन, नंद सो नंदन का कोरे, तरन आकाश दसो दिस नाही, तब यो नंद कहा थोरे। रहाओ संकट नहीं परे, जोन नहीं आवे, नाम निरंजन जा कोरे, कबीर को स्वामी ऐसो ठाकुर जा के।

बिखै रोग पै बंधन पागे मन निज कर सुख जाना ना। एक सुमत रत जान मान प्रभ दूसर मने ना अनाना। चंदन बास पहे मन बासन त्याग कट्यो अभिमाना ना। जो जन गाए त्याए जस ठाकुर ताक प्रभु है थाना ना। ते बड़ पाग बस्यो।

बावन अक्षर लोक त्रय सब कछ इन्हीं माहे, ए अक्षर खिर जाएंगे ओए अक्षर इनमें नाहे। जहाँ बोलते अक्षर आवा जह अबोलते मन ना रहावा, बोल अबोल मद है सोई जस ओ है तस लख है न कोई। अल्लाह लहो तो क्या कहूँ कहूँ ता को उपकार, बटक बीज में रव रहे हो जा को तीन लोक विस्तार। अल्लाह लहंता पेद छे कछ कछ पायो पेद, उलट पेद मन भेदियो पायो अपंग अछेद।

लिख अर मेटे ताए न माना, ओंकार लखे जो कोई सोई लख मेटना ना होई, कक्का किरण कमल में पावा।

हाय कग्गा काट काट निमसे सोई काट फूटे काट कबह न होई कां काट माहे काट जो पावा सो काट छाड़ अब कट कत कावा नंगा निग्रह स्नेहो कर निर्वारो संदेह नाही देखना पाजी है परम सियानप एहे चच्चा रचित चित्र है पारी तज चित्र है चेतो चितकारी चित्र बचित्र एह अब चेरा तज चित्र है चित्राक्ष चितेरा सच्चा एह छत्रपत पाता छक के ना रहो छाड़ के ना आसा रे मन मैं तो छिन

टट्टा बिकट काट कट माही, खोल कपाट महल के न जाही, देख अटल टल कतह न जावा, रह लपट कट पर चो पावा। ठट्ठा एह दूर ठग नीरा, नीठ नीठ मन किया तीरा, जिन ठग ठगिया सगल जग खावा, सो ठग ठगिया ठौर मन आवा। डड्डा डर उपजे डर जाई, ता डर में डर रहा समाई, जो डर डरे ता

ना निवे ना फुन संचर है, तन जन्म ताही को गणे, मारे एकै तज जाए कणे, तत्ता अतर तरयो नह जाई, तन त्रिभवन में रहो समाई, जो त्रिभवन तन माहि समावा, तो तत्ते तत मिलिया सच पावा, तथा अथा था नहीं पावा, ओ अथा एहो थिर ना रहावा, थोड़े थल थानक आरंभे, बिन ही थांबे मंदर थंबे, दद्दा देख जो बिन सनहारा, जस अदेख तस राख बिचारा, दसवें द्वार कुंची जब दीजे, तो दयाल को दर्शन कीजे, तद्दा अर्दे उर्द निवेरा, अर्दे उर्दे मंज बसेरा, अर्दे छाड़ उर्द जो

अब पौ पान परोसो आवा जो बाहर सो पीतर जानिया पया पेद पूपत पहचानिया। मम्मा मूल गया मन माने मरमी होए सो मन को जाने मत कोई मन मिल।

बल बल जे बिसंतना जस गावे, विसन मिले सभी सच पावे। वाह वाह वाही जानिए, वाह जाने एहो होए, एहो

निरोधो कट पर चै जो उपजय पाओ पूर रहा तह त्रिभुवन राव। खखा खोज पर जो कोई जो खोजे सो

अंतरजामी राम समारो, जीवत पावो मोख द्वार, अनपौ शब्द तत निज सार, चरण कमल गोविंद रंग लागा, संत प्रसाद पै मन निर्मल।

ना ओ बढ़े ना कटता जाए, अकुल निरंजन एक है पाए। तृतीया तीने सम कर ल्यावे, अनद मूल परम पद पावे। साध संगत उपजे विश्वास, बाहर पीतर सदा प्रगास। चौथे चंचल मन को गहो, काम क्रोध संग कबहु ना बहो।

नीच ऊंच नहीं मान अमान, व्यापक राम सगल सामान। चौदस चौदह लोक मजार, रोम रोम में बसे मुरार।

मेरी हरो विपत जन करो सुभाई, चरण ना छाड़ो शरीर कल जाई, कहो रविदास परो तेरी सांबा, बेग मिलो जन करना बिलांबा।

दे सब सिद्ध होए। कर्म अकर्म विचारिये शंका सुन वेद पुराण, संसार सद हृदय बसै कौन हिरे अभिमान। बाहर उदक पखारिये कट पीतर विविध विकार, शुद्ध कमन पर होए वो सुच कुंच

गावन तुदनो चित गुपत लिख जानन, लिख लिख तरम विचारे गावन तुदनो ईश्वर ब्रह्मा देवी सोहन तेरे सदा सवारे। गावन तुदनो इंद्र इंद्रासन बैठे देवतियां दर नाले, गावन तुदनो सिद्ध समाधि अंदर गावन तुदनो साध विचारे। गावन तुदनो जति सती संतोखी गावन तुदनो वीर करारे, गावन तुदनो पंडित पड़े रखी सर जुग जुग वेदा नाले। गावन तुदनो मोणिया।

सो पुरख निरंजन हर पुरख निरंजन हर अगमा अगम अपारा सब त्यावे सब त्यावे तुझ जी हर सच्चे सृजनहारा सब जी तुम्हारे जी तू जिया का दातारा हर त्या वो संतो जी सब दुख विसारण हारा हर आपे ठाकुर हर आपे सेवक जी क्या नानक जंत विचारा तू कट कट अंतर सर्व

हरत्या में तुझ जी से जन जुग में सुखवासी से मुक्त पे जिन हरत्याया जियो तिन टूटी जम की फांसी जिन हर निरपो त्याया जियो तिनका पौ सब गवासी जिन सेविया मेरा हर जियो ते हर हर रूप समासी से तन जिन हर त्याया जियो जन नानक तिन बल जासी तेरी पगत पंडार जी परे बेअंत बेअंता तेरे पगत सलाम तुझी हर अनेक अनेक अनंता तेरी अनक करे हर पूजा जी तप तापे जपे बेअंता तेरे अनेक पढ़े वो सिमरत शास्त्र जी कर क्रिया खटकर्म करंता से पगत पले जन नानक जी जो पावे मेरे हर भगवंता तू आद पुरख अपरंपर करता जी तुद जेवड़ अवर न कोई तू जुग जुग एको सदा सदा तू एको जी तू ने चल करता सोई तुद आपे पावे सोई वरते जी तू आपे करें सो होई तुद आपे श्रेष्ठ सब उपाय जी तुद आपे

सब कीमत मिल कीमत पाई, ज्ञानी त्यानी गुर गुर हाई, कह न जाए तेरी तिलवड़ियाई, सब सत सब तप सब चंगियाईया सिद्धा पुरखा।

गुर प्रसाद वसे मन आए, दुख अनेरा विचों जाए। साच प्यारा आप करे, अवरी को साच न दे, जे किस

तित रंग नाचो रख रख पाओ। पाओ फेरी होवे मन चीत, बैंदिया उठदिया नीता नीत, लेटन लेट जाने तन स्वाहा, तित रंग नाचो रख रख पाओ। सिख सभा दीख्या का पाओ, गुरमुख सुनना साचा नाओ, नानक आखन वेरा वेर, इत रंग नाचो रख रख पैर। आसा मैला पैला पौन उपाय तरी सब तरती, जल अग्नि का बंद किया, अंधुले दे दिस मुंह डुकटाया, रावण मार क्या वड़ा भया। क्या उपमा तेरी आखी जाए, तू सर्वे पूर रहा लिवलाए, रहाओ जी उपाय जुगत।

पनत नानक सबना का फिर एको सोए, जिसनो नदर करे सा सुहागण होए, आसा मैला पहला ग्रियो बन समतर तय सुबाए, दुर्मत गत पई कीरत ठाए, सच पौड़ी साचो मुख नाओ, सतगुर सेव पाए निज थाओ, मन चूरे खट दर्शन जान, सर्व ज्योत पूरन भगवान रहाओ, अधिक त्यास पेख बहु करे, दुख बिखिया सुख तन पर हरे, काम क्रोध अंतर तन हिरे, दुबदा छोड़ न

तन मन हर पै आ गए जिंद, झूठ विकार महा दुख देह, देख वरन दिसे सबके, जो उपजे सो आवे जाए, नानक अस्थिर नाम रजाए, आसा मेला पहला, एको सर्वर कमल अनूप, सदा विदा

जो हर राते से जन परवान तिनकी संगत परम निधान हर वार जिन पाया तन नारी हर स्यों राती शब्द विचारी आप तरह संगत कुल तारे सतगुरु सेव तत विचारे हमरी जात पथ सच नाओ कर्म तर्म संजम सत भाओ नानक बखे पूछ न होए दूजा मेटे को सोए हासा महला पहला एक आवे एक जावे आई एक हर राते रह समाई एक तरन गगन में ठौर न पावे से कर्महीन हर नाम न त्यावे गुर पूरे ते गत मित पाई एहो संसार बिखवत अत पौजल।

ज्यो जल अम्ब ऊपर कमल निरारे, बुरा पला को किसनो कही है, दिसे ब्रह्म गुरुमुख सच लही है, अकथ कथो गुरुमत विचार, मिल गुर संगत पावो पार, शास्त्र वेद सिमरत बहु भेद, अठ अठ मज्जन हर रस रे।

गुर प्रसाद रतन हर लाभे, मिटे अज्ञान होए उजियारा रहाओ। रमनी रवे बंधन नहीं टूटे, विच हों मैं परम न जाई। सतगुर मिले तहों मैं टूटे, ताको लेखे पाई। हर हर नाम भगत प्रे प्रीतम, सुख सागर उर्धारे। भगत वचन जग जीवन दाता, मत गुरमत हर निस्तारे। मन स्यों जूझ मरे प्रभ पाए, मनसा मने समाए। नानक कृपा कर।

0: भूख रहे।
1: ऐसा गुरमत रमत शरीरा, हर पज मेरे मन गहर गंभीरा रहाओ। अनत तरंग पगत हर रंगा, अनदिन सूचे हर गुण संगा। मिथ्या जन्म साकत संसारा, राम पगत जन रहे निरारा। सूची काया हर गुण गाया, आत्म चीन रहे लिवलाया। आद अपार अपरंपर हीरा, लाल रता मेरा मन धीरा। कथनी कह कह से मुए, सो प्रभ दूर नाही प्रभ तू है। सब जग देखा माया छाया, नानक गुरमत नाम ते।

अंध जीव रख नाही, कन्नी पवन न आजे, चरनी चले पजूता आगे, बिन सेवा फल लागे, अखर बिरख बाग पोए।

कीमत पाए, हस्त दसी चौ भेद न पाया, नानक सतगुरु ब्रह्म दिखाया। आसा मैला पहला सेवक दास भगत जन सोई, ठाकुर का दास गुरमुख होई, जिन सिर साजी तिन फुन गोई, तिस बिन दूजा वरना कोई।

आस प्यासी से जय आवा आगे से पावा के न पावा क्या जाना क्या होएगा री माई हर दर्शन बिन रह न जाए राव प्रेम न चाखिया मेरी तिस न बुझानी दया सो जोबन तन पछतानी

सिर जानिया गुर प्रसादी ऐसी मत आवे ता कामन कंते मन भावे कहत नानक पै पाव का करे सिदार सधी से जैर।

कोई जाति स्थावे बख्शे सोई गुर प्रसादी दुर्मत खोई जय देखा तह को सोई कहत नानक ऐसी मत आवे ताको सच्चे सच समावे आसा मैला पहला दुख दे तित सर्वरण भई ले निवासा पानी पावक तिने किया पंकज मोह पग नहीं चाले हम देखा तह डूबियले मन एक न चेतस मूर मना हर बिसरत तेरे गुण गलिया रहा ना हो जति सती नहीं पड़िया मूरख मुगदा जन्म पया प्रणवत नानक तिनकी।

एक जय कर करते कीरत होए सो कर राख वडाई तोए राव विश्वे चस्या करिया पैरा सिती वारी माओ भया सूरज को रुत अनेक नानक करते के केते वेश इको अंकार सतगुरु प्रसाद आशा करती जा मैला पैला लख लख कर लख वाजे ने जे लख उठ करे सलाम लखा उपर फुरमाइश तेरी लख उठ राखे मान जा पत लेखे ना पवे ता सब निराफल का

लख खटिए लख संजिए खाजे लख आवे लख जाए जा पत लेखे ना पवे ताजी किथे फिर पाए लख सासत समझावनी लख पंडित पढ़े पुराण जा पत लेखे ना पवे ता सबे कुपरवान सच नाम पत उपजे कर्म नाम करतार एनस हृदय जे वसे नानक नदरी पार आसा मेला पहला दीवा मेरा एक नाम दुख विच पाया तेल उन चानन ओ सोखिया चूका जम सो मेल लोका मत को फकड़ पाए लख मड़िया कर एक हटे एक रसीले पाए रहाओ पिंड पत्तल मेरी के सो किरिया सच नाम करतार एथे उथे आगे पाछे इहो मेरा आधार गंग बनारस सिफत तुम्हारी नावे आत्म राहो सच्चा नावन तासी है जा एनस लागे पाओ इक लोकी होर छमिछरी ब्राह्मण वट पिंड खाए नानक पिंड बख्शीश का कभू निकूटस नाहे।

कर कर पगवे पेख पए, तौ कारण साहिबा रंग रते, तेरे नाम अनेका रूप अनंता, कहन न जाही तेरे गुण के ते रहाओ। दर कर महला हस्ती कोड़े, छोड़ विलायत देश बे, पीर पे कांबर सालिक साधक, छोड़ी दुनिया खाए पए, साध सहज सुख रस कस तजियले, कापड़ छोड़े चमड़ लिए, दुखिये दर्द वंद दर तेरे, नाम रते दरवेश भये, खलड़ी खपरी लकड़ी चमड़ी, सिखा सूत तोती कीनी, तू साहिब हो सांगी तेरा, प्रणवे नानक जात कैसी, आसा घर पंजवा महला पहला एक ओंकार सतगुरु प्रसाद। पीतर पंच गुप्त मनवासे, फिर ना रहे जैसे पवे उदासे, मन मेरा दयाल सेती फिर ना रहे, लोभी कपटी पापी पाखंडी माया अधिक लगे रहाओ। फूल माला गल पहरोगी हारो, मिलेगा प्रीतम तब करोगी सिगारो, पंच सखी हम एक पतारो, पेट लगी है जीड़ा चालन हारो, पंच सखी मिल उदन करेहा, साहो पजूता प्रणवत नानक लेखा देहा। एक ओंकार सतगुरु प्रसाद।

सिगार कामन तन पहरे रावे लाल प्यारी। लाल बहु गुण कामन मोही तेरे गुण हो है नावरी राव। हर हर हार कंठले पहरे दामोदर दंत ले कर कर करता कंगन पहरे किन विद चित्त तेरे। मधुसूदन कर मुंद्री पहरे परमेश्वर पटले तीरज तड़ी बंधावे कामन श्री रंग सुरमा दे। मन मंदर जे दीपक जाले काया सेज करे ज्ञान राव जब सेजे आवे ता नानक भोग करे। आसा मैला पहला कीता होवे करे कराया तिस क्या कही है भाई। जो किछ करना सो कर रहया कीते क्या चतुराई। तेरा हुकुम पला कुद पावे नानक ताको मिले वडाई। साचे नाम समावे रहाओ किरत पया परवाना लिखिया दौड़ हुकुम न होई। जैसा लिखिया तैसा पढ़िया मेट न सके कोई। जे क्यों दरगे बहुता बोले नौ पवे बजारी सतरंज बाजी पक्के नहीं कच्ची आवे सारी। ना को पढ़िया पंडित बिना ना को मूर्ख मंदा बंदी अंदर।

आपके मां हंडावो, जो कुछ करे पला कर मानो, सहज जोग निध पावो। बाबा जुगता जियो जुग।

शिव नगरी में आसन बैसो कल्प त्यागी बादन सिंगी शब्द सदा तुम सो है एनस्तूर नादन पत विचार ज्ञान मत डंडा वर्तमान विपूतं हर कीरत रह रास हमारी गुरुमुख पंथ अतीतं सगली ज्योत हमारी सम्या नाना वर्ण अनेकं कहो नानक सुन करथर जोगी पार ब्रह्म लिव एकं पासा मेला पहला गुर कर ज्ञान ध्यान कर पावे कर करनी कस पाई है।

रच रहा एनस बने प्रेम लिव लागी शब्द अनाहद गया रहाओ पूरा साच प्याला सहजे तिसे पियाए जा को नदर करे अमृत का व्यापारी हो वह क्या मद छूछे पाव तरे गुर की साखी अमृत बाणी पीवत ही परवान भया दर दर्शन का प्रीतम हो वह मुक्त वैकुंठ करे क्या सिर्फ तीरता सद बैरागी जुए जन्म न हारे कहो नानक सुन कर कर जोगी खीवा अमृत धार है आशा महला पहला खुरासान खसमाना किया हिंदुस्तान डराया आपे दोष न दे करता जमकर मुगल चढ़ाया एती मार पई कर लाने की दर्द न आया करता तू सदमा का सोई जे सकता सकते को मारे काम रोशना होई रहा सकता सिंह मारे पै वगै खसमे

हर दर्शन पावे वड़ भाग, गुर के शब्द सच्चे बैराग। खट दर्शन वरते वरतारा, गुर का दर्शन अगम अपारा, गुर के दर्शन मुक्त गत होए।

होए, गुर के दर्शन सदा सुख होए, गुर के दर्शन मोख द्वार, सतगुर सेवे परवार साधार, निगुरे को गत पाई नाही, अवगुण मुठे चोपा खाई, गुर के शब्द सुख शांत शरीर, गुरमुख का तो लगे नकीर, जम काल किस नीड़ ना आवे, नानक गुरमुख सा

ते हर रंग लाए, तिनका जन्म मरण दुख लाथा, ते हर दरगे मिले सुदाए रहाओ, शब्द चाखे साचा साध पाए, हर का नाम मन वसाए, हर प्रभ सदा रहा परपूर, आपे नेड़े आपे दूर, आखण आखे बके सब कोए, आपे बक्स मिलाए सोए, कहने कथन न पाया जाए, गुर प्रसाद वसै मन आए, गुरमुख विच्चों आप गवाए, हर रंग राते मोह चुकाए, अत निर्मल गुर शब्द विचार, नानक नाम सवारण हार, आसा मैला तीजा, दूजे पाए लगे दुख पाया, बिन शब्द बिरथा जन्म गवाया।

पाए, संत संगत मिल हर गुण गाए, नौमे नाम करे विचार, आप तरह कुल उदनहार, गुर की बाणी नाम बजाए, नानक महल शब्द कर पाए, गुरमत सत्सर हर जल नाया, दुर्मत महल सब दुर्त गवाया, आसा महला तीजा, मन मुख मरे मर मरण बिगाड़े, दूजे पाए आत्म संगार है, मेरा मेरा कर कर विगूता, आत्म ना चीने पर मैं विसूता, मर मोया सब दे मर जाए, उस तक निंदा गुर समझन आई, इस युग में लाहा हर जप ले जाए, रहाओ नाम विहून गर्भ गल जाए, बिरथा जन्म दूजे लोभाए, नाम विहूनी दुख जले सबाई, सतगुरु पूरे बूझ बुझाए, मन चंचल बहुत चोटा खाए, एथो छुड़किया ठौर न पाए, गर्भ जोन विष्टा का वास, तित कर मनमुख करे निवास, अपने सतगुर को सदा बल जाई, गुरमुख ज्योति ज्योत मिलाई, निर्मल बाणी निज कर वासा, नानक हो मैं मारे सदा उदासा, आसा मेला तीजा, लाले अपनी जात गवाई, तन मन अर्पे सतगुर शरणाई, हृदय नाम वड्डी वड्याई, सदा प्रीतम प्रभ होए सखाई, सो लाला जीवत मरे, सोग हरक दो संकर जाने, गुर प्रसादी शब्द उदरे, रहाओ करणी कार तुरो फुरमाई, बिन शब्द को थाए न पाए, करणी कीरत नाम वसाए, आपे देवे टिल न पाए, मन मुख परम पुले संसार, बिन राशि कूड़ा करे वपार, बिन राशि वखर पल्ले न पाए, मन मुख पुला जन्म गवाए, सतगुर सेवे सो लाला होए, उत्तम जाति उत्तम सोए, गुर पौड़ी सब दू ऊंचा होए, नानक नाम वडाई।

में दुहागणी का मन देख सिंगार पुत्र कलत तन माया चितलाए चूत मोह पाखंड विकार राव सदा सुहागण जो प्रभ पावे गुर शब्दी सिंगार बनावे सेज सुखाली अंगिन हर रावे मिन प्रीतम सदा सुख पावे सा सुहागण साथी।

करम कमाए सबदे ऊंचो ऊंचा होए नानक साथ समावै सोए आसा मेला तीजा भगत रता जन सहज सुभाए गुर कै पैसा चै साठ समाए बिन गुर पूरे भगत न होए मन मुख रूने अपनी।

अंतर निर्मल अमृत सरनाए, सदा सूचे साथ समाए। हर तब वेखे सदा हजूर, गुर प्रसाद रहा भरपूर। जहां जाओ तह वेखा सोए, गुर बिन दाता वरना कोए। गुर सागर पूरा पंडार, उत्तम रतन जवाहर अपार। गुर प्रसादी देवन हार, नानक बख्शे बख्शन हार। आसा मैला तीजा, गुर सायर सतगुर सच सोए। पूरे पाग गुर सेवा होए, सो बुझे जिस आप बुझाए। गुर प्रसादी सेव कराए, ज्ञान रतन सब सोजी होए। गुर प्रसाद अज्ञान विनाश है, अंधन जागे वेखे सच सोए। रहाओ मोह गुमान गुर सब जलाए, पूरे गुर पे सोजी पाए। अंतर महल गुर शब्द पछाने, आवन जान रहे थिर नाम समाने। जम्मा मरना है संसार, मन मुख अचेत माया मोह गुबार। पर निंदा बहुकूर कमावे, विष्टा का कीरा विष्टा माए समावे। सत संगत मिल सब सोजी पाए, गुर का शब्द हर पल दृढ़ाए। पौना मन्ने सदा सुख होए, नानक सच समावे सोए। आसा मैला तीजा, पंच पदे शब्द मरे तिस सदा आनंद। सतगुर पेटे गुर गोविंद, ना फिर मरे न आवे जाए। पूरे गुर ते साज समाए, जिनको नाम लिखिया तुरलेख। ते अंदिन नाम सदा त्यावे, गुर पूरे ते भगत विशेख। रहाओ जिनको हर प्रभ ले मिलाए, तिनकी गहन गत कहीं ना।

नानक नाम रते सुख पाए आसा मैं लाती जा। नृत्य करे बहु वाजे बजाए यो मन अंधा बोला है किस आख सुनाए। अंतर लोभ परम अनल वाओ दीवा बले न सोजी पाए। गुरमुख भगत कट चानन होए आप पछाण मिले प्रभ सोए रहाओ। गुरमुख नृत हर लागे पाओ पूरे ताल विच्चों आप गवाए। मेरा प्रभ साचा आपे जान गुर के सबल अंतर ब्रह्म पछाण। गुरमुख भगत अंतर प्रीत प्यार गुर का शब्द सहज विचार। गुरमुख भगत जुगत सच सोए पाखंड भगत नृत दुख होए। एहा भगत जन जीवत मरे गुर प्रसादी पव जल तरे। गुर के बचन भगत खाए पाए हर जीव आप वसे मने आए। हर कृपा करे सतगुरु मिलाए नेचल भगत हर स्यो चित लाए। भगत रते तिन सच्ची सोए नानक नाम रते सुख होए।

गुर प्रसादी मन वसै हर बूझे सोई। मैं समुदाता एक है और ना ही कोई, गुर कृपा ते मन वसै ता सदा सुख होई। रहाओ इस जुग में निरपो हर नाम है, पाइये गुर विचार, बिन नामे जम के बस है मन मुख अंध द्वार। हर के पाने जन सेवा करे बूझे सच सोई, हर के पाने सालाहिये पाने मने सुख होई। हर के पाने जन्म पदार्थ पाया मत उत्तम होई, नानक नाम सलाहे तू गुरमुख गत होई।

विजोग मिल विछड़िया संजोगी मेल, जिसनो तू जाना है सोई जन जाने, हर गुण सब ही आख वखाने, जिन हर सेविया तिन सुख पाया, सहजे ही हर नाम समाया, तू आपे करता तेरा किया सब होए, तुद बिन दूजा वर न कोए, तू कर कर वेखे जाने सोए, जन नानक गुरुमुख प्रगट होए।

या चौथा। किस ही तरह किया मित्र सुख नाल भाई, किस ही तरह किया कुरुम सके नाल जवाई, किस ही तरह किया सिकदार चौधरी नाल अपने सुहाई, हमारा तरह हर रया समाई, हम हर स्यो तरह किया मेरी हर केक, मैं हर दिन पक तरह और न कोई, हूँ हर गुण गावा असंख अनेक रहाओ, जिन स्यो तड़े करे से जाहे, झूठ कड़े कर पछोताहे, फिर न रहे मन खोट कमाहे, हम हर स्यो तरह किया जिसका कोई समर्थ ना है, ये सब कड़े माया मोह पसारी, माया को लूजे गवारी, जन्म मरे जुए बाजी हारी, हमरे हर तरह जे हलत पलत सब सवारी, कल युग में तड़े पंच चोर चगड़ाए, काम क्रोध लोभ मोह अभिमान वधाए, जिसनो कृपा करे तिस सत्संग मिलाए, हमरा हर तरह जिन एह तड़े सब गवाए, मिथ्या दूजा पाओ तरे बह पावे, पराया छिद्र अटकले अपना अहंकार वधावे, जैसा बीजे तैसा खावे, जन नानक का हर तरह कर्म सब श्रेष्ठ जिने आवे। आसा मेला चौथा। हृदय सुन सुन मन अमृत पाया, गुरबाणी हर अलख लखाया, गुरमुख नाम सुनो मेरी बहना, एको रव रया कठ

अंतर मुख बोलो गुरु अमृत बैना रहा। मैं मन तन प्रेम महा बैराग सतगुरु पुरख पाया वड़ताग। दूजे पाए पवे बिख माया पाग हीन नहीं सतगुरु पाया। अमृत हर रस हर आप पियाया गुरु पूरे नानक हर पाया। गुरु पूरे नानक हर पाया। आसा महला चौथा।

वडे पाग गुरुम थर लेना रहाओ नाम बिना नहीं जीव्या जाए वडे पाग गुरुम थर पाए नाम ही कालक मुख माया नाम बिना त्रिग त्रिग जीवाया वड़ा वड़ा हर पाप कर पाया नानक गुरुमुख नाम दिवाया आसा महला चौथा गुण गावा गुण बोली बाणी गुरुमुख हर गुण आंख वखाणी जप जप नाम मन पया आनंदा सत सत सत गुरु नाम दृढ़ाया रस गाए गुण करमा।

शरीर सरोवर गुण प्रगट किए, नानक गुरमुख मत कट कडिए। आसा मैला चौथा, नाम सुनी नामो मन पावे, वडे पाग गुरमुख हर पावे। नाम जपो गुरमुख परगासा, नाम बिना मैं तर नहीं काई। नाम रविया सब सास ग्यासा, रहाओ नाम में सुरत सुनी मन भाई। जो नाम सुनावे सो मेरा मीत सखाई। नाम हीन गए मूड नंगा, पच पच मोए बिख देख पतंगा। आपे थापे थाप उठापे, नानक नाम देवे हर आपे। आसा मेला चौथा, गुरमुख हर हर वेल वधाई। फल लागे हर रस रसाई, हर हर नाम जप अनंत तरंगा। जप जप नाम गुरमुख सालाही, मारिया काल जम कंकर पुयंगा। रहाओ हर हर गुर में भगत रखाई, गुर सुखा सिख देवे मेरे भाई। हो मैं कर्म किस विद नहीं जाने, जो कुंचर नाए खाक सिर छाने। जे वड पाग होवे वड ऊचे, नानक नाम जपे सच सूचे। आसा मैला चौथा, हर हर नाम की मन भूख लगाई। नाम सुने मन तृप्त है मेरे भाई। नाम जपो मेरे गुर सिख मीता, नाम जपो नाम में सुख पावो। नाम रखो गुरमत मन चीता, रहाओ नामो नाम सुनी मन सरसा। नाम लाहा ले गुरमत बिकता, नाम बिना पुष्टि मोहो अंधा। सब ने फल कर्म किए दुख तंदा, हर हर हर जस जपे वड पागे। नानक गुरमत नाम लिव लागे।

गुरमत हर गुण बोलो जोगी त्यो मनुआ हर रंग पेन। जोगी हर दियो मति उपदेश जुग जुग हर हर एको वर्ते तिस आगे हम आदेश राव। गावे राग पाक बो बोले एहो मनुआ खेले खेल जोवे कूप सिंचन को बसदा उठ बैल गए।

हर सिंचो गुरमत जेत जोगी जंगम सृष्ट सब तुमरी जो देहो मति तित चेल जन नानक के प्रभ अंतर जामी हर लागो मनुआ पेल। आसा मैला चौथा कब को पाले कुंगरू ताला कब को बजावे रबाब आवत जात बार खिन लागे हों कब लग समारो नाम। मेरे मन ऐसी पगत बन आई हम हर बिन खिन पल रह न सको जैसे जल बिन मीन मर जाई रहा कब तो मेले पंच सत गायन कब को राग तुम उठावे मेलत चुनत खिन पल चसा लागे कब लग मेरा मन राम गुन गावे कब को नाचे पाव पसारे कब को हाथ पसारे हाथ पाव पसारत बिलम तिल लागे कब लग मेरा मन राम सुमारे कब को लोगन को पति आवे लोक पति ने ना पत होए जन नानक हर हृदय सद त्यावो ता जय जय करे सब कोए। आसा मैला चौथा सत संगत मिलिए हर साधु मिल संगत हर गुण गाए ज्ञान रतन बलिया कट चानन अज्ञान अंधेरा जाए हर जन नाचो हर हर त्याए ऐसे संत मिले मेरे।

लागे आए हर अपरंपर करता हर आते बोल बुलाए से संत तले तुद पावे जिनकी पत पावे खाए नानक आत्मा राजे हर गुण जो आखे त्यों सुख पाए भगत भंडार दिए हर अपने गुण गायक वंज ले जाए।

जीवन मरण सुख होए जिना गुरु पाया, नानक सच्चे सच सच समाया। आसा मेला चौथा जन्म पदार्थ पाए नाम ते आया, गुरु प्रसादी बुझ सच समाया, जिन पुर लिखिया लेख तिन्नी नाम कमाया, दर्श चैस्त्यार मेल बुलाया रहाओ। अंतर नाम निदान गुरुमुख पाइए, अंजन नाम से आए हर गुण गाइए, अंतर वस्त अनेक मनमुख नहीं पाइए, हूँ मैं गर्भ गर्भ आप खुआइए, नानक आपे आप खुआइए, गुरुमत मन पर गास सच्चा पाइए।

कीर्तन करो। सतगुरु मोको हर नाम बताया, हम हर दिन खिन पल रह ना सको रहाओ। हमरे श्रवण सिमरन हर कीर्तन, हम हर दिन रह न सको हो एक खिन। जैसे हंस सरवर बिन रह न सके।

हाँ हर बिन खिन पल रह न सकूं, जैसे करहल बेल दी जाई राव। हमरा मन बैराग बिरकत कहो, हर दर्शन मीत कहताई। जैसे अल कमला बिन रह न सके, तैसे मोए हर बिन रह न जाई। राज करण जगदी सुर प्यारे, मोए सरदा पूर हर गुसाई। जन नानक कै मन अंध होत है, हर दर्शन निमक दिखाई।

सिर खाया, जिन सुख बैठा ली तिस पौ बहुत दिखाया, पाई मीत कुटुम्ब देख विवादे, हम आई वसगत गुर प्रसादे, ऐसा देख विमोहित हुए, साधिक सिद्ध सुरदेव मनुखा, बिन साधु सब त्रोहन त्रोहे, रहाओ एक फिरे उदासी तिन कहुं व्यापे, एक संचय गिरही तिन होए नापे, एक सती कहावे तिन बहुत कल पावे, हम हर राखे लग सतगुरु पावे, तप करते तपसी फूलाए, पंडित मोहे लोग सुभाए, त्रैगुण मोहे मोहा आकाश, हम सतगुरु राखे।

जो तू कहे सो कार कमावा, जन नानक गुरुमुख नेड़नावा। आसा मैला पंजवा, ससु ते फिर की नीवाक, देर जिठानी मोई दुख संताप।

रीत दुतिया त्यागी लोगा रीत त्रै गुण त्याग दुर्जन मीत समाने तुरिया गुण मिल साध पछाने सहज गुफा में आसन बांधया ज्योत स्वरूप अनाद वाजया महा आनंद गुर शब्द विचार त्रै सो राति तन

चार जित गृह वसे सो गृह सो बावंता गुरुमुख पाई किन विरले जनता सो करणी कामन गुरमिल हम पाई जज काज परथाए सुहाई रहाओ जिचर वसी पिता के साथ टीचर कंक बहु फिरे उदास कर सेवा सब पुरुष मनाया गुर आनी कर में संसर्ग सुख पाया बत्ती सुलखणी सत संतत पूत आज्ञाकारी सुगर स्वरूप इस पूरे मन कंत स्वामी सगल संतो की देर जेठानी सब परवार माए श्रेष्ठ मत्ती देवी देवर ज्येष्ठ तन सो गृह जित प्रगति आए जन नानक सुखे सुख विहाए।

तीरथ न छोड़े जोग सन्यास, पर थाके सिमरत वेद व्यास। जय बैसो तै नाले बैसे, सगल पवन में सबल प्रवेश है। होछी शरण पया रह न पाई, कौमी पाहो कह कह जाई। सुनो उपदेश सतगुर पे आया, गुर हर हर नाम मोह मंत्र दृढ़ाया। निज कर वस्या गुण गाय अनंता, प्रभ मिलियो नानक कहे अचिंता। पर मेरा ए नायक हमारी, ए आमर हम गुर किए दरबारी।

दल लाए नानक दास तेरी शरण आई, प्रभ राखी पैज वजी वधाई। आसा महला पंजवा, परदेश चाहब सौदे को आया, वक्त अनूप सुनी लभाया, गुण रास बन कल्याणी, देख रतन यो मन लपतानी, सावा पारी द्वारे आए, वखर काडो सौदा कराए रहाओ, साय पठाया साहे पास, अमोल रतन अमोला रास, विश्व सुभाई पाया मीत, सौदा मिलिया ने चल चीत, पौ नहीं तस्कर पौ न पानी, सहज विहाजी सहज ले जानी, हत के खटे दुख नहीं पाया, सही सलामत कर ले आया, मिलिया लाहा पै आनंद, तन सहा पूरे बक्सिंद, ये सौदा गुरमुख किने।

कर मस्तक तार राख्यो कर अपना क्या जाने एहो लोक अजाना रहाओ सुहाग हमारो अब हुन सोयो कंक मिलियो मेरो सब दुख जोयो आंगन मेरे शोभा चंद निस बासुर प्रसंग आनंद बस्तर हम

तावत रहे एक एक बूझिया, आए बसे अब ने चल खाए, जगत उदाहरण संत तुम्हारे, दर्शन पेखत रहे अघाए, जन्म दोष परे मेरे पाछे, अब फकरे ने चल साधु पाए, शायद तुन गावे मंगल मनुआ, अब पातो फुनकाल न खाए, करण कारण समर्थ हमारे, सुखदाई मेरे हर हर राय, नाम तेरा जप जीवे नानक, पोत पोत मेरे संग सहाय, आशा मैला पंजवा, अरड़ावे बिललावे निंदक, पार ब्रह्म परमेश्वर बिसरिया, अपना कीता पावे निंदक रहाओ, जे कोई उसका संगी होवे, नाले ले सिदावे, अनहोंदा अजगर पार उठाए, निंदक अग्नि माहे जलावे, परमेश्वर के द्वारे जे होए बतीते, सो नानक आप सुनावे, भगत जना को सदा आनंद है, हर कीर्तन गाए बिकसावे, आसा मेला पंजवा, जो मैं कियो सगल सिगारा, तो भी मेरा मन ना पतियारा,

बस्तर भी कोखन सुख बहुत विशेष है, कोई भी जानो कितने न लेख है, पथ शोभा अरमान महत आज्ञाकारी सगल जगत। गृह ऐसा है सुंदर लाल, प्रभु का वासा सदा निहाल, व्यंजन भोजन अनेक प्रकार, रंग तमाशे बहुत विस्तार, राज मिलक अर बहुत फुरमाइश, मन नहीं त्रापे तृष्णा ना जायस, बिन मिलबे यो दिन ना बिहावे, मिले प्रभु ता सब सुख पावे, खोजत खोजत सुनी ए सोए, साध संगत बिन तरयो न कोए, जिस मस्तक पाग तिन सतगुरु पाया, पूरी आशा मन तृप्ताया, प्रभ मिलिया ता चूकी डंजा, नानक लद्दा मन तन मंजा। आशा महला पंजवा पंच पदे

अस्त्र रखत परे ते चाम, इस ऊपर ले राख्यो गुमान। एक वस्त बूझे ता हो वै पाक, बिन बूझे तू सदा न पाक। कहो नानक गुर को कुर्बान, जिससे पाये हर पुरुष सुजान। आखा मेला पंजवा एक तुके चौपदे, एक कड़ी दिन को बहुत दिहारे। मन ना रहे कैसे मिलो प्यारे, एक पल दिन को कभू ना बिहावे।

सब अंत न जाने, पंच दूत मिल फिरो विछोड़ी, प्रम प्रम रोवे हाथ पछोड़ी, जन नानक को हर दर्श दिखाया, आत्म चीन परम सुख पाया।

जन बकरा मोको कहां डवाई रहाओ, हर मेरी ओट में हर कातान, हर मेरा सखा मन माहे दीवान, हर मेरी पूंजी मेरा हर वेसा हो, गुरमुख तन छट्टी हर मेरा साहो, गुर कृपा से ए मत आवे, जन नानक हर कह अंक समावे, आसा मैला पंजवा, प्रभ होए कृपाल ताए हो मन लाई, सतगुर सेव सब फल पाई, मन क्यों बैराग करेगा, सतगुरु मेरा पूरा, मनसा का दाता सब सुख निधान है, अमृत सर सद ही पर पूरा रहाओ, चरण कमल हृदय अंतर धारे, प्रगति ज्योत मिले राम प्यारे, पंच सखी मिल मंगल गाया, अरहद बाणी नाद बजाया, गुरु नानक तुठा मिलिया हर राय, सुख रैन विहानी सह सुवाए, आसा मेला पंजवा, कर कृपा हर प्रगति आया, मिल सतगुरु तन पूरा पाया, ऐसा हर तन संची है भाई, कहे न जाने जल नहीं डूबे, संग छोड़ करकत हो न जाए रहाओ, कोट न आवे निकुट न जाए, खाए खर्च मन रहा अगाए, सो सत्सा हो जिस कर हर तन संचाना, इस तन से सब जग वरसाना, तिन हर तन पाया जिस कोग लिखे का लेना, जन नानक अंतवार नाम गहना, आसा मेला पंजवा, जैसे किसान बोवे किसानी, काची पाकी बाढ़ परानी, जो जन में सो जानो मुआ, गोविंद भगत अस्थिर।

वार करत चूठी लग जाता रहा वजो साहिब का सेव बिरानी कैसे गुणे अच्छा दियो प्राणी तिस्यो लोक जो सद ही संगी कामना आवे सो फिर मंगी कहो नानक प्रभु दीन दयाला जो पावे त्यों कर कृतपाला आसा मेला पंजवा जी प्राण तन हर को नाम इहा उहा उन संकाम बिन हर नाम अवर सब छोरा तृत अधावे हर दर्शन मन मोरा रहाओ भगत पंडार गुरबाणी लाल गावत सुनत कमावत निहाल चरण कमल सो लागो मान सतगुर तूठे कीनो दान नानक को गुरु दीक्षा दीन प्रभ अविनाशी कट कट चीन आसा मेला पंजवा अनद विनोद परे पुर तारिया अपना कार्य आप संवारिया

साध संगत निर्बुद्ध विवेक दास सगल का छोड़ अभिमान नानक को गुरदीनो दान आसा मेला पन्नवा बुद्ध प्रगास तई मत पूरी तमते बिनसी दुर्मत दूरी ऐसी गुरमत पाई ने बूढ़त कोर अंध कूप में निक्षो मेरे पाई रे रहाओ महा अगा अगन का सागर गुरबोहित तारे रत्नागर दुतर अंध बिखम ए माया गुर पूरे प्रगट मार्ग दिखाया जात पात कछ उक्त न मोरी गुरु नानक शरणागत तोरी आसा मेला पंजवा तिप दे दूजा हर रस पीवत सद ही राता आन रसा खिन में लह जाता हर रस के माते मन सदा आनंद।

आए हर रस साधु हर समाए लाख करोरी मिले न के जिसे प्राप्त तिस ही दे नानक चाक पे बिस्माद नानक गुरते आया साद ईत ऊत कस छोड़ न जाए नानक गीदा हर रस माहे आसा मेला पंजवा काम क्रोध लोभ मोह मिटावे छुटके गुरमत अपनी धारी

आज्ञा मान भगत होए तुम्हारी, जो इव मंत्र कमावे नानक सो पौजल पारे उतारी। आसा महला पंजवां दुख दे पई प्राप्त मानक दे हुरिया, गोविंद मिलन की है तेरी बरिया, अगर काज तेरे कितने न काम, मिल सौर संगत पद केवल नाम, संग जाम लाग और जल कर्म के, जन्म बिरथा जात रंग माया कह रहा हो, जब तब संजम कर्म ना कमाया, सेवा साधना जान्या हर राया, कहू नानक हम नीच कर्मा।

उठत सोवत जागत विसर नाही तू सास गिरा साराओ राख राख शरण प्रभ अपनी अगर सागर विकराला नानक के सुखदाते सतगुर हम तुमरे बाल गोपाला आसा मैला पन्नवा हर जन लीने प्रभु छड़ाए प्रीतम सो मेरो मन मानिया पाप मुआबिक खाए प्रभाओ पाला ताओ कछु न व्यापे राम नाम गुण गाए बाकी को चित कछु न लागे चरण कमल शरणाए संत प्रसाद पै कृपाला होए आप सहाए गुण निधान नित गावे नानक सहसा दुख मिटाए आसा महला पंजवा।

मिल संग पयो मन निर्मल गुरपुरे लेखिन मैं तारे राव सबकी रेन होए रह मनुआ सगले दिशे मीत प्यारे सब मदे रविया मेरा ठाकुर दान देत सब जी समारे एको एक आप एक है सगला पासारे जप जप होए सगल साध जन एक नाम त्याए बहुत उधारे गैर गंभीर बेअंत गुसाई अंत नहीं किस पारावारे उमरी कृपा ते गुण गावे नानक त्याए त्याए प्रभु को नमस्कारे आसा मेला पंजवा तू बेअंत अविगत अगोचर एहो सब तेरा आकार क्या हम जंत करें चतुराई जा सब किछ तुझे मझार मेरे सतगुर अपने बालक राखो लीला तार

आधार अर्ध कर सास सास संवारे ना पोहे अगनार पर तन पर दारा पर निंदा इनसो प्रीत निवार चरण कमल सेवी रिद अंतर।

हुकम पार ब्रह्म का छोड़ चलिया एक दिहाड़े, कर्म कर्म जुगत बहु करता करने हार न जाने, उपदेश करे आप न कमावे सत शब्द न पछाने। नांगा आया नांगो जासी जो अस्थि खाक छाने, संत सज्जन सुनो सब मीता झूठा एवं पसारा, मेरी मेरी कर कर डूबे खप खप मोए गवारा, गुर मिल नानक नाम ते आया साच नाम निस्तारा। राग आसा कर पंजवा महला पंजवा इको अंकार सतगुर प्रसाद, प्रम में सोई सगल जगत तंद अंध को जागे हर जन, महामोहनी मगन प्रे प्रीत प्राण को त्याग विरला, चरण कमल अनूप हर संत मंत को लागे साधु, नानक साधु संग जागे ज्ञान रंग वड पागे कृपा, इको अंकार सतगुरु प्रसाद। राग आसा कर छेवा महला पंजवा, जो तुद पावे सो परवाना सुख सहज मन सोई, करण कारण समरथ अपारा अवर नाही रे कोई, तेरे जन रसक रसक गुण गावे मसलत मता सियानक जन की, जो तू करे करावे रहाओ। अमृत नाम तुम्हारा प्यारे साध संग रस पाया, त्रिपत अघाए से जन पूरे सुख निधान हर गाया, जा को टेक तुम्हारी स्वामी का को नाही चिंता, जा को दया तुम्हारी हुई से सह पले भगवंता, कर्म मोह त्रो सब निकसे जब का दर्शन पाया, वर्तन नाम नानक सच कीना।

ऐला जन्म दो आया पहुँच न साखे काहू बाते आगे ठोर न पाया रहाओ किस पया निंदक बपुरे का क्या ओ करे बिचारा ताँ बिगुता जै कोई न राखे ओ किस पे करे पुकारा निंदक की दत कत होना ही खसमे एवे पाना जो जो निंद करे संतन की त्यों संतन सुख मांगा संता टेक तुम्हारी स्वामी तू संतन का सहाई कहो नानक संत हर राखे निंदक दिए रुड़ाई आसा मेला पंजवा बार तोए अंतर मन मेला दोए ठौर अपने कोए इहा काम क्रोध मोह व्यापिया आगे मुसमुस रोए गोविंद भजन की मत है होरा गर्मी मारी साथ न मरी नाम न सुने डोरा रहाओ माया की किरत छोड़ गवाई भक्ति सार न जाने वेद शास्त्र को तर्कन लागा तत जोग ना पछ

ना छुपाया, कूड़ कपट वंश निमुनिया दाला, बिरस गया तत्काले सत सत सत नानक कहया, अपने हृदय देख समाले आसा मैला पन्नवा। उदम करत हो गए मन निर्मल, नाचे आप निवारे, पंच जनाले वसगत राखे मन में एकंकारे, तेरा जन नृत्य करे गुण गावे, रबाब पखावज ताल कुंगुरु अनहद शब्द बजावे, रहाओ प्रथमे मन पर बोधे अपना पाछे अवर रिझावे, राम नाम जप हृदय जापे मुक्ति सगल सुनावे, कर संग साधु चरण पखारे संत पूर तन लावे, मन तन अर्थ करे गुर आगे सत पदार्थ पावे, जो जो सुने पे खेलाए सरदा ताका जन्म मरण दुख पागे, ऐसी नृत्य नरक निवारे नानक गुरु मुख जागे आसा मैला पंजवा।

आज के बस गुरकीनो के हर कुकर तिने लगाई रे राव बाज थूनिया छपरा थामिया निकरिया कर पाया रे बिन जड़िए ले जड़ियो जड़ावा थेवा अचरज लाया रे दादी दाद न पहुंचन हारा चूपी निर्नो पाया रे माल बुली चै बैठी ले मृतक नैन दिखालन ताया।

मैं जियो सुनकर बचन तुम्हारे सतगुर मन तन मेरा ठार थियो राव तुमरी कृपा ते पयो साध संग एहो काज तुम आप कियो दिड़ कर चरण गहे प्रभ तुमरे सहजे बिखिया पई कियो सुख निधान नाम प्रभ तुमरा एहो अविनाशी मंत्र लियो कर कृपा मुझ सतगुर दीना ताप संताप मेरा बैर गियो तन सो मानस देही पाई जित प्रभ अपने मेल लियो तन सो कल जुग साध संकीर्तन गाये।

बाँ कोरते बाँ पकड़ गुर काट लिए। निरपो पे सगल पो मिटिया राखे राखन हारे, ऐसी दास तेरी प्रभ मेरे कारज सगल सवारे। गुण निधान साहिब मन मेला।

कहो नानक सब तेरी वडियाई, कोई नाउ ना जाने मेरा पासा मेला पंजवा। कर कृपा प्रभ अंतर जामी, साध संग हर पाये, खोल किवार दिखा ले दर्शन, पुनरप जन्म ना आये। मिलो प्रीतम स्वामी अपने, सगले दुख हरोरे, पार ब्रह्म जिन हृदय अराध्या, ताके संग तरोरे। राव महा उद्यान पावक सागर भय, हरख सोग में बसना, सतगुर पेट पया मन निर्मल, जप अमृत हर रसना। तन तन थाप कियो सब अपना, कोमल बंधन बांधिया, गुर प्रसाद पय जन मुक्ते, हर हर नाम आराध्या। राख लिए प्रभ राखनहार, जो प्रभ अपने पाने, जियो पिंड सब कुमरा दाते, नानक सब कुर्बाने। आसा मेला पंजवा, मोह मलन नींद के छुटकी।

निर्मल बरन बन्योरी महामंत्र गुर हृदय बस्यो अचरज नाम सुन्योरी कर कृपा प्रभ नदर अवलोकन अपने चरण लगाई प्रेम भगत नानक सुख पाया साधु संग समाई इको अंकार सतगुरु प्रसाद राग आशा।

तब आप सिंगार सवार हार रहाओ दूजा आसा मेला पन्नवा दुख कनो जब होते दूर अब मसलत मुझे मिली है दूर चुका निहोरा सकी सहेरी धर्म गया गुर फिर संग मेरी रहाओ निकट कौन प्रे सेज तरी कौन कदम ते छूट परी मंदर मेरे शब्द उजारा अनद बिनोदी खत्म हमारा मस्तक भाग में फिर कर आया फिर सोहाग नानक जन पाया आसा मेला पंजवा साच नाम मेरा मन लागा लोगन से मेरा ठाठा बागा।

बहुत पिहाला, सगल चरण की इह मन राला, नानक जन गुरु पूरा पाया, अंतर बाहर एक दिखाया। आशा महला पंजवा, पावत रलिया जो बन बलिया, नाम बिना माटी संग रलिया, कान कुंडलिया बस्तर ओढ़लिया, सेज सुख लिया मन गर्बलिया, रहाओ तले कुंचरिया सिर कनक छतरिया, हर पगत बिना ले तरन गडलिया, रूप सुंदरिया अनेक स्त्रिया, हर रस बिन सब स्वाद फिकरिया, माया चलिया बिकार बिखलिया, शरण नानक प्रभु पुरख दयालिया। आसा महला पंजवा, एक बगीचा पेड़ कन करिया, अमृत नाम कहा मैं फलिया, ऐसा करो विचार ज्ञानी, जाते पाये पद निर्वाणी, आस पास बिखुआ के कुंता, बीच अमृत है पाई रे, रहाओ सिंचन हारे एक माली, खबर करत है पात पत डाली, सगल बनस्पत आन जड़ाई, सगली फूली निफल नाकाई, अमृत फल नाम जिन गुरते पाया, नानक दास तरी तिन

जिन तू जाता सो ग्रस्त उदासी परवान, नाम रता सोई निर्माण, जाको मिलियो नाम निधाना, पंत नानक का पूर खजाना, आसा मैला पन्नवा। तीर्थ जाओ ताहो करते, पंडित पूछो ता माया राते, सो स्थान बताओ मीता, जाके हर हर कीर्तन नीता, रहाओ शास्त्र वेद पाप पुण्य विचार, नरक स्वर्ग फिर अवतार, ग्रस्त में चिंत उदास अंकार, कर्म कर्त जी को जंजार, प्रभ कृपा से मनवस आया, नानक गुरमुख तरी तिन माया, साध संग हर कीर्तन गाय, यो स्थान गुरु ते पाय, राव दूजा आसा मेला पन्नवा। कर में सुख बार फुल सूखा, हर सिमरत सगल बिना से दुखा, सगल सुख जातू चित आवे, सो नाम जपे जो जन सुध पावे, राव तन मन शीतल जप नाम तेरा, हर हर जपत तह दुख डेरा, हुक्म बूझे सोई परवान, साथ सब जाता निशान, गुरपुरे हर नाम दृढ़ाया, पंत नानक मेरे मन सुख पाया, आसा मैला पन्नवा। जहाँ पठावो तह तह जाई, जो तुम देहो सो

मन तन अंतर तुझे त्याए, तुमरे लवे ना को लाए, कहो नानक नित इवे त्याए, गत होवे संतै लग पाए। आसा मैला पंजवा, उठत बैठत सोवत त्याए, मार्ग चलत हरे हर गाये, श्रवण सुनी जय अमृत कथा, जास सुनी मन होए आनंदा, दुख रोग सगले मन लखा राव, कारज काम बाट काट जपी जय, गुर प्रसाद हर अमृत पी जय, दिन सरैन हर कीर्तन गाय, सो जन जन की वाट न पाये, आठ पैर जिस विसरे नाही, गत होवे नानक तिस लग पाए। आसा मैला।

कुम तुमाने दर्शन मांगो दे प्यारे, तुमरी सेवा कौन कौन ना तारे, राव जाके निकट न आवे कोई, सगल सृष्ट हुआ के चरण मल धोई, जो प्राणी काहू ना आवत काम, संत प्रसाद ताको जपिए नाम, साध संग मन सोवत जागे, अब प्रभु नानक नीचे लागे, आसा मेला धन्यवास, एको एकी नैन निहारो, सदा सदा हर नाम समारो।

किलबिक बिनासे दुख दर्द दूर पै पुनीत संतन की तूर रहा प्रभ के संत उदाहरण जोग इस पेटे जिस पुर संजोग मन आनंद मंत्र गुर दिया कृष्ण बुझी मन ने चलतिया नाम पदार्थ नौ निध सिद्ध नानक गुरते पाए।

आते पय मन निर्मल हर हर हर हर नाम सुना रहाओ बिन सो मन का मूर्ख टीठा प्रभ का पावना लागा मीठा गुर पूरे के चरण गए कोट जन्म के पाप लहे रतन जन्म एवं सफल भया कहू नानक प्रभ करी मया।

सत्संग चारे जागरे मन जागन हारे बिन हर अवर नाव सुकामा झूठा मो मिथ्या पसारे राव गुर की बाणी से रंग लाए गुर कृपाल होए दुख जाए गुर बिन दूजा नाही थाओ गुर दाता गुर देवे नाओ गुर पार ब्रह्म परमेश्वर आप आठ पैर नानक गुर जाप आसा मेला संजमा आपे पेड़ विस्थारी साख अपनी खेती आपे राख जत कत पे कुए कै ओही कट कट अंतर आपे सोई राव आपे सूर किरण विस्थार सोई गुप्त सोई आकार सर गुण निर्गुण था पैनाओ दो मिल एक कै कीनो ठाओ कहो नानक गुरु परम को खोया अनुज रूप सब नैन अलो।

रहा हो। मूर्ख मुग्ध अज्ञान अविचारी नाम तेरे की आस मन धारी। जप तप संजम करन न सादा नाम प्रभु का मने अरादा। किछु न जाना मत मेरी थोरी बिनवत नानक ओट प्रभ तोरी। आसा मेला पंजवा हर हर अखर दोए माला जपत जपत पै दीन।

हृदय समाले मुख हर हर बोले सोजन इत उत कते न डोले कहू नानक जो राचे नाए हर माला ता कै संग जाए आसा महला संजवा जिसका सब किच तिसका होए तिस जन लेत न व्यापे कोए हर का सेवक सद ही मुक्ता जो किच करे सोई पल जन कै अत निर्मल दास की जुगता रहाओ सगल त्याग हर सरणी आया तिस जन कहां व्यापे माया नाम निधान जाके मन माहे तिसको चिंता सुपने नाहे कहो नानक गुरु पूरा पाया परम मोह सगल बिन साया।

मिट गया दुख बिसारी चिंता, फल पाया जब सतगुर मंता। सोई सत सत है सोए, सिमर सिमर रख कंठ करोए, कहो नानक।

जागत भगत सिमरत हर राते रहाओ मोह परम बहु जोन को आया अस्थिर भगत हर चरण से आया बंधन अंग कूप गृह मेरा मुक्ते संत बुझे हर नेरा कहु नानक जो प्रभु शरण आये इहा सुख आगे गत पाए आशा मेला पन्नवा तू मेरा तरंग हम मीन तुम्हारे।

दत्त पत तू परवान, तू समरथ मैं तेरा तान, अन दिन जपो नाम गुण तास, नानक की प्रभ पै अरदास, आसा मैला तन्यवा। रोवन हारे झूठ कमाना, हस हस सोग करत दे गाना, को मुआ का कह कर गावन, को रोवे को हस हस पावन, रहाओ बाल व्यवस्था ते बिरधाना, पहुँचना मुका फिर पछताना, त्रयो गुण में वर्ते संसारा, नरक सुरग फिर अवतारा, कहो नानक जो लाया नाम, सफल जन्म।

खा रहे हो, खिसर गयो पूम पर डारे हो, साग मोहला दी अंकारे, दोष नाही प्रभ करने हारे, साध संग मिटे परम अंधारे, नानक मेली सिरजन हारे, आशा मेला पंजवा, चरण कमल की आस प्यारे, जम कंकर नस गए विचारे, तू चित आवे तेरी माया, सिमरत नाम सगल रोग खया, रहाओ अनेक दुख देवे अवरा को, पहुँच न साके जन तेरे को, दर्स तेरे की प्यास मन लागी, सहज आनंद बसे बैरागी, नानक की अरदास सुनी जाए, केवल नाम हृदय में दी जाए, आशा मेला पंजवा, मन तृप्ता नो मिटे जंजाल, प्रभ अपना होया कृपाल, संत प्रसाद पली बनी, जाके गृह सब किछ है, पूरन सो पेटिया निरपै तनी रहाओ, नाम दृढ़ाया साध कृपाल, मिट गई भूख महा विकराल, ठाकुर अपने कीनी दात, जलन बुझी मन होई सात, मिट गई पाल मन सहज समाना।

को जन पूरन रहे अधाई, कछु न कोरा हर पगतन को, खात खर्चत बिलछत देवन को, रहाओ जाका तनी अगम गुसा।

जा को दया करो मेरे स्वामी, कहो नानक नाही तिन कामी। आशा मैला पंजवा, जो मैं अपना सतगुर त्याया, तब मेरे मन महा सुख पाया, मिट गई गणित बिना।

मेरी देख चलत मन पै दिलासा नानक दास तेरा परवासा आसा महला पंजवा अन दिन मूसा लाज पुकाई गिरत कूप में खाए मिठाई सोचत साचत रैन बिहानी अनक रंग माया

के चितवत कबू न सिमरै सारंग पानी रहाओ, द्रुम की छाया नहीं चल ग्रह बांधिया, काल के फांस सकत सर सांधिया, बालू किनारा तरंग मुख आया, सोथान मूड नहीं चल कर पाया, साध संग जप्यो हर राय, नानक जीवे हर गुण गाए, आसा मेला पंजवा दो तुके नावा, उनके संग तू करती केल, उनके संग हम तुम संग मेल, उनके संग तुम सब को लो रहे।

उनके संग तेरा मान महत, उनके संग तुम साख जगत, उनके संग तेरी सब विथाटी, उस बिना तू हुई है माटी, ओ बैरागी मरे न जाए, हुक्मे बादाकार कमाए, जोड़ बिछोड़े नानक थाप, अपनी कुदरत जाने आप। आसा महला पंजवा, ना ओ मरता।

को तृष्णा जाओ निर्मल ता हम जतना हम किछ नाही एक ओही आगे पाछे को सोई नानक गुरु खोए परम पंगा हम ओए मिल होए इकरंगा आसा महला पंजवा अनेक पांच कर सेवा करिए जियो प्राण तन आगे करिए पानी पखा करो तज अभिमान अनेक बार जाइए कुर्बान सरई सुहागण जो प्रभु पाई।

है पाग ता पावो संग मिले स्वामी अपने रंग जाप ताप देवो सब ने मां कर्म कर्म अर्पो सब हो मां गर्भ मोह तज हो वो देन उनके संग देखो प्रभ नैन निमख निमख एही

जग मोहनी हम त्याग गवाई, निर्गुण मिलियो वजी वधाई रहाओ। ऐसी सुंदर मन को मोह है, बाट काट गृह बन।

रे अब मोर मन पया आनंद पौ चूका टूटे सब फंद कहो नानक जा सतगुर पाया कर सगला मैं सुखी बसाया आखा मेला पंजवा आठ पैर निकट कर जाने प्रभु का किया मीठा माने एक नाम संकन आ

प्रतपाले प्रभ आप कट कट सारी है, जिस मन उठा आप किस ना विसारी है, जो किस करे सो आप आपन पाणिया, भगता का सहाय जुग जुग जानिया, जप जप हर का नाम कदे न चूरिए, नानक दर्श प्यास।

जन्म मरण दुख लाथ रहाओ दूजा पासा मेला पंजवा। निमक काम स्वाद कारण कोट दिनस दुख पावे, कई मोत रंग माने फिर बोर बोर पछतावे। अंधे चेत हर हर राया तेरा सोदन नेड़े आया, रहाओ पलक दृष्ट देख फूलो आ

देखत साधु संग हर हर नाम चरावो रंगन आपे ही प्रभ रंग। मन में राम नामा जाप कर कृपा वसो मेरे हृदय होए सहाय आप रहाओ। सुन सुन नाम तुम्हारा प्रीतम प्रभ देखन का चाओ। दया करो किरम अपने को यह मनोरथ सुहाओ। तन तन तेरा तू प्रभु मेरा हमरे बस किछ नाहे। ज्यो ज्यो राखे त्यो त्यो रहना तेरा दिया खाहे। जन्म जन्म के किल विखकाटे मज्जन हर जन तूर। पाए भगत परम को नासे हर नानक सदा हजूर। आसा महला पंजवा अगम अगोचर दर्श तेरा सो पाए जिस मस्तक पाग। आप कृपाल कृपा प्रभु तारी सतगुरु बख्शिया हर नाम। कल युग उधारिया गुरुदेव मल मूत मूड जे मुग्ध होते सब लगे तेरी सेव। रहाओ तू आप करता सब सृष्ट धरता सब मेरे आसमाए। परम राजा विस्माद हुआ सब पई पैरी आए। सत युग त्रेता द्वापर कणिए कल युग उत्मो जुगा माहे। ऐ कर करे सो ऐ कर पाए कोई न पकड़िए किसे खाए। हर जियो सोई करे जे भगत तेरे जाचे एहो तेरा बिरद कर जोड़ना।

सतगुरु बचन तुम्हारे निर्गुण निस्तारे रहाओ। महाबिखादी दुष्ट अपवादी ते पुनीत संगारे, जन्म पवनते नरक पड़नते तिनके कुल उधारे। कोई न जाने कोई न माने से प्रगट हर द्वारे।

मोह कुटुंब बिखे रसमासे मिथ्या गहन गहे मिथन मनोरथ सुपन आनंद उलास मन मुख सत कहे अमृत नाम पदार्थ संगे तिल मर्म ना लहे कर कृपा राखे सत्संगे नानक शरण आहे आसा महला पंजवा तिप दे ओहा प्रेम पिरी रहाओ कनक माणिक गज मोतियन।

चरणन शरणन संतन बंदन सुखो सुख पाहे। नानक तप्त हरि मिले प्रेम पिरी आशा मैला पंजवा। गुरे दिखायो लोए ना रहाओ ईते ऊते कट कट कट कट। तू ही मोहिना कारण करना कारण करना। एक है सोहिना संतन परसन बलिहारी दर्शन। नानक सुख सुख सोएना आशा मैला पंजवा। हर हर नाम अमोला ओह सहज सुहेला। रहाओ संग सहाई छोड़ न जाई ओह अगे अतोला। प्रीतम पाई बाप मोरो माई भगतन का ओला। अलख लखाया गुर ते पाया नानक एहो हर का चोला आसा मैला पंजवा। अपनी भगत निवाहे ठाकुर आयो आहे। रहाओ नाम पदार्थ हुए सक

गुण रस रस गावे। एक आशा दर्श प्यासा आन न पावे, दया तुहारी क्या जंत विचारी, नानक बल बल जावे। आशा महला पंजवा। एक सिमर मन माही रहाओ, नाम ते आवो हृदय बसावो, तिस बिन को नाही, प्रभ सरनी आये सर्व फल पाये, सगले दुख जाही, जीवन को दाता पुरख विदाता, नानक कट कट आही। आशा महला पंजवा। हर बिसरत सो मुआ रहाओ, नाम ते आवे सर्व फल पावे।

प्रभ तुमरे दर्श बिन सुख नाही, वर्त नेम संजम कर थाके, नानक साध शरण प्रभ संग वसे। आसा मैला पंजवा कर पंद्रवा पड़ताल एक ओंकार सतगुरु प्रसाद। विकार माया माद सोयो सूझ बूझ ना आवे, पकर केस जम उठारियो तद ही कर जावे। लोग बिखिया बिखे लागे, हिरवित चित दुखाही, खिन पंगुना कै

हार मुका पछतायो मन पोरा, दान सगल गैर वजह परया, दीवान लेखे ना परया, जे कारज रहे ओला सोए कामना करया। ऐसो जग मोहे गुर दिखायो, तो एक कीरत गाया, मान तान तज

काम क्रोध लोभ त्याग मन सिमर गोविंद नाम हर भजन सफल काम रहाओ। तज मान मोह विकार मिथ्या जप राम राम राम मन संतना के चरण लाग प्रभु गोपाल दीन दयाल पतित पावन पार ब्रह्म हर चरण सिमर जाग कर भगत नानक पूरन।

गोविंद कर हां, हर हर मन प्यार हां, गुर कहया सोचित थर हां, हम स्यो कोर फेर हां, ऐसे लालन पायो री सखी रहाओ, पंकज मोह सर हां, पग नहीं चले हर हां, गह दियो मूड नर हां।

दृढ़ संत मंत ज्ञान सेवा गुर चरान तौ मिलिय गुर कृपान मेरे मना रहाओ। टूटे अन परान रवयो सर्व थान लहो जम पयान पायो पेड़ थान तौ चूकी सगल कान।

तिस निकट ना कदे दुख हां, जो हर हर जस सुने हां, सब को तिस मन्ने हां, सफल सो आया हां, नानक प्रभ पाया मेरे मना, आसावरी मैला पंजवा। मिल हर जस गाये हां, परम पद पाये हां, उआ रस जो बिदे हां, ताको सगल सिदे हां, अन दिन जागया हां।

छत्तीस सुजय हाँ पतित उधार ले हो हाँ नानक अरदास ते हो मेरे मना आसावरी मैला पन्यवा एक टुका।

अब घट सर्वरनावे बकैन बोले हर गुण गावे जल आकाशी सुन समावे रस सत चोल महारस पावे ऐसा ज्ञान सुनो अब मोरे परपुर तार रहा सब ठौरे रहाओ सच व्रत नेम न काल सुनतावे सतगुरु शब्द क्रोध जलावे गगन निवास समाध लगावे पारस परस परम पद पावे सच मन

सिरत विभूत चढ़ावे, दर्शन आप सहज कर आवे, निर्मल बाणी नाद बजावे, अंतर ज्ञान महारसारा, तीर्थ मज्जन गुर विचारा, अंतर पूजा थान मुरारा, ज्योति ज्योत मिलावन हारा, रस रसिया मत एक भाए, तख्त निवासी पंच समाए, कार कमा

सौच तनी जग आए बिनासा, छूटस प्राणी गुरमुख दासा रहाओ, जग मुह बांधा बहुती आसा, गुरमति इक पै उदासा, अंतर नाम कमल पर गासा, तिनको नाही जम की त्रासा, जग त्रिय जित कामन हितकारी, पुत्र कलत्र लग नाम विसारी, वृथा जन्म गवाया बाजी हारी, सतगुर सेवे करनी सारी, बारों हो मैं कह कहाए, अंदरों मुक्त लेप कदे ना लाए।

नदर करे संजोग मिलाए, रूड़ो कहो ना कहया जाई, अकथ कथो न कीमत पाई, सब दुख तेरे सुख रजाई, सब दुख मेटे सा चैन आई, कर बिन वाजा पग बिन ताला, जे शब्द बुझे ता सच निहाला, अंतर साथ सबे सुख नाला, नदर करे राखे रखवाला, त्रिभुवन सूजे आप गवावे, बाणी बूजे सच समावे, शब्द विचारे एक लिवतारा, नानक तन सवारन हारा।

जमण मरणा हुकुम पछाण राव माया मोह जग बांदा जम काले बांदा छूटे नाम समाले गुर सुख दाता अवर न पाल हालत पलत निभी तुद नाल सबद मरे ता एक लिवलाए अचर चरे ता कर्म चुकाए जीवन मुक्त मन नाम वसाए गुरमुख होए ता सच समाए जिन तरसा जी गगन आकाश जिन सब थापी थाप उथाप सर्व निरंतर आपे आप किसे न पूछे बख्शे आप तू पुरुषागर मान कहीर तू निर्मल सच गुणी गहीर।

जग पंडित बिरला विचारी, बिन सतगुर पेटे सब फिरै अंकारी। जग दुखिया सुखिया जन कोए, जग रोगी पोगी गुण रोए। जग उपजै बिन सह पत खोए, गुरमुख होवै बूझै सोए। मह गो मोल पार अपार,

जिस वेदन होए जिस बीती जाने प्रभ सोए आपे करता करे सोए जीवत मरना तारे तरना जय जगदीश परम गत सरना हों बलिहारी सतगुर चरना गुर बोहित शब्द पै तरना निरपौ आप निरंतर ज्योत बिन नावे सूतक जग छोत दुर्मत बिन सह क्या कह रोत जन्म मुए बिन भगत सरोत मुए को सच रोवे मीत त्रै गुण रोवे नीता नीत दुख सुख पर हर सहज सुचीत तन मन सौ को कृष्ण प्रीत पीतर एक अनेक असंख कर्म कर्म बहु संख असंख दिन पै पगती जन्म बिरंथ हर गुण गावे मिल परमारंथ आप मरे मारे भी आप उपाय थाप उथाप श्रेष्ठ उपाय ज्योति तू जात शब्द विचार मिलन नहीं प्रात सूतक अगन पथे जग खाए सूतक जल थल सभी थाए नानक सूतक

न पावे बालक बिरद न सुरत प्राण पर जो बन बूढ़े अभिमान बिन नावे क्या लहस निदान जिसका अन तन सहज न जाना परम फुलाना फिर पछताना गल पाही बौरा बौराना बूढ़त जग देखिया तो डर पागे सतगुरु राखे से बढ़ पागे।

गुरुमुख राम नाम कृपा से खोजत पावो सहज हरे रहाओ। काम क्रोध मन मोह शरीरा लब लोभ अहंकार सोपीरा राम नाम बिन क्यों मन तीरा। अंतर नावन साच पछाने अंतर की गत गुरुमुख जाने साच शब्द बिन मैल ना पछाने। निरंकार में आकार समावे अकल कला सच साच टिकावे। सो नर गर्भ जोन नहीं आवे जहाँ नाम मिले तह जाओ। गुर प्रसादी कर्म कमाओ ना मेरा ताहर गुण गाओ। गुर सेवा से आप पछाता अमृत नाम।

सदा सुख आ गए मन चंचल विद नाही जाने मन मुख मैला शब्द ना पछाने गुरमुख निर्मल नाम बखाने हर जियो आ गए करी अरदास साधु जन।

देवाना बन खंड माया मोहे हैराना इत उत जाहे काल के चापे गुरमुख खोज लह कर आपे बिन गुरु शब्द मन नहीं ठौरा सिमरो राम नाम अत निर्मल अवर त्यागो हो मैं कौरा रहाओ एहो मन मुग्ध कहो क्यों रहसी बिन समझे जम का दुख सहसी आपे बख्शे सतगुरु मेले काल कंटक मारे सच पेले इहो मन कर्मा इहो मन तर्मा इहो मन पंच तत ते जन्मा साकत लोभी इहो मन मूरा गुरमुख नाम जपे मन रूड़ा गुरमुख मन अस्थाने सोई गुरमुख त्रिभुवन सोजी होई इहो मन जोगी पोगी तप तापे गुरमुख चीने हर प्रभ आपे मन बैरागी हो मैं त्यागी कट कट मन सा दुबदा लागी राम रसायन गुरमुख चाखे दर कर मैली हर

ग्रास इकत खाए किए गुरुमुख राग स्वाद अन त्यागे गुरुमुख इव मन भगती जागे अनहद सुन मानिया शब्द विचारी आत्म चीन पय निरंकारी इव मन निर्मल दर कर सोई गुरुमुख भगत पाओ तुम होई एनस हर जस गुर प्रसाद कट कट सो प्रभ आद जुगाद राम रसायन इव मन माता सर्व रसायन गुरुमुख जाता भगत हेत गुर चरण निवासा नानक हर जन के दासन गासा आसा मेला पहला तन बिन से तन का को कही है बिन गुरु राम नाम कत नही है राम नाम तन संग सखाई एनस निर्मल हर लिवलाई राम नाम बिन कवन हमारा सुख दुख सम कर नाम न छोड़ो आपे बक्स मिलावन हारा रहाओ तनिक कामनी हेत गवारा दुखदा लागे नाम विसारा जिसको बक्से नाम जपाए दूत ना लाग सके।

अवर्ण औषद संत न मंता, हर हर सिमरन किल विखानता, तू आप पुलावे नाम विसार, तू आपे राखे कृपा धार। रोग परम पेद मन दूजा, गुर बिन परम जपे जप दूजा, अमृत पुरख गुर दर्शना देखे, विन गुर शब्दे जन्म के लेखे, देख अचरज रहे विस्माद, कट कट सुर नर सह समाद, पर पुर पार रहे मन माही, तुम संसार अवर को नाही, जाके भगत हेत मुख नाम, संत भगत की संगत राम, बंधन तोरे सहज ध्यान, छूटे गुरमुख हर गुर ज्ञान, ना जम दूत दुख तिस लागे, जो जन राम नाम लिव जागे, भगत वछल भगता हर संग, नानक मुक्त पए हर रंग, आसा महला पहला इक तुकी, गुर सेवे सो ठाकुर जाने, दुख मिटे सच शब्द पछाने, राम जपो मेरी सखी सखैनी, सतगुर सेव देखो प्रभ नैनी, रहाओ बंधन मात पिता संसार, बंधन सुत कन्या अरनार, बंधन कर्म तर्म हो किया, बंधन पुत कलक

संचय तन जाए, बिन हर भगत न कभी थाए। बंधन वेद बाद अंकार, बंधन बिन सह मोह विकार। नानक राम नाम शरणाई, सतगुरु राखे बंद ना पाए।

तीन गल सिलका पाया टुटन मोक्षरिया तन जोबन दोए वैरी होए जिन्नी रखे रंग लाए दूता नो फुरमाया ले चले पत गवाए जे तिस पावे दे।

कहां सो तेग बंद गाडेरड़, कहां सो लाल कवाई, कहां सो आरसिया मोह बंके, एथे दिसे नाही। एहो जग तेरा तू गोसाई, एक कड़ी में थाक उठापे, जर वंड देवे पाई। राव कहां सो कर दर मंडक महला, कहां सो बंक सराई, कहां सो सेज सुखाली कामण, जिस वेख नींद ना पाई, कहां सो पान तंगोली हर

ओनी तुपक तावन चलाई ओनी हस चिड़ाई जिनकी चीरी दरगे पाटी तिना मरना पाई। एक हिंदवाणी अगर तुरकानी पटियाणी ठकुरानी इकना पेरण।

कोई पिंड पवे जियो चलसी जे जाने कोई ओही ओही क्या करो है होसी सोई तुम रोवोगे ओसनो तुमको कौन रोई तंदा पिट्यो पाई हो तुम कूड़ कमावो।

ना होई जे चलदा ले चलिया किछ संपे नाले ता तन संचो देख के बूझो बिचारे वणज करो मकसूद ले हो मत पछो तावो अवगुण छोड़ो गुण करो ऐसे तत्परावो धर्म भूम सत बीज कर ऐसी किस कमावो ता

निरंतर पंडित पांदे जोयसी नित पड़े पुराना अंतर वस्त न जाननी कट ब्रह्म लुकाना एक तपसी बन में तप करें।

बिन गुर शब्द ना छूट ही तम आवे जावे। एक गिर ही सेवक साध का गुरमति लागे, नाम दान स्नान दृढ़ हर भगत सो जागे। गुर ते दर कर जानिए।

जय गुरमुख नाम पे आई है मन मंदिर पी जय रहा हो कूड़ा लालच छोड़ी है तो साच पछाने गुर के शब्द समाई है परमार्थ जाने यो मन राजा लोभिया लुभ तो लोभ आई गुरमुख लोभ निवारी है हर्षो बने आई कल्लर खेती बीजी है क्यों लाहा पावे मन मुख सच ना पी गई कूड़ कूड़ गडावे लालच छोड़ो अंधे हो लालच दुख पारी साचो साहिब मन वसे हो मैं बिखमारी दुबदा छोड़ कुआटड़ी मूसोगे पाई एनस नाम सलाही है सतगुरु शरणाई मन मुख पत्थर सैल

हुक्मे ही सिर मार बंदर वाणी है, लाहा सच में आओ मन वसाई है, लिखिया पल्ले पाए गर्व मंजाई है, मन मुखिया सिर मार वाद खपाई है, ठग मुठी कूड़ियार बन चलाई है, साहिब हृदय वसाए ना पछोता वही, गुनहा बख्शन हार शब्द कमावही, नानक मंगे सच गुरमुख काली है, मैं तुझ बिन अवरना कोई नजर निहाली है। आसा मेला पहला, क्या जंगल टूटी जाए मैं कर बन हरियावला, सच टिके कर आए शब्द उतावला, जह देखा तह सोए अवर न जानिए, गुर की कार कमाए महल पछाणिए, रहाओ आप मिलावे सच तामन पावई।

फरमाई जे मन सतगुरु दे मिले किन कीमत पाई रत्ना पारक सोतनी तिन कीमत पाई नानक साहिब मन वसै।

आए अड़प दिखावे वाटड़ी सच्ची भगत दृढ़ाए मन मुख जे समझाए पी उजड़ जाए बिन हर नाम न छूट सी मर नरक समाए जन्म मरे परमाई।

जिस आप कर आए नानक सिर दे छूटी है दरगे पत पाए आसा मेला पहला रूड़ो ठाकुर मारो रूड़ी गुरबाणी वड्डे पाक सतगुर मिले पाई है पद निर्वाणी मैं ओ लगिया।

दर सेवक दरवान दर्द तू जानही, भगत तेरी हैरान दर्द गवावही, दर गए नाम हदूर गुरमुख जानसी, वेला सच परवान शब्द पछाणसी, सत संतोख।

कर्म होवे ता परम पद पाइए कथे अकथ कहानी। तू करता किया सब चेहरा चा को करे प्राणी, जा को नदर करे तू अपनी साई सच समाणी। नाम तेरा

गुर सेवा के सब कुल उधारे, निर्मल नाम रखे उधारे, साची शोभा सात द्वारे, सेवड पागी जे गुर सेवा लाए, अंगिन पगत सच नाम दृढ़ाए, नामे उदरे कुल सभाए, नानक साथ कह विचार, हर का नाम रखो।

सोई। सतगुर नाम बुझाया बिन नामे भुख न जाई। नामे तृष्णा अग्न बुझे है।

कर कृपा नाम मन वसाए, इहो सिर दी जय आप गवाए, हुक्म बूझे सदा सुख पाए, आप करे तह आप कराए, आपे गुरमुख नाम वसाए, आप पुलावे आप मार्ग पाए, सच्चा शब्द सच समाए, सच्चा शब्द सच्ची है बाणी, गुरमुख जुग जुग आख वखाणी, मन मुख मोहे परम पुलानी, बिन नामे सब फिरे बोराणी, तीन पवन में एक काम आया, मूरख पढ़ पर दूजा पाव दृढ़ाया, बहु कर्म कमावे दुख सवाया, सतगुर सेव सदा सुख पाया, अमृत मीठा शब्द विचार, अंदिन पोगे हूँ मैं मार, सहज आनंद कृपा धार, नाम रते सदा सच प्यार, हर जब पढ़िए गुर शब्द विचार, हर जब पढ़िए हूँ मैं मार, हर जपिए पै सच प्यार, नानक नाम गुरमत।

आप वाली दितियन अंतर लोग विकारा, एक आपे गुरमुख कीतियन बूजन विचारा, भगत भी ओना नु बसियन अंतर पन।

सोई कर में पंच वर्त दे पंचे विचारी नानक बिन सतगुर वस ना आवनी नाम हो मैं मारी आसा महला तीजा करे अंदर सब वस है बाहर किस नाही गुर प्रसादी पाई है अंतर कपट खुलाही सतगुर ते हर पाई है पाई अंतर नाम निदान है पूरे सतगुर।

पंडारा। अंदर महल अनेक हैं, जियो करे वसेरा। मन चिंदिया फल पाए सी, फिर होए न फेरा। पार किया वक्त समाल लई, गुरसो जी होई। नाम पदार्थ अमूल सा, गुरमुख पावे कोई। बाहर पाले तो क्या लहे, वक्त करे अंदर भाई। पर में पूला सब जग फिरे, मनमुख पत गवाई। कारदार छोड़े अपना, पर कर झूठा।

पछाणिया गुर की वडियाई, आपे दान करे किस आखिए आपे दे बुझाई। नानक नाम से आए तू दर सच्चे तो बापाई। आता मेला तीजा आपे आप पछाणिया साध मीठा भाई, हर रस चाखिए मुक्त भये जिना साचो भाई। हर जियो निर्मल निर्मला निर्मल मन वासा, गुरमती साला ही है बिखिया माए उदासा रहाओ। बिन शब्द आप न जापई सब अंधी भाई, गुरमती कट चानना नाम अंत सिखाई। नामे ही नाम वर्त दे नामे वर्तारा, अंतर नाम मुख नाम है नामे शब्द विचारा। नाम सुनिए नाम मनिए नामे वड्याई, नाम सलाहे सदा सदा नामे महल पाई। नामे ही कर चानना नामे शोभा पाई, नामे ही सुख उपजे नामे शरणाई। बिन नामे कोई ना मनिए मन मुख पत गवाई, जमपुर बादे मारिए बिरथा जन्म गवाई। नामे की सब सेवा करे गुरुमुख नाम बुझाई, नामो ही नाम मनिए नामे वड्याई। जिसनो देवे तिस मिले गुरुमती नाम बुझाई, नानक सब किछ नाम है।

का बोले नानवे दूजा पाव सुहाओ क्यों मनुआ क्यों करवसावे गुर प्रसादी ठाकी है ज्ञान मती कर आवे रहाओ सोहागणी आप सवारियों लाए प्रेम प्यार सतगुरु के पाने चल दिया नामे सह शिगार सदा रामे फिर अपना सच्ची सेज सुवाए फिर कह प्रेम मोहिया मिल प्रीतम सुख पाए ज्ञान अपार सिगार है शोभावंती नार सासब राई सुंदरी फिर कहे प्यार सोहागणी विच रंग रखियो न सच्चे अलख अपार सतगुर सेवन अपना सच्चे पाए प्यार सोहागणी सिगार बनाया गुण का गलहार प्रेम पिरमल तन लावना अंतर।

सच सुवाए, बिन संगति सब ऐसे रहे जैसे पस्तोर, जिनकी तेत से न जाननी बिन नावे सब चोर, एक गुण विहाजे औ

नानक नामे लाए सवारियन सब दे ले मिलाए आसा मेला तीजा सब नामे नो लोच दी जिस कृपा करे सो पाए बिन नामे सब दुख है सुख तिस जिस मन

मेल लहे एक दरगे मार कडे कूड़ियार एक तुर पवित पावन है तुद नाम मेलाए गुर सेवा ते सुख उपजे सच्चे शब्द बुझाए एक कुचल कुचील विखली पते नामो आप खुआए ना ऊन सिद्ध ना बुद्ध है ना संजमी फिर उतवताए नदर करे जिस अपनी किसनो पावनी लाए सत संतोख ए संजमी मन निर्मल शब्द सुनाए लेखा पढ़ना पहुँची है कथ कहने अंत न पाए गुरते कीमत पाई है सच शब्द सोजी पाए।

सच रतिया सुहागणी जिना गुर कै शब्द सिगार। कर ही सो फिर पाया सच्चे शब्द विचार, अवगण गुणी बखसाया हर्षो लिव लाई, हर वर पाया कामणी गुर मेल मिलाई। रहाओ इक फिर हदूर ना जानवी दूजे परम पुलाए, क्यों पायन दोहागणी दुखी रहन विहाए। जिनके मन सच वसिया सच्ची कार कमाए, अंदिन सेवे सहज सो सच्चे माही समाए। दोहागणी परम पुलाया कूड़ बोल बिखाए, फिर ना जानन अपना सुन।

सच निर्मल मन वसाए, सुहागणी सदा फिर पाया हूँ मैं आप दुआए, फिर सेती अम दिन गह रही सच्ची सेज सुपाए, मेरी मेरी कर गए पल्ले किछ ना पाए, मैल नाही दुहागणी अंत गई पछताए, सो फिर मेरा एक है एक सत्यों लिव लाए, नानक जे सुख लो।

मुख पाए, मन सदा हरि आवला सहजे हर गुण गाए। राव मन मुख सदा दुहागणी दर खड़िया बिललाहे। जिना पिर का स्वाद न आयो जो तुर लिखिया सो कमाहे। गुरमुख बीजे सच जम्मे सत नाम व पार, जो इतला है लायन पगती।

माया की शोभा चार दिहाड़े जांदी बिलम ना होए, जिन्नी नाम विसारिया से मोए मर जाए, हर रस साधना आयो बिष्टा माए समाए, एक आपे बक्स मिलायन अंदर ना मिलाए, सच कमावे सच रहे सच्चे सच समाए, बिन शब्द सुनिए ना देखिए, जग बोला अन्ना परमाए, बिन नामे दुख पाए सी नाम मिले तिसर जाए, जिन बाणी सो चित लाया से जन

में राजात है अत क्रोध अभिमान, शब्द मरे ता जात जाए, ज्योति ज्योत मिले भगवान। पूरा सतगुर पेटिया सफल जन्म हमारा, नाम नवैनित पाया परे अखुट पंडारा। आवे इस राशि के वापारिये जिना नाम प्यारा, गुरमुख हो वै सो तन पाए तिना अंतर शब्द विचारा। भक्ति सार न जाननी मनमुख अहंकारी, तुरु आखुआयन जुए बाजी हारी। बिन प्यारे भगत न हो वही ना सुख वे शरीर, प्रेम पदार्थ पाई है।

अन रस में पोलाया बिन नामे दुख पाए, सतगुरु पुरख ना पेटियो जे सच्ची बूझ बुझाए, ए मन मेरे बावले हर रस चट साध पाए, अन रस लागा तू फिरे बिरथा जन्म गवाए रहाओ, इस जुग में गुरमुख निर्मले सच नाम रहे लिवलाए, विण कर्मा किछ पाये नहीं क्या कर कहे आ जाए, आप पछाणे शब्द मरे।

जाए एहो जग माया मोह व्यापिया दूजे परम पुलाए दोहागणी तिरकी सार न जाने क्या कर करें सिगार अंदिन सदा जल्दिया फिरे सेजे रवे ना पतार सोहागणी महल पाया विच्चों आप गवाए गुर शब्दी सिगारिया अपने सह लिया मिलाए मरना मनो विसारिया।

साध संग हर हर जपत निर्मल साची रीत रहाओ। दर्शन की प्यास कणी चितवत अनेक प्रकार करो अनुग्रह पार ब्रह्म हर कृपा तार मुरार। मन परदेसी आया मिलियो साध के संग जिस वखर को चाहता सो पायो न मैं रंग। जेते माया रंग रस बिनस जाए खिन माहे भगत रते तेरे नाम स्यो सुख पुंचे सब ठाए। सब जग चल तो पेखी है नेचल हर को नाओ कर मित्राई साध चो नेचल पावे ठाओ। मीत साजन सुत बंग

सस्य सोए सृष्ट जिन साजी सबना साहिब एक भया सेवत रहे चित जिनका लागा आया तिनका सफल भया मन काहे भूले मूड मना जब लेखा देवे बीरा तो पड़या रहाओ ईवड़ी आद पुरख है दाता आपे सच्चा सोई एना अखरा में जो गुरमुख बूझे तिस सिर लेख ना होई उड़े उपमाता की जय जाका अंत न पाए।

के मोहत के उठ चलना, जुए जन्म ना हारो अपना, पाज पड़ो तुम हर सरना। ठठे ठांड वर्ती तिन अंतर, हर चरणी जिनका चित लागा। चित लागा सही जन निस्तरे, तो प्रसादी सुख पाया। डड्डे डंफ करो क्या प्राणी, जो किछ हो आसो सब चलना। तिसे सिरेवो ता सुख पावो, सर्व निरंतर रव रहा।

नाने रवत रहे कट अंतर, हर गुण गावे सोई, आपे आप मिलाए करता पुनरप जन्म ना होई। तत्ते तारू पव जल हुआ, ताका अंत न पाया, ना तर ना तुल्हा हम

कंत ना कब हूं मैं मिलिया। पप्पे पाप साव परमेश्वर वेखण को परपंच किया। देखे बूझे सब किछ जाने अंतर बाहर रव रया। फफे फाही सब जग फासा जम के संगल बंद लया। गुर प्रसादी से नर उबरे जे हर शरणागत पज पया। बब्बे बाजी खेलन ला।

वेखे चाखे सब किछ जाने अंतर बाहर रव रहा राड़े राड़ करें क्या प्राणी तिसे त्यावो जे अमर होआ तिसे त्यावो सच समावो उस विटों कुर्बान किया हा है होर ना कोई दाता।

तन फिर नेहो कणा रस प्रीत दयाला राम। तन फिर मेला होए स्वामी आप प्रभु कृपा करे, सेजा सुहावी संग फिर कै सात सर अमृत भरे। कर दया मया दयाल साचे शब्द मिल गुण गावो, नानका हर वर देख बिगसी मुंद मन उमाहो। मुंद सहज सलोनड़िए एक प्रेम बिनंती राम, मैं मन तन हर भावे प्रभ संगम राती राम। प्रभ प्रेम राती हर बिनंती नाम हर कै सुख वसे, तो गुण पछाणे ता प्रभ जाने गुणे वस अवगण नसे। तुद बाज एक तिल

जप तप कर कर संयम थाकी, हठ निग्रह नहीं पाइए, नानक सहज मिले जग जीवन, सतगुरु बूझ बुझाइए।

सच साहिबो आद पुरख अपरम परो तारे राम अगम अगोचर अपर अपारा पार ब्रह्म प्रधानो आद जुगादि है भी होसी अवर चूठा सब मानो कर्म तर्म की सार न जाने सुरत मुक्त क्यों पाये नानक गुरमुख शब्द पछाने एहनिस नाम ते आये मेरा मनो मेरा मन मानिया नाम सखाई राम हों मैं ममता माया संग न जाई राम माता पित पाई सुत चतुराई संग न कम पैना।

नानक हर की भगत ना छोड़ो सहजे होए सो होई। मेरा मनो मेरा मन निर्मल साथ संभाले राम, अवगुण मेट चले गुण संगम नाले राम। अवगुण पर हर करनी सारी डर सच्चे प्यारो, आवन जावन ठाक रहा है गुरमुख तत् विचारो। साजन मीत सो जान सखा तू सच मिले वड्याई, नानक नाम रतन प्रगासिया ऐसी गुरमत पाई। सच अंजनो अंजन सार निरंजन राता राम, मन तन रव रहा जग

कर्म विधाता, दुख विसारण हार जियो, दुख विसारण हार स्वामी कीता जाका होवे, कोट कोटंतर पापा केरे एक कड़ी में खोवे, हंस से हंसा बग से बग्गा, कट कट करे विचार जियो, तू सबनी थाई जिथे हो जाई, साचा सृजन हार जियो, जिन एक मन त्याया

ते कबहो ना हारे हर हर गुण सारे तिन जम नेड़ ना आवे जमन मरण तिना का चूका जो हर लागे पावे गुरमत हर रस हर फल पाया हर हर नाम उर्धार जियो जिन एक मन त्याया तिन

हर दरगे मान सोई जन पावे, जो नर एक पछाणे ओह नव निध पावे, गुरमत हर त्यावे नित हर गुण आख वखाणे। एनस नाम तिसे का लीजे, हर उत्तम पुरख प्रदान जियो, जिन

सच कह नानक चेत रे मन मरे हरणा कालिया। पवरा फूल पवन त्या दुख अत पारी राम, मैं गुरु पूछिया।

साचा साहिब मन वसै की फासे जम जाले राम। मछली विछुन्नी नैन रुन्नी जाल बद्दिक पाया, संसार माया मोह मीठा अंत परम चुकाया।

हम घरे साचा सोहेला साचे सब सुहाया राम, तन फिर मेल भया प्रभ आप मिलाया राम। प्रभ आप मिलाया सच मन वसाया, कामन सहजे माती गुर

कहो नानक गुर शब्द सवारी, सफलियो जन्म सवाया। दूजड़े कामण परम पुली, हर वर न पाए राम। कामण गुण नाही, बिरथा जन्म गवाए राम। बिरथा जन्म गवाए मन मुख आणी, अवगुणवंती चूरे। अपना सतगुरु सेव सदा सुख पाया, ता फिर मिलिया हदूरे। देख फिर विगसी अंदरों सरसी, सच्चे शब्द सुभाए। नानक बिन नावे कामण परम फुलाणी, मिल प्रीतम सुख पाए। फिर संग कामण जानिया, गुर मेल मिलाई राम। अंतर शब्द मिली सहजे, तपत बुझाई राम। शब्द तपत बुझाई अंतर शांत आई, सहजे हर रस चाख्या। मिल प्रीतम अपने सदा रंग माने, सच्चे शब्द सुवाख्या। पढ़ पढ़ पंडित मोनी थाके, पेखी मुक्त न पाई। नानक बिन पगती जग बौराना, सच्चे शब्द मिलाई। सा तन मन आनंद भया, हर जियो मेल प्यारे राम। सा तन हर कै रस

संत करती जा। साजन मेरे प्रीतमो तुम सह की भगत करे हो, गुर सेवो सदा अपना नाम पदार्थ ले हो, भगत करो तुम सह केरी जो सह प्यारे पावे, अपना पाना तुम करो ता फिर सह खुशी ना आवे, भगत पाव इहो मार्ग बिखड़ा गुरुद्वारे को पावे, कह नानक जिस करे कृपा सो हर भगती चितलावे। मेरे मन बैरागिया तू बैराग कर किस दिखावे, हर सोहे

गुरमुख हुकम पछाणे, जिन हुकम पछाता हरि केरा सोई सर्व सुख पावे। इव कहे नानक सो बैरागी आम दिन हर लिवलावे। जै जै मन तू तावदा तै तै हर तेरे नाले, मन स्याणप छोड़िए गुर का शब्द समाले। साफ तेरे सो सो सदा है एक दिन हर नाम समाले। जन्म जन्म के तेरे पाप कटे।

क्यों कहे नानक मन तू जोत स्वरूप है अपना मूल पछाण। मन तू गर्ब अटिया गर्ब लद्या जाए माया मोहनी मोया फिर जूनी पवाए गर्ब लागा जाए मुगद मन।

ऐसा दुख गवाया, अदिष्ट अगोचर गुरु वचन त्याया, पवित्र परम पद पाया। अनहद तुन वाजे नित वाजे, गाई सतगुर बाणी, नानक दात करी प्रभ दाते, ज्योति ज्योत समाणी। मन

तिन हथ चढ़िया राम गुरबाणी लागे तिन हथ चढ़िया निर्मोलक रतन अपारा हर हर नाम अतोलक पाया तेरी भगत परे पंडा।

अभिमानी हर रामो नाम चुराया। माँ बिखम जम पंख दुहेला कालू खत्म हो अंधियारा नानक गुरुमुख।

जिन अंतरे राम नाम वसै तिन चिंता सब गवाया राम। सब अर्था सब कर्म मिले मन चिंदिया को फल पाया राम। मन चिंदिया फल पाया राम नाम से आया राम नाम गुण गाए। दुर्मत कबुद गई सुध होई राम नाम मन लाए। सफल जन्म शरीर सब होआ जित राम नाम पर गासे।

जियो हर नाम पदार्थ कलयुग उत्तम हर जपिए सतगुर पाए जियो हर हर मन पाया परम सुख पाया हर लाहा पद निर्वाण जियो हर प्रीत लगाई हर नाम सिखाई प्रम चूका आवन जान जियो।

किन हित दुख उतरे, हर हर नाम समाया, जिन हर से आया सुर पाग लिख पाया, तिन सफल जन्म परवान जियो, हर हर मन पाया परम सुख पाया, हर लाहा पद निर्वाण जियो, जिन हर मीठ लगाना ते जन प्रधाना, ते उत्तम हर हर लोग जियो, हर नाम वडाई हर नाम सखाई, गुर सबदी हर रस भोग जियो, हर रस भोग महा निर्जोग वड पागी हर रस पाया, से तन वड्डे सत पुरखा पूरे, जिन गुरमत नाम ते आया, जन नानक रेण मंगे पग साधु, मन चूका सोग विजोग जियो, जिन हर मीठ लग

कल जुग हर किया पग त्रैक किया पग चौथा टिके टिकाए जियो गुर शब्द कमाया औखद हर पाया हर कीरत हर शांत पाए जियो हर कीरत रुत आई हर नाम।

लाए जियो, हर दया प्रभ तारो, पाखण हम तारो, सद लेवो सब सुभाए जियो। आसा महला चौथा, मन नाम जपाना, हर हर मन पाना, हर भगत जना मन चाओ जियो, जो जन मर जीवे तिन अमृत पीवे, मन लागा गुरमत पाओ जियो, मन हर हर पाओ।

यो मन नाम जपाना हर हर मन पाना हर भगत जना मन चाओ जियो जग मरण ना पाया निक आप लुकाया मत जम पकड़े ले।

जग मरण न पाया नित आप लुकाया मत जम पकड़े ले जाए जियो तुर मरण लिखाया गुरमुख तो आया जन उबरे हर हर ध्यान जियो हर शोभा पाई हर नाम वड्याई हर दरगे पैदे जान जियो हर दरगे पैदे हर नामे सीधे हर नामे ते सुख पाया जन्म मरण दोवे दुख में ते हर रामे नाम समाया हर जन प्रभ रल एको होए हर जन प्रभ एक समान जियो तुर मरण लिखाया।

सारे नमस्कार कर लगे सेवा आपे जा जी आपे मां जी आप स्वामी आप देवा अपना कार्य आप सवारे आपे तारन तारे कहो नानक सो कर में बैठा सोहे बंक द्वारे नग्न दे नौ निदे मेरे कर में आई राम सब किछ मैं सब किछ पाया नाम से आई राम नाम से आई सदा सखाई सह सुभाई गोविंदा गणत मिटाई चूकी ताई कदे न व्यापे मन चिंदा गोविंद गाजे अनहद वाजे अतरज शोभ बनाई कहो नानक फिर मेरे संगे ता मैं नवनिद पाई सर से अड़े मेरे भाई सब मीता राम बिखमो बिखम अखाड़ा मैं गुरमिल जीता राम गुरमिल जीता हर हर कीता टूटी पीता परम गड़ा पाया खजाना बहुत निदाना सामर्थ मेरी आप खड़ा सोई सो ज्ञाना सो प्रदाना जो प्रभ अपना कीता कहो नानक जां वल स्वामी ता सर से पाई मीता आता महला पंजवा अकथा हर अकथ कथा किस जाए न जानी राम सुर नर मुन जन सहज वखानी राम सहजे वखानी अम्यो बाणी चरण कमल रंग लाया जब एक अलख प्रभ निरंजन मन चिंदिया फल पाया तज मान मोह विकार दूजा ज्योति ज्योत समाणी बिनवंत नानक गुर प्रसादी सदा हर रंग माणी हर संत सज्जन मेरे मीत सहाई राम वड़ पागी सत्संगत पाई राम वड़ पागी पाए नाम ते आए लाथे दुख संतापे गुर चरणी लागे प्रम पौ पागे आप मिटाया पे कर कृपा में ले प्रभ अपने बिछड़ कते न जाई बिनवंत नानक दास तेरा सदा हर शरणाई हर दर सोहन तेरे भगत प्यारे राम वारी तिन वारी जावा सद बलिहारे राम सद बलिहारे कर नमस्कारे जिन पेटत प्रभ जाता कट कट रग रहा सब थाई पूरन पुरख विदाता गुर पूरा पाया नाम ते आया जुए जन्म नहारे बिनवंत नानक शरण तेरी राख कृपा धारे बेअंता बेअंत गुण तेरे केतक गावा राम तेरे चरणा तेरे चरण तूड़ वड़ पागी पावा राम हर तूड़ी नाई है मैल गवाई है जन्म मरण दुख लाथे अंतर बाहर सदा हदूरे परमेश्वर प्रभ साथे मिटे दुख कल्याण कीर्तन बहुर जोन ना पावा बिनवंत नानक गुरु शरण करिए अपने प्रभ भावा आसा छंत महला पंजवा कर चौथा इको अंकार सतगुर प्रसाद हर चरण कमल मन बेदिया किछ आमना मीठा राम राजे मिल संत संगत आरा दिया हर कट कटे जीठा राम राजे हर कट कटे जीठा अमृतो उठा जन्म मरण दुख नाथे गुण निद गाया सब दुख मिटाया हों मैं बिनसी गाथे प्रियो सह सुबाई छोड़ न जाई मन लागा रंग मजीठा हर नानक बेदे चरण कमल किछ आन न मीठा ज्यों राती जल माछली त्यों राम रस माते

आप लिए लड़ लाए हर रत्न पदार्थो प्रगटो पूर्णो छोड़ना कथो जाए। प्रभ सुगर स्वरूप सुजान स्वामी ताकि मिटे न दाते जल संग्राती माछली नानक हर माते। चात्रिक जाचे बूंद ज्यो हर प्राण अधार आराम राजे माल खजी ना सुत प्रात नीत सबू ते प्यारा राम राजे। सबू ते प्यारा पुरख निरारा ताकि गत नहीं जानी है हर सास गिरास ना बिसरे कबू गुर शब्दी रंगमानी है। प्रभ पुरख जग जीवनो संत रस पीवनो जप परम मोह दुख दारा चात्रिक जाचे बूंद ज्यो नानक हर प्यारा मिले नारायण अपने मन ओरथो पूरा राम राजे। ताथी पीत परम की पेटत गुर सूरा राम राजे पूरन गुर पाए पूर्व लिखाए सब निज दीन दयाला आद मद अंत प्रभ सोई सुंदर गुर गोपाला। सुख सहज आनंद कनेरे पतित पावन साधु तूरा हर मिले नारायण नानका मन ओरथो पूरा। आसा महला पंजवा संत कर छेवा इको अंकार सतगुरु प्रसाद श्लोक। जा को पै कृपाल प्रभ हर हर सही जपात नानक प्रीत लगी तिन राम सिंह पेटक साथ संगात। संत जल दुध न्याई रीत अब दुध आत नहीं मन ऐसी प्रीत हरे। अब उर्जो अल कमले बासन माहे मगन इक खिन भी नाहे तरे। खिन नाहे तरिये प्रीत हरिये सिगार हगरस अर्पिये जह दुख सुनिये जम पंथ पणिये तह साध संग ना डरपिये। कर कीरत गोविंद गुणिये सगल प्राचत दुख हरे कहो नानक छंत गोविंद हर के मन हर्ष्यो निहो करे हो ऐसी मन प्रीत हरे। जैसी मछली नीर इक खिन भी ना जीरे मन ऐसा निहो करे हो। जैसी चात्रिक प्यास खिन खिन बूंद चवे बरस सुहावे में हो हर प्रीत करी जय इह मन दी जय अकलाई है चित मुरारी। मान न की जय शरण परी जय दर्शन को बलिहारी गुरसो प्रसन्ने मिल ना विछुन्ने तन देन दी साथ सनेहा कहो नानक छंत अनंत ठाकुर के हर्ष्यों की जय नेहा मन ऐसा निहो करे हो। चकवी सूसने हो चितवे आस पणी कर दिनियर देखिए कोकिल अंब प्रीत चवे सुहाविया मन हर रंग कीजिए। हर प्रीत करी जय मान न की जय इक राशी के हम पाहुणिया अज क्या रंग लायो मोह रचायो नांगे आवन जावणिया। फिर साधु सरणी पड़ी है चरणी अब टूटस मोह जो कीती है कहो नानक छंत दयाल पुरख के मन हर लाए प्रीत कब दिनियर देखी है। निष्कुरंक जैसे नाद सुन श्रवणी ही ओ डिवे मन ऐसी प्रीत की जय। जैसी तरण पतार उर्जी पिह सिवे यो मन लाल दी जय मन लाल दी जय पोक करी जय हब खुशियां रंग माने फिर अपना पाया रंग लाल बनाया अत मिलियो मित्र चिराने। गुरथी आसाखी ता डिठम आखी फिर जेहा अवर न दिसे कहो नानक छंत दयाल मोहन के मन हर चरण गही जय ऐसी मन प्रीत की जय। आसा महला पंजवा श्लोक। बन बन फिरती खोजती हारी बहु अवगाहे नानक पेटे साध जग हर पाया मन माहे। छंत जा को खोजे असंख मुनि अनेक तपे ब्रह्मे कोट आराधे ज्ञानी जाप जपे। जप ताप संजम क्रिया पूजा अनेक शोधन बंदना कर गवन वसुधा तीर्थ मज्जन मिलन को निरंजना। मानुख बन तिन पशु पंखी सगल तुझे आराधते दयाल लाल गोविंद नानक मिल साध संगत होए गते। कोट विषम अवतार शंकर जटाकार चाहे तुझे दयार मंथन रुच अपार। अपार अगम गोविंद ठाकुर सगल पूरक प्रवतनी सुर सिद्ध गण गंधर्व ते आवे जप किन्नर गुणपनी। कोट इंद्र अनेक देवा जपत स्वामी जय जयकार अनाथ नाथ दयाल नानक साध संगत मिल उधार। कोट देवी
जाको सेवे लक्ष्मी अनक पाप गुप्त प्रगट जाको अराधे पौन पानी दिन सुरात नक्षत्र ससियर सूर त्यावे बसद गगना गावे सगल खानी सगल बाणी सदा सदा त्यावे सिमरत पुराण चतुर्वेद खस शास्त्र जाको जपात पतित पावन भगत वछल नानक मिलिए संग साथ जेती प्रभु जनाई रसना तेत भनी अनजानत जो सेवे तेती न जाय गनी अवगत अगमत अथा ठाकुर सगल मंजे बाहरा सर्व जाचक एक दाता न दूर संगी जाहरा वस भगत थिया मिले जिया ताकी उपमा कित गनी तिहो दान मान नानक पाए शीश सादे तर चरनी आसा महला तन्यवा श्लोक उद्दम करो वड पागियो सिमरो हर हर राए नानक जिस सिमरत सब सुख होवे दुख दर्द परम जाए संत नाम जपत गोविंद ने अलसाई है पेट साधु संग जमपुर ने जाइए दुख दर्द न को व्यापे नाम सिमरत सब सुखी सास सास आराध हर हर त्याए सो प्रभु मनमुखी कृपाल दयाल रसाल गुण निध कर दया सेवा लाइए नानक पयम पै चरण जमपे नाम जपत गोविंद ने अलसाइए पावन पतित पुनीत नाम निरंजना परम अंधेर विनाश ज्ञान गुरु अंजना गुर ज्ञान अंजन प्रभ निरंजन जल छल मैयल पूरिया एक निमुख जा कह हृदय वस्या मिटे तिसै विसूरिया अगाध बोध समरथ स्वामी सर्व का पौ पंजना नाम स्वयं पै चरण जम पै पावन पतित पुनीत नाम निरंजना ओट गही गोपाल दयाल कृपा निदे मोय आसर तो चरण तुम्हारी शरण सिदे हर चरण कारण करण स्वामी पतित उदरण हर हरे सागर संसार पल उतार नाम सिमरत बहुत हरे आद अंत बेअंत खोजे सुनी उदरन संत संग विदे नानक पयम पै चरण जम पै ओट गही गोपाल दयाल कृपा निदे भगत वत्सल हर बिरद आप बनाया जय जय संत आराधे तय तय प्रगटाया प्रभ आप लिए समाये सह सुभाये भगत कार्य सारिया आनंद हर जस महा मंगल सर्व दुख विसारिया चमत्कार प्रगास दह दिस एक तह दृष्टाया नानक स्वयं पै चरण जम पै भगत वत्सल हर बिरद आप बनाया आसा महला पंजवा फिर संतन सुहाग मरे न जावे जा कह गए हर नाओ सो सद ही रावे अविनाशी अवगत सो प्रभ सदा नवतन निर्मला न दूर सदा हदूर ठाकुर दह दिस पूर्ण सत सदा प्राण पत गत मत जाते प्रिय प्रीत प्रीतम पावे नानक बखाने गुरबचन जाने फिर संतन सुहाग मरे न जावे जाको राम पतार का कैनद घना सुखवंती सानार सो बापूर बना मान महत कल्याण हर जस संग सुरजन सो प्रभु सर्व सिद्ध नव निद तित ग्रह नहीं ऊना सब कछु मधुर बानी प्रह मानी फिर सुहाग का बना नानक वखाने गुरु बचन जाने जाको राम पतार का अंग घना आओ सखी संत पास सेवा लागी है पीछो चरण पखार आप त्यागी है तब आप मिटे संताप आपने जनाई है शरण गही जय मान ली जय करे सो सुख पाई है कर दास बासी तज उदासी कर जोर दिन रैन जागी है नानक वखाने गुरु बचन जाने आओ सखी संत पाग सेवा लागी है जाके मस्तक पाग से सेवा लाया ताकि पूर्ण आस जिन साथ संग पाया साथ संग हर के रंग गोविंद सिमरन लागया परम मोह विकार दूजा सगल तिने त्यागया मन शांत सह स्वभाव उठा अनद मंगल गुण गाया नानक वखाने गुरु बचन जाने जाके मस्तक पाग से सेवा लाया आशा महला पंजवा श्लोक हर हर नाम जपन त्या कछ न कहे जम काल नानक मन तन सुखी होए अंते मिले गोपाल संत।
मिलो संतन के संग मोहे उधार ले हो। बिनो करो कर जोर हर हर नाम दे हो। हर नाम मांगो चरण लागो मान से आगो तुम दया। कतहु न पावो शरण पावो करुणा में प्रभ करमया। समर्थ अगत अबार निर्मल सुनो स्वामी बिनो एहो। कर जोर नानक दान मांगे जन्म मरण निवार ले हो। अपराधी मतहीन निर्गुण अनाथ नीच सठ कठोर कुलहीन व्यापत मोह कीच। मल परम कर्म अहं ममता मरण चीत न आवे। बनता विनोद आनंद माया अज्ञान तालप तावे। किसे जोबन बदे जरुआ दिन निहारे संग मीच। बिनवंत नानक आस तेरी शरण साधु रात नीच। परमे जन्म अनेक संकट महाजोन लप रहो ते संग मीठे पोग सोन। प्रमत पार अगमत आयो बहु परदेश पायो। अब ओट तारी प्रभ मुरारी सर्व सुख हर नायो। राखन हारे प्रभ प्यारे मुझते कछु न हुआ होन। सुख सहज आनंद नानक कृपा तेरी तय कौन। नाम तारी उधारे पगते संसा कौन। जेन केन प्रकारे हर हर जस सुनो श्रवण। सुन श्रवण बानी पुरख ज्ञानी मन निधाना पावे। हर रंग राते प्रभ विधाते राम के गुण गावे। बसुद कागद बन राज कलमा लिखन को जे होए पावन। वे अंत अंत न जाए पाया गही नानक चरण शरण। आशा महला पंजवा पुरख पते भगवान ताकी शरण गही। नेको पे प्राण चिंता सगल लही। मात पिता सुत मीत सुरजन इष्ट बंधक जानिया। गय कंठ लाया गुर मिलाया जस विमल संत वखाणिया। बेअंत गुण अनेक महिमा कीमत पछू न जाए कही। प्रभ एक अनेक अलख ठाकुर ओट नानक तिस गही। अमृत बन संसार सहाय आप भये। राम नाम उरहार बिख के दिवस गए। गत परम मोह विकार बिन से जोन आमन सब रहे। अगन सागर तय शीतल साध अंचल गह रहे। गोविंद गोपाल दयाल समरथ बोल साधु हर जय जय। नानक नाम त्याय पूरन साध संग पाई परम गते। जय देखो तय संग एको रव रहा। कट कट वासी आप विरले किने लया। जय कल मैयल पूरे पूरन कीट हस्त समानिया। आद अंते मत सोई गुर प्रसादी जानिया। ब्रह्म पसरिया ब्रह्म लीला गोविंद गुण निर्जन कहा। सिमर स्वामी अंतर जामी हर एक नाम कराव रहा। दिन रैन सुहावड़ी आई सिमरत नाम हरे। चरण कमल संग प्रीत कलमल पाप तरे। दुख पुख दरिद्र नाथे प्रगट मग दिखाया। मिल साध संगे नाम रंगे मन लोड़ींदा पाया। हर देख दर्शन इच पुन्नी कुल संभुआ सब तरे। दिन श्रेण आनंद अंदिन सिमरंत नानक हर हरे। आसा मेला पंजवा छंत कर सतवा इको अंकार सतगुरु प्रसाद। श्लोक शुभ चिंतन गोविंद रमन निर्मल साधु संग। नानक नाम न विसरो एक घड़ी कर कृपा भगवंत छंत। पिन्नी रैनड़ी है चमकन तारे जागे संत जना मेरे राम प्यारे। राम प्यारे सदा जागे नाम सिमरे अंजनो। चरण कमल ध्यान हृदय प्रभ विसरना ही किनो। तब मान मोह विकार मन का कलमला दुख जारे। बिन हंस नानक सदा जागे हर दास संत प्यारे। मेरी सेजड़ी है अदंबर बनिया मन अनद भया प्रभ आवत सुनिया। प्रभ मिले स्वामी सुखे गामी चाव मंगल रस भरे। अंग संग लागे दुख पागे प्राण मन तन सब हरे। मन इच्छ पाई प्रभ त्याई संजोग सा शुभ गणिया। बिन हंस नानक मिले श्री पर सगल आनंद रस बनिया। मिल सकी आप पूछे कहो कंत निशानी। रस प्रेम परी कछ बोल न जाने। गुण गुण गुप्त अपार करते निगम अंत न पावे। भगत पाए ते आए स्वामी सदा हर गुण गावे। सगल गुण सो ज्ञान पूरन आपने प्रभ पानी। बिन हंस नानक रंग

से हर नाम रहसे प्रभ आप कृपा सहारिया हर चरण लागे सदा जागे मिले प्रभ बनवारिया शुभ दिन से आए सहज पाए सगल निध प्रभ पागे बिनवंत नानक शरण स्वामी सदा हर जन पागे आशा मैला कंजवा उठ वंज बटा उड़िया तै क्या चिर लाया मोलत कुनड़िया कित कूड़ लुभाया कूड़े लुभाया तो माया करें पाप अमित्या तन पसंद तेरी जमे हेरी काल बकड़े जितया

दूते दहन पया गोविंद प्रगटाया, प्रगटे गोपाल गोविंद लालन साज संग वखाणिया, अचरज डीठा अम्यो बूठा गुर प्रसादी जानिया, मन शांत आई वजी वधाई ने अंत जाई पाया, बिन वंश नाम सुख सहज मेला प्रभु आप बनाया, नरक न दिखड़िया सिमरत नारायण, जय जय तरम करे दूत पहे पलायन, परम तीरज सह सुखिए साथ संगत हर पजे, पर अनग्रोह राख लीने मोह ममता सब तजे, जय कंठ लाए गुर मिलाए गोविंद जपत अघायण, बिन वंत नानक सिमर स्वामी सगल आस पुजायण, निद सिद्ध चरण गहे ताके हाकारा, सब किछ वस जिसे सो प्रभु असारा, जय पुजाली ने नाम जी ने कर पार मस्तक राखिया, संसार सागर नह व्यापे अम्यो हर रस्ता किया, साध संगे नाम रंगे रणजीत वड्डा अखारा, बिन वंश नानक सर्व स्वामी।

संग देखे करणहारा काय पाप समाई है, सुकृत की जय नाम लीजे नरक मूल न जाइए। आठ पैर हर नाम सिमरो चले तेरे साथ है, पद साध संगत सदा नानक मिटे दुख कमाते। वल वंश कर उधर परे मूर्ख गावारा, सब किस दे रहा हर देवन हारा। दातार सदा दयाल स्वामी काय मनो विसारी है, मिल साध संगे पद निसंगे कुल समूह आतारी है। शिव साधिक देव मुंजन भगत नाम आधारा, बिनवंत नानक सदा तजी है प्रभ एक करने हारा। खोट न की चई प्रभ परखन हारा, पूर कपट कमाऊ गड़े जन्मे संसारा। संसार सागर तिन्नी तरिया जिन्नी एक से आया, तज काम क्रोध अनिंद निंदा प्रभ सरनाई आया। जल फल मैयल रविया स्वामी ऊंच अगम अपारा, बिनवंत नानक टेक जन की चरण कमल आधारा। एक हर संदौरड़ी अब फिर किछ नाही, माया रंग जेते से संग न जाही। हर संग साथी सदा तेरे दिन त्रैन संभालिए, हर एक बिन कछ अवर नाही पाव दुतिया जालिए। मीत जोबन माल सर्बस प्रभ एक कर मन माही, बिनवंत नानक वद पाग पाई है सुख सहज समा।

कमला प्रम पीत कमला प्रम पीत हे तीक्षण मद विपरीत हे अवध अकाल जात गैबर बन कोर गैबर बन कोर हे गृह मूसक मन चोर हे दिन करो अन दिन खात दिन खात जात बिहात सब बिन मिलो प्रभ करणा पते जन्म मरण अनेक बीते प्रेय संग बिन कछ नह गते कुल रूप तूप ज्ञान ही नी सुज बिना मोहे कवन मात पर जोड़ नानक शरण आयो प्रिय नाथ नर हर करो गात मीना जलहीन हे ओह बिछरत मन तन खीन हे कत जीवन प्रिय बिन होत सन्मुख सहबान हे मृग अर्पे मन तन प्राण हे ओह बेदियो सहज स्रोत प्रिय प्रीत लागी मिल बैरागी खिन रहन त्रिग तंग तिस बिना पलका ना लागे प्रिय प्रेम पागे चितवंत अंजन प्रमना श्री रंग राते नाम माते पै परम दुतिया सगल खोत कर मया दया दयाल पूरन हर प्रेम नानक मगन होत अलियल गुंजात हे मकरंद रस बासन मात हे प्रीत कमल बंदावत आप चात्रिक चित प्यास हे तन बूंद बचित्र मन आस हे अल्पीवत बिन सतताप ताता विनाशन दुख नाशन मिल प्रेम मन सन अतकना सुंदर चतुर सुजान स्वामी कवन रसना गुणपना गह पूजा लेवो नाम देवो दृष्ट तारत मिटत पाप नानक जम पै पतित पावन हर दर्श पे खत नह संताप चितवो चितनाथ चितवो चितनाथ हे रख ले वो शरण अनाथ हे मिल चाओ चाई ले प्राण सुंदर तन ध्यान हे मन लुब्ध गोपाल ज्ञान हे जाचिक जन राखत मान प्रभ मान पूरन दुख विदीरन सगल इच पूजंतिया हर कंठ लागे दिन सुबागे मिल नहा शेष सुअंतिया प्रभ दुष्ट तारी मिले मुरारी सगल कलमल पहे हान बिन वंश नानक मेरी आस पूरन।

रजूनी सैभं गुरु प्रसाद आशा महला पहला वासलोकानाल श्लोक भी महले पहले के लिखे पुण्य यश राजा की तुने श्लोक महला पहला बलिहारी गुरे अपने देवहारी सदवार जिन मानस ते देवते की ये करतना लागी वार महला दूजा जे सौ चंदा उगवे सूर्य चढ़े हजार इते चानन हुंदियां गुरबिन को रंदार महला पहला नाम गुरु न चेतनी मन अपने सुचेत छुटे तिलबु आर ज्यो सुन्ये अंदर खेत खेते अंदर छुटिया कहो नानक सोना फलिये फुलिये बपड़े पीतन विच सुआ पौड़ी आपी ने आप साजियो आपी ने रचियो नाओ दुई कुदरत साजिए करे आसन जिठो चाहो दाता करता तू तुस देवे करे पसाओ तू जानो ही सब से दिल ऐसे जिंद कवाओ करे आसन जिठो चाओ श्लोक महला पहला सच्चे तेरे खन सच्चे ब्रह्मांड सच्चे तेरे लो सच्चे आकार सच्चे तेरे करने सर्व विचार सच्चा तेरा अमर सच्चा दीवान सच्चा तेरा हुक्म सच्चा फरमान सच्चा तेरा कर्म सच्चा निशान सच्चे तुद आखे लख करोड़ सच्चे सब कान सच्चे सब जोर सच्ची तेरी सिफत सच्ची सलाह सच्ची तेरी कुदरत सच्चे पातशाह नाम सत्य आन सच जो मर जमे सो कच ने कच महला पहला वड्डी वड्याई जा वड्डा नाओ वड्डी वड्याई जा सच ने आओ वड्डी वड्याई जाने चल साओ वड्डी वड्याई जाने अलाओ वड्डी वड्याई बुझे सब भाओ वड्डी वड्याई जा पुछना दात वड्डी वड्याई जा पे आप नानक कार न कथनी जाए कीता करना सर्व जाए महला दूजा एहो जग सच्चे की है कोठड़ी सच्चे का विश्वास इकना हुक्म समाए ले इकना हुक्मे करे विनाश इकना पाने कड ले इकना माया विच निवास ए पे आख न जा पई जे किसे आने रास नानक गुरमुख जानिए जा को आखरे परगास पौड़ी नानक जी उपाय कह लिखना वे तरम बहा लिया ओथे सच्चे ही सच निबड़े चुन वक्त कड्डे जिजमा लिया थाउ ना पायन कूड़िया मोका ले दो जुकचा लिया तेरे नाय रते से जन गए हार गए से ठगन वालिया लिखना में करम बालिया श्लोक महला पहला विस्माद नाद विस्माद वेद विस्माद जी विस्माद पेद विस्माद रूप विस्माद रंग विस्माद नांगे फिरे जंत विस्माद सौन विस्माद पानी विस्माद अग्नि खेड है विडानी विस्माद करती विस्माद खानी विस्माद साद लगे प्राणी विस्माद संजोग विस्माद विजोग विस्माद कुख विस्माद भोग विस्माद सिफत विस्माद सलाह विस्माद उजड़ विस्माद राह विस्माद नेड़े विस्माद दूर विस्माद देख है हाजरा हजूर वेख उड़ान रहा विस्माद नानक पूजन पूरे पाग महला पहला कुदरत दिसै कुदरत सुनिए कुदरत पहुंच

नफा सुवे चार पवाए जंत नाम पौद्या गंत नामत बंधन बंद पवाए सोए पया किरत नचे सब कोए नच नच हसे चले सिरोए उड़ना जाए सिद्ध न होए नचे कुदन मन का चाओ नानक जिन मन पाओ तिना मन पाओ पौड़ी नाउ तेरा निरंकार है ना ले नरक न जाइए जियो पिंड सब तिसदा देखा जाए आप गवाइए जे लोड़ है चंगा अपना कर पुनः नीच सदाइए जे जरवाना पर हर है जर वेश करें दी आइए को रह न परिये पाइए श्लोक महला पहला मुसलमान सिर्फ फरियत पर पढ़ करें विचार बंदे से जे पवे विच बंदी वेखण को दीदार हिंदू साला ही साला हम दर्शन रूप अपार तीर्थ नावे अर्चा पूजा अग्रवास में कार जोगी सुनते आउन जेते अलख नाम करतार सुखम मूरत नाम निरंजन काया का आकार सतिया मन संतोष उपजय देने के विचार दे दे मंगे सैसा गुना शोक करे संसार चोरा यारा तय कुड़ियारा खारा बावे कार इक होदा खाए चले ऐसा उतना बेकाई कार जल फल जिया प्रिया लोहा आकारा आकार कोई जी आखे सोटू है जाने तिना भी तेरी सार नानक पगता पुपसलान सच नाम आधार सदा आनंद रहे दिन राती गुणवंतिया पाचार महला पहला मिट्टी मुसलमान की पेड़ है पई कुमियार कर पांडे इट्टा किया जल्दी करे पुकार जल जल रो वह बपड़ी चढ़ चढ़ को अंगियार नारक जिन करते कारण किया सो जाने करतार पौड़ी बिन सतगुर किने ना पायो बिन सतगुर किने न पाया सतगुर विच आप रखियो न कर प्रगट आप सुनाया सतगुर मिले सदा मुक्त है जिन विचों मोह चुकाया उत्तम यो विचार है जिन सच्चे सुन चित लाया जग जीवन दाता पाया श्लोक महला पहला हाँ विच आया हाँ विच गया हाँ विच जमया हाँ विच मोआ हाँ विच दिता हाँ विच लया हाँ विच खटिया हाँ विच गया हाँ विच सत्यार कूड़ियार हाँ विच पाप पुन विचार हाँ विच नरक सुरग अवतार हाँ विच हसे हाँ विच रोवे हाँ विच परिये हाँ विच होवे हाँ विच जाति जिन सीखोवे हाँ विच मूर्ख हाँ विच सियाना मोख मुक्त की सार न जाना हाँ विच माया हाँ विच छाया हों मैं कर कर जंतु पाया हों मैं बूझे तांगर सूझे ज्ञान में हूँ ना कर सतलूझे नाम कुक में लिखिए लेख जिया वेख है तिया वेख महला दूजा

सोमित जाने नानका सरा मेरा जनता, नानक जंत उपाय कै समाले सबना, जिन करते करना किया चिंता वे करनी ता, सो करता चिंता करे जिनु पाया जग, तिस जुहारी स्वस्थ तिस दीवान अपग, नानक सच्चे नाम बिन क्या टिका क्या पग, महला पहला लख ने किया चंगियाईया लख पुन्ना प्रवान, लख तप प्रतिष्ठा सहज योग बेबान, लख सूरतन संग्राम रण में छुटे प्राण, लख सुरती लख ज्ञान ज्ञान पढ़िए पाप पुराण, जिन करते करना किया लिखिया मन जान, नानक मती मिथ्या कर्म सच्चा निशान पौड़ी, सच्चा साहिब एक तू जिन सच्चो सच वरताया, जिस तू दे तिस मिले सच ता तिन्नी सच कमाया, सत गुरु मिले सच

पढ़ पढ़ गड्डी लगी है, पढ़ पढ़ परिये साथ, पढ़ पढ़ बेड़ी पाई है, पढ़ पढ़ गड्डिया खात, पढ़िए जेते बर्स बर्स, पढ़िए जेते मास, पढ़िए जेती आरजा, पढ़िए जेते सास। नानक लेख है एक गल होर हो मैं चखना चाक महला पहला, लिख लिख पढ़िया ते ता पढ़िया, बहु तीर्थ पव्या ते तो लव्या, बहु पेक किया देही दुख दिया, सोवे जी आपना किया, अन्न न खाया साद गवाया, बहु दुख पाया दूजा भाया, बस्तर न पहरे एह निस्पहरे, मोन विगूता क्यों जागे गुर बिन सूता, पग पे ताना अपना किया कमाना, अलमल खाई सिर छाई पाई, मूर्ख समझे पत गवाई, गिण नावे किछ खाई न पाई, रह बिमाणी मरी मसाणी, अंग न जाने फिर पछताणी। सतगुर पेटे सो सुख पाए, हर का नाम मन वसाए, नानक नजर करे सो पाए, आस उंदे से ते ने केवल, हो मैं सब जलाए पौड़ी। भगत तेरे मन पावन दे, दर सोहन कीर्त गावन दे, नानक करमा बाहरे दर तो न लेनी तां दे, इक मूल ना बुझन अपना अनहोंदा आप गणाए दे, हो ताडी का नीच जात होर उत्तम जात सदाए दे, तिन मंगा जित जैत आए दे।

सब जग चलनहार, कूड़ मिठा कूड़ माथ्यो कूड़ डोबे पूर, नानक बखाने बेनती तुद बाद कूड़ो कूड़ महला पहला। सब तां पर जानिए जान दस चाहोए, कूड़ की मल उतरे तन करे हच्छा धोए। सब तां पर जानिए जा फल करे प्यार, नाओ सुन मन रहसी है तां पाए मोख द्वार। सब तां पर जानिए जा जुगत जाने जियो, पर पाया साध के विच दे करता बियो। सब तां पर जानिए जा सिख सकीले, गया जाने जी की किछ पुन दान करे।

होए, नानक पाहे बारा कोरे रंग न सोए, पैर खुम चढ़ाइए शर्म पावतन होए, नानक पगती जेर पै कूड़े सोए न कोई महला पहला। लब पाप दो राजा मेहता कूड़ हुआ सिकदार, काम लेव सब पूछिए बह बह करे विचार, अंधी रैयत ज्ञान में होनी पाए परे मुर्दार।

0: मूर्ख पंडित हिकमत हुज्जत संजय करें प्यार करमी तर्म करें गावावे मंगे मोख द्वार जति सदावे जुगत न जाने छड़ में कर बार सबको पूरा आपे हो कट ना कोई आखे पग परवाना पिछे पाई है ता नानक तोलिया जापे महला पहला वदी सवज्जग नाम का सच्चा वेखे सोए सबनी छाला मारिया करता करे सोए अगे जाप मजोर है अगे जियो नवे जिनकी लेख है पपवे चंगे से के पौड़ी तुर कर्म जिना को तुद पाया ता किन्नी खपन से आया ए ना जनता के वश किचना ही तुद वेकी जगत उपाया किकना नो तू मेल लह इकापो तुद खुआया गुर कृपा ते जानिया जिथे तुद आप बुझाया सहजे ही सच समाया।
1: श्लोक महला पहला। दुख दारू सुख रोग पाया जा सुख कामना होई तू करता करना मैं नाही जाहो करी न होई बलहारी कुदरत वस्या तेरा अंत न जाई लखिया रहाओ जात में जोत जोत में जाता अकल कला भरपूर नया तू सच्चा साहिब सुवालियो जिन की ती सो पार पया कहो नानक करते किया बाता जो कुछ करना सो कर गया। महला दूजा। जोग शब्दंग ज्ञान शब्दंग वेद शब्दंग ब्राह्मण है खत्री शब्दंग सूर शब्दंग सूदर शब्दंग प्राकृत है सर्व शब्दंग एक शब्दंग जे को जाने भेयो नानकता का दास है सोई निरंजन देव। महला दूजा। एक कृष्ण सर्व देवा देव देवाता आत्मा आत्मा वासुदेव जे को जाने भेयो नानकता का दास

गुरु बिन ज्ञान न होए पौड़ी। पढ़िया हो वह गुनेगा ताओ उमी साधना मारी है, जे हाँ काले कारणा तेवे हो नाव पचारी है। ऐसी कला न खेड़ी है जित दर गए हारी है, पढ़िया अतै ओमिया विचार गए विचारी है, मुझ चले सो अगे मारी है। श्लोक महला पहला। नानक मेर शरीर का एक रथ एक रथवाओ, जुग जुग फेर वटाई है ज्ञानी बुझे ताहे। सत जुग रथ संतोख का कर्म अग्गे रथवाहो, त्रेते रथ जते का जोर अग्गे रथवाओ। द्वापर रथ पपे का सत अग्गे रथवाओ, कल युग रथ अगन का कूड़ अग्गे रथवाओ। महला पहला। शाम कहे सितंबर स्वामी सच में आछे साथ रहे, सबको सच समावे रिग कह रहा भरपूर। राम नाम देवा मैसूर नाई ले प्राचित जाहे, नानक तो मुखंतर पाहे।

कर कृपा पार उतारया। श्लोक महला पहला। सिम्मल रुख सरायरा अत दीर्घ अत मुच ओज आवे आस पर जाहि निराशे कित फल फिक्के फुल बकबके कम ना आवे पत मिथक नीवी नानका गुण चंगियाईया तत सब को निवे आप को पर कौ निवे न कोए ताका राजू तोलिए निवे सो गौरा होए अपराधी दूणा निवे जो हंता मिर गाहे शीश निवाए क्या थी है जा हृदय कुछ दे जाए। महला पहला। पर पुस्तक संध्या बादं सिल पूज बगल समादं मुक्त ऊठ बेपूखन सारं त्रैपाल से हाल विचारं गल माला तिलक लीलाटं दो तोती वस्त्र कपाटं जे जानस ब्रह्मं कर्मं सब को कठिनश्चो कर्मं कहो नानक ने चो त्यावे वे सतगुरु वाट न पावे पौड़ी। कपड़ रूप सुहावना छड़ दुनिया अंदर जावना मंदा चंगा आपना आपे ही कीता पावना हुकम किए मन पावंदे राय पीड़े अगे जावना नंगा दोजिक चालिया तां दिसे खरा डरावना कर अवगुण पछोतावना। श्लोक महला पहला। दया कृपा संतोख सूत जत गंडी सतवत एहो जनेऊ जी का है ता पांडे कत ना हो तुटे ना मल लगे ना हो जले न जाए तन सो मान स्नान का जो गल चले पाए चौकर मुल अनाया बे चौके पाया सिखा कन चढ़ाया गुरु ब्राह्मण थिया ओ मुआ ओ चरपया वे तगा गया। महला पहला। लख चोरियां लख जारियां लख कूड़ियां।

दूर नानक कूड़ रहा भरपूर मथे टिक्का तेड़ पोती कखाई हाथ छुरी जगत कसाई नील बस्तर पहर होवे प्रवान मलेख तान ले पूजन पुराण अपरख्या का कुठा बकरा खाना चौके ऊपर किसे न जाना देखा चौका कड्डी कार ऊपर आए बैठे कूड़ियार मत भिटे वे मत भिटे यो अन असाडा फिटे तन फिटे फेर करेन मन झूठे चुली भरेन कहो नानक सत्य आई है सुच होवे ता सच पाई है पौड़ी चित्ते अंदर सब को वेख नदरी हेठ चलाएंगा आपे देवडे आईया आपे ही कर्म कराएंगा वडो वडा वड मेदनी सुरे सुरतंदे लाएंगा नदर उपठी जे करे सुल्ताना का उतराएंगा दर मंगन पिख ना पाएंगा श्लोक महला पहला जे मुहा का घर मुहे कर मुहे पितरी दे अग्गे वस्त

पौड़ी तिरुपलाने पौन वेग हर रंगी हरम सुवारिया कोठे मंडप मालिया लाल बैठे करपा सारिया चीज करन मन पाम दे हर बुजन नाही हारिया कर फुरमाइस खाया वेख मेहलत मरण विसारिया जर आई जोगन हारिया। श्लोक महला पहला। जे पर सूतक मनी है सब ते सूतक होए गोहे अतै लकड़ी अंदर कीड़ा होए जेते दाने अन के जिया बाज न कोए पहला पानी जियो है जित हरिया सब कोए सूतक क्यों कर रखी है सूतक पवैर सोए नानक सूतक एव ना उतरे ज्ञान कारे कोए महला पहला। मन का सूतक लोभ है जेवा सूतक कूड़ अखी सूतक वेखना परत्रय परतन रूप कन्नी सूतक कन पै लाल तवारी खाए नानक हंसा आदमी बदे जम फुर जाए महला पहला। सबो सूतक परम है दूजे लगे जाए जमन मरना।

पंड मुआ पंड पालिए पंड हो वे बंगान, सो क्यों मंदा आखिए जित जम है राजान। पंडो ही पंड उपजे पंडे बाज न कोए, नाम पंडे बाहरा एक को सच्चा सोए। जित मुक्सदा सलाही है आवरती चार, नानक ते मुख उजले तित सच्चे दरबार पौड़ी। सब को आख है अपना जिस ना ही सोचुन कदी है, कीता आपो अपना आपे ही लेखा संदी है। जा रहना नाही है जग ता का इतगार वहंदी है, मंदा किसे न आखी है।

परमा साहेब तुठे जो मिले मेला दूजा, एक नहीं चाकरी जित को खसम न जाए, नानक सेवक काढ़िए जैसे ती खसम समाए पावड़ी, नानक अंत न जापनी हरता के पारा बार, आप कराए साक्षी फिर आप कराए मार, इक ना गली जंजीरिया इक तुरी चढ़े बिशियार, आप कराए करे आप हर कैसे करी पुकार, नान

ज्यों प्रतिबिंब बिंब को मिली है उदक कुंभ बिगराना। कहो कबीर ऐसा गुण प्रम पागा तो मन सुन समाना। आशा गज साडे तै तै तोतिया तेरे पायन तग गली जिना जप मालिया लोटे हाथ निबग। ओए हर के संत ना आखिए।

सूझिया, गुर प्रसाद में सब कुछ सूझिया। आशा इकत पत्थर पर उरकट कुरकट, इकत पत्थर पर पानी, आस पास पंच जोगिया बैठे, बीच नकट दे रानी। नकटी को ठंगन बाबा दू, किने विवेकी काटी तू। राव सगल माहे नकटी का वासा, सगल मार ओहेरी, सगलिया की हो बहन पान जी, जिने बरी तिस्केरी। हमरो परता बड़ो विवेकी, आपे संत कहावे, ओ हमारे माथे कायम,

सिद्ध पावे तल का ब्रह्म ले गगन चरावे रहाओ चिंता ज्ञान ध्यान कर सुई शब्द तागा मत काले पंच तत्व की कर मिर्गानी गुर के मार्ग चाले।

दिल में सोच विचार कवा दे, पिस्त दोज किन पाई, काजी तें कवन कतेब बखानी, परत गुनत ऐसे सब मारे, किन्हों खबर न जानी रहाओ, सकत स्नेहो कर सुन्नत करिये, मैं न बदौगा पाई, जोरे खुदाई मोहे तुर्क करेगा, आपन ही कट जाई, सुन्नत पिए तुर्क जे होएगा, औरत का क्या करिये, अर्ध शरीरी नार न छोड़े, ताते हिंदू ही रही है, छाड़ कतेब राम पज बौरे, जुल्म करत है पारी, कबीर है पकड़ी टेक राम की, तुर्क रहे पचिहारी।

रे बौरे तुह करी न राखे कोई, तू राम नाम जप सोई रहो, काकी मात पिता को काको कवन पुरुष की जोई, हट कूटे को बात न पूछे काडो काडो होई, ब्योहरी बैठी माता रोवे खटिया ले गए पाई, लक्ष छुटकाए त्रिया रोवे हंसी के ला जाए।

एक चुके संत सुन अंग अंत नहीं पाया वेद पढ़े पर ब्रह्म ने जन्म गवाया हर का बिलोवना बिलोवो मेरे भाई सहज बिलोवो जैसे तक न जाए रहा तन कर मटकी मन माए बिलोई।

कचरा का सार हो गनहारे पो गया इस मूरत के मुखचार। मालन पुली जग पुलाना हम पुलाने ना है, कहो कबीर हम राम राखे कृपा कर हर राय आशा। 12 वर्ष बालपन बीते 20 वर्ष कच तपना कियो 30 वर्ष कच देव ना पूजा फिर पछताना विरद भयो। मेरी मेरी करते जन्म गयो सायर शोक पुजंग बलयो। रहाओ सूके सरवर पाल बंधावे लूने खेत हथवार करे। आयो चोर तुरंत ले गयो मेरी राखत मुगद फिरे। चरण शीस पर कंपन लागे नैनी नीर असार बह। जेवा बचन शुद्ध नहीं निकस तब रे कर्म की आस करे। हर जियो कृपा करे लिव लावे लाहा हर हर नाम लियो। गुर प्रसादी हर खन पायो अंते चल दिया नाल चलियो। कहत कबीर सुनो रे संतो अन तन कछुए लै न गयो आई तलब गोपाल।

बहु विद्वानी लाई, काहू में मोती मुक्ताल काहू ब्याद लगाई। तू मैं तन राशन को दिया, मुग्ध कहे तन मेरा, जमकर दंड मूंड में लागे खिन में करे निवेरा। हर जन उत्तम पग सदावे, आज्ञा मन सुख पाई, ज्योतिष पावे।

चिरगट फाल चतारा ले गयो तरी तागरी छूटी आशा। हम मस्कीन खुदाई बंदे तुम राज मन पावे, अल्लाह अवल दीन को साहिब जोर नहीं फुरमावे। काजी बोलिया बन नहीं आवे रहाओ, रोजा तरे निवाज गुजारे। कलमा पिस्त न होई सत्तर का बाकत ही पीतर, जेकर जाने कोई निवाज सोई जो न्याओ बिचारे। कलमा अकल है जाने पाचो मुस मुसल्ला बिछावे, तब तो दीन पछाने। खसम पछान तरस कर जी में मार मनी कर फीकी, आप जनाए अवर को जाने तब होए पिस्त सरी की। माटी एक पेक तर नाना तामे ब्रह्म पछाना, कह कबीरा पिस्त छोड़ कर दोजक सो मन माना। आशा गगन नगर

नवाती चंद सूरज जाके तपतर सोई वैसंतर जाके कपरे तोई गुरमत रामे नाम बसाई अस्थिर रह न कटू जाई कह कबीर सुनो रे लोई राम नाम बिन मुक्त न होई आशा पहला पूत।

अगन कुंड रहाया, दस मास माता उदर राख्या, बहुर लागी माया, प्राणी काहे को लोभ लागे, रतन जन्म खोया, पूरव जन्म कर्म भूम बीज नाही बोया, राव बारिक ते बिरध पया, होना सो होया, जा जम आए चोट पकरे, तबहे काहे रोया। जीवने की आस तरह जम निहार सासा, बाजी गरी संसार कबीरा, चेत टाल पासा, आसा तन रैनी मन पुनरप कर हाँ, पांचों तत बराती, राम राय स्यों पावर ले हो, आत्म तिह रंग राती, गाओ गाओरी दुल्हनी मंगल चारा, मेरे गृह आए राजा राम पुकारा रहाओ, नाभि कमल में बेदी रचले, ब्रह्म ज्ञान उचारा, राम राय सो दूलो पाया, असबड़ पाव हमारा, सुर नर मुन जन कौतक आए, कोट तेतीस उजाना, कह कबीर मोहि ब्याह चले हैं, पुरख एक भगवाना, आशा सास की दुखी ससुर की प्यारी, जेठ के नाम डरो रे, सखी सहेली नंद गहेली, देवर के बिरह जरोरे, मेरी मत गौरी मैं राम विसारियो, किन विद रहन रहो रे, से जय रमत नैन नहीं पेखो, यो दुख कासो कहो रे, रहाओ बाप साव का करे लड़ाई, माया सद मतवारी, बड़े पाई कह जब संग होती, तब हो ना प्यारी, कह कबीर पंच को चगरा, चगरत जन्म गवाया, झूठी माया सब जग बांधिया, मैं राम रमत सुख पाया, आशा हम कर सूत तने नित ताना, कंठ जनेऊ तुम्हारे, तुम तो वेद पढ़ो गायत्री, गोविंद हृदय हमारे, मेरी जेबा बिसुन नैन नारायण, हृदय बसे गोविंदा, जम द्वार जब पूछस बवरे, तब क्या कहस मुकंदा, रहाओ हम गोरु तुम ग्वार गुसाई, जन्म जन्म रखवारे, कब हूँ न पार उतार चरायो, कैसे खसम हमारे, तू बामन मैं काशीक जुल्हा, बुझो मोर ज्ञाना, तुम तो जाचे कूपत राजे, हर सौ मोर त्याना, आशा जब जीवन ऐसा सुपने जैसा, जीवन सुपन समान, साच कर हम गांठ दीनी, छोड़ परम निधान, बाबा

कोई आशा जो मैं रूप किए बहुत तेरे अब पुन रूप न होई ताजा तन साज सब खाता राम नाम बस होई अब मोहे नाचनो ना आवे मेरा मन मंदिर।

रोजा तरह मनावे अल्हो स्वागत जी सिंघारे आपा देख अवर नहीं देखे काहे को चख मारे काजी साहिब एक तो ही में तेरा सोच विचार न देखे खबर न करे दीन के बौरे ताते जन्म अलेख है रहाओ साच कतेब बखाने अल्हो नार पुरख नहीं कोई पदे गुने ना ही कछ गौरे जो दिल में खबर न होई।

गुप्ता हीरा प्रगट पयो जब गुरुदम दिया दिखाई आशा पहली करूप कुछ आप कुलखनी सहरह पे है बुरी अब की स्वरूप सुझा।

रहा कहो कबीर जब लोहरी आई बड़ी का सुहाग टर्यो लोहरी संग पई अब मेरा जेठी और करो आशा मेरी बहुरिया को तनिया नाओ ले राखियो राम जनिया नाओ इन मुंडियन मेरा कर कुंडरावा।

रहो रहोरी बहुरिया कुंगत जिन काडे अंक की बार लहेगी ना आडे रहाओ कुंगत काड गई तेरी आगे उनकी गैल तोहे जिन लागे कुंगत पादे की यह बढ़ाई।

आशा, कोरी को काहू मरम न जाना, सब जग अंत आयो ताना, रहाओ जब तुम सुन ले वेद पुराना, तब हम इतनक पसरो ताना, तरन आकाश की करज है बनाई, चंद सूरज दो साथ चलाई, पाई जोर बात इक कीनी, तह कांती मन माना, जो लाहे कर अपना चीना, कटही राम पछाना, कहत कबीर कार गह तोरी, सूते सूत मिलाए कोरी, आशा, अंतर मैल जे तीर्थ ना वे, किस बैकुंठ ना जाना, लोक कटीने कछु ना होवे।

माया चित्र विचित्र विमोहित बिरला बूझे कोई। सब गोविंद है, सब गोविंद है, गोविंद बिन नहीं कोई। सूत एक मन सत

आठ पहर अपना खसमते आवो। सोईने की सुई रुपए का तागा, नामे का चित हर सो लागा। आशा साप कुंठ से डे दिख नहीं छाडे, उदक माहे जैसे बग त्यान मांडे। काहे को की जय त्यान जपन्ना, जब ते सुध ना ही मन अपना। रहाओ सिंगच पोजने जो नर जाने, ऐसे ही ठग देओ बखाने। नामे के स्वामी लाए ले चगरा, राम रसायन पियो रे दगरा। आशा पार ब्रह्म जे चीन सी, आशा के ना भाव सी। रामा भगतें के

त्रिंग पतंग कुंचर एक दोख विनाश, पंच दोख असाध जान है पांची के तक आस, मादो अभिव्याहित कीन विवेक दीप मलीन रहाओ

काल सास अदद लागे कछ न चले उपाय। रविदास दास उदास तज प्रम तपन तप गुरु ज्ञान भगत जन तय हरन परमानंद करो निदान। आशा संत तुझी तन संगत प्राण सत गुरु ज्ञान जाने संत देवा देव। संत की संगत संत कथा रस संत प्रेम मां जय दी जय देवा देव रहाओ। संत आचरण संत चो मार्ग संत चो ओलग ओलगनी और इत मांगो भगत चिंता मन जनी लखावो असंत पापी सन। रविदास पने जो जाने सो जान संत अनंत अंतर नाही। आशा तुम चंदन हम अरिंद बापुरे संग तुम्हारे बासा। नीच रूख ते ऊंच पए हैं गंध सुगंध निवासा। मादो सत्संगत सन तुम्हारी हम अवगन तुम उपकारी रहाओ। तुम मखतूल सुपेत सपैयल

तुझे चरण अरविंद पान मन, पान कर पायो पायो रमैया धन, रहाओ संपत विपते पटल माया धन। पान है मगन हो।

हर हर हर हर हर हर हरे, हर सुमरत जन जय निस्तरे, रहाओ हर के नाम कबीर उजागर, जन्म जन्म के काटे कागर, निमत नाम दियो दूध पियाया, तो जग जन्म संकट नहीं आया, जन रविदास राम रंग राता, क्यों गुर प्रसाद नरक नहीं जाता। माटी को पुतना कैसे नचत है, देखे देखे सुने बोले दौड़े फिरत है, रहो जब कछ पावे तब गर्व करत है, माया गई तब रोवन लगत है, मन बच क्रम रस कसे लुभाना।

प्रमत सुरत बहुत जन्म दिलाने, तन मन तन नहीं तीरे, लालच दिख काम लुगद राता, मन बिसरे प्रभ हीरे। रहाओ दिख फल मीठ लगे मन बौरे, चार विचार न जानिया, गुंते प्रीत बदी अनपांती, जन्म मरण फिर तानिया। जुगत जान नहीं हृदय निवासी, जलत जाल जम फंद परे, दिख फल संच परे मन ऐसे, परम पुरख प्रभ मन बिसरे। ज्ञान प्रवेश गुरे तन दिया, ज्ञान मान मन एक मय, प्रेम पगत मानी सुख जानिया, तृप्त अघाने मुकुट भय। ज्योत समाए समानी जाके, अचली प्रभ पहचानिया, तन्ने तन पाया तरनी तर, मिल जन संत समा।

आदि माया, प्रगट हुआ साध संग हर दर्शन पाया। सैन नाई बुतकारिया ओ कर कर सुनिया, हृदय वक्षया पार ब्रह्म पगता में गनिया।

आशा। बोले शेख फरीद प्यारे अने लगे, एतन होसी खास निमाणी गौर करे। आज मिलावा शेख फरीद काकिन कुंजड़िया मनो मचिंदड़िया रहाओ। जे जाना मर जाइए तुम ना आइए, एक ही दुनिया लग ना आप वंजाइए।

के नाम ती आये बिन नावे पूज न होए रहाओ। बाहर देव पखालिए जे मन तो वह कोई झूठ लह जियो मांजिए मोख पयाना होए। पशु मिले चंगे आईया।

कर रहाओ। राव सस दीपक जाके त्रिभुवन एका ज्योत मुरार, गुरुमुख हुए सो एनस निर्मल मन मुख रहन अंधार, सिद्ध समाज करें नित चगरा दोह लोचन क्या हेरे, अंतर ज्योत शब्द तुन जागे सतगुरु चगर निवेरे, सुर नर नाथ बेअंत अजोनी सच महल अपारा, नानक सहज मिले।

जित हर प्रीत न पाए, जित कम हर विसरै, दूजे लगे जाए। ऐसा सतगुर सेवियै मना, जित सेवियै गोविंद प्रीत उपजै, अवर विसर सब जाए। हर से की चित दहर है, जरा का पौ न हो वही, जीवन पदवी पाए। रहाओ गोविंद प्रीत सो इक सहज उपजिया, वेख जैसी भगत बनी, आप से ती आप खाया, तामन निर्मल हुआ, ज्योति ज्योत समयी। दिन पागा ऐसा सतगुरु ना पाई है, जे लोचे सब कोय, पूरे की पाल विच्चों निकले, ता सदा सुख होए। नानक ऐसे सतगुरु की क्या ओ सेवक सेवा करे, गुर आगे जियो तरे, सतगुर का पाना चित करे, सतगुर आपे कृपा करे। गुजरी महला तीजा, हर की तुम सेवा करो, दूजी सेवा करो ना कोई जी। हर की सेवा ते मनो चिंदिया फल पाई है, दूजी सेवा जन्म बिरखा जाएगी। हर मेरी प्रीत रीत है, हर मेरी कथा कहानी जी, गुर प्रसाद मेरा मन पीजे, यहाँ सेव बनी जियो। राव हर मेरा सुमरत, हर मेरा शास्त्र, हर मेरा बंधक, हर मेरा भाई, हर की मैं भूख लागे, हर नाम मेरा मन तृप्त है, हर मेरा साथ अंत होए सखाई। हर दिन होर रास कूड़ी है, चल दिया नाल न जाई, हर मेरा तन

सतगुरु मिले हर मन वसै, सहजी रह समाए रहाओ। जा पौ पाए अपना बैराग उपजे मन आए, बैराग ते हर पाए हर सुन रह समाए। शिव मुक्त जे मन जिने फिर तात न लागे आए, दसवें द्वार रहत करे त्रिभुवन सो जी पाए। नानक गुर ते गुर होया वेखो तिसकी रजाए।

गुरमत नाम मेरा प्राण सुखाई, हर कीरत हमरी रह रास राव। हर जन केवड़ पाग वडेरे, जिन हर हर सरदा हर प्यास। हर हर नाम मिले तृप्ता से, मिल संगत गुण प्रगास। जिन हर हर हर रस नाम न पाया, ते पागहीन जम पास। जो सतगुरु शरण संगत नहीं आए, त्रिग जीवे त्रिग जीवास। जिन हर जन सतगुरु संगत पाई, तिन तुर मस्तक लिखिया लिखास। तन तन सतसंगत जित हर रस पाया, मिल नानक नाम प्रगास। गुजरी महला चौथा। गोविंद गोविंद प्रीतम मन प्रीतम, मिल सतसंगत शब्द मन मोह। जप गोविंद गोविंद त्याय, सबको दान दे प्रभ ओ है। मेरे भाई जना मो को गोविंद गोविंद गोविंद मन मोह। गोविंद गोविंद गोविंद गुण गावा, मिल गुरु साध संगत जन सो है। रहाओ सुख सागर हर पगत है, गुरमुख कौला रिद सिद्ध लागे पग ओ है। जन को राम नाम आधारा, हर नाम जपत हर नामे सो है। दुर्मत पागहीन मत फीके, नाम सुनत आवे मन रो है। कौआ काज कौ अमृत रस पाई है, तृप्त विस्ता खाए मुख गो है। अमृत सर सतगुर सतवादी, जित नाते कौआ हंस हो है। नानक तन तन वड्डे वड पागी, जिन गुरमत नाम हृदय मल तो है। गुजरी महला चौथा। हर जन उत्तम उत्तम बाणी, मुख बोले पर उपकारे। जो जन सुने सरदा।

काम सतगुर गुर पूरा हम पापी गुर निस्तारे रहाओ। गुरमुख वड पागे जिन हर हर नाम अधारे हर हर अमृत हर रस पावे हैं गुरमत भगत पंडारे जिन दर्शन सतगुर सतपुरुख ना

करे। नानक जन हर की शरणाई, हर पावे हर निस्तारे। गुजरी महला चौथा। ओ दयाल मेरा मन लावो, हो अंगन राम नाम नित्याई। सब सुख सब गुण सब निधान, हर जित जपिए दुख पुख सब ले जाई। मन मेरे मेरा राम नाम सखा हर पाई। गुरमत राम नाम जस गावा, अंत बेली दर्ज है ले छाई रहाओ। तू आपे दाता प्रभ अंतर जामी, कर कृपा लोच मेरे मन लाई। मैं मन तन लोच लगी हर सेती, प्रभ लोच पूरी सतगुरु शरणाई। मानस जन्म पुन कर पाया, बिन नामे त्रिग त्रिग बिरथा जाई। नाम बिना रस कस दुख पावे, मुख फीका थुक थूक मुख पाई। जो जन हर प्रभु हर हर शरणा, तिन दरगे हर हर देव डियाई। तन तन सबा सह।

न पाया, जिन सतगुरु संगत संग न पाया, से पागहीन पापी जम खाया। आप कृपाल कृपा प्रभु तारे, हर आपके गुरमुख मिले मिलाया। जन नानक बोले गुरबाणी गुरबाणी, हर नाम समाया। गुजरी महला चौथा, जिन सतगुरु पुरखे जिन हर प्रभु पाया, मोको कर उपदेश हर मीठ लगावे, मन तन शीतल सब हरिया हुआ, बड पागी हर नाम ते आवे। पाई रे मोको कोई आयु मिले, हर नाम दृढ़ावे, मेरे प्रीतम प्राण मन तन सब देवा, मेरे हर प्रभु की हर कथा सुनावे रहाओ। नीरज तरम गुरमत हर पाया, नित हर नामे हर सो चित लावे, अमृत बचन सतगुर की बाणी, जो बोले सो मुख अमृत पावे। निर्मल नाम जित मेल न लागे, गुरमत नाम जपे लिव लावे, नाम पदार्थ जिन नर नहीं पाया, से पागहीन मोए मर जावे। अनद मूल जग जीवन दाता, सब जन को अनद करो हर त्यावे, तू दाता जी सब तेरे, जन नानक गुरमुख बख्श मिलावे। ओंकार सतगुरु प्रसाद, गुजरी महला चौथा, कर की जा। माई बाप पुत्र सब हर के किए, सबना को संबंध हर कर दिए, हमरा जोर सब रहे हो मेरे वीर, हर का तन मन सब हर के वस है शरीर। रहाओ भगत जना को श्रद्धा आप हर लाई, विच्चे दुष्ट उदास रहाई, जब अंतर प्रीत हर्ष्यों बने आई, तब जो किस करे सो मेरे हर प्रभु पाई। जित कारे कम हम हर लाए, सो हम करें जो आप कराए, जिनकी भगत मेरे प्रभु पाई, ते जन नानक राम नाम लिव लाए।

जिन वचन गुरु सतगुरु मन पाया वड पागी गुरु के सिख प्यारे हर निर्वाणी निर्वाण पद पाया सब संगत गुरु की हर प्यारी जिन हर हर नाम मीठा।

पाए कारज आ गया कर तरिया मेरे माधो जी सत्संगत मिले से तरिया गुरु प्रसाद परम पद पाया सूखे पास ठहरिया रहाओ जनन पिता लोक सुख बनता कोई न किसकी धरिया सिर सिर रिजक संभाहे ठाकुर काहे मन पौ करिया उदय।

संसारी अंतर मेल न उतरे हूँ मैं बिन गुरु बाजी हारी। मेरे ठाकुर रख ले वो कृपा धारी, कोट मदे को बिरला सेवक होर सगले व्यवहारी। रहाओ शास्त्र वेद सिमरत सब सोदे, सब एका बात पुकारी। बिन गुरु मुक्त न को पावे, मन वेखो कर बिचारी। अस सच मज्जन कर सुनाना, प्रम आए थर सारी। अनक सोच करें दिन राती, बिन सतगुर अंधियारी। तावत तावत सब जगत आयो, अब आए हर द्वारी। दुर्मत मेष बुद्ध परगासी, जन नानक गुरमुख तारी। गुजरी महला पंजवा, हर तन जाप हर तन ताप, हर तन भोजन पाया। निमक न बिसरो मन के।

रहा हर तन स्नान हर तन ज्ञान हर संग लाए सियाना हर तन तुल्हा हर तन देड़ी हर हर तार पराना

नवनिध पाई हाथ चरे हर फोकार खावो खर्चो तोट न आवे हरत पलत के संगे लाज खजाना गुरु नानक को दिया यो मन हर रंग रंगे। निमख ना बिसरो तुम को हर हर सदा पजो जगदीश रहाओ सतगुर तुम को होए दयाला संत संग तेरी प्रीत कापड़ पत परमेश्वर राखी भोजन कीर्तन नीत अमृत पीवो सदा चिर जीवो हर सिमरत अनद अनंता रंग तमाशा पूर्ण आशा कभे न व्यापे चिंता पावर तुम्हारा यो मन हो हर चरणा हो कौला नानक दास उन

सहाओ देश कमावन तंजोरन की मनसा बीचे निकसे सास लश्कर नेब खवास सब त्यागे जमपुर ऊट

दुख परया पार ब्रह्म जिन हृदय अराध्या तिन पौ सागर तरया। गुर हर बिन को ना बिरथा दुख काटे प्रभ तज अवर सेवक जे होई है तित मान महत जस काटे। रहाओ माया के संबंध सेन साथ तित ही कामना आया हर का दास नीच कुल ऊंचा किस संग मन बांचत फल पाया। लाख कोट बिखिया के बिंजन तामे तृष्ण न बूझी सुमरत नाम कोट उजियारा बस्त अगोचर सूजी। फिरत फिरत तुम रे द्वारे आया तै पंजन हर राया साध के चरण तूर जन बांछे सुख नानक यो पाया। गुजरी मैला पन्नवा पंच पदा कर दूजा इको अंकार।

सुंदर बाग मंदिर संग न कछु जाया, अवर सब मिथ्या लोभ लभी, गुरपुरे दियो हर नामा, जी को एहा वस्त कबीर हाओ। इष्ट मीत बंदक सुत पाई, संग बनता रथ हसया, जब अंति

राम निदान सतगुरु दृढ़ आया, दिलस ना आवे जाई, हर जप माया बंधन टूटे, अरे कृपाल दयाल प्रभ मेरे, साध संगत मिल छूटे रहाओ। आठ

सगल करत नमस्कारो, वर्ण जात को पूछे नाही, बाछे चरण रवारो, ठाकुर ऐसो नाम तुम्हारो, सगल सृष्ट को तनी कही जय, जन को अंग निरारो रहाओ, साध संग नानक बुध पाई, हर कीर्तन आधारो, नाम देव त्रिलोचन।

पई कल्याण आनंद रूप हुई है, उबरे बाल गोपाल रहाओ, मिल वर नारी मंगल गाया ठाकुर का जयकार, कहो नानक तिस गुर बलिहारी, जिन सबका किया उधार, गुजरी महला पंजवा। मात पिता पाई सुख बंदत, तिन का बल है थोरा, अनित रंग माया के पेखे, किछ साथ न चाले पोरा, ठाकुर तुझ बिन आए न मोरा, मोहे अनाथ निर्गुण गुण नाही, मैं आयो तुमरा तोरा रहाओ। बल बल बल बल चरण तुम्हारे, इहां उहां तुम्हारा जोरा, साध संग नानक दर्श पायो, बिनसो सगल ने होरा, गुजरी मैला पंजवा। आल जाल प्रम मोहत जावे, प्रभ से ती रंग लाए, मन को

मेरे सतगुरु मन शरण तुम्हारे परी अचेत्या ने बारक नानक हम तुम राखो तार करे। गुजरी महला पंजवा तू दाता जिया सबना का बसो मेरे मन माहे चरण कमल रिद माहे समाये तह परम अंधेरा नाहे ठाकुर जा सिमरा तू ताहे कर कृपा सर्व प्रत पालक प्रभु को सदा सलाही रहाओ। सास सास तेरा नाम समारो तुम ही कहो प्रभु आही नानक टेक पही करते की और आस बिदानी लाही।

चुत चुत वो हर रसन अरादो, निरखो तुमरी ओर रहाओ। दयाल पुरख सर्व के ठाकुर, दिनों करो कर जोर, नाम जपे नानक दास।

तोरत कपटे अनेक जुगत कर कायो बिसरत प्रभ केते दुख गनिये महामोनी खायो करो अनग्रो स्वामी मेरे गनो न मोहे कमायो गोविंद दयाल कृपा।

मिटे सगल उपाद रहाओ। मात पिता सुत मीत पाई तिस बिना नहीं कोए। ईत ऊत जी नाल संगी सर्व रविया सोए। कोट जतन उपाव मिथ्या कछ न आवे काम। शरण साधु निर्मला गत होए प्रभ के नाम। अगम दयाल

स्मृति तय परमा निर्मल गुण प्रभु गाय गोविंद तुझ बिन अवर ना ठाओ कर कृपा पार ब्रह्म स्वामी जपी तुम्हारा नाम रहाओ। सतगुरु सेव लगे हर चरणी वड्डे पाग लागी कवल प्रगास पए साध संगे दुर्मत बुद्ध त्यागी आठ

योगी काम क्रोध अहंकार तजियले लोभ मोह तिस्माया मन तत अविजत त्याया गुर प्रसादी पाया ज्ञान ज्ञान सब दात तकियले सेत बरन सब दूता ब्रह्म कमल मद ता।

जल थल तरण जगन तह नाही आप आप किया करतार। ना तद माया मगर न छाया ना सूरज चंद ना जोत अपार सर्व दृष्ट लोचन अब अंतर एका नदर सो त्रिगुण सार। पवन पानी अगन तिनकिया ब्रह्मा विष्णु महेश अकार सर्वे जाचक तू प्रभ दाता दात करे अपने विचार। कोट के तिस जाचे प्रभ नायक दिन दे तोट नाही पंडार ऊंदे पांडे कछ ना समावे सीधे अमृत परे निहार।

चुकलाई गुर प्रसादी हर प्रभ जाके ऐसी नाम बढ़ाई रहाओ। है जी बहुते पेट करें पिछिया को केते उधर परन कहताए बिन हर पगत।

सोग बिजोग विसर्जत रोग पाई रे गुर कृपा ते भगत ठाकुर की सतगुरु वास हृदय हर निर्मले ना जम कान ना जम की बाकी रहा हर गुण रसन रवे प्रभ संगे ज्योतिष पावे।

भगत प्रेम आराधितं सच प्यास परम हितं बिललाप बिलल विनंतिया सुख पाए चित हितं जप मन नाम हर सरणी।

भगत न होई, जीवत मरे ता शब्द विचार है ता सच पावे कोई। माया के अर्थ बहुत लोक नाचे, को विरला तत विचारी, गुर प्रसादी सोई जन पाए, जिनको कृपा तुम्हारी।

हर दिन जियरा रह न सके जो बालक खीर अधारी अगम अगोचर प्रभ गुरमुख पाये अपने सतगुर के बलिहारी मन रे हर कीरत तर तारी गुरमुख नाम अमृत जल पाये जिनको कृपा तुम्हारी रहा सनक सनंदन नारद मुन सेवे अन दिन जपत रहे।

जोत मुरारी सब जाचक तू एको दाता मांगे हाथ पसारी भगत जना की उत्तम वाणी गावे अकथ कथा नित न्यारी सफल जन्म पया तिनकेरा आप सरे कुलतारी मनमुख दुबदा दुर्मत व्यापे जिन अंतर मोह गुबारी संत जना की कथा ना पावे कोई डूबे सन परवारी निंदक निंदा कर मल तोवे ओ मल पख माया तारी संत जना की निंदा व्यापे ना उरवार न पारी यो परपंच खेल किया सब करते हर करते सब कल तारी हर एक को सूत वरते जुग अंतर सूत खिंचे एक अंकारी रसन रसन रस गावे हर गुण रसना हर रस तारी नानक हर बिन अव

तेरी प्रभ आज्ञा हुक्मन सिर हुक्मा। ज्यों बुलावे त्यों बोले स्वामी, कुदरत कवन हमारी, साध संग नानक जस गायो, जो प्रभ की अत प्यारी। गुजरी मैला पंजवा कर चौथा इको ओंकार सतगुरु प्रसाद। नाथ नर हर दीन बंदव पतित पावन देव, पै त्रास नास कृपाल गुण निध।

हरन मदम हो दहन मुरार मन मकरंद जन्म मरण निवार तरणी तर पत राख परमानंद जलत अनक तरंग माया गुर ज्ञान हर रिदमंत छेद अहंग बुद्ध करुणा में चिंत मेट पुरख अनंत सिमर समरथ पल मुहूर्त प्रभ ध्यान सहज समाद दीन दयाल प्रसन्न पूरन जाचिय रज साध मोह मिथन दुरंत आसा बासना बिकार रख धर्म परम बिदार मनते उदर हर निरंकार तनाड आड पंडार हर निद होत जिनाना चीर खल मुगद मूड कटाक्ष श्री तर पय गुण मत तीर जीवन मुक्त जगदीश जप मन तार रिद प्रतीत जी दया मया सर्वत्र रमणंग परम हंस रीत देत दर्शन श्रवण हर जस रसन नाम उचार अंग संग भगवान परसन प्रभ नानक।

जा। एहो जगत ममता मुआ जीवन की बिद नाहे, गुर कै पाणे जो चले ता जीवन पदवी पाहे। ओए सदा सदा जन जीवते जो हर चरणी चित लाहे, नानक नदरी मन वसै गुरमुख सह समाए। महला तीजा। अंदर सहसा दुख है आपै सिर तंदे मार, दूजे पाए सुते कभे न जागे माया मोह प्यार। नाम ना चेते शब्द ना विचारे क्यों मन मुक्का आचार, हर नाम न पाया जन्म बिरथा गवाया, नानक जम मार करे खुआर पौड़ी। अपना आप उपायन तदो होर न कोई, मता मसूरत आप करे जो करे सो होई। तदो आकाश ना पताल है ना त्रै लोई, तदो आपे आप निरंकार है ना ओपत होई। जो तिस पावे तिवें करे तिस बिन अवर न कोई। श्लोक महला तीजा। साहिब मेरा सदा है दिसे शब्द कमाए, ओ औहाणी कदे नाहे ना आवे ना जाए। सदा सदा सो सेवी है जो सब में रह समाए, अवर न दूजा क्यों सेवी है जम्मे ते मर जाए। नेफल तिन का जीविया जे खसम ना जाने, अपना अवरी को चितलाए। नानक एव न जापई करता केती दे सजाए। महला तीजा। सच्चा नाम त्याई है सबो वरते सच, नानक हुकम बुझ परवान होए ता फल पावे सच। कथनी बदनी करता फिरे हुक्मे मूल न बुझई, अंधा कच नि कच पौड़ी। संजोग विजोग उपायन सृष्टि का मूल रचाया, हुक्मी सृष्ट साजियन ज्योति ज्योत मिलाया। ज्योति हूँ सब चानना सतगुर शब्द सुनाया, ब्रह्मा विष्णु महेश त्रै गुण सिर तंदे लाया। माया का मूल रचायुन तुरिया सुख पाया। श्लोक महला तीजा। सो जप सो तप जे सतगुर पावे, सतगुर कै पावे।

पौड़ी। माया मोह अज्ञान है बिखम अत पारी, पत्थर पाप बहु लद्या क्यों करिए तारी। अन दिन पगती रत्या हर पार उतारी, गुर शब्दी मन निर्मला हौ मैं छड़ विकारी। हर हर नाम त्याई है हर हर निस्तारी। श्लोक कबीर मुक्त द्वारा संकुड़ा, राई दसवें पाए मन तो मैं।

कोई सो जाए। हौ मैं मन अस्थूल है क्यों कर विच दे जाए। सतगुरु मिले हौ मैं गई जोत रही सब आए। इहो जियो सदा मुक्त है सहजे रहा समाए। पौड़ी प्रभ संसार उपाय कै वस अपने कीता। गणते प्रभु न पाईए दूजे परमीता। सतगुरु मिले जीवत मरे बुझ सच समीता। सब दे हो मैं खोई है।

कीजा। सतगुर स्यो चित न लायो, नाम नव स्यो मन आए, त्रिग इवे आ जीविया, क्या जुग में पाया आए। माया खोटी रास है, एक चसे में पाज लह जाए, हथों छुड़की तन स्याव होए, बदन जाए कुमलाए। जिन सतगुर स्यो चित लाया, तिन सुख वस्या मन आए, हर नाम त्यावे रंग स्यो, हर नाम रहे लिवलाए। नानक सतगुर सो तन सौंपया।

जल मोई कंत न लायो पाओ, नानक सुख वसन सुहागणी, जिन प्यारा पुरख हर राव पौड़ी। सब जग फिर मैं देखिया, हर इको दाता, उपाय किते न पाई हर कर्म विदाता। गुर शब्दी हर मन वसे, हर सहजे जाता, अंदरों तृष्णा अग्न बुझी, हर अमृत सर नाता।

छड़ जाए, केसनो कूड़ बोल के खवा लिए, जे चल दिया नाल ना जाए। काया मिट्टी अंध है पौने पुछो जाए, हों ता माया मोहया फिर आवा जाए। नानक हुकम ना जातो खसम का, जे रहा सच समाए। महला तीजा, एको ने चल नाम तन होर तन आवे जाए, इस तन को तस्कर जोए न सके ना, ओ चक्का ले जाए। के ओ हर तन जीए से

जिना नाम तन खटिया ए पौड़ी। मेरा साहिब अत वड्डा सच गहर गंभीरा, सब जग तिसके वस है सब तिसका चीरा। गुर प्रसादी पाई नेचल तन तीरा, कृपा ते हर मन वसे पेटे गुरसूरा। गुणवंती सलाया सदा थिर नेचल हर पूरा। श्लोक महला तीजा। त्रिग तिना दा जीविया जो हर सुख पर हर त्याग दे, दुखों में पाप कमाए। मनमुख अज्ञानी माया मोह व्यापे, तिन बूझ ना काई पाए। हलत पलत ओए सुख ना पावे, अंत गए पछताए। गुर प्रसादी को नाम त्याए, तिस होमे विच्चों जाए। नानक जिस पूर्व होवे लिखिया, सो गुर चरणी आए पाए। महला तीजा। मनमुख ऊदा कौल है ना तिस भगत ना नाओ, शक्ति अंदर वर्तदा कूड़ तिसका है उपाओ। तिसका अंदर चितना पिजई मुख फीका लाओ। ओए तरमर लाए।

समान है। हर सुखदाता मन वसे है, हों मैं जाय गुमान, नानक नदरी पाई है ता अंदिन लागे ध्यान पौड़ी। सत संतोख सब सच है, गुरमुख पवित्ता, अंदरों कपट विकार गया मन सहजे जीता। तह जोत प्रगास आनंद रस अज्ञान गविता, अंदिन हर के गुण रवे गुण प्रगट किता, सबना दाता एक है इको हर मिता। श्लोक महला तीजा। ब्रह्म बिंदे सो ब्राह्मण कहिए, जे अंदिन हर लिवलाए, सतगुर पुछे सच संजम कमावे, हो मैं रोग तिस जाए। हर गुण गावे गुण संग्रह है, ज्योति ज्योत मिलाए, इस युग में को विरला ब्रह्म ज्ञानी, जे हो मैं मेट समाए। नानक तिसनो मिलिया सदा सुख पाई है, जे अंदिन हर नाम त्याए। महला तीजा। अंतर कपट मन मुख अज्ञानी, रसना झूठ बुलाए, कपट की तय हर पुरख न पीजे, नित वेखे सुने सुवाए, दूजे पाए जाए जग प्रबोधे, बिख माया मोह सुवाए, इत कमाणे सदा दुख पावे, जम्मे मरे फिर आवे जाए, सहसा मूल न चुकई विच विष्टा पचे पचाए। जिसनो कृपा करे मेरा स्वामी, तिस गुर की सिख सुनाए, हर नाम त्यावे हर नामो गावे, हर नामो अंत छड़ाए पौड़ी। जिन्ना हुकुम मनायोन ते पूरे संसार, साहिब सेवन अपना पूरे शब्द विचार, हर की सेवा चाकरी सच्चे शब्द प्यार, हर का महल तिन्नी पाया जिन्हो मैं विचो मार, नानक गुरमुख मिल रहे जब हर नामा उरधार। श्लोक महला तीजा। गुरमुख त्यान सहज तुन उपजे, सच नाम चित लाया, गुरमुख अंदिन रहे रंग राता, हर का नाम मन पाया। गुरमुख हर वेखे गुरमुख हर बोले, गुरमुख हर सहज रंग लाया, नानक गुरमुख ज्ञान प्राप्त होवे, तिमर अज्ञान अंधेर चुकाया। जिसनो कर्म होवे तुर पूरा, तिन गुरमुख हर नाम ते आया। महला तीजा। सत गुर जिना न सेवियो, शब्द ना लगो प्यार, सहजे नाम ना त्याया कित आया संसार, फिर जूनी पाई है विष्टा सदा खुआर, कूड़े लालच लगिया ना उरवार ना पार, नानक गुरमुख उबरे जे आप मेले करतार पौड़ी। भगत सच्चे दर्शों दे सच्चे शब्द रहाए, हर की प्रीत तिन उपजी हर प्रेम कसाए, हर रंग रहे सदा रंग राते, रसना हर रस प्याए, सफल जन्म जिन्नी गुरमुख जाता, हर जियो हृदय वसाए, बाज गुरु फिरे बिल लांदी, दूजे पाए खुआए। श्लोक महला तीजा। कल युग में नाम निधान पगती खटिया, हर उत्तम पद पाया, सतगुर सेव हर नाम मन वसाया, अंदिन नाम ते आया, विचे ग्रहे गुर बचन उदासी, हों मैं मोह जलाया, आप तरिया कुल जगत तराया, तन जने दी माया, ऐसा सतगुर सोई पाए, जिस तुर मस्तक हर लिख पाया, जन नानक बलिहारी गुर अपने विटो, जिन परम पुला मार्ग पाया। महला तीजा। त्रै गुण माया वेख पुले, ज्यो देख दीपक पतंग पचाया, पंडित पुल पुल माया वेखे, दिखा किने क्यों आन चढ़ाया, दूजे पाए पढ़े नित बिखिया, नावो देख आया, जोगी जंगम सन्यासी पुले, ओना अंकार बहु गर्भ बधाया, छादन भोजन ना लेही सत पिखिया, मन हठ जन्म गवाया, एतड़िया विच्चों सो जन समदा, जिन गुरमुख नाम ते आया, जन नानक किसनो आख सुनाई है, जा कर दे सब कराया। पौड़ी। माया मोह प्रेत है, काम क्रोध अंकारा, ए जम की सिरकार है, एना ऊपर जम का दंड करारा, मन मुख जम मग पाईन, जिन दूजा पाव प्यारा, जम पुर बदे मारियन को सुने ना पुकारा, जिसनो कृपा।

पे रस्म होगी। आप अतीत अलिप्त है निर्जोग हर जोगी, ज्योतिष पावे सो करे हर करे सो होगी, हर गुरुमुख नाम ते आई है लह जाहे विजोगी। श्लोक महला तीजा, वाह वाह आप अखाएदा।

नानक वाह वाह करत्या प्रभ पाया करम प्राप्त होए मैला तीजा। वाह वाह करती रसना सबद सुहाई पूरे सबद प्रभ मिलियाई वड पागिया वाह वाह मोह कढाई वाह वाह करें सही जन सोने तिनको प्रजा पूजन आई। वाह वाह करम प्राप्त होवे नानक दर सच्चे शोभा पाई पौड़ी। बजर कपाट काया गढ़ पीतर कूड़ कुसत अभिमानी परम फूले नदर न आवनी मन मुख अंध अज्ञानी उपाय कितै न लबनी कर पेख थके पेखवानी। गुर शब्दी खोलायन हर नाम जपानी हर जियो अमृत बिरख है जिन पिया ते तृप्तानी। श्लोक महला तीजा। वाह वाह करत्या रैन सुख विहाय वाह वाह करत्या सदा आनंद हो वै मेरी माए। वाह वाह करत्या हर्ष्यो लिवलाए वाह वाह कर्मी बोले बोलाए। वाह वाह करत्या शोभा पाए नानक वाह वाह सत।

कौ जात ना जाए सी मन मुख दुख खाता रसना हर रस ना चखियो फीका बोलाता जिना गुरमुख अमृत चाखिया से जन तृप्ताता। श्लोक महला तीजा। वाह वाह तिसनो आखिए जे सच्चा गहर गंभीर वाह वाह तिसनो आखिए जे गुणदाता मत तीर

जे सतगुरु दिया दिखाए महला तीजा, वाह वाह गुरुमुख सदा करें, मनमुख मरे भिख खाए, ओना वाह वाह ना पावे, दुखे दुख विहाए, गुरुमुख अमृत पी।

आए वाह वाह करत्या मन निर्मल होवे हों मैं विच्चों जाए वाह वाह गुरसिख जो नित करे सो मन चिंदिया फल पाए वाह वाह करें से जन सोहने हर तिन के संग मिलाए।

जिन सेविया तिन फल पाया हो तिन बलिहारे जाओ। वाह वाह गुणी निदान है जिसनो देसो खाए। वाह वाह जल थल भरपूर है गुरमुख पाया जाए। वाह वाह गुरसिख नित सब करो गुर पूरे वाह वाह पावे। नानक वाह वाह जो मन चित करे तिस जम कंकर नेड़ ना आवे। पौड़ी हर जियो सच्चा सच है सच्ची गुरबाणी। सतगुर ते सच पछाणी है सच है समाणी। अन दिन जागे ना सवे जागत रहन विहानी। गुरमत्ती हर रस

तिस जेवड़ अवर ना कोए। वाओ वाओ बाणी निरंकार है तिस जेवड़ अवर ना कोए। वाओ वाओ अगम अथाओ है। वाओ वाओ सच्चा सो

पाए खुआए, जम्मण मरण न चुकई होमे विच दुख पाए। जिना सतगुरु से चित लाया सो खाली कोई ना है, तिन जम की तलब ना होवई ना ओए दुख सहाए। नानक गुरमुख उबरे।

टाडी दर कर पाए सी सच रखे उतार, टाडी का महल अगला हर कहनाए प्यार, टाडी की सेवा चाकरी हर जप हर निस्तार। श्लोक महला तीजा, गुजरी जात गवार जा सो पाए अपना, गुर कै शब्द विचार अन दिन हर जप जापना, जिस सतगुर मिले तिस तौ पवे सा कुलवंती नार, सा हुकुम पछाणे कंत का जिसनो कृपा कीती करतार, ओ कुचजी कुलखणी पर हर छोड़ी पतार, पै पै मल कटिए निर्मल होवे शरीर, अंतर प्रगास मत उत्तम होवे हर जप गुणी गहीर, पै विच बैसे पै रहे पै विच कमावे कार, कैथे सुख वडियाईयां दर

ईश्वर ब्रह्मा सेव दे अंत तिनी ना लिया, निर्भो निरंकार अलख है गुरुमुख प्रगटैया, तिथे शोक विजोग ना व्यापे अस्थिर जगथिया। श्लोक महला तीजा, एहो सब किछ आवन जान है जेता है आकार, जिन एहो लेखा लिखिया सो हो आपरवान, नानक जे को आप गणाईदा सो मूरख गावार। महला तीजा, मन कुंचर पीलक गुरु ज्ञान कुंडा, जह खिंचे तह जाए नानक हस्ती कुंडे बहरा, फिर उजड़ पाए पौड़ी किस आगे अरदास जिन उपाया, सतगुर अपना सेव सब फल पाया, अमृत हर का नाम सदा त्याया, संत जना के संग दुख मिटाया, नानक पय अचिंत हर तन ने चलाया। श्लोक महला तीजा, खेत में आला उचिया कर उच्चा निर्णय, महल पगती कर सरे सज्जन पाहुण्यो, बरसना ता बरसकना बहुड़ बरसे काहे, नानक तिन बलिहारण जिन गुरमुख पाया मन माहे। महला तीजा, मिठा सो जो पावदा सज्जन सो जे रास, नानक गुरमुख जानिए जाको आप करे प्रगास। पौड़ी प्रभ पास जन की अरदास, तू सच्चा साई तू रखवाला सदा सदा हो तुद त्याए, जी जंत सब तेरे आ तू रहा समाए, जो दास तेरे की निंदा करे तिस मार पचाए, चिंता छड़ अचिंत रहो नानक लग पाई। श्लोक महला तीजा, आशा करता जग मुआ आशा मरे न जाए, नानक आशा पूरिया सच्चे स्यो चित लाए, महला तीजा आशा मनसा मर जाए सी जिन कीती सो ले जाए, नानक ने चल को नहीं बाजो हर कहना है। पौड़ी आपे जग तो पायुन कर पूरा थाट, आपे साओ आपे वनजारा आपे ही हर हाट, आपे सागर आपे

आराधना जेवा जप गुरु नाओ, नेत्री सतगुर देखना श्रवणी सुनना गुरु नाओ। सतगुर से तीरतिया दरगे पाये थाओ, कहो नानक कृपा करे जिसनो ए वत दे, जग में उत्तम काडिये विरले के ही के महला पंजवा। रखे रखन हार आप उबारियन, गुर की पैरी पाए काज सवारियन, हुआ आप दयाल मनो ना विसारियन, साथ जना कै संग पव जल तारियन, साकत निंदक दुष्ट खिन माहे बिदारियन, तिस साहिब की टेक नानक मन्ने माहे, जिस सिमरत सुख होए सगले दुख जाए पौड़ी। अकुल निरंजन पुरख अगम अपारी है, सच्चो सच्चा सच सच निहारी है, कूड़ न जापे किछ तेरी तारी है, सबसे दे दातार जेत उपारी है, इकत सूत परोए जोत संजारी है, हुक्मे पवजल मंज हुक्मे तारी है, प्रभ जियो तुद त्याए सोए जिस पाग मथारी है, तेरी गत मित लकी ना जाए हौं तुद बलिहारी है। श्लोक महला पंजवा। जा तू तुसे मेरवान अचिंत वसे मन माहे, जा तू तुसे मेरवान नौ निद कर्म है पाहे, जा तू तुसे मेरवान ता गुर का मंत्र कमाए, जा तू तुसे मेरवान ता नानक सच समाहे। महला पंजवा। किती बहन बहने मुच बजाएन वाज, नानक सच्चे नाम बिन किसे न रहिया लज। पौड़ी। तुद त्यायन बेद कते बां सन खड़े, गणती गणी न जाए तेरे दर पड़े, ब्रह्मे तुद त्यायन इंद्र इंद्रासना, शंकर विष्ण अवतार हर जस मुखपणा, पीर पिकाबर शेख मसायक औलिए, ओत पोत निरंकार कटकट मौलिए।

पंजवा चंग्याई आलत करे बुरियाई होए सेर नानक अजकल आवसी गाफल फाही पेर महला पंजवा कितिया कुटंग गुज्जा थी ए नाहित नानक तैसे ककिया मन में सच्चा मित पौड़ी हौ मांगो तुझे दयाल कर दासा गोलिया नौनिद पाई राज जीवा बोलिया अमृत नाम निधान दासा करकना तिन कै संग निहाल श्रवणी जस सुना कमावा तिन की कार शरीर पवित होए पखा पानी पीस भिक्षा पैर तोए आपको कछु न होए प्रभ नदर निहालिए मोहि निर्गुण चै थाओ संत धर्मशाली है श्लोक महला पंजवा।

पंजवा दृष्ट तार प्रभ राखिया मन तन रत्ता मूल नानक जो प्रभ पानिया मरो विचारी सूल। पौड़ी जी की बिरथा होए सो गुर पै अरदास कर छोड़ सियाणप सगल मन तन अर्प तर पूजो गुर के पैर दुर्मत जाए जर सात जना कै संग पव जल बिखम तर सेवो सत गुरुदेव अगे न मरो डर हिन मैं करे निहाल ऊने सुवर भर मन को होए संतोख त्याय सदा हर सो लगा सत गुर सेव जा को कर्म तुर। श्लोक महला पंजवा लगड़ी सुथान जोड़न हार है जोड़िया नानक लहरी लख से आन डुबन दे नामा पिरी। महला पंजवा बन पिहाव लै हिक साथी लदम दुख हरता हर नामा बल बल जाई संत प्यारे नानक पूरन कामा। पौड़ी पायन सब निधान तेरे रंग रत्या ना होवी पछो ताओ तुदनो जपत्या पहुंच न सके कोए तेरी टेक जन गुर पूरे वाओ वाओ सुख लहा चितार मन गुर पै सिफत पंडार करमी पाये सतगुर नदर निहाल बहुड़ ना ताये रखे आप दयाल कर दासा अपने हर हर हर हर।

तेंदे सिमरन हब किछ लद्दम बिखम ना डिठम कोई। जिस पत रखे सच्चा साहिब नानक मेट ना सके कोई पौड़ी। होवे सुख कणा दे त्याए वन्ये रोगा कान हर गुण गाए। अंदर वरते ठांड प्रभचित आए पूरन होवे आस नाए मन वसाए। कोई न लगे बिघन आप गवाए ज्ञान पदार्थ मत गुरते पाए। तिन पाए सभी थोक जिस आप दिवाए तू सबना का खसम सब तेरी छाए। श्लोक महला पंजवा। नदी तरंदड़ी मैडा खो

पार ब्रह्म परमेश्वर अपरंपर अलख अभेव। श्लोक महला पंजवा। उद्यम करेंदिया जियो तू कमाउंदिया सुख पुंच त्याइंदिया तू प्रभु मिल नानक उतरी चिंत। महला पंजवा। शुभ चिंतन गोविंद रमन निर्मल साधु संग नानक नाम ना विसरो इक कड़ी कर कृपा भगवंत पौड़ी। तेरा कीता होए ता काहे डर पिए जिस मिल जपिए नाओ तिस जियो अर्पिए। आए चित निहाल साहिब बेसुमार तिसनो पोहे कवन जिस वाल निरंकार। सब किछ तिस कै वस ना कोई बारा सो भगता मन उठा सच समाहरा। तेरे दास ते आयन तुद तू रखन वालिया सिर सबना समरथ नदर निहालिया। श्लोक महला पंजवा। काम क्रोध मद लोभ मोह दुष्ट वासना निवार राख लियो प्रभ अपने नानक सद बलिहार। महला पंजवा। खांदियां खांदियां मोह कटा पैनंदियां सब अंग नानक त्रिग तिना दा जीविया जिन सच ना लगो रंग पौड़ी। ज्यो ज्यो तेरा हुक्म त्यों त्यों होना जय जय रखे आप तह जाए खड़ोवना। नाम तेरे के रंग दुर्मत तोवना जप जप तुद निरंकार परम पौ खोवना। जो तेरे रंग रते से जोन ना जोवना अंतर बाहर इक नैन अलोवना। जिनी पछाता हुक्म तिन कदे ना रोवना नाओ नानक बख्शीस मन माहे परोवना। श्लोक महला पंजवा। जीवन दिया ना चेत्यो मुआ रलंदड़ो खाक नानक दुनिया संग गुदारिया साकत मूड़ नपाक। महला पंजवा। जीवन दिया हर चेत्या मरन दिया हर रंग जन्म पदार्थ तारिया नानक साधु संग पौड़ी। आद जुगादी आप रखन वालिया सच नाम करतार सच पसारिया। ऊना कही ना होए कटे कट सारिया मेहरवान समरथ आपे ही कालिया। जिन मन उठा आप से सदा सुखा लिया आपे रचन रचाए आपे ही पालिया। सब किछ आपे आप बेअंत अपारिया गुर पूरे की टेक नानक समालिया। श्लोक महला पंजवा। आद मद अर अंत परमेश्वर रखिया सतगुर दिता हर नाम अमृत चखिया। सादा संग अपार अन दिन हर गुण रवे पाए मनोरथ सब जोनी नह पवे। सब किछ करते हथ कारण जो करे नानक मंगे दान संता तूर तरे। महला पंजवा। तिसनो मन वसाए जिन उपाया जिन जंत आया कसम तिन सुख पाया। सफल जन्म परवान गुरमुख आया हुक्मे बुझ निहाल खसम फुरमाया। जिस हुआ आप कृपाल सो नह परमाया जो जो दिता खसम सोई सुख पाया। नानक जिसे दयाल बुझाए हुक्म मित जिसे पुलाए आप मर मर जम्मे नित पौड़ी। निंदक मारे तत्काल खिन टिकन न दिते प्रभ दास का दुख ना खब सके हर जोनी जुते। मत्थे वाल पछाड़ियन जम मार्ग मुते दुख लगे बिल लाणिया नरक कोर सुते। कंठ लाए दास रखियन नानक हर सते। श्लोक महला पंजवा।

महला पंजवा कोट बिघन तिस लागते जिसनो विसरै नाओ नानक अनदिन बिलपते ज्यों सुनजे कर काव पौड़ी सिमर सिमर दातार मनोरथ पूरिया इच पुन्नी मन आस गए विसूरिया पाया नाम निधान जिसनो पालदा जोत मिली संग जोत रहया कालदा सुख सहज आनंद उठे तित कर आवन जान रहे जन्म ना तहां मर साहेब सेवक इक इक दृष्टाया गुर प्रसाद नानक सच समाया।

चार पाव दो सिंह गुंग मुख तब कैसे गुन गई है। ऊठत बैठत ठेगा पर है तब कत मूड लुकई है। हर बिन बैल बिराने होई है फाटे नाकट टूटे कादन कोदो को पुस्थई है। रहाओ सारो दिन डोलत बन मैया अजो ना पेट अगही है। जन भगतन को कहो ना मानो कियो अपनो पई है। दुख सुख करत महाप्रम बूडो अनिक जोन परमई है। रतन जन्म खोयो प्रभ बिसर्यो इहो अवसर कत पई है। प्रमत फिरत तेलक के कप ज्यो।

मुसमुसर होवे कबीर की माई, ए बारक कैसे जीवे रघुराई। तनना बुनना सब तजो है कबीर, हर का नाम लिख लियो शरीर रहाओ। जब लग ताजा बाहो बेही, तब लग बिसरे राम स्नेही।

तरिये पाओ जे ओ दियो ता ओ भी देवा कह नाम दियो हम हर की सेवा गुजरी कर पहला मले ना लाछे पार मलो पर मलियो बैठो री आई आवत किने ना पेखियो कमने जाने री बाई कौन कहे किन बूजिए रमैया आकुल री बाई रहाओ जो आकाश है पंखियलो खोज निरखियो ना जाई जो जल माजे माछलो मार्ग पेखनो ना जाई जो आकाश है कड़ुअलो मृग तृष्णा परया नामे चे स्वामी बीठलो जिनती ने जरिया गुजरी श्री रविदास जी के पदे करती जा इको अंकार सतगुरु प्रसाद दूध त बचरे थनो बिटारियो फूल पवर जल मीन बिगारियो माई गोविंद पूजा कहा ले चरावो और ना फूल अनूप ना पावो रहाओ मैलागर बेरे है पयंगा बिक अमृत बसे इक संगा तूप दीप नई बेदे बासा कैसे पूज करें तेरी दासा तन मन अर

अंतरमल निर्मल नहीं कीना बार पे खुदासी हृदय कमल कट ब्रह्म न चीना काहे पया सन्यासी परमे पूली रे जय चंदा नहीं नहीं चीनिया परमानंदा रहाओ कर कर खाया पिंड बंडाया चिंता मुंडा माया ओम मसान की पसम लगाई गुर बिन तप न पाया काय जपोरे काय तपोरे काय बिलो वो पानी लख चौरासी जिन उपाय सो सिमरो निर्वाणी काय कमंडल कापड़िया रे अड़सठ काय फिराही बदत त्रिलोचन सुन रे प्राणी कण बिन गाहो के पाही गुजरी अंतकाल जो लक्ष्मी सिमरे ऐसी चिंता में जे मरे सर्प जोन वल वल अवतरे।

0: बेसवा जोन वल वल अवतर है।
1: अंत काल जो लड़के सिमरे ऐसी चिंता में जे मरे
0: सूकर जोन वल वल अवतर है।
1: अंत काल जो मंदर सिमरे ऐसी चिंता में जे मरे
0: प्रेत जोन वल वल अवतर है।
1: अंत काल नारायण सिमरे ऐसी चिंता में जे मरे
0: बद तिलोच

परमाद पुरुष मनोपिमं सत आद पावरतं परमद्भुतं परकृत परं जग चिंत सर्वगतं केवल राम नाम मनोरमं बद अमृत तत्मयं नादनोत जसमरणेन जन्म जराद मरण पयं प्रहाव इच्छस जमाद पराभयं जस स्वस्त सुकृत कीर्तं पाव पूत पाव समभ्यं परमं प्रसन्मिदं लोभाद दृष्ट परग्रहं जद विद आचरणं तज सकल दोकृत दुर्मति पज चक्र तर शरणं हर भगत निज ने केवला हृद कर्मणा।

महला चौथा कर पहला सेवक जन बने ठाकुर लिव लागे जो तुम राजस कहते गुरमत तिन मुख पाग सबागे।

सुंदर कहो मिले कित गली, हर को संत बताओ मार्गी, हम पीछे लाज चली रहो, प्रिय के वचन सुखा में ही रे, ये चाल बनी है पली, लकड़ी मदरी ठाकुर पाई, ओ सुंदर हर कुल मिली, एको प्रयो सखिया सब प्रे की, जो पावे फिर सा बली, नानक गरीब क्या करे बिचारा, हर पावे कित रहे चली, देव गंधारी, मेरे मन मुख हर हर हर बोली है, गुरमुख रंग चलू ले राती, हर प्रेम पीनी चोली है रहाओ, हौ फिरो दीवानी आवल बावल, किस कारण हर टोली है, कोई मिले मेरा प्रीतम प्यारा, हम किसकी गुलगोली है, सतगुरु पुरख मनावो अपना, हर अमृत पी चोली है, गुरु प्रसाद जन

नाही ना का बोल करत निमुख न बिसरो हिये मोरे ते बिसरत जाई हों मरत सुखदाई पूरन प्रभ करता।

देह नारी मन सगल स्यानत रही, कर्म करावनहार स्वामी नानक कोट गही रहाओ, आप नेक पय शरणाई एह मत साधु कही, प्रभु की आज्ञा मान सुख पाया परम अंधेरा लही। जान प्रवीण स्वामी प्रभु मेरे शरण कुमारी अही, खिन मैं खाप थापन हारे कुदरत की मना कही। देव नारी महला पंजवा हर प्राण प्रभु सुख दाते, गुरु प्रसाद पाहु जाते रहाओ, संत तुम्हारे तुमरे प्रीतम तिनको काल न खाते, रंग तुम्हारे लाल पे है राम नाम रसमाते। महाकिल्बित कोट दोत रोगा प्रभ दृष्ट तुम्हारी हाते, सोत जाग हर हर हर गाया नानक गुरु चरण पराते। देव

तेरा संती काटिया जीव दान गुर देनी कर कृपा कर लीनो अपना जलते शीतल होनी तरम तरम किस उपज ना आयो नह उपजी निर्मल करनी छाड़ सियानक संजम नानक लागो गुर की चरणी देव गंदारी महला पंजवा हर राम नाम जप लाहा गत पावे सुख सहज आनंदा काटे जम के पाहा रहा खोजत खोजत खोज विचारे हर संत जना पह आहा तिना प्राप्त एव निधाना जिनके कर्म लिखा से बड़ पागी से पतवंते से ही पूरे साहा सुंदर सुगड़ स्वरूप ते नानक जिन हर हर नाम विसाहा देव नारी महला पंजवा मन के अंकार अपारा दुर्गंध अपवित्र अपावन पीतर जो दिशा सोचारा रहा।

अंध गुंग पिंगल मत हीना प्रभ राखो राखन हारा करण करावन हार समरथा क्या नानक जंत बिचारा देव गंधारी महला पंजा। सो प्रभ नेरे हूते नेरे सिमरत आए गाए गुण गोविंद।

देवगंधारी महला पंजवा तेरा जन राम रसायण माता प्रेम रसा निज जाको उपजी छोड़ न कतहु जाता रहो बैठत हर हर सोवत हर हर हर रस भोजन खाता अब सब तीरथ मज्जन कीनो साधु तूरी नाता सफल जन्म हर जन का उपजिया जिनकीनो सौत विदाता सगल समूह ले उदरे नानक पूरन ब्रह्म पछाता देवगंधारी महला पंजवा माई गुरु बिन ज्ञान न पाये अनेक प्रकार फिरत बिल्लाते मिलत नहीं गोसाई रहा मोह रोग सोग तन बांधे बहु जोनी परमाये टिकन न पावे बिन सत्संगत किस आगे जाए रुआये करे अनुग्रह स्वामी मेरा साध चरण चित लाये संकट कोर कटे खिन पीतर नानक हर दर्श समाये देवगंधारी महला पंजवा ठाकुर होए आप दयाल पई कल्याण आनंद रूप हुई है उबरे बाल गोपाल रहाओ दो कर जोर करी बेनंती पार ब्रह्म मन से आया हाथ दे राखे परमेश्वर सगला दुर्त मिटाया वर नारी मिल मंगल गाया ठाकुर का जयकार कहो नानक जन को बल जाइए जो सबना करे उधार इको अंकार सतगुरु प्रसाद देवगंधारी महला पंजवा अपने सतगुरु पै बिनो कहया पै कृपाल दयाल दुख पंजन मेरा सगल अंधेसरा गया रहाओ हम पापी पाखंडी लोभी हमरा गुण अवगुण सब सया कर मस्तक तार साध निवाजे मोहे दुष्ट जो खया परोपकारी सर्व सधारी सफल दर्शन सह जया कहो नानक निर्गुण को दाता चरण कमल उर्धरया देवगंधारी महला पंजवा अनाथ नाथ प्रभ हमारे शरण आयो राखन हारे रहाओ सर्व पाप राख मुरारे आगे पाछे अंतिवारे जब चितवो तब

लारी महला पंजवा दर्शन नाम को मन आछे प्रम आयो है सगल खान रे आहे परयो संत पाछे रहाओ किस हो सेवी किस आराधी जो दिसते सो गाछे साध संगत की सरनी परिये चरण रेन मन बाछे जुगत ना जाना गुण नहीं कोई महादुत्तर माया आचे आय पयो नानक गुरचरनी

सारे कहो नानक प्रभ मिले मनोहर मन शीतल सारे देव गंधारी महला पंजवा हर जप सेवक पार उतारो दीन दयाल पे प्रभ अपने बहुर जन्म नहीं मारो रहाओ साध संगम गुण गावे हर के रतन जन्म नहीं हारो प्रभ गुण गाए बिखे बन करया।

ऊंचा आन न संसर को लागे टूट रहे हम ऊंचा रहाओ बहु व्यंत अत बड़ो बारो हा नहीं अगहूचा तोल न तुलिय मोल न मुलिय कत पाई है मन रूचा खोज असंख्या अनिकृत पंखा बिन गुर नहीं पहुँचा कहो नानक कृपा करे ठाकुर मिल साधु रस पूंचा देव। गंगारी महला पंजवा।

अगम अगम्मा कवन महिमा मन जीवे सुन सो चार आश्रम चार ग्रन्ना मुकत पे सेव तो गुरु शब्द दृढ़ाया परम पद पाया द्वितीय गए सुख हो कहो नानक पव सागर तरिया हर मृद पाई सहजो राग देव गंदा।

राम देव गंधारी महला पंजवा जानी न जाई ताकी गात रहाओ कह पे थारो हों कर कतराई बिस्मन बिस्मे कहन कहात गण गंधर्व सिद्ध असाधिक सुर नर देव ब्रह्म ब्रह्मादिक चतुर वेद उचरत दिन रात अगम अगम ठाकुर आगाद गुण बेअंत बेअंत तन नानक कह न जाई परे परा देव गंधारी महला पंजवा त्याए गाए करने हार पौ नाही सुख सहज आनंदा अंत कोही रे एक समार रहाओ सफल मूरत गुर मेरे माथ है जब तक देखो तब तक साथ है चरण कमल मेरे प्राण आधार समर्थ अथा बड़ा प्रभ मेरा काट काट अंतर साहिब।

मन सिंधिया फल पाया हर प्रभ गुण नानक बाणी बोले राम गुरमत मन अमृत उठना मेरी जिंदड़ी मुख अमृत बैन अलाए राम अमृत बाणी भगत जना की मेरी जिंदड़ी मन सुनिए हर लिव लाए राम चिरी विचुना हर प्रभ पाया गल मिलिया सहज।

कोई हर सब आन मिलावे राम हो मन देवो किस अपना मेरी जिंदगी हर सब की हर कथा सुनावे राम गुरुमुख सभा आराध हर मेरी जिंदगी मन सिंदेड़ा फल पावे राम नानक पद हर शरणागति मेरी जिंदगी वड पागी नाम ते आवे राम कर कृपा प्रभ आए मिल मेरी जिंदगी गुरमत नाम प्रगासे राम हो हर बाज उडीनिया मेरी जिंदगी ज्यों जल बिन कमल।

हर हर नाम से आए राम, हर ताज बड़े लिख पाया मेरी जिंदड़ी, जन नानक नाम समाए राम। हर सेती मन भेदिया मेरी जिंदड़ी, जो बालक लग दुखी रे राम, हर दिन शांत ना पाई।

जन नाम घर में लाया मेरी जिंदड़ी करवाजे शब्द कनेरे राम मन हो मैं विचड़े मेरी जिंदड़ी बिक बांधे हो मैं जाने राम जो

गुर सतगुर वीस लगाया राम कर कृपा सुन बेनती हर हर जन नानक नाम से आया राम बिहागड़ा महला चौथा जग सुकृत कीरत नाम है मेरी जिंदड़ी हर कीरत हर मन तारे राम हर हर नाम पवित्र है मेरी जिंदड़ी जब हर हर नाम उधारे राम सब के लिए पाप दुख कटिया मेरी जिंदड़ी मल गुरुमुख नाम उतारे राम वद पुन्नी हर प्याया जन नानक हम मूरख मुगध निस्तारे राम जो हर नाम से आए दे मेरी जिंदड़ी तिना पंचे वसगत आए राम अंतर नव निज नाम है मेरी जिंदड़ी गुर सतगुर अलख लखाए राम गुर आशा मनसा पूरिया मेरी जिंदड़ी हर मिलिया सुख सब जाए राम गुरमस्तक हर प्रव लिखिया मेरी जिंदड़ी जन नानक हर गुण गाए राम हम पापी बलवंशिया मेरी जिंदड़ी पर द्रोही ठग माया राम वड पागी गुर पाया मेरी जिंदड़ी गुर पूरे गत मित पाया राम गुर अमृत हर मुख चो

जिन हर हर नाम आधारो राम, गुर सतगुर नाम दृढ़ आया मेरी जिंदड़ी ए, बिक औजल तारन हारो राम, जिन एक मन हर त्याया मेरी जिंदड़ी ए, तिन संत जना जयकारो राम, नाम तुहार जब

तो शीश पला पवित्र पावन है मेरी जिंदगी, जो जाए लगे गुर पहले राम, गुर वित्तो नानक वारिया मेरी जिंदगी जिन हर

तरस पाताल आकाश है मेरी जिंदगी, सब हर हर नाम से आवे राम। पौन पानी बह संतरो मेरी जिंदगी, नित हर हर हर जस गावे राम। वाण तृण सब आकार है मेरी जिंदगी, मुख हर हर नाम से

जो मनुख पाप लुभाने राम जन नानक गुर मिल उबरे मेरी जिंदड़िए हर जप हर नाम समाने राम। सब जाए मिलो सतगुरु को मेरी जिंदड़िए जो हर हर नाम दृढ़ावे राम हर जप दिया।

कवन रसना गुण पना प्रम लोभ मोह विकार खाके मिल सखी मंगल गाया नानक परम पै संत जम पै जिन हर हर संजोग मिलाया। बिहागड़ा महला पंजवा कल कृपा गुर पार ब्रह्म पूरे अंग नाम।

कर दया मया गोपाल गोविंद कोई नहीं तुझ बिना समरथ अगत अपार पूरन जियो तन तन तुम मना मूरख मुग्ध अनाथ चंचल बलहीन नीच अजाना बिनवंत नानक शरण तेरी।

जिन विदाता पाया नाम राते जीव दाते नित दिन चढ़े सवाया रिद्ध सिद्ध नव निध।

कै हर जियो करता पुरख मुरारी राम। दुख रोग न पौजापै जिनी हर हर त्याया, संत प्रसाद तरे पावजल पूरब लिखिया पाया। वजी वधाई मन सांस आई, मिलिया पुरख अपारी, बिनवंत नानक सिंह।

हर की भगत मंगे, हर भगत पाए प्रभु ते आए, जाए मिलिए हर जाना, मान मोह विकार तजिए,

अलिप्त बंधन रहत करता किया अपना पावने। कर अनुग्रह पतित पावने बहु जोन प्रम से हारी बिन वंश नान।

नानक सब किछ आप है अवर न दूजी जाए पौड़ी। तेरी वड्याई तू है जानदा तुझ जेवड़ अवर न कोई नी तुझ जेवड़ होर शरीर।

मन पर ठीक न आया सहज न लगो पाओ शब्द साध न पायो मन हथ क्या गुण गाए। नानक आया सो परवान है जो गुरमुख सच समाए।

सतगुर कै तै पन ना करो रह अंक समाए। अंदिन सहसा कदे न चूके बिन शब्द दुख पाए। काम क्रोध लोभ अंतर सबला।

बंधन तोड़े सचवस है, अज्ञान अंधेरा जाए, सब किस देखे किसे का, जिन किया तन साज, नानक शरण करतार की, करता राखे लाज। पौड़ी जदों आपे थाट किया, जदों आपे थाट किया बह करते, तदों कुछ ना सेवक दिया, तदों क्या को लेवे क्या को देवे, जा अवर ना दूजा किया, फिर आपे जगत उपाया करते, दान सबना को दिया, आपे सेव बनायन गुरमुख आप।

कहे कथे ना पाए अंगिन रहे सदा गुण गाए जिन कर्मे किने ना पायो पौके मुए बिन लाए गुर के शब्द मन तन तुझे आप वसे मन आए नानक नगरी पाए आपे ले मिलाए पौड़ी आपे वेद पुराण सब शास्त्र आप कथे आप पीजे आपे ही दह पूजे करता आप पर पंच करी जय आप परवृत आप निर्वृति आपे अकथ कथिय आपे पुन सब आप कराए आप अलिपत वर्ती जय आपे सुख दुख दे रहे करता आपे बख्श करी जय आपे सुख दुख दे रहे करता आपे बख्श करी जय श्लोक महला तीजा शेखा अंदरों जोर छड़ तू पौ कर चल गवाए गुर कह पैके ते निस्तरे तैर च निरपौ पाए मन कठोर शब्द तेज तू शांत वसे मन आए शांति विच कार कमावनी सा खसम पाए खाए नानक काम क्रोध किने न पायो पुछो ज्ञानी जाए महला तीजा मन मुख माया मोह है नाम ना लगो प्यार कूर कमावे कूर संग्रह कूर करे आहार दिख मा

को पार पवे जिना अंदर सच्चा सोए नाम समाले नाम संग्रह नामे ही पत होए नानक सतगुर पाया कर्म परापत होए पौड़ी आपे पारस आप ताप है आप की कौन कंचन आपे ठाकुर सेवक आपे आपे ही पाप खंडन आपे सब कट भोग है स्वामी आपे ही सब अंजन आप विवेक आप सब देता आपे गुरुमुख पंजन जन नानक सालाहे नारज तुद करके तू हर सुख दाता।

बिन सतगुर सेवे थवर ना पावही मर जम में आवे जाए बिन सतगुर सेवे सिक्का बोलना नाम ना वसै मन आए नानक बिन सतगुर सेवे जमपुर।

संध्या परवान है, जित हर प्रभु मेरा चित आवे है, हर्षो प्रीत उपजे माया मोह जलावे, गुर प्रसादी दुबदा मरे, मनुआ अस्थिर संध्या करे विचार, नानक संध्या करे।

नानक सतगुरु मिले मेरी प्यास गई, फिर पाया कर आए पौड़ी। आपे संत परम संत सब आपे, आपे ठाकुर दास पाया, आपे दस अठ वर्तु पायन, आप ब्रह्म आप राज लया, आपे मारे आपे छोड़े, आपे बख्शे करे दया, आप अपुल न पुले कभी, सब सच कपाव से सच किया, आपे जिना बुझाए गुरमुख, तिन अंदरों दूजा परम गया। श्लोक महला पंजवा, हर नाम सुमिरे।

ले पौड़ी आपे अस्थर तीर्थ करता आप करे स्नान आपे संजम वर्ते स्वामी आप जपाहे नाम आप दयाल होए पौखंडन आप करे सब दान जिसनो गुरुमुख आप बुझाए सो सद ही दरगे पाहे मान जिस दी तेज रखे हर स्वामी सो सच्चा हर जान। श्लोक महला तीजा नानक बिन सतगुर पेटे जग अंध है अंधे कर्म कमाए शब्द स्यो चित ना लावई जित सुख वसे मन आए तामस लगा।

लाए हो, सतगुर का पाना चित रखो, संजम सच्चा ने हो, नानक ऐसे सुख है अंदर रखसी, अग्गे हर्षो केल करे हो पौड़ी। आपे पार अठारे बनस्पत, आपे ही फल लाए, आपे माली आप सब सिंचे, आपे ही मोह पाए, आपे करता आपे पुगता, आपे दे दिवाए, आपे साहिब आपे है राखा, आपे रहा समाए, जन नानक वडिआई आखे हर करके की, जिसनो तिल ना कमाए। श्लोक महला तीजा, मानस परिया आया, मानस परिया आए, जित पीते मत दूर होए, बरल पवे विच आए, अपना पराया

हो सब कुछ पावे जिसनो कृपा निरंजन केरी सोई साओ सच्चा बन जारा जिन वत्तर लदिया हर नाम तन तेरी सब तिसेनो सालायो संतो जिन दूजे पा

0: पौड़ी
1: जा आप कृपाल होवे हर स्वामी ता अपना नाउ हर आप जपावे है आपे सतगुरु मेल सुख देवे अपना सेवक आप हर पावे अपने सेवका की आप पैज रखे अपने भगता की पैरी पावे धर्म राय है हर का किया हर जन सेवक नेड़ ना आवे जो हर का प्यारा।

पौड़ी। आपे सब कट अंदरे, आपे ही बाहर, आपे गुप्त वर्तदा, आपे ही जाहर। जुग छत्ती गुबार कर वर्त्या सुनाहर, ओथे वेद पुराण न सास्ता, आपे हर नर हर। गैठा ताड़ी लाए आप सब दू ही बाहर, अपनी एक

बस सब जो तेरे बस है तू सच्चा चाहो भगत रते रंग एक कै पूरा वे साहो अमृत भोजन नाम हर।

सैकड़ों गुरुमुख नाम प्राप्त होए, तिस जोगी की नगरी सब को वसे, पेटी जोग न होए। नानक ऐसा विरला को जोगी, जिस पट प्रगट होए। पौड़ी।

साचे नाए रते बैरागी पाइन मोख द्वारा। एक वो सच वर्ते सब अंतर सब ना करे सतपाला, नानक इकस दिन मैं अवर ना जाना सब ना दीवान दयाला। बड़ हंस महला तीजा गुरुमुख सत संजम तत ज्ञान है, गुरुमुख साचे लगे ध्यान है।

गुरुमुख जात पत सच सोए, गुरुमुख अंतर सखाई प्रभ होए, गुरुमुख जिसनो आप करे सो होए, गुरुमुख आप वडाई देवे सोए, गुरुमुख शब्द सच करनी पार, गुरुमुख नानक परवार साधार, वढंस महला तीजा रसना हर साग लगी सहज सुवाए, मन तृप्तिया हर

मैं अवगुण भरपूर शरीरे हाँ क्यों कर मिला अपने प्रीतम पूरे जिन गुणवंती मेरा प्रीतम पाया थे मैं गुण नाही हूँ क्यों मिला मेरी माया हूँ कर साका उपाव बहु तेरे नानक गरीब राखो हर मेरे वडहंस महला चौथा मेरा हर तरफ सुंदर मैं सार ना जानी।

ते मैं गुण नाही हौ क्या करी दुहागण, नित सुहागण सदा फिर रावे, मैं कर्महीन तब ही गल लावे, तू फिर गुणवंता हो अवगण आरा, मैं निर्गुण

क्यों कर हर दर्शन पावा हों जाए कुछा अपने सतगुरे गुर कुछ मन मुग्ध समझावा पूला मन समझे गुर शब्दी हर हर सदा ते आए नानक जिस नजर करे मेरा प्यारा सो हर चरणी चितलाए हों सब वेश करी तिर कारण जे हर प्रभ साचे भावा तो फिर प्यारा मैं नजर ना देखे हों क्यों कर धीरज पावा जिस कारण हों सिगार सिगारी सो फिर रत्ता मेरा अवरा नानक तन तन तन सुहागन जिन फिर रावे अड़ा सच सवरा हों जाए पुछा सुहाग सुहागन तुसी क्यों कर पायड़ा प्रभ मेरा मैं ऊपर नजर करी फिर साचे मैं छोड़ेड़ा मेरा तेरा सब मन तन जियो करो हर प्रभ का इस मार्ग पैने मिली है आप नड़ा प्रभ नजर कर देखे नानक जोत ज्योति रली है जो हर प्रभ का मैं देश नेहा इस मन तन अपना देवा नित पक्का फेरी सेव कमावा इस आगे पानी तोवा नित नित सेव करी हर जन की जो हर हर कथा सुनाए तन तन गुरु गुर सतगुर पूरा नानक मन आस पुजाए गुर सज्जन मेरा मेल हरे जित मिल हर नाम से आवा गुर सतगुर पासो हर गोष्ट पूछा कर सांझी हर गुण गावा गुण गावा नित नित सद हर के मन जीवे नाम सुन तेरा नानक जित वेला विसरे मेरा स्वामी तित वेले मर जाए जियो मेरा हर वेखन को सब कोई लोचे सो वेखे जित आप विखाले जिसनो नजर करे मेरा प्यारा सो हर हर सदा समाले सो हर हर नाम सदा सदा समाले जिस सतगुर पूरा मेरा मिलिया नानक हर जन हर इक्के होए हर जप हर ते

रहाओ लाख भगत जाको आराधे लाख कपि सर कपि साधे लाख जोगी सर करते जोगा लाख पोगी सर पोगे पोगा कट कट वक्ते जाने तोरा है कोई साजन परदा तोरा करो जतन जे होए मेहरवाना करो जतन जे होए मेहरवाना ताको देई जियो कुर्बाना फिरत फिरत संतन पे आया दुख परम हमारा सगल मिटाया महल बुलाया प्रभ अमृत पूछा कहो नानक प्रभ मेरा ऊंचा वढ़हंस महला पंजवा तन सो वेला जित दर्शन करना हौ बलिहारी सतगुर चरणा जी के दाते प्रीतम प्रभ मेरे मन जीवे प्रभ नाम चितेरे रहाओ सच मंत्र तुम्हारा अमृत बाणी शीतल पुरुष दृष्ट सुजाने सच हुक्म तुम्हारा तख्त निवासी आए ना जावे मेरा प्रभ अविनाशी तुम मेहरवान दास हम दीना नानक साहिब पर पुर लीना वढ़हंस महला पंजवा तू बेअंत को विरला जाने गुर प्रसाद को

ने तुम जाते सदा सदा जाई बलिहारी इत उत देखो ओट तुम्हारी मोहे निर्गुण गुण कछु न जाता नानक साधु।

जल सल मैयल रहा पर पूरे निकट वसै नाही प्रभ दूरे जिसनो नदर करे सो त्याए आठ पहर हर के गुण गाए जी जंत सगले प्रत पारे सरन परयो नानक हर द्वारे वडहंस महला पंजवा तू वडदाता अंतर जामी सब में रव्या पूरन प्रभ स्वामी मेरे प्रभ प्रीतम नाम आधारा हौ सुन सुन जीवा नाम तुम्हारा रहाओ तेरी शरण सतगुरु मेरे पूरे मन निर्मल होए संता दूरे चरण कमल हृदय उधारे तेरे दर्शन को जाई बलिहारे कर कृपा तेरे गुण गावा नानक नाम जपत सुख पावा वडहंस महला पंजवा साध संग हर अमृत पीजे ना जियो मरे ना कबहू छीजे वड पागी गुर पूरा पाये गुर कृपा ते प्रभु से आये रहाओ रतन जवाहर हर माणक लाला सिमर सिमर प्रभ कहे निहाला जत कत पेखो साधु सरना हर गुण गाए निर्मल मन करना कट कट अंतर मेरा स्वामी ऊठा नानक नाम पाया प्रभ तूठा वडहंस महला पंजवा विसर नाही प्रभ दीन दयाला तेरी शरण पूरन कृपाला रहाओ जय चित आवे सो थान सुहावा जित वेला

मेरे अंतर लोचा मिलन की प्यारे हो क्यों पाई गुरपुरे ये तो खेल खिलाए बालक रह ना सके बिन खीरे मेरे अंतर भुख ना उतरे अमाली जे तो भोजन मैं नीरे मेरे मन तन प्रेम प्रम का बिन दर्शन क्यों मन तीरे सुन सज्जन मेरे प्रीतम पाई मैं मेलियो मित्र सुखदाता ओह जी की मेरी सब वेदन जाने नित सुनावे हर किया बाता हौ एक थिन तिस बिन रह ना सका जो चात्रिक जल को बिल लाता हौ क्या गुण तेरे सार संभाली मैं निर्गुण को रख लेता हौ पई उड़ीनी कंस को अमाली सो फिर कद नैनी देखा सब रस भोगन विसरे बिन फिर किते न लेखा एहो कापड़ तन ना सुखावई कर ना सको हूं वेता जिन्नी सखी लाल रावया प्यारा तिन आगे हम आदेसा मैं सब सिगार बनाया अमाली बिन फिर काम ना आए जा सह बात ना पुछिया अमाली ता बिरथा जोबन सब जाए तन तन ते सुहागनी अमाली जिन सो रहा समाए हौ वारिया तिन सुहागनी अमाली तिनके तोवा सद पाए जिचर दूजा परम सा अमाली तिचर मैं जानिया।

सच तुने सच शब्द विचारा, अंजन सच सलाना, तन तन वड भाग हमारा। मन मेरे साचे नाम विटों बल जाओ, दासन दासा।

बिन साचे होर सलाहना जासे जन्म सब खोए सच खेती सच बीजना साचा वा पारा अंदिन लाहा सच नाम तन भगत परे पंडारा सच खाना सच पहनना सच टेक हर नाओ जिसनो बख्शे तिस मिले महली पाए थाओ आवे सच्चे जावे सच्चे फिर जूनी मूल न पाहे गुरमुख दर साचे सच्यार है साचे माहि समाहे अंतर सच्चा मन सच्चा सच्ची सिफत सुनाए सच्चे थान सच सलाना सतगुर बलिहार है जाओ सच वेला मूरत सच जित सच्चे नाल प्यार सच वेखना सच बोलना सच्चा सब आकार नानक सच्चे मेले ता मिले आपे ले मिलाए ज्यों पावे।

अधिकाई काम क्रोध नित संतावे वाहो वाहो सहजे गुण रवि जय राम नाम इस युग में दुर्लभ है गुरुमत हर रस की जय रहाओ शब्द चीन मन निर्मल होवे ता हर के गुण गावे गुरुमति आपे आप पछाणे ता निज कर वासा पावे ए मन मेरे सदा रंग राते सदा हर के गुण गाओ हर निर्मल सदा सुखदाता मन चिंदिया फल पाओ हम नीच से उत्तम भय हर की शरणाई पात्र डुबदा काढ़ लिया साची वड्याई दिख से अमृत भये गुरमत बुद्ध पाई अको परमल पये अंतर वासना समाई मानस जन्म दुलंब है जग में खटियाए पूरे पाग सतगुर मिले हर नाम से आए मन मुख पूले बिख लगे पहला जन्म गवाया हर का नाम सदा सुख सागर साचा शब्द ना पाया मुखों हर हर सब को करे विरले हृदय वसाया नानक जिनके हृदय वसया मोख मुकत तिन पाया।

नाता सो प्रमाण सच कमाइए। जब साच अंदर होए साचा ताम साचा पाइए। लिखे बाजो सुरत नाही बोल बोल गवाइए। जिथे जाए बइए भला कहिए सुरत शब्द लिखाइए। काया कूड़ बिगाड़ काहे नाइए ता मैं कहया कहन जा तुदे कहाया। अमृत हर का नाम मेरे मन पाया नाम मीठा मने लागा दुख डेरा ताया। सुख मन मैं आए वस्या जाम तै फुरमाया। नदर तुद अरदास मेरी जिन आप उपाया ता मैं कहया कहन जा तुदे कहाया। वारी खत्म कढ़ाए किरत कमावना मंदा किसे नाख झगड़ा पावना। नह पाए झगड़ा स्वाम सेती आप वजावना। जिस नाल संगत कर सरीकी जाए क्या रुआवना। जो दे सेना मने कहना आख नाही वावना। वारी खसम कढ़ाए किरत कमावना सब उपायन आप आपे नजर करे। कौड़ा कोई ना मांगे मीठा सब मांगे। सब कोई मीठा मांग देखे खसम पावे सो करे। किछ पुन दान अनेक करनी नाम तुल ना समतरे। नानका जिन नाम मिलिया कर्म होआ तुरक दे। सब उपायन आप आपे नदर करे। वडांस महला पहला करो दया तेरा नाम वखाना। सब उपाय है आप आपे सर्व समाना। सर्वे समाना आप तू है उपाय तंदे लाया। एक तुझ ही किए राजे एक ना पिख पवा।

जुगे जुगंतर भगत तुम्हारे वड्डे मेरे साहेबा अलख अपारा क्यों कर करो बेनंती हों आप न जाना नदर करें ता साच पछाणा।

आप वाणी सिच मन की पूरी है, सारंग ज्यों पग तरे ठिम ठिम आप संदूर है, श्री रंग राती फिरे माती उदक गंगा वाणी, बिनवंत नानक दास हर का तेरी चाल सुहावी मधुराड़ी बाणी। वडहंस महला तीजा संत एक ओंकार सतगुर प्रसाद, अपने पिरके रंग रती मोये सोभावंती नारे, सच्चे शब्द मिल रही मोये पिर रावे पाए प्यारे, सच्चे पाए प्यारी कंक सवारी हर हर स्यों निहो रचाया, आप गवाया ता पिर पाया गुर के शब्द समाया, सा तन शब्द सुहाई प्रेम कसाई अंतर प्रीत प्यारी, नानक सा तन मेल लई फिर आपे साचे सहे सवारी, निर्गुण वंतड़िए फिर देख हदूरे राम, गुरुमुख जिन्नी रावया मोये फिर रव रहा पर पूरे राम, फिर रव रहा पर पूरे वे खजूरे, जुग जुग एको जाता तन बाली कोली फिर सहज रावे मिलिया कर्म विदाता, जिन हर रस चाखिया शब्द सो पाखिया हर सर रही पर पूरे, नानक कामन सा फिर पावे शब्दे रह हदूरे, सोहागनी जाए पूछो मुये जिनी विच्चों आप गवाया, फिर का हुक्म ना पायो मुये जिनी विच्चों आप ना गवाया, जिनी आप गवाया तिनी फिर पाया, रंग स्यों रलिया माने सदा रंग राती सहजे माती, अंदिन नाम वखाने कामन वड़ पागी अंतर लिव लागी, हर का प्रेम सुभाया नानक कामन सहजे राती, जिन सच सिगार बनाया हों मैं मार मुये तू चल गुर के पाए, हर वर रावे सदा मुये निज कर वासा पाए, निज कर वासा पाए शब्द बजाए, सदा सुहागन नारी फिर रलियाला जोगन बाला, अंदिन कंक सवारी हर वार सुहागो मस्तक पागो, सच्चे शब्द सुहाए नानक कामन हर रंग राती, जा चले सतगुर पाए। वडहंस महला तीजा गुरुमुख सब वापार पला, जे सहजे की जय राम, अंदिन नाम वखाणी है लाहा हर रस पी जय राम, लाहा हर रस लीजे हर रावी जय, अंदिन नाम वखाणे गुण संग्रह अवगुण विकणे, आपे आप पछाणे गुरमत पाई वड्डी वड्याई, सच्चे शब्द रस पीजे नानक हर की भगत निराली, गुरमुख विरले की जय, गुरमुख खेती हर अंतर बीजिए, हर लीजे शरीर जमाए राम, अपने कर अंदर रस पुंच तू लाहा ले परथाए राम, लाहा परथाए हर मन वसाए, तन खेती वापारा हर नाम से आए मन वसाए, बूजे गुर विचारा मन मुख खेती वणज कर थाके, तृष्णा पुख न जाए नानक नाम बीज मन अंदर, सच्चे शब्द सुहाए हर वापार से जन लागे, जिना मस्तक मणि वड पागो राम, गुरमति मन निज कर वस्या सच्चे शब्द बैरागो राम, मुख मस्तक पागो सच बैरागो साज रते विचारी, नाम बिना सब जग बोराना शब्दे हो मैं मारी, साचे शब्द लाग मत उपजे गुरुमुख नाम सुहागो, नानक शब्द मिले पौ पंजन हर रावे मस्तक पागो, खेती वणज सब हुक्म है हुक्मे मन वड्याई राम, गुरमति हुक्म बूझिए हुक्मे मेल मिलाई राम, हुक्म मिलाई सहज समाई गुर का शब्द अपारा, सच्ची वड्याई गुरते पाई सच सवारण हारा, पौ पंजन पाया आप गवाया गुरमुख मेल मिलाई, कहो नानक नाम निरंजन अगम अगोचर हुक्मे रहा समाई। वडहंस महला तीजा मन मेरिया तू सदा सच समाल जियो,
अपने घर तू सुख वसे तोहे ना सके जम काल जियो काल जाल जम जोहे न साके साचे शब्द लिव लाए सदा सच रता मन निर्मल आवन जान रहाए दूजे पाए परम विगुती मनमुख मोही जम

नानक मानस जन्म दुलंब है सतगुर बूझ बुझाई। मन मेरे सतगुर सेवन अपना से जन्म पागी राम, जो मन मारे अपना से पुरख बैरागी राम, से जन बैरागी सच लिव लागी अपना आप पछाणिया मत नहीं चल।

अपागे नानक सहजे सेवे गुर अपना से पूरे वडभागे वडहंस महला तीजा रतन पदार्थ वणजिए सतगुरु दिया बुझाई राम लाहा लाभ हर भगत है गुण में गुणी समाई राम गुण में गुणी समाए जिस आग बुझाए लाहा भगत है सारे बिन भगती सुख ना होई दूजे पत खोई।

पंडित जोत की सब पढ़ पढ़ कूक दे, किस पे करें पुकारा राम, माया मोह अंतर मल लागे, माया के वा पारा राम, माया के वा पारा जगत प्यारा, आवन जान दुख पाए, बिख का कीड़ा बिख्यों लागा, बिष्टा माए समाए, जो तुर लिखिया सोए कमावे, कोई न मेटन हारा, नानक नाम रते तिन सदा सुख पाया, होर मूरख कूक मुए गावारा, माया मोह मन रंगिया, मोहे सुध ना काई राम, गुरमुख ए मन रंगी है, दूजा रंग जाई राम, दूजा रंग जाई साच समाई, सच परे पंडारा, गुरमुख होवे सोई बूजे, सच सवारन हारा, आपे मेले सो हर मिले, होर कहना किछु ना जाए, नानक विण नामे परम पुलाया, एक नाम रते रंग लाए।

बख्श लए। फिर होए ना फेरा राम, फिर होए ना फेरा अंत सच निबेड़ा। गुरुमुख मिले वड्याई साचे रंग राते, सहजे माते सहजे रहे समाई। सच्चा मन पाया सच

सब बरल है दूजे पाए कुआई राम माता पिता सब हेत है हेते पलचाई राम हेते पलचाई पूर्व कमाई मेट न सके कोई जिन सृष्ट साजी सो कर वेखे तिस जेवड़ अवर न कोई।

माया मोहि पुआई। ए जगत जलता देख के भज पए हर शरणाई राम, अरदास करी गुर पूरे आगे, रख ले वो देहो वडाई राम, रख ले वो शरणाई हर नाम वडाई, तुद जेवड अवर ना दाता, सेवा लागे सेवड पागे, जुग जुग एको जाता, जत सत संजम कर्म कमावे, बिन गुर गत नहीं पाई, नानक तिसनो शब्द बुझाए, जो जाए पवे हर शरणाई, जो हर मत दे सा उपजे, होर मत ना काई राम, अंतर बाहर एक तू, आपे दे बुझाई राम, आपे दे बुझाई अवर ना पाई, गुरमुख हर रस चाखिया, दर साचे सदा है साचा, साचे शब्द सुबाखिया, कर मैं निज कर पाया सतगुर दे वडाई, नानक जो नाम रते सही महल पाइन मत परवान।

दृढ़ाए। जप हर हर नाम विगसे राम, जप हर हर नाम कमल प्रगासे, हर नाम नवंग निध पाई, हौ मैं रोग गया दुख लाथा, हर सहज समाध लगाई।

तन काट काट किस दे जो सतगुरु वचन सुनाए मेरे मन बैराग पया बैरागी मिल गुरु दर्शन सुख पाए हर हर कृपा करो।

गुरजेवर गुरजेवर दाता मैं अवर न कोई। वडहंस मैला चौथा हाँ गुरबिन खरी निवाणी राम। जग जीवन दाता गुर मेल समाणी राम। सतगुर मेल हर नाम।

हर हर नाम मेरा प्राण सखाए, किस दिन करी निमख नहीं जीवा। हर हर कृपा करे सुखदाता, गुरुमुख अमृत पीवा। हर आपे सरदा लाए मिलाए, हर आपे आप सवारे। हो वारी गुरसिख नी प्यारे। हर आपे पुरुख निरंजन सोई राम। हर आपे मूले करे सोई राम। जो हर प्रभ पावे सोई होवे, अवर न करना जाई। बहुत स्याणप लया न जाई, कर था के सब चतराए। गुर प्रसाद जन नानक।

हर सतगुर मेल हर सतगुर चरण हम पाया राम सिमर अज्ञान गवाया गुर ज्ञान अंजन गुर पाया राम गुर ज्ञान अंजन सतगुरु पाया अज्ञान अंधेर

नेफल जन्म किन बिछा दुआया ते साकत मोए मर चूरे कर होंदे रतन पदार्थ भूखे भागहीन हर दूरे हर हर तिन सा दर्श ना करियो जिनी हर हर नाम ना प्याया जिनी दर्शन सतगुरु पुरख ना पाया हम चात्रिक दीन हर

गुरु नाम दृढ़ाया, हर हर नाम हर सती, हम चात्रिक दीन हर पास बेनंती। वडहंस महला चौथा, हर कृपा कर सतगुरु मेल सुखदा।

ना जम कंकर मार बिदारे। हर प्रभु कृपा तारी सुख दाते, दुख लाके पाप सुन पापा। सुन गुरुमुख नाम सब दिन से हो मैं पापा। जप हर हर

विकंपयंगा अनुत्तरंगा गुरुमुख पार लंघाए हर बोहित चढ़वट पागी लंगे गुरु सेवट शब्द कराए हम दिन हर रंग हर गुण।

तन प्रेम हर हर लाए चावक मन जिने गुरुमुख जी किया अकरो कढ़ावे शब्द पावे अपियो हर रस पीतिया सुन श्रवण बाणी गुरु वखाणी हर रंगे तुरी चढ़ाया महामार्ग पंथ बिखड़ा जन नानक पार लंघाया कोड़ी तेजन दे राम पाया राम जित हर प्रभ जापे सा तन तन तुखाया राम जित हर प्रभ जापे सा तन सा वासे खुर पाया किरत जुड़ंदा चढ़ देहड़ कोड़ी दिखम लगाए मिल गुरमुख परमानंदा हर हर काज रचाया।

हर नाम गत मित जानिया, सब जन्म सुख लियो किया करते हर राम नाम वखाणिया। हर राम नाम सलाए हर प्रभु, हर भगत हर

हर गाय मंगल राम नामा, हर सेव सेव खेव की, प्रभ जाए पावे रंग महली, हर रंग माने रंग की, गुण राम गाए मन सुवाए, हर गुरुमति मन त्याया, जन नानक।

ठाकुर माने सो प्रधाने हर सोची रंग राते हर रसय अघाए सह समाए कट कट रमैया जाते से सज्जन संत से सुखिए ठाकुर अपने भाने कहो नानक जिन हर प्रभ डिठा तिन कै सद कुरबान श्लोक।

अगाणी हर हर अमृत मीठा राम, हर मने मीठा प्रभु तू था अमयोग उठा सुख पाए, दुख नाश परम विनाश संते जप जगदीश ईश्वर जय जय। मोह रहत विकार था के पंच ते संग तूता, कहो नानक तिन कनिये वंजा जिन कट मेरा हर प्रभु उठा। श्लोक जो लोड़ींदे राम सेवक से कांडिया, नानक जाने सत्संग।

प्रम दुख दर्द निवार खिन में रख लेहो दीन दयाला मात पिता स्वाम सज्जन सब जगत बाल गोपाला जो शरण आवे गुण निधान पावे सो बहुर जन्म न मरता दिनवंत नानक दास तेरा सब जी तेरे तू करता आठ पैर हर प्याये राम मन इच्छा फल पाये राम मन इच्छ पाये

काट काट हर गोविंद गाजे राम, गोविंद गाजे सदा विराजे अगम अगोचर ऊंचा, गुण के अंत किस कह न जाई, कोई न सके पहुंचा, आप उपाय आप।

आप साजिया सचना अलक अपार गोयपुड़ जोड़ विछोड़ियन गुरबिन कोर अंधारो सूरज चंद सिरजन एन चलत विचारो सचड़ा साई।

आप निरालम कंधे बांधी कर हुकम छडावन हारो अज कल कर दिया काल दिया पे दूजे पाए विकारो जम मार्ग पंथ ना सुजई उजड़ अंग गुबारो वा ना जल लेप तुलाइया ना भोजन परकारो वा भोजन पाओ ना

जिचर गुरमुख शब्द ना लागे, सतगुर सेवै नाम मन वसै विचों परम पौ पागे। जेहा सतगुर नो जाने तेहो होवे, ता सच नाम लिव लागे, नानक नाम।

उल्टी भई भाई जीवत मरे तो बूझ पाए सो गुरु सो सिख है पाई जिस ज्योति ज्योत मिलाए मंगे हर हर से ती लिवलाए मन हर जप मीठा लागे पाई।

सदा हर के गुण गाए रहाओ। ना मैं ते सब उपजे भाई, ना ही विसरे मर जाए, अज्ञानी जगत अंध है भाई, सूते गए मुहाए। गुरुमुख जागे से उबरे भाई, अब जल पार उतार, जग में लाह हर नाम है पाई, हृदय रख्या उधार। गुर शरणाई उबरे भाई, राम नाम लिव लाए, नानक नाओ बेड़ा नाओ कुल्हड़ा, पाई जित लग पार जन पाए। श्लोक महला तीजा कर पहला,

सतगुरु सेवै तां सुपावै नाहे तां जाहेगा जन्म गवाए रहाओ। त्रै गुण ताप बहु कर्म कमावै हर रस साधना आया संध्या तर्पण करे गायत्री बिन बूझे दुख पाया। सतगुरु सेवे सो वडभागी जिसनो आप मिलाए हर रस पी जन सदा तृप्ता से विचों आप गवाए। यो जग अंधा सब अंग कमावे बिन गुर मग न पाए नानक सतगुर मिले ता

तुन उपजे गतमत तब ही पाए हर का नाम सच्चा मन वस्या नामे नाम समाए बिन सतगुरु सब जग बोराना मन मुख अंधा शब्द ना जाने झूठे परम पुला ना रहाओ त्रै गुण माया परम पुलाया हौ मैं बंधन कमाए जमन मरण सिर ऊपर उभो गर्भ जोन दुख पाए त्रै गुण वरते सगल संसारा हौ मैं विच पत खोई गुरमुख होवे चौथा पद चीने राम नाम सुख होई।

प्यारा आपे करे सो होए, आपे अलख न लखिया प्यारा आप लखावे सोए। आपे गहर गंभीर है प्यारा तिस जेवड अवर न कोए, सब कट आपे भोग वे प्यारा विच नारी पुरुष सब सोए। नानक गुप्त वर्त दा प्यारा गुरमुख प्रगट होए। सूरत मैला चौथा आपे ही सब आप है प्यारा, आपे था पुथापे आपे वेख विकसदा प्यारा, पर चोज वेख है प्रभ आपे। आपे वंचन सबत है प्यारा, आपे गुरमुख जापे। जप मन हर हर नाम रस त्रापे, अमृत नाम महारस मीठा गुर शब्दी चख जापे। रहाओ आपे तीरथ तुलहरा प्यारा, आप करे प्रभ आपे। आपे जाल बतायदा प्यारा, सब जग मछली हर आपे। आप अपुल ना पुलई प्यारा, अवर न दूजा जापे। आपे सिंगी नाद है प्यारा, तुन आप बजाए आपे। आपे जोगी पुरुष है प्यारा, आपे ही सब तापे। आपे सदगुर आप है चेला, उपदेश करे प्रभ आपे। आपे नाम जपाएंदा प्यारा, आपे ही जपदा पे। आपे अमृत आप है प्यारा, आपे ही रस आपे। आपे आप सलाहदा प्यारा, जन नानक हर रस त्रापे। सूरत महला चौथा आपे कंडा आप तराजी, प्रभ आपे तोल तुलाया। आपे साहु आपे बन जारा, आपे वणज कराया। आपे धरती साजियन प्यारे, पिछे टंक चढ़ाया। मेरे मन हर हर त्याय सुख पाया।

चौथ है। आपे सेवा लाए दा प्यारा, आपे भगत उमाहा, आपे गुण गावाए दा प्यारा, आपे शब्द समाहा, आपे लेखन आप लिखारी, आपे लेख लिखाहा, मेरे मन जप राम नाम उमाहा, अंदिन अंध होवे वडपागी, ले गुर पूरे हर लाहा, रहाओ आपे गोपी कान है प्यारा बन।

दा प्यारा कर बालक रूप पचाहा, आप अखाड़ा पाएगा प्यारा कर वेख आप चोजाहा, कर बालक रूप उपाएगा प्यारा चंदूर कंस के सुमारा, आपे ही बल आप है प्यारा बल पन्ने मूरख मुगदा, सब आपे जगत उपाएगा।

सौंप आई। दुर्मत बुद्ध निवारी आत्म ब्रह्म चीन सुख पाया, सब संगत पुरुष तुम्हारी, पुरुष है पुरुष मिलिया गुरु पाया, जिनको कृपा कही तुम्हारी, नानक अतुल सहज सुख पाया, अनदिन जागत रहे बनवारी। सोरठ महला चौथा, हर सो प्रीत अंतर मन बेदया, हर दिन रह न जाई, ज्यो मछली बिन नीरे बिन सह, क्यों नामे बिन मर जाई। मेरे प्रभु कृपा जल देवो हर नाई, हौं अंतर नाम।

हर रस अंतर पाई, नानक दीन दयाल पए है, कृष्णा शब्द बुझाई। सोरठ महला चौथा पंच पदा, अचर चरे ता सिद्ध होई, सिद्धि ते बुद्ध पाई, प्रेम के सर लागे तां सीतर, तां श्रम काटिया जाई। मेरे गोविंद अपने जन को देह वडियाई, गुरमत राम नाम पर गासो, सदा रहूं शरणा।

का हर नाम समान, जिसकी वक्त सोई कर जाने, जिसनो देश पाए वक्त अनूप अगम अगोचर, गुरपुरा अलख लखाए। जिन ए चाखी सोई जाने, गूंगे की मिठाई।

नाही क्या तिस्ता मोह ताजा रहाओ जिन हर त्याया सब किस तिस्ता तिसकी पूत गवाई ऐसा तन दिया सुख दाते निखुट न कभी जाई आनंद भया सुख सहज समाने सतगुर मेल मिलाई मन नाम जप नाम आराध अंदिन नाम वखाणी उपदेश सुन सा

पूत के पाला। सूरठ महला पंजवा कर पहला चौथ के। गुरु गोविंद सलाहिए पाई मन तन हृदय पार। साचा साहिब मन वसै पाई एहा करनी सार। जित तन नाम न उपजै पाई से तन होए छार। साध संगत को वारिया भाई जिन एक अंकार आधार। कोई सब आराधना पाई जिसते सब किछु हुए। गुरपुरे जान आया पाई तिस बिन अवर न कोए रहाओ। नाम विहुने पचमोए भाई गणत न जाए गणी। विन सच सोच न पाई है भाई साचा अगम धनी। आवन जान न चुके भाई झूठी दुनी मणी। गुरमुख कोट उधार दा भाई दे नामे एक कणी। सिमरत शास्त्र सो दिया भाई विन सतगुर परम न जाए। अमित कर्म कर थाकिया भाई फिर बंधन पाए। चारे कुंडा सो दिया भाई विन

सदा है निर्मला भाई, निर्मल साते सोए, नजर करे जिस आपनी पाई, तिस पर आफत होए। कोट मदे जनता ये भाई, विरला कोई कोए, नानक रत्ता सत नाम भाई, सुन मन तन निर्मल होए। सोरठ महला पंजवा दो तुके

बुझाई सेवो साध गहो ओट चरना नै बिचरे मोत चसाई रहाओ। रे मन मुग्ध अचेत चंचल चित तुम ऐसी हृदय न आई प्राण पत त्याग आम तू रचिया उर्जो संग बैराई। सोग न व्यापे आप न खापे साध संगत बुद्ध पाई साखत का बकना यूं जानो जैसे पान चुराई। ओत पराध अछाद्यो ए मन कहना कछु न जाई जन नानक दीन शरण आयो प्रभ सब लेखा रखो उठाई। सोरठ महला पंजवा पुत्र कलत्र लोक गृह बनता माया संबंधे ही अंत की बार को खरा न होसी सब मिथ्या अपने ही। रे नर काहे पपोरो देही उड़ जाएगो तू।

अनक पांच कर मणिये साजे पाचे ताग परोही टूट जाए गो सूत बापुरे फिर पाछे पछतोही। जिन तुम सिरजे सिरज सवारे तिस प्यावो दिन रहने ही जन नानक प्रभ कृपा पारी मैं सतगुर ओट गए ही। सोरठ महला पंजवा। गुर पूरा पेट्यो वड़ पागी मने पया तरगासा कोई न पहुंचन हारा दूजा अपने साहिब का भरवासा अपने सतगुर के बलिहार है आगे सुख पाछे सुख।

एक राम नाम आधारा, सकल दर्शन अकाल मूरत प्रभ है बिहोन हारा, कंठ लगाए अपने जन राखे अपनी प्रीत प्यारा, वड्डी वड्याई अचरज शोभा कारज आया रासे, नानक तो गुरु पूरा पेटे हो सगले दुख बिनासे, सोरठ महला पंजवा, सुखिये को पेखे सब सुखिया, रोगी के पाने सब रोगी, करण करावन हार स्वामी आपन हाथ संजोगी, मन मेरे जिन अपना कर्म गवाता तिसके पाने कोई न फूला, जिन सगलो ब्रह्म पछाता।

जन सेवा हर कीर्तन रस गाये, इहा सुख आगे मुख उजल, जन का संगवड पागी पाये। रचना एक अनेक गुण पूरन, जन की केतक उपमा कहिए, अगम अगोचर सब अविनाशी, शरण संतन की लही है। निर्गुण नीच अनाथ अपराधी, ओट संतन की आही, बूढ़क मोगृह अंग कूप में, नानक लेहो निवाही। सोरठ महला पंजवा हर पहला, जाके हृदय वस्या तू करते, ताकी तै आस पुजाई, दास अपने को तू विसरै नाही, चरण पूर मन पाई। तेरी अकथ कथा कथन ना जाई, गुण निदान सुख दाते स्वामी, सबते ऊंच बढ़ाई रहाओ। सो सो कर्म करत है प्राणी, जैसी तुम लिख पाई, सेवक को तुम सेवा दीनी, दर्शन देख अभाई। सर्व निरंतर तुम्हें समाने, जाको तुद आप बुझाई, गुर पर साध मिट्यो अज्ञाना, प्रगट पाए सब ठाई। सोई ज्ञानी सोई प्यानी, सोई पुरख सुभाई, कहो नानक जित पाए दयाला, ताको मन ते बिसर न जाए। सोरठ महला पंजवा, सगल समग्री मोहे व्यापी, कब ऊंचे कब नीचे, शुद्ध न होई है काहू जतना, ओरक को ना पहुँचे। मेरे मन साधु शरण छुटकारा, बिन गुर पूरे जन्म मरण न रही, फिर आवत बारो बारा रहाओ। ओहो जो करम पुलावा कहियत, तिन में उर्जो सगल संसारा, पूरन भगत पुरख स्वामी का, सर्व थोक ते न्यारा। निंदो नाही काहू बात है, एहो खसम का किया, जासो कृपा करी प्रभ मेरे, मिल साध संगत ना ओलिया। पार ब्रह्म परमेश्वर सतगुर, सबना कर तू धारा, कहो नानक गुर बिन नहीं करिए, एह पूरन तत बिचारा। सोरठ महला पंजवा, खोजत खोजत खोज बिचार्यो, राम नाम सत सारा, किलबिक काटे निमक अराध्या, गुरमुख पार उतारा। हर रस पीवो पुरख ज्ञानी, सुन सुन महा कृपत मन पावे, साधु अमृत बानी रहाओ। मुक्त फुगत जुगत सच पाये, सर्व सुखा का दाता, अपने दास को भगत दान देवे, पूरन पुरख विधाता। श्रवणी सुनिए रसना गाये, हृदय त्याये सोई, करण कारण समरथ स्वामी, जाते बिरथा न कोई। बड़े पाग रतन जन्म पाया, करो कृपा कृपाला, साध संग नानक गुण गावे, सिमरै सदा गोपाला। सोरठ महला पंजवा, कर स्नान सिमर प्रभ अपना, मन तन भय अरोगा, कोट विघ्न लाथे प्रभ शरणा, प्रगटे पले संजोगा। प्रभ बाणी शब्द सुवाख्या, गावो सुनो पढ़ो नित भाई, गुर पूरे तू राख्या रहाओ। साचा साहिब अमित वडाई, भगत वत्सल दयाला, संता की पैज रखबा आया, आग बिरद प्रतिपाला। हर अमृत नाम भोजन नित पुंचो, सर्व वेला मुख पावो, जरा मरा पाप सब नाथा, गुण गोविंद नित गावो। सुनी अरदास स्वामी मेरे, सर्व कला बन आई, प्रगट पई सगले जुग अंतर, गुरु नानक की वडियाई। सोरठ महला पंजवा, कर दूजा चौपदे इक ओंकार सतगुरु प्रसाद। एक पिता एक के हम बारक, तू मेरा गुरु हा।

ए मन तै को देखा, सुनमीता हूँ तेरी शरणाई आया, प्रभु मिलो देव उपदेशा। मान न की जय शरण परी जय, करे सो कला मनाय, सुनमीता जियो पिंड सब तन अर्पी जय, क्यों दर्शन हर जियो पाई है। कयो अनुग्रहो प्रसाद संतन कै, हर नामा है मीठा, जन नानक को गुर कृपा पारी, सब अकुल निरंजन डीठा। सोरठ महला पंजवा, कोट ब्रह्मंड को ठाकुर स्वामी, सर्व जिया का दाता रे, प्रतपाले नित सार समाले, इस गुण नहीं मूर्ख जाता रे। हर और

सागर सर्व घटा भरपूरी रे पेखत सुनत सदा है संगे मैं मूर्ख जानिया दूरी रे हर बेअंत हों मित कर वरनो क्या जाना होए कैसो रे करो बेनती सतगुर अपने मैं मूर्ख देओ उपदेशो रे मैं मूर्ख की के तक बात है कोट परादी तरयारे गुरु नानक।

ते भयानक भया करे बेनती राज ठाकुर ते हम तेरी शरणया। जह भंडार गोविंद का खुलिया जे प्राप्त ते लया एक रतन मोको गुरु दीना मेरा मन तन शीतल थिया। एक बूंद गुर अमृत दीनो ता अटल अमर न हुआ भगत भंडार गुरु नानक को सौंपे फिर लेखा मूल न लया। सोरठ महला पंजवा चरण कमल स्यो जाका मन लीना से जन कृत अभाई गुण अमोल जिस हृदय न वस्या ते नर कृष्ण त्रिखाई। हर आराधे अरोग अनदाई जिसनो विसरै मेरा राम स्नेही तिस लाख बेदन जन आई रहाओ। जे जन ओट गई प्रभ तेरी से सुखिए प्रभ सरने जे नर बिसरिया पुरख विधाता ते दुखिया मैं गणने। जे गुरमान प्रभु लिवलाए ते महा आनंद रस करया जे प्रभु विसार गुर ते बेमुखाए ते नरक कोर में परया। जिसको लाया तित ही लागा तैसो ही वरतारा नानक से पकड़ी संतन की हृदय पै मगन चरनारा। सोरठ महला पंजवा राजन में राजा उरझायो मानन में अभिमानी लोभन में लोभी लोभायो त्यों हर रंग रचे ज्ञानी। हर जन को यही सुहावे देख निकट कर सेवा सतगुर हर कीर्तन ही तृप्त पावे रहाओ। अमलम स्यो अमली लग पायो कूमन कूम प्यारी खीर संग बारक है लीना प्रभ संत ऐसे हितकारी। विद्या में विद्यांशी रचिया नैन देख सुख पावे जैसे रखना साग लुभानी त्यों हर जन हर गुण गावे। जैसी पूख तैसी का पूरक सगल कटा का स्वामी नानक प्यास।

हम मूर्ख तुम चतुर सियाने, तू सर्व कला का ज्ञाता, माधो हम ऐसे तू ऐसा, हम पापी तुम पाप खंडन।

तुम बांध दे हो मेहरवाना, तुम करो पला हम पलो न जाने, तुम सदा सदा दयाला, तुम सुखदाई पुरख बिधाते, तुम राखो अपने बाला, तुम निधान अटल सुल्तान, जी जंत सब जाते, कहो नानक हम यह हवाला, राख संतन के पाछे, सोरठ महला पंजवा कर दूजा, माप गर्भ में आपन सिमरन दे, कह तुम राखन हारे, पावक सागर

त्रिण जाने तू दाता मांगन को सगली दान दे प्रभु पाने खिन में अवर खिने में अवरा अचरज चल तुम्हारे रूड़ो गूड़ो गहर गंभीरो ऊंचो अगमा पारे साध संग जो तुम्हें मिलायो तो सुनी तुम्हारी बाणी अनद पया पेखत ही नानक प्रताप पुरख निर्वाणी सोरठ महला पंजवा हम संतन की रेन प्यारे हम संतन की शरणा संत हमारी ओट सतानी संत हमारा गहना हम संतन से बन आई पूरब लिखिया पाई यह मन तेरा भाई रहाओ संतन से मेरी लेवा देवी संतन से व्योहारा संतन से हम लाहा खाटिया हर भगत परे भंडारा संतन मोको पूंजी सौंपी तो उतरिया मन का कोखा कर्म राय अब कहाँ करे गो जो फाटियो सगलो लेखा महा आनंद पाए सुख पाया संतन के प्रसादे कहो नानक हर्षो मन मानिया रंग रते बिस्मा दे सूरठ महला पंजवा जेती समगरी देखो रे नर तेती ही छड़ जानी राम नाम संग कर व्योहारा पावे पर निर्वाणी

मोह अभिमाना का मैं सुख नहीं पाया हो रेन तू सगल की मेरे मन तो अनद मंगल सुख पाये काल न पाने अंतर विद जाने ताकी कर मन सेवा कर पूजा होम ए मनवा अकाल मूरत गुरुदेवा गोविंद दमोदर दयाल माधवे पार ब्रह्म निरंकारा नाम वर्तन नामो वालेवा नाम नानक प्राण आधारा सूरठ मेला पंजवा मृतक को पायो तम सासा विचरत आन मिलाया पशु प्रेत मुगद कै श्रोते हर नामा

मन पावे, उठत बैठत हर गुण गावे, दुख दर्द क्रम सागा, कहो नानक ताके पूर करमा, जासा गुर चरनी मन लागा। सोरठ महला पंजवा, रतन छाड़ कौडी संग लागे, जाते कछु न पाये, पूरन पार ब्रह्म परमेश्वर मेरे मन सभा से आई है। सिमरो हर हर नाम परानी, बिनसै काची दे अज्ञानी, रहाओ मृग तृष्णा अर सुपन मनोरथ, ताकि कछ न गढ़ाई, राम भजन बिन

आवै कट जाए। जब तक समझम ज्ञान तत बेता, जिस मन वसै गोपाला, नाम रतन जिन गुरमुख पाया, ताकी पूरन पाला। कल कलेश मिटे दुख सगले, काफी जम की पासा, कहो नानक प्रभ कृपा तारी, मन तन पय बिगासा। सोरठ मैला पंजवा, करण करावण हार प्रभ दाता, पार ब्रह्म प्रभ स्वामी, सगले जी किए दयाला, सो प्रभ अंतर जामी।

साथी दरगह माने गुण गावत आराध नाम हर आए अपने खाने जय जयकार करे सब उस्तक संगत साध प्यारी सब दलिहार जाओ प्रभ अपने जिन पूरन पैस सवारी गोष्ट ज्ञान नाम सुन उदरे जिन जिन दर्शन पाया पयो कृपाल नानक प्रभ अपना अनुज सेती पर आया सूरठ महला पंजवा प्रभ की शरण सगल पहला से दुख बिन से सुख पाया दयाल हुआ पार ब्रह्म स्वामी पूरा सतगुरु त्याया प्रभ जियो तू मेरो साहिब दाता कर कृपा प्रभ दीन दयाला गुण गावो रंग राता।

से पाँव को विघ्न न को उलावे जो सतगुरु अपने राखे चरण कमल बसे हृदय अंतर अमृत हर रस ताके कर सेवा सेवक प्रभु अपने जिन मन की छिप जाई नानक दास पाके बलिहारे जिन पूरन पैज रखाई सोरठ महला पंजवा माया मोह मगन अंधियार है देवन हार न जाने जियो पिंड साब जिन रचिया बल अपनो करमाने मन मूड़े देख रहे हो प्रभु स्वामी जो किच करे सोई सोई जाने रहे न कछु छानी रहाओ जेवा स्वाद लोग मद मातो उपजे अनक बिकारा बहुत जोन परमत दुख पाया हूँ मैं बंधन के पारा देख वाड़ अनक पर्दे में परदारा संग थाके चित्रगुप्त जब लेखा मांगे तब कौन पर्दा तेरा ठाके दीन दयाल पूरन दुख पंजन तुम बिन ओट न पाई काड ले हो संसार सागर में नानक प्रभु शरणाई सूरत महला पंजवा पार ब्रह्म हुआ सहाय कथा कीर्तन सुखदाई गुर पूरे की बाणी जप अंग करो नित पाणी सहसाचा सिमरो भाई साध संग सदा सुख पाये हर विसर न कभू जाय रहाओ अमृत नाम परमेश्वर तेरा जो सिमरे सो जीवे जिसनो कर्म प्राप्त होवे सो जन निर्मल थीवे विघ्न विनाशन सब दुख नाशन गुरु चरणी मन लागा गुण गावत अचुत अविनाशी हम दिन हर रंग जागा मन इच्छे से ही फल पाए हर की कथा सुहेली आद अंत मद नानक को सो प्रभु हुआ बेली सोरठ महला पंजवा पंच पदा बिन से मोह मेरा और तेरा बिन से अपनी सारी संतो यहाँ बताओ सारी जित हो मैं गर्भ निवारी रहाओ सर्वभूत पार ब्रह्म कर मान्या होवा सगल रे नारी।

सतगुर कर्म चुकायो स्वर्ग निवासी सदा अनेका सब में रहा समायो सोरत महला पंजवा जाओ के सिमरन होए आनंदा बिन से जन्म मरण पै दुखी चार पदार्थ नवनिध पावे बहुर ना कृष्ण।

जगत जीवन कैसे पावे। सूरठ महला पंजवां अविनाशी जीवन को दाता सिमरत फरनल कोई गुण निदान भगतन को बर्तन बिरला पावे कोई। मेरे मन जत गुरु गोपाल प्रभ सोई जाकी शरण पै सुख पाये बहुत दुख न होई। रहाओ वडभागी साथ संग प्राप्त तिन पेटत दुर्मत खोई तिन की पूर्ण।

दर्शन पेटत भूत निहाला, हर का नाम विचार है। मेरा वैद गुरु गोविंदा, हर हर नाम औ

फेरो बख्श ले हो साहिब प्रभ अपने लाख खते कर फेरो। प्रभ जी तू मेरो ठाकुर नेरो हर चरण शरण।

धारे दर्शन देखन हारे गुरपुरे की अचरज वड्याई नानक सद बलिहारे सोरठ महला पंजवा संचन करो नाम तन निर्मल थाती अगम अपार बिलिश बिनोद आनंद सुख मानो खाए जीवो सिख परवार हर के चरण कमल आधार संत प्रसाद पायो।

नानक गुर पायो वड भागे तिस जेवड अवरना कोई। सोरठ महला पंजवा सुख मंगल कल्याण सहज तुन प्रभ के चरण निहारिया राख।

कीमत कहण न जाई, नानक भगत पय अविनाशी, अपना प्रभु पया सहाय। सोरठ महला पंजवा, गए कलेश रोग सब नासे।

सतगुरे अपना सगला दुख मिटाया, पाप रोग गए गुर बचनी मन इच्छे फल पाया। मेरा गुर पूरा सुखदाता करण कारण समरथ स्वामी, पूरन पुरख विधाता रहाओ। आनंद विनोद मंगल गुण गावो गुरु नानक भय दयाला, जय जयकार भय जग पीतर हुआ पार ब्रह्म रखवाला। सोरठ मैला पंजवा हमरी गणत ना गणिया काई अपना।

राम की रखवाली सुख सहज आनंद गुण गावो मन तन देह सुखाली रहाओ सतत उदाहरण सतगुरु मेरा मोहित का परवासा बख्श ले सब सत

हर के चरण हृदय उर्धार, सदा सदा प्रभ सिमरिए पाए, दुख किलबिक काटन हार। रहाओ तिसकी सरणी उबरे पाई, जिन रचिया सब कोए, करण कारण समरथ सो पाई।

हर हर नाम ते आई सुख सागर प्रभ विसरो नाही मन चिंदियाड़ा फल पाई रहाओ सतगुर पूरे ताप गवाया अपनी कृपा धारी पार ब्रह्म प्रभ पए दयाला दुख मिटिया सब परवारी सर्व निधान मंगल रस रूपा हर का नाम आधारो नानक पत राखी परमेश्वर उदरिया सब संसारो सोरठ महला पंजवा मेरा सतगुर रखवाला होआ पार कृपा प्रभ हाथ दे राखिया हर गोविंद नवा निरोआ रहाओ साप दया प्रभ आप मिटाया जन की लाज रखाई साध संगत ते सब फल पाए सतगुर कै बल जाए हलत पलत प्रभ दोवें सवारे हमरा गुण अवगुण ना बिचारिया अटल बचन नानक गुर तेरा सफल कर मस्तक धारिया सोरठ महला पंजवा जी जंत्र सब तिसके किए सोई संत सहाई अपने सेवक की आपे राखे पूरन पई बढ़ाई पार ब्रह्म पूरा मेरे नाल गुर पूरे पूरी सब राखी होए सर्व दयाल रहाओ अंदिन नानक नाम ध्याए जी प्राण का दाता अपने दास को कंठ

गुर पेटत मन ओ माहा, सगल पराशत लाथे मिल साध संगत कैसा थे, गुण निधान हर नामा जप पूरन होए कामा, गुर कीनो मुकुट द्वारा सब सृष्ट करे जय।

कृपा तारी, प्रभ पूरी लोच हमारी, कर स्नान गृह आए, आनंद मंगल सुख पाए। संतो राम नाम निस्तरिये, उठत बैठत हर हर त्याये। हम दिन सुकृत करिये रहाओ, संत का मार्ग धर्म की पौड़ी, को वड भागी पाए। कोट जन्म के किल विखनासे, हर चरणी सिसलाए। उस्तत करो सदा प्रभ अपने।

सब दुख नासन सतगुर नाम दृढ़ाया, होए पाप भए सब पावन जन नानक सुख कर आया। सोरत मैला पंजवा साहिब गुनी गहेरा, कर लस्तर सब तेरा, रखवाले गुर गोपाला सब जी भय दयाला। जब अनद रहो गुर चरणा, पौ कत है नहीं प्रभ सरणा। रहाओ तेरिया दासा हृदय मुरारी, प्रभ अवचल नीव उसारी। बल तन तकिया तेरा, तू पारो ठाकुर मेरा। जिन जिन साध संग पाया, सो प्रभु आप तराया। कर कृपा नाम रख।

आई सास सास प्रभ त्याये हर मंगल नानक दाइये सोरठ महला पंजवा सुख सहज आनंदा प्रभ मिलियो मन पावंदा पूरे गुर कृपा तारी तागत पई हमारी हर की प्रेम।

कुमारे अपने दास का सदा रखवाला पर कृपा अपने कर राखे मात पिता जो पाला रहाओ वडपागी सतगुर पाया जिन जम का पंथ मिटाया हर भगत पाए चित लागा जप जीवे से वडपागा हर अमृत बाणी गावे सादा की दूरी नावे अपना नाम आपे दिया प्रभ करण हार रख लिया हर दर्शन प्राण आधारा एह पूरन विमल विचारा कर कृपा।

संग सहाई पाया जह जाये तां सुहेले कर कृपा प्रभु मेले हर गुण गावो सदा सुभाई मन चिंदे सगले फल पावो जी कै संग सहाई रहाओ नारायण प्राण आधारा हम संत जनारे नारा पतित पुनीत कर दीने कर कृपा हर जस दीने पार ब्रह्म करे प्रतपाला सद जी संग रखवाला हर दिन रहन

सिद्ध करत लाल तब चतुर पात रो आयो रहाओ क्यों बिसरे इहो लाल प्यारो सर्व गुणा सुख दायो मंदर चर कै पंथ निहारो नैन नीर पर आयो हौ हौ पीत पयो है बीचो सुनत देश निकटायो पांबीरी के पात पर दो बिन देखे दूरायो पयो कृपाल।

सर्व गुना निध गायो सर्व गुना निध रायो रहाओ दूजा। सोरठ मैला पंजवा

मालिक पाए सुवाई, लख अपराध कमावे, हर उपदेश छिड़के बहु पांची, बहुड़ पिता दल लावे। पिछले अवगण बख्श लए प्रभु, आगे मार्ग पावे, हर अंतर जामी सब विद जाने, ता किस पे आख सुनाये, कहने कतन ना पीजे, गोविंद हर पावे पैज रखाये, अवर ओट में सगली देखी, एक तेरी ओट रहाये, ओए दयाल कृपाल प्रभ ठाकुर, आपे सुने विनंती, पूरा सतगुर मेल मिलावे, सब चूके मन की चिंती, हर हर नाम अवखद मुख पाया, जन नानक सुख वसंती, सोरठ महला पंजवा, सिमर सिमर प्रभ पय आनंदा, दुख कलेश सब नाथे, गुण गावत त्यावत प्रभ अपना, कार्य सगले सांठे, जग जीवन नाम तुम्हारा।

कीमत कह न जाई, पेख पेख जीवे प्रभ अपना अचरज तुम्हें बढ़ाई। तार अनुग्रह आप सब स्वामी, पत मत की नी पूरी, सदा सदा नानक बलिहारी, बाछो संता धूरी। सोरठ मैला पंजवा, गुर पूरा नमस्कारे, सब सबे काज सवारे, हर अपनी कृपा तारी, प्रभ पूरन तेज सवारी, अपने दास को पयो सहाई, सगल मनोरथ कीने करते, ऊनी बात न काई, रहाओ करते पुरख पा

सतगुर की वडियाई, मन इच्छे फल पाई, संतो दिन दिन चढ़े सवाई रहाओ। जी जंत सब पै दयाला, प्रभ अपने कर दीने, सहज सुभाए मिले गोपाला, नानक साच पति ने। सोरठ महला पंजवा, गुर का शब्द रखवारे, चौकी चौगिर्द हमारे।

सवारी मन सिंधिया फल पाया प्रभ अपना सदा त्याया। संतो इस दिन अवर न कोई करण कारण प्रभ सोई रहाओ प्रभ अपने वर्गी ने सगल जी वक्ती ने जन नानक नाम।

जो तुध भावे मोहे सियाणप कछु ना आवे। हम बारिक तौ शरणाई प्रभ आपे तैज रखाई। मेरा मात पिता हर राया कर कृपा प्रकट।

काज हमारा होया प्रभ चरणी मन लागा पूरन जाके भागा मिल साध संग हर ध्याया आठ पहर आराध्यो हर हर मन चिंधिया।

सदा हर जाते प्रभु बालक राखे आते शीतला छाक रहाई बिघन गए हर नाई। मेरा प्रभु हुआ सदा दयाला अरदास सुनी भगत अपने की सब जी भया कृपाला रहाओ। प्रभु करण कारण समराखा हर सिमरत सब दुख लाथा अपने दास की सुनी बेनंती सब नानक सुख सवंती। सोरठ महला पंजवा अपना गुरु ते आए मिल कुशल सेती कार्य आए अपना गुरु ते आए

हर आराध सबो किछ पाये, कार्ज सगले साधो रहाओ। प्रेम भगत प्रभ लागी।

दुख रोग का डेरा बनना, परमेश्वर दिता बनना, दुख रोग का डेरा बनना, आनंद करे नर नारी, हर हर प्रभु।

वाला प्रभु सतगुर दीन दयाला कैथे ओथे रखवाला प्रभु सतगुर दीन दयाला दास अपने आप राखे कट कट शब्द सो पाके।

भाव आप सहाई होआ सच्चे दा सच्चा टोआ आप सहाई होआ सच्चे दा सच्चा डोआ तेरी भगत वड्याई पाई नानक प्रभ सरनाई सोरठ महला पंजवा सतगुर पूरे भाणा ता जपया नाम।

थारी प्रभु राखी तेज हमारी हर के चरण सदा सुखदाई जो इच्छे सोई।

खन्ना सगल रेन चारी, इस आगे तो न टिके विकारी, गुर पूरे ए गल सारी, हर हर नाम संतन की ओटा, जो सिमरे तिसकी गत होवे, उधरे सगले कोटा रहाओ। संत संग जस गाया, ए पूरन हर तन पाया, कहो नानक आप मिटाया, सब पार ब्रह्म नगरी आया। सोरठ महला पंजवा, गुरपूरे पूरी कीनी, बस अपनी कर दीनी, नित आनंद सुख पाया, थाम सगले सुखी वसाया। हर की भगत फल दाती, हर की भगत फल दाती, गुरपूरे कृपा कर दीनी, विरले किन्ही जाती रहाओ। गुरबाणी गावे भाई, ओ सफल सदा सुखदाई, गुरबाणी गावे भाई, ओ सफल सदा सुखदाई, नानक नाम ते आया, पूरब लिखिया पाया। सोरठ महला।

नानक दास वखाणी निर्मल अकथ कहानी सोरठ महला पंजवा भूखे खावत लाज ना आवे क्यों हर जन हर गुण गावे भूखे खावत लाज ना आवे क्यों हर जन हर गुण गावे अपने काज को क्यों अलकाइए जित सिमरन दर गए मुख उजल सदा सदा सुख पाइए रहाओ ज्यो कामी काम लुभावे त्यों हर दास हर जस भावे ज्यो माता

0: सूरठ मैला पंजवा सुख सांद कर आया निंदक के मुख छाया पूरे गुर पहराया दिन से दुख सवाया संतो साचे की वड्याई जिन अचरज सोग बनाई रहाओ बोले साहिब के भाणे बोले साहिब के भाणे दास बाणी ब्रह्म वखाणे नानक प्रभ सुखदाई जिन पूरी बनत बनाई सोरठ महला पंजवा प्रभ अपना हृदय ध्याए कर सही सलामत आए संतोख पया संसारे गुर पूरे ले तारे संतो प्रभ मेरा सदा दयाला संतो प्रभ मेरा सदा दयाला अपने भगत की गणत न गणी राखे बाल गोपाला रहाओ हर नाम हृदय उधारे तिन सबे थोक सवारे गुर पूरे तुस दिया फिर नानक दुख न सिया हर नाम हृदय उधारे तिन सबे थोक सवारे गुर पूरे तुस दिया फिर नानक दुख न सिया
1: सूरठ महला पंजवा हर मन

मैं जिसनों बख्श ले मेरे प्यारे सो जस तेरा गावे रहाओ। तू पारो स्वामी मेरा संता परवासा तेरा नानक प्रभ शरणाई मुख निंदक कै छाई। सोरठ महला पंजवा आगे सुख मेरे मीता पाछे आनंद प्रभ कीता परमेश्वर बनत बनाई फिर डोलत कथु नाही। साचे साहिब सिओ मन मानिया हर सर्व निरंतर जानिया रहाओ। सब जी तेरे दयाला अपने भगत करें प्रतपाला अचरज तेरी वड्याई नित नानक नाम ते आई। सोरठ महला पंजवा नाल नारायण मेरे जमदूत ना आवे नेरे कंठ लाए प्रभ राखे सतगुर की सच साखे। गुर पूरे पूरी कीती दुश्मन मार विडारे सगले दास को सुमत दीती रहाओ। प्रभ सगले थान वसाए सुख सांद फिर आए नानक प्रभ शरणाए जिन सगले रोग मिटाए। सोरठ महला पंजवा सर्व सुखा का दाता सतगुरता की सरणी पाई है दर्शन पेटत होत आनंद।

रहाओ तिसे प्राप्त जिस तुर लिखिया सोई पूरन भाई नानक की बेनंती प्रभ जी नाम रहा लिवलाई। सोरठ महला पंजवा करन करावन हर अंतर जामी जन अपने की राखे जय जयकार होत जग पीतर सबद गुरु रस जाखे। प्रभ जी तेरी ओट गुसाई तू समरथ शरण का दाता आठ पहर तुम त्याई। रहाओ जो जन भजन करे प्रभ तेरा तिसे अंदेसा नाही सतगुर चरण लगे पौ मिटिया हर गुण गाए मन माही। सुख सहज आनंद कनेरे सतगुर दिया दिलासा जिन कर आए सो

सोरठ महला पंजवा पयो किरपाल दीन दुख पंजन आपे सब विथाटी खिन में राख लियो जन अपना गुर पूरे बेड़ी काटी। मेरे मन गुर गोविंद सद त्याय सगल कलेश मिटै इस तंते मन चिंदिया फल पाई रहाओ। जी जंत जाके सब कीने प्रभ ऊंचा अगम अपारा साध संग नानक नाम ते आया मुख उजल पे दरबारा। सोरठ महला पंजवा सिमरो अपना साई दिन सरैन सद त्याई हाथ दे जिन राखे हर नाम महारस चाखे। अपने गुरु ऊपर कुर्बान पए किरपाल पूरन प्रभदाते जी होए मेहरवान रहाओ। नानक जन शरणाई जिन पूरन पैज रखाई सगले दुख मिटाई सुख पुंचो मेरे पाई। सोरठ महला पंजवा।

प्रभ जियो खसमा न कर प्यारे बुरे पले हम थारे रहाओ सुनी पुकार समरथ स्वामी बंधन काट सवारे पहर सिर पाओ सेवक जन मेले नानक प्रगट पहारे सोरठ महला पंजवा जी जंत सब वस्त्र दीने सेवक सब दरबारे अंगीकार कियो प्रभ अपने पावनित पार उतारे संतन के कार्य सगल सवारे दीन दयाल कृपाल कृपानिद पूरन खसम हमारे रहाओ आओ बैठ आदर सब थाई ऊन न कतहू बाता भगत सिर पाओ दियो जने अपने प्रताप नानक प्रभ जाता सोरठ महला नामा एक ओंकार सतगुर प्रसाद रे मन राम स्यों कर प्रीत श्रवण गोविंद गुण सुनो अर गाओ रसना गीत रहाओ कर साध संगत सिमर मादो होहे पतत पुनीत काल ब्याल ज्यों परयो डोले मुख पसारे मीत आज काल पुन तोहे ग्रस है समझ राखो चीत कह नानक राम भजले जात अवसर बीत सोरठ महला नाम मन की मन ही माहे रही ना हर पजे ना तीर्थ सेवे चोटी काल गही राव दारा मीत पूत रथ संपत तन पूरन सब मही अवर सगल मिथ्या ए जानो भजन राम को सही फिरत फिरत बहुते जुग हारयो मानस दे लही नानक कह

अस रचियो राम भगत नह कीनी रहाओ। मुकत पंथ जान्यो तैनाहिन तन जोरन को धाया अंत संग काहू नहीं दीना बिरथा आप मंदाया। ना हर पज्यो ना गुरजन सेव्यो नै उपजो कछ ज्ञाना कट ही माहे निरंजन तेरे तै खोजत उद्याना। बहुत जन्म परमत तै हारयो अस्थिर मत नहीं पाई मानस दे पाए पद हर पज नानक बात बताई। सोरठ महला नावा मन रे प्रभ की शरण विचारो जेह सिमरत गनकासी उदरी ताको जस उधारो रहाओ। हटल भयो त्रू जाके सिमरन अर निरपै पद पाया दुख हरता ए विद को स्वामी तै काहे बिसराया। जब ही शरण गई कृपा निद गज ग्रह ते छूटा महमा नाम कहां लो बरनो राम कहत बंधन ते टूटा। अजामल पापी जग जाने।

नह अफसर मत पाई, बिख्या सकत रहो निस्बासर नह छूटी अदमाई। साध संग कबू नहीं कीना, नह कीरत प्रभ गाई, जन नानक मैं नाहे को गुन राख ले हो सरनाई। सोरठ महला नामा माई मन मेरो बस नाहे, निस्बासर बिखियन को तावत के बिदरो को ताहे। राहो वेद पुराण सिमरत के मत सुन, निमख नाहिए बसावे पर तन पर।

हार सगल जगत है जैसे सुपना बिनसत लगत ना बार रहाओ बारू पीत बनाई रचपच रैत नहीं दिन चार तैसे ही ए सुख माया के उर्जो कहां गवार अजमु समझ कछ बिगड़ियो नाहिन पाजले नाम मुरार कहो नानक निज मत साधन को पाक्यो तोहे पुकार सोरठ मैला नावा ए जग मीत ना देखियो कोई सगल जगत अपने सुख लागियो

ओ संग छाड़ सब पागे, कहो कहा जिया मन बौरे को, इनस्यो नेहो लगायो, दीना नाथ सकल पै पंजन, जस तां को बिसरायो। स्वान पूछ ज्यों पयो ना सूदो, बहुत जतन मैं कीनो, नानक लाज बिरद की राखो, नाम तुहारो लीनो। सोरठ मैला नावा मन रे गयो ना गुरु उपदेश, कहां पयो जो मूड मुडायो, भगवो कीनो पेश रहाओ। साथ छोड़ के झूठे लाग्यो, जन्म अकारत खोयो, कर पर पंच उदर निज पोखियो।

नाम रतन बिसराना। रहो अचेत ना चेत्यो गोविंद बिरथा औध सिरानी, कहो नानक हर बिरध पछानो पूले सदा प्राणी। सोरठ महला नावा जो नर दुख में दुख नहीं माने, सुख सने अर पै नहीं जाके, कंचन माटी माने रहाओ, नह निंदया नह उस्तत जाके, लोभ मोह अभिमाना, हर सोगते रह न्यारो, नाहे मान अपमान।

कट ब्रह्म निवासा गुर कृपा जिह नरकों कीनी तेह एह जुगत पछानी नानक लीन पयो गोविंद स्यों ज्यों पानी संग पानी। सोरठ महला नावा प्रीतम जान ले हो मन माही अपने सुख स्यों ही जग पांदे हो को काहू को नाही रहाओ सुख में आन बहुत मिल बैठत रहत चहु जिसके रह विपत परी सब ही संग छाड़त को ना आवत ने रह कर की नार बहुत हित जांस्यो सदा रहत संग लागी जब ही हंस तजी एह काया प्रेत प्रेत कर पागी एह विद को व्योहार बन्यो है जांस्यो न्यो लगायो अंत बार नानक बिन हर जी को कामना आयो। सोरठ महला पहला कर पहला अष्टपदियां चौतुकी एक ओंकार सतगुर प्रसाद दुबदा ना पड़ो हर बिन होर ना पूजो मरह मसान ना जाई तृष्णा रात ना पर कर जावा।

दूजा भाई मनमुख जंत दुख सदा निवासी गुरमुख दे वड्याई अपर अपार अगम अगोचर कहने कीम न पाई सुन समाद महापरमार्थ तीन पवन पत नामं मस्तक लेख जिया जगजोनी सिर सिर लेख सहामं कर्म सो कर्म कराए आपे आपे भगत दृढ़ामं मन मुख झूठ लह पैमान आपे ज्ञान अगामं जिन चाखिया से ही साध जान ज्यो गूंगे मिठियाई अकथै का क्या कथिय पाई चालो सदा रजाई गुरदाता मेले तामत होवे निगुरे मत न काई ज्यो चलाए त्यों चाले पाई होर क्या को करे चित्राई एक परम पुलाए एक भगती राते तेरा खेल अपारा जित तुद लाए तेहा फल पाया तू हुकम चलावन हारा सेवा करी जे किछ होवे अपना जियो पिंड तुम्हारा सतगुर मिले कृपा कीनी अमृत नाम आधारा गगन अंतर वासिया गुण प्रगासिया गुण में ज्ञान त्यानं नाम मन पावे कहे कहावे तत्तो तत्व खानं शबद गुर पीरा गहर गंभीरा बिन शब्द जग बौरानं पूरा बैरागी सह सुभागी सच नानक मन मानं सोरठ महला पहला तितुकी आसा मनसा बंदनी पाई कर्म तर्म बंदकारी पाप पुन जग जाया पाई बिनसे नाम विसारी एह माया जग मोहनी पाई कर्म सबे वेकारी सुन पंडित कर्माकारी जित कर्म सुख उपजे पाई सो आत्म तत विचारी रहाओ शास्त्र वेद बके खड़ो पाई

सिर कै पारी, दुर्मत कणे विगूति पाई, दूजे पाए खुआई। बिन सतगुर नाम न ना पाए पाई, बिन नामे परम न जाई, सतगुर सेवे ता सुख पाए पाई, आवन जान रहाई। साच सहज गुरते उपजै पाई, मन निर्मल साज समाई, गुर सेवे सो बूजै पाई, गुर बिन मग्न पाई। जिस अंतर लोभ के कर्म कमावे पाई, कूड़ बोल बिख खाई, पंडित दही विलोइए पाई, विचो निकले तथ, जल मछिए जल देखिए पाई, ए जग ए हवथ। गुर बिन परम विगूचिए पाई, कट कट देओ अलख, एह जग तागो सूत को पाई, दैदिस बांधो माए, बिन गुर गांठ न छूटे पाई, थाके कर्म कमाए। एह जग परम फुलाया पाई, कहना किछु न जाए, गुर मिले पौ मन वसे पाई, पै मरना सच लेख, मज्जन दान चंगियाईया पाई, दरगह नाम विशेख। गुर अंकस जिन नाम दृढ़ाया पाई, मन वसिया चूका पेख, ए तन हार सराफ को पाई, वखर नाम अपार, ए वखर वापारी सो दृढ़ पाई, गुर शब्द करे विचार। तन वापारी नानका पाई, मेल करे वापार सोरठ मेला पहला, जिन्नी सतगुर सेविया प्यारे, तिनके साथ तरे, तिना ठाक न पाई है प्यारे।

वाणी गुर के शब्द पछाता अचिंत काम करें प्रभ तिनके जिन हर का नाम प्यारा गुर प्रसाद सदा मन वस्या सब काज सवारण हारा ओना की रीस करे सो विगुचे जिन हर प्रभ है रखवारा बिन सतगुर सेवे किने ना पाया मन मुख पौ के मुए बिल लाई आवे जावे ठौर न पावे दुख में दुख समाई गुरमुख होवे सो अमृत पीवे सहजे साज समाई बिन सतगुर सेवे जन्म ना छोड़े जे अनेक कर्म करे अधिकाई वेद पढ़े ते वाद वखाणे बिन हर पत गवाई सच्चा सतगुर साची जिस बाणी पज छूटे गुर शरणाई जिन हर मन वस्या से दर साचे दरसा चै सचियारा ओना दी शोभा जुग जुग होई कोई न मेटन हारा नानक तिन कै सद बलिहार है जिन हर राख्या उधारा सोरठ मैला तीजा दुत की निगुणिया नो आपे बख्श ले पाई सतगुर की सेवा लाए सतगुर की सेवा उत्तम है पाई राम नाम चित लाए हर जियो आपे बख्श मिलाए गुणहीन हम अपराधी पाई पूरे सदगुर लेर लाए रहाओ कौन कौन अपराधी बख्शियन प्यारे साचे शब्द विचार पौजल पार उतारन पाई सतगुर बेड़े चार मनूरे ते कंचन भय भाई गुर पारस नेल मिलाए आप छोड़ नाओ मन वस्या पाई ज्योति ज्योत मिलाए हों वारी हों वारने पाई सतगुर को सद बलिहारे जाओ नाम निधान जिन रिता पाई गुरमत सहज समाओ गुर बिन सहज ना उपजे पाई पूछो ज्ञानिया जाए सतगुर की सेवा सदा कर पाई विच्चों आप गवाए गुरमती पौ उपजे पाई पौ करनी सच सार प्रेम पदार्थ पाई है पाई सच नाम आधार जो सतगुर सेवे अपना पाई तिनके हो लागो पाए जन्म सवारी अपना पाई कुल भी लई बख्शाए सच बाणी सच शब्द है पाई गुर कृपा ते होए नानक नाम हर मन वसै पाई तिस बिघन न लागे कोए सोरठ मैला तीजा हर जियो शब्दे जापदा पाई पूरे पाग मिलाए सदा सुख सोहागणी पाई अंदिन रतिया रंग लाए हर जी तू आपे रंग चढ़ाए गावो गावो रंग राते हो पाई हर सेती रंग लाए रहाओ गुर की कार कमावणी पाई आप छोड़ चित लाए।

मन हठ कार कमावनी पाई बिन नावे कूड़ियार से गावे जिन मस्तक पाग है पाई पाए सच्चे बैराग अन दिन राते गुण रवे पाई निरपो गुर लिव लाग सबना मार जीवालदा पाई सो सेवो दिन रात सो क्यों मनो विसारी है पाई जिस दी वड्डी है दात मन मुख मैली डुमनी पाई दरगे नाही थाओ गुरमुख हो वै ता गुण रवे पाई मिल प्रीतम साच समाओ एक जन्म हर ना चेत्यो भाई क्या मोह देसी जाए किड़ी पवंदी मोह आयोन पाई बिख्या नो लोभाए नाम समाले सुख वसे भाई सदा सुख सांत शरीर नानक नाम समाल तू पाई अपरंपर गुणी गहीर सोरठ मैला पंजवा कर पहला अष्टपदियां एक ओंकार सतगुर प्रसाद सब जग जिने उपाया भाई करण कारण समरथ जियो पिंड जिन साजिया पाई देकर अपनी वथ किन कही है क्यों देखिए पाई करता एक अकथ गुरु गोविंद सलाहिए पाई जिसते जापे तथ मेरे मन जपिए हर भगवंता नाम दान दे जन अपने दुख दर्द का हंता रहाओ जा के कर सब किछे पाई नौनिद परे पंडार जिसकी कीमत ना पवे पाई ऊंचा अगमा पार जी जंत प्रतपालदा पाई।

पुंचाए पुलायन प्यारे उतरे नाही विजोग जो गुर मेल उधारिया प्यारे तिन तुरे पया संजोग माया लालच अटे।

जो गुरमेल सवारिया प्यारे तिनका रहा मूल साकत संग न की जई प्यारे जेका पार वसाए जिस मिले हर विसरे प्यारे सो मोह काले उठ जाए मन मुख टोई न मिले प्यारे दरगह मिले सजाए जो गुरमेल सवारिया प्यारे तिना पूरी पाए संजम सह स्यान पा प्यारे इक ना चली नाल जो बेमुख गोविंद ते प्यारे तिन कुल लागे गाल होंदी वस्त ना जातियां प्यारे कूड़ ना चली नाल सतगुर जिना मिलायुन प्यारे साचा नाम समाल सत संतोख ज्ञान ध्यान प्यारे जिसनो नदर करे आंदिन कीर्तन गुण रवे प्यारे अमृत पूर पूर परे दुख सागर तिन लंगया प्यारे पावजल पार परे जिस पावे तिस मेल लह प्यारे से ही सदा खरे समरथ पुरख दयाल देओ प्यारे भगता तिसका तान तिस सरनाई टै पए प्यारे जे अंतर जामी जान हालत पलत सवारिया प्यारे मस्तक सच निशान सो प्रभ कदे न विसरे प्यारे नानक सद कुर्बान सोरठ महला पंजवां कर दूजा अष्टपदियां इक ओंकार सतगुर प्रसाद पाठ पढ़ियो अर वेद विचार्यो निवल पुयंगम सादे पंच जना स्यो संग ना छुटक्यो अधिक अंग बुद बादे प्यारे इन विद मिलन न जाई मैं किए कर्म अनेका हार पर्यो स्वामी के द्वारे दीजे बुद्ध विवेका रहाओ मोन पयो कर पाती रहो नगन फिरयो बन माही कट तीरथ सब तरती प्रम्यो दुबदा छुटके नाही मन कामना तीरथ जाए बस्यो सिर करवत धराए मन की मैल ना उतरे ए विद जेलक जतन कराए कनक कामनी है वर गैवर बहुविध दान दातारा अन बस्तर पूम बहु अर्पे नह मिलिए हर द्वारा पूजा अर्चा बंदन दंडोत खट कर्मा रत रहता हौ हौ करत बंदन में परया नह मिलिए एह जुगता जोग सिद्ध आसन चौरासी ए भी कर कर रहया वड्डी आरजा फिर जन्मे हर स्यों संग ना गया।

तिस पयो प्राप्त जिस पूर्व लिखे का लहना तेरो सेवक ए रंग माता पयो कृपाल दीन दुख पंजन हर हर कीर्तन ए मन राता रहाओ दूजा राग सोरठ वार महले।

पै वसी सतगुर सेवन संग पर हर कपड़ जे पिर मिले खुशी रावे पिर संग सदा सिगारी नाओ मन कदे न मैल पतंग देवर जेठ मोए दुख ससु का डर किस जे पिर पावे नानका कर्म मणि सब सच महला चौथा सोरठ ताम सुहावणी जा हर नाम टंडोले गुरपुरख मनावे अपना गुरमति हर हर बोले हर प्रेम कसाई दिन सरात हर रती हर रंग चोले हर जैसा पुरख न लब्बई सब देखिया जगत में टोले गुर सतगुर नाम दृढ़ाया मन अंत न काहू डोले जन नानक हर का दास है गुर सतगुर के गोल बोले पौड़ी तू आपे सिष्ट करता सृजन हारिया तुद आपे खेल रचाए तुद आप सवारिया दाता करता आप पोगन हारिया सब तेरा शब्द वरते उपावन हारिया हौ गुरमुख सदा सलाही गुर को वारिया श्लोक महला तीजा हौ मैं जलते जल मोए प्रम आए दूजे भाए पूरे

सफलियो सतगुर सेविया तन जन्म प्रवान जिना सतगुर जीवंदिया मोया ना विसरै सेई पुरख सुजान कुल उधारे आपना सो जन होवै प्रवान गुरमुख मोए जीवंदे प्रवान है मन मुख जन्म मराहे नानक मोए ना आखिए जे गुर कै शब्द समाए पौड़ी।

हर नाम ते आई है सतसंगत साधु लग हर नाम समाई है हर तेरी वड्डी कार मैं मूर्ख लाई है हौ लाला गोला तुद मैं हुक्म फरमाई है हौ गुरमुख कार कमावा जे गुर समझाई है श्लोक महला तीजा पूरब लिखिया कमावना जे करते आप लिखियास मोठ गौली पायन विसरिया गुणतास मत जानो जग जीवदा दूजे पाए मोयास जिनी गुरमुख नाम न चेत्यो से बहन न मिलनी पास दुख लागा बहु अतकणा पुत कलत ना सास कोई जास लोकां विच मुह काला होआ अंदर उबे सास मन मुखानो को ना विसही चुक गया वे सास नानक गुरमुखानो सुख अगला जिना अंतर नाम निवास महला तीजा से सैन से सज्जना जे गुरमुख मिले सुभाए सदगुर का पाना अनदिन करे से सच रहे समाए दूजे पाए लगे सज्जन ना आखिए जे अभिमान करे वेकार मनमुख आप स्वार्थी कारज ना सके सवार नानक पूरब लिखिया कमावना कोई ना मेटन हार पौड़ी तुद आपे जगत उपाय कै आप खेल रचाया त्रै गुण आप सिरजिया माया मोह वधाया विच हो मैं लेखा मंगी है फिर आवे जाया जिना हर आप कृपा करे से गुर समझाया बलिहा।

जग कमला फिरे गुरमुख नदरी आया। तंदा करतिया नेफल जन्म गवाया, सुखदाता मन ना वसाया। नानक नाम तिना को मिलिया, जिनको तुर लिख पाया महला तीजा। कर ही मैं अमृत भरपूर है, मनमुखा साध न पाया। ज्यो कस्तूरी मृग न जाने, परम दा परम पुलाया। अमृत ताज बिख संग्रह करते आप खुआया, गुरमुख विरले सो जी पई, तिना अंदर ब्रह्म दिखाया। तन मन शीतल होया, रसना हर साध आया। सबदे ही नाउ उपजे, सबदे मेल मिलाया। बिन सबदे सब जग बोराना, बिरथा जन्म गवाया। अमृत एको शब्द है, नानक गुरमुख पाया पौड़ी। सो हर पुरख अगम है, कहो कित विद पाई है। तिस रूप न रेख अदृष्ट कहो, जन क्यों त्याई है। निरंकार निरंजन हर अगम क्या कह, गुण गाई है। जिस आप बुझाए आप, सो हर मार्ग पाई है।

नानक रंग ना उतरे ब्याह ना लगे के पौड़ी हर आप वरते आप हर आप बुलाएंदा हर आपे सृष्ट सवार सिर संदे लाएंदा इक ना भगती लाए इक आप खुआएगा इक ना मार्ग पाए इक उजड़ पाएगा जन नानक नाम से आए गुरमुख गुण गाएगा। श्लोक महला तीजा सतगुरु की सेवा सफल है जे को करे चित लाए मन चिंदिया फल पावना हों मैं विच्चों जाए बंधन तोड़े मुक्त होए सच्चे रहे समाए इस जग में नाम अलभ है गुरमुख वसे मन आए नानक जो गुर सेवे अपना हों तिन बलिहारे जाओ। महला तीजा मन मुख मन अजित है दूजे लगे जाए किसनो सुख सुपने नहीं दुखे दुख विहाए कर कर पढ़ पढ़ पंडित थके सिद्ध समाध लगाए एह मन वस न आवई थके कर्म कमाए पेख तारी पेख कर थके हर हर तीरथ नाए मन की सार न जाननी हों मैं परम तुलाए गुर प्रसादी पौ पया बड भाग वस्या मन आए पै पै मन वस होवा हों मैं शब्द जलाए सच रते से निर्मले ज्योति ज्योत मिलाए सतगुर मिले नौ पाया नानक सुख समाए पौड़ी ए पूपत राणे रंग दिन चार सुहावना एह माया रंग कुसंब खिन मैं लह जावना चलदिया नाल ना चले सिर पाप लै जावना जा पकड़ चलाया काल का।

फिर मिलन ना पाए नहीं जमे ते मर जाए सहसा रोग ना छोड़े दुख ही मैं दुख पाहे नानक नदरी बख्श ले सबदे मेल मिलाए मैला तीजा जो सतगुर ते मोह फिरे तिना ठौर न ठाओ ज्यो छुट्टड़ कर कर फिरे दो चारण बदनाओ नानक गुरुमुख बख्शी है से सतगुर मेल मिलाओ पौड़ी जो से मैं सत मुरार से पवजल तर गया जो बोले हर हर नाओ तिन जम छट गया से दरगह पेंदे जाहे जिना हर जप लया हर सेवे से ही पुरख जिना

नानक नाम रत्या बल जाओ पौड़ी। से हर नाम त्यावे जो हर रत्या, हर इक त्यावे इक इको हर सत्या। हर इको वरते इक इको उत्पत्या, जो हर नाम त्यावे तिन डर सट कत्या। गुरमति देवे आप गुरमुख हर।

चीजा। हर गुण तोट ना आवई कीमत कहन ना जाए, नानक गुरमुख हर गुण रवे गुण में रह समाए पौड़ी। हर चोली दे सवारी कड पैदी भगत कर, हर पाठ लगा अधिकाई बहु बहु विद पांत कर। कोई बूझे बूझन हारा अंतर विवेक कर, सो बूझे एहो विवेक जिस बुझाए आप हर। जन नानक कहे विचारा गुरमुख हर सत।

प्रकृति सब जगत खाए जो रते हर नाए जिन गुर के शब्द सलाहया हर स्यों रहे समाए पंडित दूजे पाए बरकत न हो वही ना कन पल्ले पाए पर थके संतोख न आयो अम दिन जलत विहाए कूक पुकार न चुकई न संसार विचों जाए नानक नाम विहोणिया मोह काले उठ जाए पौड़ी हर सज्जन मेल प्यारे मिल पंथ दसाई जो हर दसे मित तिस हो बल जाई गुण सांझी तिन स्यों करी हर नाम ते आई हर सेवी प्यारा मित सेव हर सुख पाई बलिहारी सतगुरु तिस जिन सो जी पाई श्लोक महला तीजा पंडित मैल न चुकई जे वेद पढ़े जुगचार त्रै गुण माया मूल है विच हो मैं नाम विसार पंडित पूले दूजे लागे माया कहवा पार

सब राज सृष्ट काले, नानक गुरमुख बुझिए जा आपे नदर करे महला तीजा। जिन गुरमुख नाम से आया आए ते परवान, नानक कुल उदार अपना दरगे पावे मान पौड़ी।

जी पाए। सतगुर अपने घर वरतदा आपे ले मिलाए। नानक सतगुर मिले सब पूरी पई, जिसनो कृपा करे रजाए पौड़ी। तन तन भाग तिना भगत जना, जो हर नामा हर मुख कहत्या। तन तन भाग तिना संत जना, जो हर जस श्रवणी सुनत्या। तन तन भाग तिना साज जना, हर कीर्तन गाए गुणी जन बनत्या। तन तन

सासिद सा करमात है अचिंत करे जिस दात नानक गुरमुख हर नाम मन वसै एहा सिद एहा करमात पौड़ी।

पलका हर हर दयाल होवे जिस ऊपर सो गुरुमुख हर जप जिन का। श्लोक महला तीजा जन्म जन्म की इस मन को मल ला।

हर गुण गावा हर नित चवा गुरमति हर रंग सदा मान हर जप जप औखद खा गया सब रोग गवाते दुखा कान जिना सास गिरास ना

हौ मैं खपे खपाए अंतर लोभ मां गुबारा तिनके निकट न कोई जाहे ओए आप दुखी सुख कभू न पावे जन्म मरे मर जाए नानक बख्श ले प्रभ साचा जे गुर चरणी चित लाहे पौड़ी संत भगत परवान जो प्रभ पाया सही विचखण जंत जिन्नी हर त्याया अमृत नाम निदान भोजन खाया संत जना की तूर मस्तक लाया नानक पै पुनीत हर की रतनाया। श्लोक महला चौथा। गुरुमुख अंतर शांत है मन तन नाम समाये नामो चित वे नाम पढ़े नाम रहे लिवलाए नाम पदार्थ पाया चिंता गई बिलाए सतगुरु मिले नाम।

मरकट लो सब लोग कुटुंब भयो आगे हंस अकेला। कह कबीर सुनो रे प्राणी परे काल ग्रस्त हुआ झूठी माया।

निज निरखत गत व्यवहारा रहाओ, कस कुंकम चंदन गारिया, बिन नैनो जगत निहारिया, पूत पिता इक जाया, बिन ठाहर नगर बसाया, जाचक जन

नाद समाए लो रे सतगुर पेट ले देवा राव जय चिल मिल कार दिसंता।

जलद बांध तू था प्यो हो नामे के स्वामी सी बहोरी लंक पपीखण आप्यो हो सोरठ करती जा

तिखारी अछत राज बिचरत दुख पाया सोगत पई हमारी। राजपुर अंग प्रसंग जैसे हैं अब कछ मर्म जनाया अनिक कटक जैसे फूल परे अब कहते कहन न आया। सर्वे एक अनेक स्वामी सब कट

लोग गंठ गंठ खरा बिगूचा, हौ बिन गांठे जाए पहुँचा। रविदास जपे राम नामा, मुझ जमस्यो नाही कामा। राग सोरठ बाणी भगत की खन की।

ऐसी बेदन उपज खरी भई वाका औखद नाही। हर का नाम अमृत जल निर्मल ए औखद जग सारा, गुर प्रसाद कह जन तीखन पावो मोख द्वारा। ऐसा नाम रतन निर्मोलक पुन पदार्थ पाया।

साहिब अपना अवर न जाचो कोए, नानक ता का दास है बिंद बिंद चुक चुक होए, साहिब तेरे नाम विटो बिंद बिंद चुक चुक होए रहाओ। तनासरी महला पहला, हम आदमी हाँ इकदमी मोलत मोत न जाना, नानक बिनवे तिसे सरेवो जाके जी पराना, अंधे जीवना विचार देख केते के दिना रहाओ, सास मास सब जियो तुम्हारा तू मैं खरा प्यारा, नानक साहिर एव कहत है सच्चे परवदगारा, जे तू किसे न देही मेरे साहिबा क्या को कड्डे गहना, नानक बिन मैं सो किस पाये पूर्व लिखे का लेना, नाम खसम का चितना किया कपटी कपट कमाना, जम द्वार जा पकड़ चलाया।

क्यों सिमरी सिवरिया नहीं जाए, तपे ही आओ जीड़ा बिल लाए, सिज सवारे साचा सोए, तिस विसरिए चंगा क्यों होए, हिकमत हुक्म न पाया जाए, क्यों कर सास मिलो मेरी माए, रहाओ वक्खर नाम देखन कोई जाए, ना को चाखे ना को खाए, लोक पतीने ना पत होए, ता पत रहे राखे जा सोए, जै देखा तेरे आसमाए, तुझ बिन दूजी ना ही जाए, जे को करे की तै क्या होए, जिसनो बख्शे साचा सोए, हुन उठ चलना मोत के ताल, क्या मुंह देसा गुण नहीं नाल, जैसी नजर करे तैसा होए, विन नदरी नानक नहीं कोए, कनासरी मेला पहला, नजर करे ता सिमरिया जाए, आत्मा द्रवे रहे लिव लाए, आत्मा परात्मा एको करे, अंतर की दुबदा अंतर मरे, गुर प्रसादी पाया जाए, हास्यों चित लागे फिर काल न खाए, रहाओ सच सिमरिए होवे परगास, ताते बिखिया मह रहे उदास, सतगुर की ऐसी वडियाई, पुत्र कलत्र विचे गत पाई, ऐसी सेवक सेवा करे, जिसका जियो तिस आगे तरे, साहिब पावे सो परवान, सो सेवक दरगे पावे मान, सतगुर की मूरत हृदय वसाए, जो इच्छे सोई फल पाए, साचा साहिब कृपा करे, सो सेवक जमते कैसा डरे, पंत नानक करे विचार, साची बाणी से तरे प्यार, ताको पावे मोख द्वार, जप तप सब इहे शब्द है सार, तनाफरी मैला पहला, जियो तपत है बारो बार, तक तक खपे बहुत बेकार, जय तन बाणी विसर जाए, ज्यो पक्का रोगी विल लाए, बहुता बोलन चखन होए, जिन बोले जाने सब सोए राव, जिन कन कीते अखी नाक, जिन जेवा दित्ती बोले तात, जिन मन राख्या अग्नि पाए, वाजे पवन आखे सब जाए, जेता मोह प्रीत स्वाद, सब्बा कालक दागा दाग, दाग दोष मोह चलिया लाए, दरगे बैसन नाही जाए, कर्म मिले आखन तेरा नाओ,

चीज है। चोर की हामा परे न कोए, चोर की आ चंगा क्यों होए। सुन मन अंधे कुत्ते कूड़ियार, बिन बोले बूझिए सच्यार रहाओ। चोर सवालियो चोर सियाना, खोटे का मूल एक दुगाना। जे साथ रखिए दी जैर लाए।

कूड़ कबाड़, पावे सब आखो संसार, तुद पावे अदि परवान, नानक जाने जान सुजान, तनाफरी मैला पैरा, काया कागद मन परवाना, सिर के लेख ना पड़े आना, दरगे करिए तीने लेख, खोटा काम ना आवे वेख, नानक जे विच रूपा होए, खरा खरा आखे सब कोई रहाओ, कादी कूड़ बोल मल खाए,

सो जोगी जो जुगत पछाणे गुर प्रसादी एको जाने काजी सो जो उल्टी करे गुर प्रसादी जीवत मरे सो ब्राह्मण जो ब्रह्म विचारे आप तरे सगले कुल तारे दान सुबंग सोई दिल धोवे मुसलमान सोई मल कोवे पढ़िया बूझे सो प्रवान जिस सिर दरगे का निशान तना श्री मेला पहला हर तीजा।

आरती एक ओंकार सतगुरु प्रसाद। गगन में थाल रव चंद दीपक बने, तारका मंडल जनक मोती, तूप मले आन लो पवन चवरो करे, सगल बन राय फूलंत ज्योति। कैसी आरती होए पव खंडना, तेरी आरती अनहता शब्द वाजंत बेरी रहा। सहस तव नैन नन नैन है तोहे को, सहस मूरत नन्ना एक तो ही। सहस पद विमल नन एक पद गंध बिन, सहस तव गंध इव चलत मोही। सब में ज्योत ज्योत है सोए, तिसके चानन सब में चानन होए। गुरसाखी ज्योत प्रगट होए, जो किस पावे सो आरती होए। हर चरण कमल मकरंद लोभित मनो, हम दिनो मोहे आई प्यासा। कृपा जल दे नानक सारन को, होए जाते तेरे नाम।

ए तम अखुट नान खुटे ना जाए, पूरे सतगुर दिया दिखाए, अपने सतगुर को सद बल जाए, गुर कृपा से हर मन वसाए, से तनवंत हर नाम लिवलाए, गुर पूरे हर तन पर गासिया, हर कृपा से वसे मन आए रहाओ, अवगुण काट गुण हृदय समाए, पूरे गुर कैसे सुवाए, पूरे गुर की साथी बाणी, सुख मन अंतर सहज समाणे, एक अचरज जन देखो भाई, दुखदा मार हर मन वसाई, नाम अमोलक ना पाया जाए, गुर प्रसाद वसे मन आए, सब में वसे प्रभ एको सोए, गुरमति कट प्रगट होए, सहजे जिन प्रभ जान पछाणिया, नानक नाम मिले मन मानिया, तनात्री मैला तीजा, हर नाम तन निर्मल अख अपारा, गुर के शब्द परे पंडारा, नाम तन बिन होर सब बिख जान, माया मोह जले अभिमान, गुरमुख हर रस चाखे कोए, तिस सदा आनंद होवे दिन राती, पूरे पाक प्राप्त होए रहाओ, शब्द दीपक वरते ते लोए, जो चाखे सो निर्मल होए, निर्मल नाम हो मैं मल तोए, साची प्रगत सदा सुख होए, जिन हर रस चाखिया सो हर जन लोग, तिस सदा हरख नाही कदे सोग, आप

कुमाणी शब्द मिले प्रीतम सदा ते आए सात नाम बड़े आई पाए आपे करता जुग जुग सोए नदर करे मेलावा होए गुरबाणी ते हर मन वसाए नानक सात रते प्रभ आप मिलाए तनासी मैला तीजा।

अपनी पथ खोई। गुर सेवा से जन निर्मल होए, अंतर नाम वसे पथ उत्तम होए रहाओ। गुरमुख उगरे हर शरणाई, राम नाम राते पगत दृढ़ाई।

सो तन पुरख जिस नाम प्यार। तिन प्रभ साचे इक सच लाए, उत्तम वाणी शब्द सुनाए। प्रभ साचे की साची कार, नानक नाम सवारण हार। तनास जी मैला तीजा, जो हर से मैं तिन बल जाओ। तिन हृदय साच सच्चा मुखनाओ, साचो साच संभालो दुख जाए। साचे शब्द वसे मन आए, गुरबाणी सुन मैल गवाए। सहजे हर नाम मन वसाए रहाओ, कूण कुसत तृष्णा अग्न बुझाए। अंतर सांप सहज सुख पाए, गुर के पाणे चले ता आप जाए। साच महल पाए हर गुण गाए, ना शब्द बूझे ना जाने बाणी। मन मुख अंधे दुख विहानी, सतगुर पेटे ता सुख पाए। हों मैं विच्चों ठाक रहाए, किसनो कही है दाता एक सोए। कृपा करे शब्द मिलावा होए, मिल प्रीतम साचे गुण गावा। नानक साचे साचा धावा, त्रासी मैला तीजा। मन मरे तात मर जाए, बिन मन हुए कैसे हर पाए। ए मन मरे दारू जाने कोए, मन शब्द मरे बूझे जन सोए। जिसनो बख्शे हर दे वडियाई, गुर प्रसाद वसे मन आई रहाओ। गुरमुख करनी कार कमावे, पाइस मन की सो जी पावे। मन में मत मैगल मिकदारा, गुर अंकत मार जीवा लनहारा। मन असाध साधे जन कोई, अचर चरे ता निर्मल होई। गुरमुख ए मन लया सवार, हों मैं विच्चों तजे विकार। जो तुर रखियन मेल मिलाए, कदे ना विछड़े शब्द समाए। अपनी कला आपे प्रभ जाने, नानक गुरमुख नाम पछाणे। त्रासी मैला तीजा, काचा तन सुनचे मूर्ख गावार। मन मुख फूले अंध गवार, विख्या कै तन सदा दुख होए। ना साथ जाए ना प्राप्त होए, साचा तन गुरमति पाए। काचा तन सुन आवे जाए रहाओ, मन मुख फूले सब मरे गवार। पर जल डूबे ना उरवार ना पार।

कली काल विच गुरमुख पाए रहाओ। हम मूरख मूरख मन माहे, हौ मैं विच सब कार कमाहे, गुर प्रसादी हौ मैं जाए, आपे बख्शे ले मिलाए, बिख्या का कान बहुत अभिमान।

अब रना कोई जिस सच लाए सोई लागे, नानक नाम सदा सुख आगे। राजना श्री महला तीजा घर चौथा इको अंकार सतगुरु प्रसाद। हम पीखक पेखारी तेरे तू निज पत है दाता, हो दयाल नाम देहो मंगत जन को सदा रहो रंगराता। हों बलिहार जाऊं साचे तेरे नाम विटो, करण कारण सब

परम पटकूले गुर प्रसादी जानिया साची लिव लागी है पीतर सतगुर से मन मानिया। सनासरी मैला चौथा कर पहला चौक दे।

निवारी। हम ऊपर कृपा कर स्वामी, रख संगत तुम जो प्यारी। हर गुण कहे न सको बनवारी, हम पापी पाथर नीर डुबत, कर कृपा पाखण हम तारी। रहाओ जन्म जन्म के लागे बिख मोरचा, लग संगत साध सवारी। जो कंचन बै संतर पायो, मल काटी कटत उतारी। हर हर जपन जपो दिन राती, जप हर हर हर उर्धारी। हर हर हर औषध जग पूरा, जप हर हर हो मैं मारी। हर हर अगम अगाध बोध, अपरंपर पुरख अपारी। जन को कृपा करो जग जीवन, जन नानक पै सवारी। तना श्री मैला चौथा। हर के संत जना हर जपियो, तिनका दुख परम पौ पागी। अपनी सेवा आप कराई, गुरमत अंतर जागी। हर के नाम रता बैवागी, हर हर कथा सुनी मन पाई। गुरमत हर लिग लागी। रहाओ संत जना की जात हर स्वामी, तुम ठाकुर हम सांगी। जैसी मत देवो हर स्वामी, हम कैसे बुलग बुलागी। क्या हम किरम नान निक की रहे, तुम वड पुरख वडागी। तुमरी गत मित कह न सके, प्रभ हम क्यों कर मिले अपागी। हर प्रभ स्वामी कृपा धारो, हम हर हर सेवा लागी। नानक दासन दास करो प्रभ, हम हर कथा कथागी। तना श्री मेरा चौथा। हर का संत सतगुर सतपुरखा, जो बोले हर हर वाणी। जो जो कहे सुने सो मुक्ता, हम किसके सद कुर्बानी। हर के संत सुनो जस्तानी, हर हर कथा सुनो एक निमक पल। सब के

हमहर लोच लुचानी हमहर फसलियो बिरख प्रभ स्वामी जिन जपियो से तृप्तानी हर हर अमृत पी तृप्ता से सब लाथी पूख पुकानी जिनके बड़े पाग वड ऊचे तिन हर जपियो जपानी तिन हर संगत मेल प्रभ स्वामी जन नानक दास दसानी रात्रि मैला चौथा।

तेग बेगाली सतगुर सेव खर्च हर बांधो मत जानो आज के काली। हर के संत जपो हर जपना हर संत चले हर नाली। जिन हर जपिया से हर होए हर मिलिया केल के लाली। हर हर जपन जप नोच लुचानी हर कृपा कर बनवाली। जन नानक संगत साध हर मेलो हम साध जना पगराली। तनासी मैला चौथा हर हर बूंद पे हर स्वामी हम चात्रिक बिलल बिल लाती। हर हर कृपा करो प्रभ अपनी मुख देवो हर निमखाती। हर बिन रह न सकूं एक राती जो बिन अमले अमली मर जाई है त्यों हर बिन हम मर जाती रहाओ। तुम हर सरवर अत अदा हम ले न सके अंत माती। तू परे परे अपरंपर स्वामी मित जानो आपन गाती। हर के संत जना हर जपियो गुर रंग चलू ले राती। हर हर भगत बनी अत सोभा हर जपियो उत्तम पाती। आपे ठाकुर आपे सेवक आप बना वह पाती। नानक जन तुमरी शरणाई हर रासो लाज पगाती। तनाश्री मेला चौथा कल युग का कर्म कहो तुम भाई किव छूटे हम छुटका की। हर हर जप बेड़ी हर तुल्हा हर जपियो तरह तरह की। हर जी लाज रखो हर जन की हर हर जपन जपावो अपना हम मांगी भगत एकाकी रहाओ। हर के सेवक से हर प्यारे जिन जपियो हर बचना की। लेखा चित्र गुप्त जो लिखिया सब छूटी जम की बाकी। हर के संत जपियो मन हर हर लग संगत साथ जना की। दिन यर सूर तृष्णा अग्न बुझानी शिव चर्यो चंद चंदा की। तुम वड पुरुष वड अगम अगोचर तुम आपे आप अपा की। जन नानक को प्रभ कृपा की जय कर दासन दास दशा की। तनाश्री मेला चौथा कर पंजवा दो कदे इको अंकार सतगुर प्रसाद। उर्धार विचार मुरार रमोरम मनमोहन नाम जपीने अदृष्ट अगोचर अपरंपर स्वामी गुर पूरे प्रकट कर दीने। राम पारस चंदन हम कास्ट लोस्ट हर संग हरी सब संग भये हर कंचन चंदन कीने रहाओ। नव छह खट बोले मुख आगर मेरा हर प्रभ इमना पति ने। जन नानक हर हृदय सद प्यावो क्यों हर प्रभ मेरा पीने। तनाश्री मेला चौथा गुण कहो हर लहो कर सेवा सतगुरु इव हर हर नाम तिहाई। हर दरगे पावे फिर जन्म ना आवे हर हर हर जोत समाई। जप मन नाम हरि हो है सर्व सुखी हर जस ऊंच सबना ते ऊपर हर हर हर सेव छड़ाई रहाओ। हर कृपा निध कीनी गुर भगत हर दीनी तब हर स्यो प्रीत बन आई। बहुत चिंत विसारी हर नाम उर्धारी नानक हर पे है सफाई। तनाश्री मेला चौथा हर पढ़ हर लिख हर जप हर गाओ हर पौजल पार उतारी। मन बचन हृदय त्याए हर होए संतुष्ट इन पान हर नाम मुरारी। मन जपिए हर जग

हर हर करी दृष्ट तब भयो मन उद्दम, हर हर नाम जपियो गत पई हमारी, जन नानक की पत राख मेरे स्वामी, हर आए परयो है शरण तुम्हारी। तनासरी मैला चौथा, चौरासी सिद्ध बुद्ध ते तीस कोट मुन जन, सब चाहे हर जियो तेरो नाम, गुर प्रसाद को विरला पावे, जिनको लिलाट लिखिया तुर पाओ, जब मन रामे नाम हर जस उत्तम काम, जो गावे सुने तेरा जस स्वामी, हों तिनके सब दलिहारे जाओ रहाओ। शरणागत प्रतपालक हर स्वामी, जो तुम दियो सोई हों पाओ, दीन दयाल कृपा कर दीजे, नानक हर सिमरन का है चाओ। तनासरी मेला चौथा, सेवक सिख पूजन सब आवे, सब गावे हर हर उत्तम बानी, गाव्या सुनिया तिनका हर थाए पावे, जिन सतगुरु की आज्ञा सत सत करमानी, बोलो पाई हर कीर्त हर कर जल तीर्थ, हर दर तिन की उत्तम बात है संतो, हर कथा जिन जनों जानी रहाओ, आपे गुर चेला है आपे, आपे हर प्रभ चोज विडानी, जन नानक आप मिलाए सोई हर मिल से, अवर सब त्याग को है हर पानी। तनासी मेला चौथा, इच्छा पूरक सर्व सुख दाता हर, जाके वस है काम देना, सो ऐसा हर त्याय मेरे जीड़े, ता सर्व सुख पावे मेरे मना, जप मन सतनाम सदा सतनाम, हलत पलत मुख उजल होई है, नित त्याय हर पुरख निरंजना राव, जय हर सिमरन भया ते उपाद गत कीनी, वड पागी हर जपना, जन नानक कौ गुर ए मत दीनी, जप हर पौजल।

पाव खंडन दुख पंजन स्वामी भगत वचल निरंकारे कोट पराग मिटे खिन पीतर जा गुरुमुख नाम समारे। मेरा मन लागा है राम प्यारे दीन दयाल करी प्रभ कृपा वस कीने पंच दुतारे राव। तेरा थान सुहावा रूप सुहावा तेरे भगत सोए दरबारे सर्व जिया के दाते स्वामी कर कृपा लेहो उबारे। तेरा वर्ण न जापे रूप न लखिए तेरी कुदरत कौन बिचारे जल फल नैयल रविया सर्व ठाई अगम रूप गिरधारे। कीरत करे सगल जन तेरी तू अविनाशी पुरख मुरारे ज्यो पावे त्यो राखो स्वामी जन नानक शरण द्वारे। रात्रि मेला पंजवा बिन जल प्राण तजे है मीना जिन जल च्यों हेत बढ़ायो।

उसी हेत विदारा। देख कुटंब लोभ मोहयो प्राणी, माया को लपटाना, अतरचियो कर लीनो अपना, उन छोड़ सरा पर जाना। बिन गोविंद अवर संग नेहा, को जानो सदा दुहेला, कहो नानक गुर एह बुझायो, प्रीत प्रभु सदकेला। सनासरी मैला पंजा, कर कृपा दियो मोहि नामा, बंधन से छुटकाए, मन से बिसरो सगलो तंबा, गुर की चरणी लाए। साध संग चिंत बिरानी छाड़ी, अनुबुद मोह मन बासन देख, कर गढ़ा गाड़ी रहाओ, ना को मेरा दुश्मन रहा, ना हम किसके बहराई। ब्रह्म प्रसार पसारो पीतर, सतगुर ते सो जी पाई। सब को मीत हम आपन कीना, हम सबना के साजन, दूर करायो मन का बिरहा, ता मेल कियो मेरे राजन। बिन सियो तीठा अमृत बूठा, सबद लगो गुर मीठा, जल थल नहीं अल।

मन गायो, कयो पर गात सदा सुख मन में, सब गुरु पूरा पायो रहाओ। गुण निदान रिद पीतर वसिया, ता दुख परम को पागा, कई प्राप्त वस्त अगोचर, राम नाम रंग लागा, चिंत अचिंता सोच असोचा।

डिगे न डोले दृढ़ कर रहे हो, पूरन हुए तृप्तानी। ओए जो बीच हम तुम कछ होते, तिनकी बात बिनानी, अलंकार मिल फैली हुई है, तांसे कनक वखानी। प्रगट्यो जोत सहज सुख शोभा, बाजे अनहत बानी, कहो नानक ने चल कर बांधियो, गुर की ओ बंदानी। तनाश्री मैला पंजवा, वडे वडे राजन अर पूमन, ताकि तृष्ण न बूझी, लपट रहे माया रंग माते, लोचन कछु न सूझी। दिखिया मैं किन्ही तृप्त न पाई, जो पावक ईदन नहीं त्रापे, बिन हर कहां अगाई रहाओ। दिन दिन करत भोजन बहु बिंजन, ताकि मिटे न भूखा, उद्दम करे स्वान की न्याई, चारे कुंटा कोखा। काम वंत कामी बहु नारी, पर गृह जो न चूके, दिन प्रप करे करे पछतापे, सोग लोभ महसूके। हर हर नाम अपार अमोला, अमृत एक निधाना, सुख सहज आनंद संतन के, नानक गुर ते जाना। तना श्री मैला पंजवा, लवे ना लागन कौ है कछुए, जाको फिर ए तावे, जाको गुर दीनो ए अमृत, किसी को बने आवे। जाको आयो एक रसा, खान पान आन नहीं खुदिया, ताके चितना बसा रहाओ। मौल्यो मन तन होयो हरिया, एक बूंद जिन पाई, वर्ण न साको उस्तक ताकी, कीमत कहन न जाई। काल न मिलियो सेव न मिलियो, मिलियो आए अचिंता, जाको दया करी मेरे ठाकुर, तिन गुरे कमानो ममता। दीन दयाल सदा कृपाला, सर्व जिया प्रतपाला, ओत पोत नानक संग रविया, जो माता बाल गोपाला। तनाश्री मैला पंजवा, बार जाऊं गुर अपने ऊपर, जे हर हर नाम दृढ़ाया।

जाके सिमरन सर्व निधाना, मान महत पतपूरी नाम लैत कोट अगमासे, भगत बांसे सब तूरी। सर्व मनोरथ जे को चाहे सेवे एक निधाना, पार ब्रह्म अपरम कर स्वामी सिमरत पार कराना, शीतल शांत महा सुख पाया संत संग रहे ओला, हर तन संचन हर नाम पूजन ए नानक कीनो चोला।

ए बिद न कतियानो ठाकुर जोग जुगत कर जैन अमृत नाम निर्मोलक हर जस तिन पायो जिस किरपैन साध संग रंग प्रभ पेते नानक सुख जन रैन।

नहा बहुर न कछु तावे है को ऐसो हमरा मीत सगल समग्री जियो हियो देओ अर्को अपनो चीत रहाओ पर तन पर तन पर की निंदा इनसो प्रीत न लागे संते संग संत संबाखन हर कीर्तन मन जागे गुण निधान दयाल पुरख प्रभ सब सुख दयाला मांगे दान नाम तेरो नानक जो माता बाल गोपाला त्रासरी मैला पन्नवा हर हर लीने संतो बार हर के दास की

नानक शरण पर्यो दुख पंजन, गुण गावे सदा अकार, निंदक का मुख काला हुआ, दीन दुनिया के दरबार, त्रासरी मैला पंजवा, अधर राखन चितारिया, पतित पुनीत किए खिन पीतर, सगला रोग बिदारिया रहाओ, गोष्ट पई साध के संगम, काम क्रोध लोभ मारिया, सिमर सिमर पूरन नारायण, सुंगी सगले तारिया, औखद मंत्र मूल मन एक है, मन विश्वास प्रभ तारिया, चरण रेन बांचे नित नानक, पुनः पुनः बलिहारिया, त्रासरी मैला पन्या, मेरा लागू राम स्यों हेत, सतगुर मेरा सदा सहाई।

कारण हर हर नाम से आए। नानक नाम निरंजन गाये पाये सर्व निधाना कर कृपा।

चाले संग ना चाले तिन क्यों हीत जो गहराई से ही मीत ऐसे परम पुले संसारा जन्म पदार्थ कोई गवारा रहा साच तरम नहीं पावे दीठा चूठ तो क्यों रचियो मीठा दात प्यारी विसरिया दा तारा जाने नाही मरण विचारा वस्त पराई को उठ रोवे कर्म तर्म सगलाई खोवे हुक्म ना बूझे आवन जाने पाप करे ता पछो ताने जो खुद पावे सो परवान तेरे पाने नो कुर्बान नानक गरीब बंदा जन तेरा राख ले साहिब प्रभ मेरा तना श्री मैला पंजवा मोह मस्कीन प्रभ नाम आधार खाटन को हर हर रोजगार संचन को हर एको नाम हलत पलत ताके आवे काम नाम रते प्रभ रंग अपार साध गावे गुण एक निरंकार रहाओ साध की शोभा अतमस्कीनी संत वडाई हर जस्तीनी अनद संतन कै पगत गोविंद सुख संतन कै बिन सी चिंद जह साध संतन होवे इकत्र तह हर जस गावे नाद कवित साध सभा में अनद विश्राम उन संग सो पाए जिस मस्तक क्राम दे कर जोड़ करी अरदास चरण पखार कहां गुण पास प्रभ दयाल कृपाल हजूर नानक जीवे संतां दूर तनाश्री मैला पंजवा सो कट डरे जे खत्म समारे डर डर पचे मन मुख विचारे रहाओ सिर ऊपर मात पिता गुरुदेव सफल मूरत जाकी निर्मल सेव एक निरंजन जाकी रात मिल साध संगत होवत प्रगास जीवन का दाता पूर्ण सवठाए कोट कलेश मिटे हर नाए जन्म मरण सगला दुख नासे गुरमुख जाके मन तन बासे जिसनो आप लए लड़ लाए दरगह मिले तिसे ही जाए सेई पगत जे साचे भाने जम काल से पए निकाने साचा साहिब सच दरबार कीमत कौन कहे विचार काट काट अंतर सगल आधार नानक जाचे संतरे।

कर बाहर तेरा दरवासा तू जन कहे संग कर कृपा प्रीतम प्रभ अपने नाम जपो हर रंग जन को प्रभ अपने का तान जो तू करे करावे स्वामी सामसलत परवान रहाओ पत परमेश्वर गत नारायण तन गोपाल गुण साकी चरण शरण नानक दास हर हर संति ए विद जाति तना श्री मैला पंजवा सगल मनोरथ प्रभ से पाए कंठ लाए गुरु राखे संसार सागर में जलन न दीने किने न दुत्तर पाके जिनके मन साचा विश्वास पेक पेक स्वामी की शोभा अनब सदा उलास रहाओ चरण शरण पूरन परमेश्वर अंतर जामी साखियो जान बूझ अपना कियो नानक भगतन का अंकर राखियो त्रासरी मैला पंजवा जय जय पेखो तै हजूर दूर कथो न जाई रव रया सर्वत्र में मन सदा ते आए ईत ऊत नहीं बीछड़े सो संगी गनिये दिनस जाए जो निमक में सो अल्प सुख पनिये रहाओ प्रतपाले अप्याओ दे कछ ऊन न होई सास सास संभालता मेरा प्रभ सोई अचल अछेद अपार प्रभ ऊंचा जा का रूप जप जप करे आनंद जन अचरज अनूप सामत देव दयाल प्रभ जित तुम्हें अरादा नानक मंगे दान प्रभ रेन पग सादा तना श्री मैला पंजवा जिन तुम तेजे तिने बुलाए सुख सहज सेती कर आओ आनंद मंगल गुण गाओ सहज तुन नेकल राज कमाओ तुम कर आवो मेरे मीत तुमरे दुखी हर आप निवारे अपदा पई बतीत रहाओ प्रगट कीने प्रभ करने हारे नाचन पाजन खाके पर मंगल वाजे नित वाजे अपने खत्म निवाजे अस्थिर रहो डोलो मत कभू गुर के बचन आधार जय जयकार सगल पू मंडल मुख उजल दरबार जिनके जीत नहीं फेरे आपे पया सहाई अचरज किया करने हारे नानक सच वडियाई तनाश्री मैला पंजवा कर सेवा एक ओंकार सतगुरु प्रसाद सुनो संत प्यारे बिनो हमारे जियो हर दिन मुक्त न काहू जियो रहाओ मन निर्मल कर्म कर तारन करन हर अवर जंजाल तेरे काहू ना काम जियो जीवन देवा पारगम सेवा के उपदेश मोको गुरदीना जियो तिस त्यों ना लाये हीत जा को किश ना ही बीत अंत की बार ओ संग न चाले मन पर तू आराद हर के प्रीतम साथ जाके संग तेरे बंधन छूटे गहो पार ब्रह्म शरण हृदय कमल चरण अवर आस कट पटल न की जय सोई भगत ज्ञानी त्यानी तपा सोई नानक जा को कृपा की जय तना श्री मैला पंजवा मेरे लाल पलो रे पलो हर मंगना देखो पसार नैन सुनो साधु के बैन प्राण पत चित राख सगल है मरना रहाओ चंदन चोआ रस भोग करत अनेक बिखिया विकार देख सगल है सीके एक है गोविंद को नाम नीको कहत है साध जन तन तन आपन सा प्यो हर जपना निमक जा प्यो अर्थ दर्ब देख कछ संग नाही चलना जा को रे कर्म पला तिन ओट गही संत पला तिन नाही रे जम संतावे साधु की संगना पायो रे परम निधान मिट्यो है अभिमान एक है निरंकार नानक मन लगना

हर एक सिमर एक सिमर एक सिमर प्यारे, कल कलेश लोभ मोह मां पौगल तारे रहाओ। सास सास निमक निमक दिन सुरैन चितारे, साध संग जप निसंग मन निधान धारे। चरण कमल नमस्कार गुण गोविंद विचारे, साध जना की रेन नानक मंगल सुख सदारे। तनासरी मैला पंजवा कार अठवा दो पदे इको अंकार सतगुरु प्रसाद। सिमरो सिमर सिमर सुख पाओ, सास सास संभाले, ए लोक परलोक संग सहाई जब तक मोहे रखवाले। गुरु का बचन बसे जी।

कौटिक मात दूध जैसे बाले सागर में बोइत पायो हर नानक करी कृपा कृपाले सनासरी मैला पंजवा पय कृपाल दयाल गोविंदा अमृत हृदय सिंचाई नव निध सिद्ध हर लाग रही जन पाई संतन को अनग सगल ही जाई गृह बाहर ठाकुर भगतन का रव रहा सर्व ठाई राव पाको कोई न पहुंचन हारा जाके अंग गुसाई जम की त्रास मिटे जिस सिमरत नानक नाम से आई सनासरी मैला पंजवा दर्भवंत दर्भ देख गर्भ पोमवंत अभिमानी राजा जाने सगल राज हमरा क्यों हर जन तेज स्वामी जे को अपनी ओट संवार जैसा बित तैसा हुए वर्त है अपना बल नहीं हारे रहा आन त्याग पे एक आसर शरण शरण करे आए संत अनग्रह पे मन निर्मल नानक हर गुण गाए सनासी मैला पंजवा जानको हर रंग लागो इस युग में सो कहियत है सूरा आत्म जिने सगल वस्ता कै जाका सतगुरु पूरा ठाकुर गा ये आत्म रंग सरणी पावन नाम से आवन सहज समावन संग रहाओ जन के चरण वसे मेरे ही रे संग पुनीता देही जन की तूर देहो कृपा निद नानक कै सुखे ही सनासरी मैला पंजवा जतन करे मानुक डैकावे को अंतर जामी जाने पाप करे कर मुकर पावे पेक करे निर्वाने जानक दूर तुम्हें प्रभ नेर उत ताके उतते उतते है आवे लोभी फेर रहाओ जब लग तुटे नाही मन परमा तब लग मुक्त न कोई कहो नानक दयाल स्वामी संत भगत जन सोई सनासरी मैला पंजवा नाम गुरु दियो है अपने जा कै मस्तक करमा नाम दृढ़ावे नाम जपावे ताका जुग में तरमा जन को नाम वडाई सोब नामो गत नामो पत जन की माने जो जो होग रहाओ नाम तन जिस जन के पाले सोई पूरा शाह नाम व्योहारा नानक आधारा नाम परापत लाहा सनासरी मैला पंजवा नेत्र पुनीत पय दर्श देखे माथे परो रवाल रस रस गुण गावो ठाकुर के मोरे हृदय बसो गोपाल तुम तो राखनहार दयाल सुंदर सुगर बेअंत पिता प्रभु हो प्रभु के पाल रहाओ महा आनंद मंगल रूप तुमरे बचन अनूप रसाल हृदय चरण शब्द सतगुरु को नानक बांधे उपाल सनासरी मैला पंजवा अपनी उकत खिलावे पोजन अपनी उकत खिलावे सर्व सुख भोग रस देवे मन ही नाल समावे हमरे पिता गोपाल दयाल जो राखे मैं तारी बार तो तैसे ही प्रपाल रहाओ नीत साजन सर्व गुण नायक सदा सलामत देवा ईत ऊत जत कत तत तुम ही मिले नानक संत सेवा सनासरी मैला पंजवा संत कृपाल दयाल दमोदर काम क्रोध बिख जारे राज माल जोबन तन जियरा इन ऊपर ले बारे मन तन राम नाम हितकारे सुख सहज आनंद मंगल सहत पवनित पारे तारे रहाओ तन सो थान तन ओ पवना जामे संत बसारे जन नानक की सरदा पूरो ठाकुर भगत तेरे नमस्कारे सनासरी मैला पंजवा खिडाए लियो महाबली पे अपने चरण परात
एक नाम दियो मन मंता दिर्श न कतहू जात सतगुरु पूरे की नीगात हर हर नाम दियो कीर्तन को पई हमारी गात रहाओ अंगीकार कियो प्रभ अपने भगतन की राखी पात नानक चरण गहे प्रभ अपने सुख पायो दिन रात नासरी मैला पंजवा पर हरना लोभ झूठ निंद इन्हीं करत गुदारी मृग तृष्णा आस मिथ्या मीठी के टेक मने सदारी साकत की आवरदा जाए बिरसारी जैसे कागज के पार मूसा तूक गवावत काम नहीं गावारी रहाओ कर कृपा पार ब्रह्म स्वामी ए बंधन छुटकारी बूढ़त अंध नानक प्रभ कादत साध जना संगारी त्रासरी मैला पंजवा सिमर सिमर स्वामी प्रभ अपना शीतल तन मन छाती रूप रंग सुख तन जी का पार ब्रह्म मोरे जाती रसना राम रसायन माती रंग रंगी राम अपने कह चरण कमल निज साती रहाओ जिसका साथ ही रख लिया पूरन प्रभ की पांति मेल लियो आपे सुखदाते नानक हर राखी पाती तनासी मैला पंजवा दूत दुश्मन सब तुझते निवरे प्रगट प्रताप तुम्हारा जो जो तेरे भगत दुखाए ओ तत्काल तुम मारा निरखो तुमरी और हर नीत मुरार सहाय हो दास को कर गए उदरो मीत रहाओ सुनी बेनती ठाकुर मेरे खसमाना करे आप नानक आनंद भये दुख पागे सदा सदा हर जाप सनातनी मैला पंजवा चतुर दिशा की नो बले अपना सिर ऊपर कर तारे हो कृपा कटाक्ष अवलोकन कीनो दास का दुख विदारे हो हर जन राखे गुरु गोविंद कंस लाए अवगुण सब मेटे दयाल पुरख बख्शंद।

औखी करी न देखन दे अपना बिरद संभाले हाथ दे राखे अपने को साथ साथ प्रताले प्रभ क्यों लाग रहे हो मेरा चीत आद अंत प्रभ सदा सहाई तन हमारा मीत रहाओ मन विलास पहे साहिब के अचरज देख बढ़ाई हर सिमर सिमर आनंद कर नानक प्रभ पूरन पैज रखाई तनासरी मैला पंजवा जिसको बिसरे प्राण पतदाता सोई गनो अभागा चरण कमल जाका मन राज्यो हमें सरोवर पागा तेरा जन राम नाम रंग जागा आलस खीज गया सब तन के प्रीतम स्यो मन लागा रहाओ जय जय पेखो ते नारायण सगल कटा में तागा नाम उदक पीवत जन

राव सिमर सिमर स्वामी प्रभ अपना निकट ना आवे जाम मुक्त बैकुंठ साध की संगत जन पायो हर का ताम चरण कमल हर जन की खाती कोट सुख विश्राम गोविंद दमोदर सिमरो दिन रहन नानक सद कुरबान तनासरी मैला पंजवा मांगो राम से एक दान सगल मनोरथ पूर्ण होवे सिमरो तुमरा नाम रहाओ चरण तुम्हारे हृदय वासे संतन का संग पावो शोक अगन में मन ना व्यापे आठ पहर गुण गावो स्वस्थ व्यवस्था हर की सेवा मधंत प्रभ जापन नानक रंग लगा परमेश्वर बाउड़ जन्म न छापन तनासरी मैला पंजवा मांगो राम ते सब थोक मानक को जाचत श्रम पाई है प्रभ के सिमरन मोख रहाओ कोखे मुन जन सिमरत पुराना वेद पुकारे कोख कृपा चंद सेव सच पाई है दोवे सुहेले लोक आन अचार व्यवहार है जेते बिन हर सिमरन फोक नानक जन्म मरण पे काटे मिल साधु दिन से शोक सनातरी मैला पंजवा कृष्णा बुझे हर के नाम मां संतोष होवे गुरबचनी प्रभ से लागे पूरन ध्यान रहाओ महाकलोल बुझे माया के कर कृपा मेरे दीन दयाल अपना नाम दे जप जीवा पूरन होए दास की काल सर्व मनोरथ राज सुख रस सब खुशियां कीर्तन जप नाम जिसके कर्म लिखिया तो

निंदक टिकन न पावन मूले, उड़ गए बेकार रहाओ, जह जह देखो तह तह स्वामी, कोई न पहुँचन हार, जो जो करे अवज्ञा जन की, होए गया तत्चार, करन हार रखवाला हुआ, जाता अंत न पारा वार, नानक दास रखे।

हर चरण शरण गोविंद दुख पंजना दास अपने को नाम देवो। दृष्ट प्रभ तारो कृपा कर कारो पूजा कह फूप से पाड़ ले वो राव। काम क्रोध कर अंध माया के बंद अनक दोखा तन साध पूरे। प्रभ बिना आन न राख न हारा नाम सिमरावो शरण सूरे। पतित उदाहरणा जी जंत तारणा वेद उचार नहीं अंत पायो। गुण है सुख सागरा ब्रह्म रत्नागरा भगत वचल नानक गायो। श्री मैला पंजवा हलत सुख पलत सुख नित सुख सिमरो नाम गोविंद का सुरा लीजय। मिटे कमाने पाप चिराने साध संगत मिल मुआ जीजय। रहाओ राज जोबन विश्रंत हर माया माँ दुख एहो महांत कहे। आस्त्यास रमन हर कीर्तन एहो पदार्थ भागवंत लहे। शरण समरथ अकथ अगोचरा पतित उदाहरण नाम तेरा अंतर जामी नाम।

वंदना हर वंदना गुण गावो गोपाल राय राव। वड़े भाग पेटे गुरुदेवा कोट पराद मिटे हर सेवा। चरण कमल जा का मन रापे शोक अगन किस जन न व्यापे। सागर करे आ साधु संगे निरपो नाम जपो हर रंगे। पारतन दोष किस पाप न फेरे जम जंदार ना वे नेड़े। कृष्णा अगन प्रभ आप बुझाई नानक उदरे प्रभ शरणाई। रात्रि मैला पंजवा तृप्त पई सच भोजन खाया मन तन रसना नाम ते आया। जीवना हर जीवना जीवन हर जप साग संग्रहाओ। अनेक प्रकारी बस्तर उधाए आन दिन कीर्तन हर गुण गाए। हस्ती रथ अस असवारी हर का मार्ग हृदय निहारी। मन तन अंतर चरण ते आया हर सुख निदान नानक दास पाया। सनातनी मैला पंजवा गुर के चरण जी का निस्तारा समुद्र सागर जिन खिन में तारा। रहाओ कोई हो आ कर्म रत कोई तीरथ नाया। दासी हर का नाम से आया बंधन का तनहार स्वामी जन नानक सिमरया।

काहे रे बन खोजन जाई, सर्व निवासी सदा अलेपा कोही संग समाई। रहाओ कोप मद ज्यों बास बसत है, मुकर माए जैसे छाई, तैसे ही हर बसे निरंतर सट ही खोजो पाई। बाहर पीतरे को जानो के गुरु ज्ञान बताई, जन नानक बिन आपा चीन मिटे न परम की काई। तनासरी मेला नामा साधो ए जग परम तुलाना, राम नाम का सिमरन छोड़िया माया हाथ बिकाना। रहाओ मात पिता पाई सुख बनता, ताके रस लपटाना, जोबन तन प्रभ ताके मद में एन सरह दीवाना। दीन दयाल सदा दुख पंजन, सासियो मन न लगाना, जन नानक कोटन में किन्हू गुरमुख हुए पछाना। तनासरी मेला नावा तिन जोगी को जुगत न जानो, लोभ मोह माया ममता सुन, जे कट माए पछानो। रहाओ पर निंदा पुस्तक नह जाके, कंचन लोह समानो, हर्ष शोक ते रह अतीता, जोगी ताहे बखानो। चंचल मन देह दिसको तावत, अचल जाए ठहरानो, कहो नानक ए बिद को जो नर, मुक्त ताहे तुम मानो। तनासरी मेला नावा अब मैं कौन उपाय करूं, जे बिद मन को संसा चूक है, पौनिद पार करो। रहाओ जन्म पाए कछ पलो ना कीनो, ताते अधिक डरो, मन बच क्रम हर गुण नहीं गाए, यह जी सोच डरो। गुरमत सुन कछ ज्ञान ना उपजो, पत्यो उदर परो, कहो नानक प्रभ बिद पछानो, तब हो पत करो।

पूरे अमृत संत चुगे नहीं दूरे, हर रस चोग चुगे प्रभु पावे, सरवर में हंस प्राण पत्तावे, क्या बग बपुड़ा छपड़ी नाए, कीचड़ डूबे मैल न जाए, रहाओ रख रख चरण तरे विचारी, दुबदा छोड़ पय निरंकारी, मुक्त पदार्थ हर रस चाके, खावन जान रहे गुरु राखे, सरवर हंसा छोड़ न जाए, प्रेम पगत कर सहज समाए, सरवर में हंस हंस में सागर, अकथ कथा गुरु बचनी आदर, सुन मंडल इक जोगी बैसे, नारे ना पुरख कहो कहो कैसे, त्रिभवन ज्योत रहे लिवलाई, सुर नारे नाथ से शरणाई, आनंद मूल अनाथ अधारी, गुरुमुख भगत सहज विचारी, भगत वचल पै काटन हारे, हो मैं मार मिले भगतारे, अनिक जतन कर काल संताए, मरण लिखाए मंडल में आए, जन्म पदार्थ दुबदा खोवे, आप न चीन सो प्रम प्रम रोवे, कहतो पढ़तो सुनतो एक, तीरज तरम तरनी तर टेक, जत सत संजम हृदय समाए, चौथे पद को जे मन पति आए, साचे निर्मल मैल न लागे, गुर के शब्द परम पौ पागे, सूरत मूरत आद अनूप, नानक जाचे साच स्वरूप, सनासरी मैला पहला, सहज मिले मिलिया परवान, ना स्मरण ना आवन जान, ठाकुर में दास दास में सोए, जै देखा तह अवर न कोए, गुरमुख भगत सहज कर पाये, बिन गुर पे ते मर आये जाये, रहाओ सो गुर करो जे साच दृढ़ावे, अकथ कथावे शब्द मिलावे, हर के लोग अवर नहीं कारा, साचो ठाकुर साच प्यारा, तन में मनुआ मन में साचा, सो साचा मिल साचे राचा, सेवक प्रभु के लागे पाए, सतगुरु पूरा मिले मिलाए, आप दिखावे आपे देखे, हथ ना पतीजे ना बहुतेखे, कर पांडे जिन अमृत पाया, प्रेम भगत प्रभु मन पति आया, पर पर फूले चोटा खाए, बहुत स्यान पावे जाए, नाम जपे को भोजन खाए, गुरमुख सेवक रहे समाए, पूज सिला तीर्थ बनवासा, परमत डोलत पे उदासा, मन मैले सूचा क्यों हुए, साथ मिले पावे पत सोए, आचारा विचार शरीर, आज जुगाद सहज मन तीर, पल पंकज में कोट उदारे, कर कृपा गुर मेल प्यारे, किस आगे प्रभु तुझ सा लाही, तुद बिन दूजा मैं को नाही, ज्यों तुद पावे त्यों राख रजाए, नानक सहज

जायो मानस जन्म संयोग पाया ताकि है ओत साद राखो देकर हाथ कर कृपा मेलो हर राया अनक जन्म प्रमचित नहीं पाई करो सेवा गुरु लागो चरण गोविंद जी का मार्ग देहो जी बताई रहाओ अनक उपाव करो माया को बचित करो मेरी मेरी करत सद ही विहावे कोई ऐसे रे पेट है संत मेरी लाहे सगल चिंत ठाकुर सो मेरा रंग लावे परे रे सगल वेद नह चूके मन तेद एक खिन न तीरे मेरे करके पंचा कोई ऐसो रे भगत जो माया ते रहत एक अमृत नाम मेरे हृदय सिंचा जे तेरे तीरथ नाए अंग बुद्ध मैल लाए कर को ठाकुर एक तिल न माने कद पावो साध संग हर हर सदा आनंद ज्ञान अंजन मेरा मन स्नान सगल आश्रम कीने मनुआ ने पतीने विवेकहीन देही तोए कोई पाये रे पुरख विधाता पार ब्रह्म के रंग राता मेरे मन की दुर्मत मल खोए कर्म तर्म जुगता निमख ना हेत करता गर्भ गर्भ पड़े कहीं ना लेखे जिस पेटी है सफल मूर्त करे सदा कीरत गुरु प्रसाद को नेत्रों के खै मन हट जो कमावे तिल ना लेखे पावे बगल जो ध्यान लावे माया रे धारी कोई ऐसो रे सुख दाई प्रभ की कथा सुनाई तिस पेटे गत हुए हमारी को प्रसन्न गोपाल राय काटे रे बंधन माए गुर के शब्द मेरा मन राता सदा सदा आनंद पेत्यो निरपय गोविंद सुख नानक लादे हर चरण पराता सफल सफल पई सफल जात रा।

तीरथ नाम जाओ तीरथ नाम है, तीरथ शब्द विचार अंतर ज्ञान है, गुरु ज्ञान साचा थान तीरथ दस पूर्व सदा दशहरा, हौ नाम हर का सदा जाचो देहो प्रभ करनी तरा, संसार रोगी नाम दारू मैल लागे सत बिना, गुरवाक निर्मल सदा चानन नित सात तीर्थ मजना, सात ना लागे मैल क्या मल धोइए, गुणे हार परोए किसको रोइए, विचार मारे तरे तारे उल्ट जोन ना आवे, आप पारस परम त्यानी सात साचे भावे, आनंद अनदिन हर्ष साचा दुख किल विख पर हरे, सच नाम पाया गुरु दिखाया मैल नाही सच मने, संगत मीत मिलाप पूरा नामनो, गावे गावन हार सब सुहावनो, साला है साचे मन सतगुर पुन दान दयामते, फिर संग पावे सहज नावे बेड़ी तसंगम सत्सते, आराध एकंकार साचा नित दे करे सवाया, गत संग मीता संत संगत कर नदर मेल मिलाया, कहन कहे सब को एके वड आखी है, हाँ मूरख नीच अजान समझा साखी है, सतगुर की साखी अमृत पाखी तित मन मानिया मेरा, पूछ करे आवे बिखला दे शब्द सचै गुर मेरा, आखन कोट न पगत पंडारी पर पुर रहे सोई, नानक साच कह बेनंती मन मांजे सच सोई, सनासरी मेला पहला, जीवा तेरे नाए मन आनंद है जियो, साचो साचा नाओ गुण गोविंद है जियो, गुर ज्ञान अपारा सृजनहारा जिन सृजी तिन गोई, परवाना आया हुकुम पठाया फेर न सच्चे कोई, आपे कर वेखे सिर सिर लेखे आपे सुरत बुझाई, नानक साहिब अगम अगोचर जीवा सच्ची नाई, तुम सर अवर न कोए आया जाए सी जियो, हुक्मी होए निबेड़ परम चुकाए सी जियो, गुर परम चुकाए अकत सहाय सच में साच समाना, आप उपाय आप समाए हुक्मी हुक्म पछाना, सच्ची वड्याई गुर ते पाई तू मन अंत सखाई, नानक साहिब अवरना दूजा नाम तेरे वड्याई, तू सच्चा सृजनहार अलख सिरंदे आजियो, एक साहिब दे रहा वाद वदंदे आजियो, दे रहा चलाए हुक्म सबाए जन्म हुआ संसारा, नाम बिना नाही को बेली बिखला दी सिर पारा, हुक्मी आया हुक्म न बूझे हुक्म सवारन हारा, नानक साहिब सबक सिंजापे साचा सिरजनहारा, भगत सो है दरबार शब्द सुहाया जियो, बोले अमृत बाण रसन रसाया जियो, रसन रसाए नाम तिसाए गुर के शब्द विकाने, पारस पर से पारस होए जा तेरे मन पाने, अमरा पद पाया आप गवाया विरला ज्ञान विचारी, नानक भगत सोहंदर साचे साचे के व्यापारी, भूख प्यासो आज क्यों दर जाए सा जियो, सतगुर पूछो जाए नाम ते आए सा जियो, सच नाम ते आई साच चवाई गुरमुख साच पछाणा, दीना नाथ दयाल निरंजन अंदन नाम वखाना, करनी कार तुरु फुरमाई आप मुआ मन मारी, नानक नाम महारस मीठा कृष्णा नाम निवारी, सनासी संत मैला पहला, तिर संग मूठड़िए खबर न पाया जियो, मस्तक लिखेड़ा लेख पूर्व कमाया जियो, लेख न मिटी पूर्व कमाया क्या जाना क्या होसी, गुणी अचार नहीं रंग राती हम गुण बै बैरोसी, तन जोबन आख की छाया बिरद पै दिन पुन्या, नानक नाम बिना दोहागण छूटी झूठ विछुनिया,
बूढ़ी कर का लियो गुर के पाए चलो, साचा नाम से आए पावे सुख मैलो, हर नाम से आए ता सुख पाए, पेड़ दिन चारे निज कर जाए बह सत पाए, अन दिन नाल प्यारे बिन पगती कर वास न होवी, सुनियो लोक सभाए नानक सरसी ता फिर पाए, राती साचे नाए फिर तन पावे ता फिर पावे, नारी जियो रंग प्रीतम राती गुर के शब्द विचारी जियो, गुर शब्द विचारी ना प्यारी निव निव पगत करे, माया मोह जलाए प्रीतम रस में रंग करे, प्रभ साचे सेती रंग रंगेती लाल पई मन मारी, नानक साच वसी सोहागण फिर स्यों प्रीत प्यारी, फिर कर सो है नार जे फिर पावे जियो, झूठे वैन चवे काम ना आवे जियो, झूठ अलावे काम ना आवे ना फिर देखे नैनी, अवगुणियारी कंत विसारी छूटी विदन रहनी, गुर शब्द ना माने फाई फाथी सा तन मेल न पाए, नानक आपे आप पछाणे गुरमुख सहज समाए, तन सुहागण नार जिन फिर जानिया जियो, नाम बिना कूड़ियार कूड़ कमाणिया जियो, हर भगत सुहावी साचे भावी पाए भगत प्रभ राती, तिर रली आला जो बन बाला तिस रावे रंग राती, गुर शब्द विगासी सौरा वासी फल पाया गुणकारी, नानक साच मिले वडियाई फिर कर सो है नारी।

सहज नाम समावे। आप करता करे सोई, आप दे सा पाई है, हर जियो कृपा करे ता नाम ते आई है जियो, अंदर साचा निहो पूरे सतगुरु जियो। हाँ तिस तेवी दिन रात मैं कदे ना विसरे जियो, कदे ना विसारी हम दिन समारी, जा नाम लई ता जीवा, श्रवणी सुनी ता ए मन तृप्त है, गुरमुख अमृत पीवा, नगर करे ता सतगुर मेले, अन दिन विवेक बुद्ध बिचरे, अंदर साचा निहो पूरे सतगुरे, सत संगत मिले वड़ पाग, ता हर रस आवे जियो, अन दिन रहे लिव लाए ता सहज समावे जियो, सहज समावे ता हर मन भावे, सदा अतीत बैरागी, हलत पलत सोबा जग अंतर, राम नाम लिव लागी। हरख सो दोहा ते मुक्ता, जो प्रभ करे सो भावे, सत संगत मिले वड पाग, ता हर रस आवे जियो, दूजे पाए दुख होए, मन मुख जम जोया जियो, हाय हाय करे दिन रात, माया दुख मोया जियो, माया दुख मोया हों मैं रोया, मेरी मेरी करत जिहावे, जो प्रभ दे तिस चेते नाही, अंत गया पछतावे, बिन नामे को साथ ना चाले, पुत्र कलत्र माया तोया, दूजे पाए दुख होए मन मुख जम जोया जियो, कर कृपा लियो मिलाए महल हर पाया जियो, सदा रहे कर जोड़ प्रभ मन पाया जियो, प्रभ मन पावे ता हुक्म समावे, हुक्म मन सुख पाया, अंदिन जपत रहे दिन राती, सहजे नाम ते आया, नामो नाम मिली वडियाई, नानक नाम मन

सनक सनंद महेश समाना, शेख नाग तेरो मर्म न जाना। संत संगत राम हृदय बसाए राव, हनुमान सर गरुड़ समाना, सुरपत नरपत

एहेरी फिरे बदक जो कहो कवन विद की जय। सो दिन आवन लागा मात पिता पाई सुत बनता कहो को है काका। रहाओ जब लग जोत काया में बरते आपा पशु न बूझे लालच करे जीवन पद कारण लोचन कछु न सूझे। कहत कबीर सुनो रे प्राणी छोड़ो मन के परमा केवल नाम जपो रे प्राणी परो एक की सरना। जो जन पाओ भगत कछ जाने ताको अचरज काहो जो जल जल में पैसना निकसे त्यों तुर मिलियो जुलाहो। हर के लोगा मैं तो मत का पोरा जो तन का सी तजे कबीरा रमैये कहा निहोरा। रहाओ कहत कबीर सुनो रे लोई परम न पूलो कोई क्या कासी क्या ऊखर मगहर राम हृदय जो होई। इंद्र लोक से लोके जैबो पोछे तप कर बाहुर एबो क्या मांगो किछ थिर नाही राम नाम रख मन माही। रहाओ सोबा राज बिबे बड़ियाई अंत न चाहू संग सहाई पुत्र कलत्र लक्ष्मी माया इनते कहो कमने सुख पाया। कहत कबीर अवर नहीं कामा हमरे मन तन राम को नामा। राम सिमर राम सिमर राम सिमर भाई राम नाम सिमरन बिन बूढ़ते अधिकाई। रहाओ बनता सुत दे ग्रे संपत सुखदाई इनमें कछ नाहे तेरो काल अवधियाई अजामल गज गनका।

राम नाम छाड़ अमृत काहे बिखाई, तज परम कर्म विद निखेद राम नाम लेही, गुर प्रसाद जन कबीर राम कर स्नेही।

ऊपर मंडप छाए मारकंडे ते को अधिकाए जिन तृण तर मुंड बलाए हमरो करता राम स्नेही काहे रे नर गर्भ कर।

आई। बारह जो जन चक्र चले था देही गिरज न खाई। सर्व सोयन की लंका होती रावण से अधकाई। कहां भयो दर बांधे हाथी खिन में पई पराई। दुर्वासा स्यो करत ठगौरी जादव ए फल पाए। कृपा करी जन अपने ऊपर नाम देव हर गुण गाए। दस बैरागन मोह बक्कीनी पंचों का मिट नावो। सत्तर दो परे अमृत सर बिख को मार कडावो। पाछे बौर न आवन पावो अमृत बाणी करते उचरो। आत्म को समझावो रहाओ। बजर कुठार मोए है छीना कर मिन्नत लग पावो। संतन के हम उल्टे सेवक भगतन ते डर पावो। ए संसार ते तम ही छूटो जो माया नह लिपटावो। माया नाम गर्व जोन का ते तज दर्शन पावो। इत कर भगत करें जो जन तिन पौ सगल चुकाई है। कहत नाम दियो बाहर क्या परमो ए संजम हर पाई है। मार वार जैसे नीर बालहा बेल बालहा करहला। जो कुरंक निस्नाद बालहा त्यों मेरे मन रामैया। तेरा नाम रूड़ो रूप रूड़ो अत रंग रूड़ो मेरो रामैया रहाओ। जो तरणी को इंद्र बालहा कुसुम बास जैसे पवरला। जो कोकिल को अंब बालहा क्यों मेरे मन रामैया। चकवी को जैसे सूर बालहा मान सरोवर हंसुला। जो तरणी को कंत बालहा त्यों मेरे मन रामैया। बारिक को जैसे खीर बालहा चात्रिक मुख जैसे जल तरा। मछली को जैसे नीर बालहा त्यों मेरे मन रामैया। साधिक सिद्ध सगल मुन चाहे बिरले काहू डीठला। सगल पवन तेरो नाम बालहा त्यों नामे मन बीठला। पहल पुरिये पुंडरक वना ताचे हंसा सगले जना। कृष्णा ते जानू हर हर नाचंती नाचना। पहल पुरसाबिरा अथोन पुरसाद मरा। असगा अस उसगा हर का बागरा। नाचे पिंडी मह सागरा रहाओ। नाचंती गोपी जना नैया ते बैरे कना। तर्क नचा।

यमकारणा पतित पावन माधो बिरद तेरा तन ते वै मुन जन जिन त्यायो हर प्रभ मेरा मेरे माथे लागी।

गर्भ परहारी चरण शरण नामा बल तिहारी। तना श्री भगत रविदास जी की इको ओंकार। सतगुरु प्रसाद हम सर दीन दयाल ना तुम सर अब पतियार क्या कीजे बचनी तोर मोर मन माने जन को पूरन दीजे। हौ बल बल जाओ रमैया कारने कारण कवन अबोल रहाओ बहुत जन्म बिछरे थे मादो ए जन्म तुम्हारे लेके कह रविदास आस लग जीवो चिर पयो दर्शन देखे। चित सिमरन करो नैन अवलोकनो श्रवण बानी सुजस पूर राखो मन सो मद कर करो चरण हृदय तरो रसन अमृत राम नाम पाखो। मेरी प्रीत गोविंद स्यो जिन कटे मैं तो मोल महंगी लई जी सके रहाओ साध संगत बिना।

नाम तेरो तेल ले माहे पसारे, नाम तेरे की जोत लगाई पै उजियारो पवन सगलारे, नाम तेरो तागा नाम फूल माला पार अठारे सगल जुठारे, तेरो किया तुझे क्या अर्पो नाम तेरा तू ही चवर टोलारे, दस अठा अठ सठे चारे खानी यह वर्तन है सगल संसारे, कह रविदास नाम तेरो आरती सत नाम है हर भोग तुहारे। तनाश्री बाणी भगतां की त्रिलोचन इको ओंकार सतगुर प्रसाद। नारायण निंदस काए पूली गवारी, दुकृत सुकृत थारो कर्मरी रहाओ, संकरा मस्तक बस्ता सुरसरी स्नान रे, कुल जन्म दे मिलो सारंग पान रे, कर्म कर कलंक मफी तसरी, विश्व का दीपक स्वामी ताचे रे स्वार्थी, पंखी राय गरुड़ ताचे बादवा, कर्म कर अरुण पिंगलारी, अनिक पातिक हरता त्रिभुवन नाथरी, तीरथ तीरथ प्रमता लह न पारी, कर्म कर कपाल मफी तसरी, अमृत सस्य तेन लक्ष्मी कल्पतर, शिखर सुनागर नदी के नाथं, कर्म कर खार मफी तसरी, दादी ले लंका गढ़ उपाड़ी ले रावण, बन फल बिसल आन तोखी ले हरी, कर्म कर कछोटी मफी तसरी, पूर्व लो कृत कर्म ना मिटैरी, कर गेहन ताचे मोह जापी अले, राम चे नामं बदत त्रिलोचन राम जी श्री सैन, तूप दीप कृत साज आरती, वारने जाओ कमलापति, मंगला हर मंगला नित मंगल राज

सत रामानंद जाने पूरन परमानंद बखाने मदन मूरत पैतार गोविंदे सैन पणे पज परमानंदे पीपा कायो देवा कायो देवल कायो जंगम जाति कायो तूप दीप नहीं वेदा कायो पूजो पाती काया बोखंड खोजते नव निध पाई ना कछ आयबो ना कछ जायबो राम की दुहाई रहाओ जो ब्रह्मंडे सोई पिंडे जो खोजे सो पावे पीपा प्रणवे परम तत् है सतगुरु होए लखावे कन्ना गोपाल तेरा आरता जो जन तुमरी पगत करंते तिनके काज सवारता रहाओ दाल सीधा मांगो कियो हमरा खुशी करे नित जियो पनिया साधननी का अनाज मंगो सबसी का गौ पैस मंगो लावेरी इक साजन तुरी चंगेरी सर की गीहन चंगी जन तन्ना ले वे मंगी जैसरी महला चौथा कर पहला चौप दे इकोंकार सतगुर प्रसाद मेरा ही अरे रतन नाम हर बसया गुरहास तरयो मेरे माथा जन्म जन्म के किलबिक दुख उतरे गुरु नाम दियो रिन लाथा मेरे मन पज राम नाम सब अर्था गुर पूरे हर नाम दृढ़ाया बिन नामे जीवन बिरथा रहाओ बिन गुर मूर पय है मन मुख ते मोह माया नित फाखा तिन साधु चरण न सेवे कबहू तिन सब जन्म अकाथा जिन साधु चरण साध

इन सफल्यो जन्म सनाता मोको की जय दास दास दासन को हर दया तार जगन्नाथा। हम अंधले ज्ञानहीन अज्ञानी क्यों चाले मार्ग पंथा, हम अंधले को गुर अंचल दी जय जन नानक चले मिलन था। जैत श्री मैला चौथा। हीरा लाल अमोलक है पारी बिन गाहक मीका खाका, रतन गाहक गुर साधु देखियो तब रतन बिकानो लाखा। मेरे मन गुप्त हीर हर राखा, दीन दयाल मिलायो गुर साधु गुर मिले हीर पराखा रहाओ। मन मुख कोठी अज्ञान अंधेरा तिन कर रतन न लाखा, ते उजड़ परम मोए गावारी माया पुअंग दिख चाखा। हर हर साध मेलो जननी के हर साधु शरण हम राखा, हर अंगीकार करो प्रभु स्वामी हम परे पाग तुम पाखा। जेवा क्या गुण आख वखाने तुम वड अगम वड पुरखा, जन नानक हर कृपा तारी पाखान डुबत हर राखा। जैत श्री महला चौथा। हम बारक कछु न जाने गत मित तेरे मूरख मुग्ध इयाना, हर कृपा तार दीजे मत उत्तम कर लीजे मुग्ध सियाना। मेरा मन आलसिया उगलाना हर हर आन मिलायो गुर साधु मिल साधु कपट खुलाना रहाओ। गुर किन किन प्रीत लगावो मेरे हियर है मेरे प्रीतम नाम पराना, दिन नावे मर जाइए मेरे ठाकुर ज्यो अमली अमल लुवाना। जिन मन प्रीत लगी हर केरी तिन तुर पाग पुराना, तिन हम चरण सरे वे खिन खिन जिन हर मीठ लगाना। हर हर कृपा तारी मेरा ठाकुर जन बिछरिया चिरी मिलाना, तन तन सत गुरु जिन नाम दृढ़ाया जन नानक तिस कुर्बाना। जय श्री मैला चौथा। सत गुरु सा जन पुरख वड पाया हर रसक रसक फल लागबा, माया पुयंग ग्रस्यो है प्राणी गुरु बचनी बिस हर काडबा। मेरा मन राम नाम रस लागबा, हर किए पतित पवित्र मिल साध गुर हर नामे हर रस चाखबा रहाओ। तन तन वड पाग मिलियो गुर साधु मिल साधु लिव उन मन लागबा, तृष्णा अगन बुझी शांत पाई हर निर्मल निर्मल गुण गायबा। तिनके पाग खीन तुर पाए जिन सतगुर दर्श न पाएबा, ते दूजे पाए पवे गर्भ जोनी सब बिरथा जन्म तिन जाएबा। हर देहो बिमल मत गुर साध पग सेवे हम हर मीठ लगाएबा, जन नानक रेण साध पग मांगे हर होए दयाल दिवाएबा। जैत श्री महला चौथा। जिन हर हृदय नाम न बस्यो तिन मात की जय हर बांजा, तिन सुन्नी देख रैन बिन नावे होए खप खप मोए करांजा। मेरे मन जप राम नाम हर माजा, हर हर कृपाल कृपा प्रभ तारी गुर ज्ञान दियो मन समझा रहाओ। हर कीरत कल युग पद उत्तम हर पाई है सतगुर माजा, हौ बलिहारी सतगुर अपने जिन गुप्त नाम पर गाजा। दर्शन साध मिलियो वड पागी सब किलविख गए गवाजा, सतगुर साओ पाया वड दाना हर किए बहुगुण साजा। जिनको कृपा करी जग जीवन हर उतारियो मन माजा, तर्म राय दर कागद फारे जन नानक लेखा समझा। जैत श्री मैला चौथा।
सत संगत साध पाई वड पागी, मन चल तो पयो अरूड़ा, अनहत तुन वाजे नित वाजे हर अमृत तार रस लीड़ा। मेरे मन जप राम नाम हर रूड़ा, मेरे मन तन प्रीत लगाई सतगुरु हर मिलियो लाए चपीड़ा। रहाओ साकत बंद पए है माया, बिख संचय लाए जकीड़ा। हर कै अर्थ खर्च नह साके, जम काल सहे सिर पीड़ा। जिन हर अर्थ शरीर लगाया, गुर साधु बहु सरदा लाए मुख तूड़ा। हलत पलत हर शोभा पावे, हर रंग लगा मन गूड़ा। हर हर मेल मेल जन साधु, हम साध जना का कीड़ा। जन नानक प्रीत लगे।

हर हर सिमरो अगम अपारा, जित सिमरत दुख मिटे हमारा। हर हर सतगुर पुरख मिलावो, गुर मिलिए सुख होई राम। हर गुण गावो मीत हमारे, हर हर नाम रखो उधारे। हर हर अमृत बचन सुनावो, गुर मिलिए प्रगट होई राम। मधुसूदन हर माधो प्राणा, मेरे मन तन अमृत मीठ लगाना। हर हर दया करो गुर मेलो, पुरख निरंजन सोई राम। हर हर नाम सदा सुखदाता, हर कै रंग मेरा मन राता। हर हर महापुरख गुर मेलो, गुरु नानक नाम सुखोई राम। जैत श्री महला चौथा। हर हर हर हर नाम जपाहा, गुरमुख नाम सदा ले लाहा। हर हर हर हर भगत दृढ़ावो, हर हर नाम उमाहा राम। हर हर नाम दयाल त्याहा, हर के रंग सदा गुण गाहा। हर हर हर जस कुमर पावो, मिल सत्संग उमाहा राम। आओ सखी हर मेल मिलाहा, सुन हर कथा नाम ले लाहा। हर हर कृपा तार गुर मेलो, गुर मिलिए हर ओ महाराम। कर कीरत जस अगम अथाहा, खिन खिन राम नाम गावाहा। मोको तार कृपा मिलिए गुरदाते, हर नानक भगत ओ महाराम। जैत श्री महला चौथा। रस रस राम रसाल सलाहा, मन राम नाम पीना ले लाहा। खिन खिन भगत करे दिन राती, गुरमत भगत ओ महाराम। हर हर गुण गोविंद जपाहा, मन तन जीत शब्द ले लाहा। गुरमत पंच दूत वस आवे, मन तन हर ओ महाराम। नाम रतन हर नाम जपाहा, हर गुण गाए सदा ले लाहा। दीन दयाल कृपा करमा दो, हर हर नाम ओ महाराम। जप जगदीश जपो मन महा, हर हर जगन्नाथ जग लाहा। तन तन वडे ठाकुर प्रभ मेरे, जप नानक भगत ओ महाराम। जैत श्री महला चौथा। आपे जोगी जुगत जुगाहा, आपे निरपौ ताड़ी लाहा। आपे ही आप वरते, आपे नाम ओ महाराम। आपे दीप लो दीपाहा, आपे सतगुरु समुंद मथाहा। आपे मथ मथ तत कड़ाए, जप नाम रतन ओ महाराम। सखी मिलो मिल गुण गावाहा, गुरमुख नाम जपो हर लाहा। हर हर भगत दृढ़ी मन पाई, हर हर नाम ओ महाराम। आपे वड दाना वड साहा, गुरमुख पूंजी नाम विसाहा। हर हर दात करो प्रभ पावे, गुण नानक नाम ओ महाराम। जैत श्री महला चौथा। मिल सत संगत संग गुराहा, पूंजी नाम गुरमुख वे साहा। हर हर कृपा तार मधुसूदन, मिल सत्संग उमाहाराम। हर गुण बाणी श्रवण सुनाहा, कर कृपा सतगुरु मिलाहा। गुण गावे गुण बोले बाणी, हर गुण जप उमाहाराम। सब तीर्थ वर्त जग पुन तोलाहा, हर हर नाम ना पुजे पुजाहा। हर हर अतुल तोल अत पारी, गुरमत जप ओ महाराम। सब कर्म तर्म हर नाम जपाहा, किलविक मैल पाप सोवाहा। दीन दयाल हो जन ऊपर, देहो नानक नाम।

नमस्कार सतगुरु प्रसाद। कोई जाने कौन इहां जगमीत, जिस होए कृपाल सोई विध बूझे, ताकि निर्मल रीत रहाओ, मात पिता बनता सुत बंदप, इष्ट मीत अर भाई, पूर्व जन्म के मिले संजोगी, अंत है को ना सहाय, मुक्त माल कनक लाल हीरा, मन रंजन की माया, हा हा करत बिहानी अवधे, तामे संतोख न पाया, हस्त रथ अश्व पवन तेज तनी, पूमन चतरांगा, संग न चालियो इनमें कछुए, ऊट सिदायो नांगा, हर के संत प्रिय प्रीतम प्रभ के, ताके हर हर गाये, नानक की हां सुख आगे मुख उजल, संग संतन के पाये।

देहो संदेश रो कहियो प्रय कहियो। विषम पई मैं बहु विध सुनते कहो सुहागन सहियो रहाओ। को कह तो सब बाहर बाहर को कह तो सब महियो। वर्ण ना दिसे चिन्ह ना लखिए सुहागन शांत बुझियो। सर्व निवासी कट कट वासी लेप नहीं अल्पयो। नानक कहत सुनो रे लोगा संत रसन को बचहियो। जैसरी मैला पंजवा तीरो सुन तीरो प्रभ को रहाओ। जी प्राण मन तन सब अर्पो नीरो पेश प्रभ को नीरो। बेसुमार बेअंत बड़ दाता मन है गहीरो पेख प्रभ को। जो चाहो सोई सोई पावो आशा मनसा पूरो जप प्रभ को। गुर प्रसाद नानक मन वस्या दुख न कबहू चूरो बुझ प्रभ को। जैसरी महला पंजवा लोड़िंदड़ा साजन मेरा कर कर मंगल गावो नीके। कट कट तिसे बसेरा रहाओ। सुख अरादन दुख अरादन बिसरे न काहू बेरा। नाम जपत कोट सूर उजारा बिन से प्रम अंधेरा। थान सनंतर सब नी जाई जो दी से सो तेरा। संत संग पावे जो नानक तिस बहुर ना होई है फेरा। जैसरी महला पंजवा काल चौथा दो पदे इको अंकार। सतगुरु प्रसाद अब मैं सुख पायो गुर आग। तजी सियानप चिंत विसारी अहंक छोड़ियो है त्याग रहाओ। जो देखो तौ सगल मोय मोहियो तौ शरण पर्यो गुर पाग। कर कृपा टहल हर लायो तौ जम छोड़ी मोरी लाग। तरयो सागर पावक को जाओ संत पेटे वड पाग। जन नानक सर्व सुख पाए मोरो हर चरनी चित लाग। जैसरी मैला पंजवा मन में सतगुरु ध्यान तरा दृढ़ो ज्ञान मंत्र हर नामा। प्रभ जियो माया करा रहाओ। ताल जाल अर महा जंजाला छुटके जमे डरा। आयो दुख हरण शरण करुणा पत गयो चरण आसरा। नाव रूप पयो साध संग पवनिद पार परा। अपियो पियो गत थियो परमा कहो नानक अजर जरा। जैसरी महला पंजवा जाको पय गोविंद सहाय। सुख सहज आनंद सगल स्यों वाको ब्याद न काई रहाओ। दीसे सब संग रहे अलेपा ने व्यापे उन माई। एक रंग तत के बेते सतगुर ते बुद्ध पाई। दया मया कृपा ठाकुर की से संत सुभाई। तिनके संग नानक निस्तरिय जिन रस रस हर गुन गाई। जैसरी महला पंजवा गोविंद जीवन प्राण तन रूप अज्ञान मोह मगन महाप्राणी। अंधियारे में दीप रहाओ सफल दर्शन तुमरा प्रभ प्रीतम। चरण कमल अनूप अनेक बार करो ते बंदन मने चरावो तूप। हार पर्यो तुमरे प्रभ द्वारे दृढ़ कर गई तुम्हारी लूक। काढ़ ले हो नानक अपने को संसार पावक के कूप। जैसरी महला पंजवा कोई जन हर स्यों दे वै जोर। चरण गहो बको शुभ रसना दीजे प्राण अकोर रहाओ।
मन तन निर्मल करत क्यारो, हर सिंचै सुधा संजोर, या रस में मगन होत कृपा ते मां बिखिया ते तोर। आयो शरण दीन दुख भंजन,

हर दर्शन तृप्त नानक दास पावत हर नाम रंग अपरणी जैतसरी मैला पन्नवा हर जन सिमरो हिरदे राम हर जन को अपदा निकट न आवे पूरन दास के काम रहाओ कोट बिगन बिनसे हर सेवा नेचल गोविंद काम भगवंत भगत को पौ किछ नाही आदर देवत जाम ताज गोपाल आन जो करनी सोई सोई बिन सत खाम चरण कमल हृदय गह।

फूल्यो मन माया उर्जायो, जो जो कर्म कियो लालच लग, ते ते आप बंदायो रहाओ। समझ न परी दिखे रस रतियो, जस हर को बिसरायो, संग स्वामी सो जान्यो नाहिन, बन खोजन कौता।

जन नानक भगवंत भजन बिन बिरथा जन्म गवायो जैसरी महला नामा हरजू

आओ। महापतित मुग्ध लोभी सुन करत पाप अभारा, तै मर्दे को विसरत नाहिन ते चिंता तन जारा। किए उपाव मुक्त के कारण देह दिस कौ उठ धाया, कट ही पीतर बसे निरंजन ताको मर्म न पाया। नाहन गुण नाहन कछ जप तप।

नावा मन रे साचा गहो बिचारा राम नाम बिन मिथ्या मानो सगरो ए संसार आ रहाओ जा को जोगी खोज तुहारे पायो नाए ते पारा सो स्वामी तुम निकट पछानो रूप रेख ते न्यारा पावन नाम जगत में हर को कबहू नाए संभारा नानक शरण परयो।

0: श्लोक।
1: दर्शन प्यासी दिन सुरात चितवो अन दिन नीत, खोल कपट गुर मेलिया नानक हर संग मीत। छंत सुन यार हमारे सज्जन, इक करो बेनंतिया, तिस मोहन लाल प्यारे हों फिरों खोजंतिया, तिस दस प्यारे

श्लोक ऊंचा अगम अपार प्रभ कथन न जाए अकथ नानक प्रभ शरणागति राखन को समरथ संत ज्यो जानो त्यो राख हर प्रभ तेरिया केते गनो असंख अवगुण मेरिया असंख अवगुण खते फेरे नित प्रत सद पूलिय मोह मगन विकराल माया को प्रसादी कूलिय लूक करक विकार बिखड़े प्रभ नेरहू ते नेरिया बिनवंत नानक दया तारो काड पव जल फेरिया श्लोक नृत न पवे असंख गुण ऊंचा प्रभ का नाओ नानक की बेनंतिया मिले न थावे थाओ चंत दूसर नाही ठाओ का पह जाइए आठ पैर कर जोड़ सो प्रभ त्याए त्याए सो प्रभ सदा अपना मने चिंदिया पाइए तज मान मोह विकार दूजा एक स्यो लिवलाइए अर्प मन तन प्रभु आ गए आप सगल मिटाइए बिनवंत नानक तार कृपा साच नाम समाइए श्लोक रे मन पासो त्याइए सब विद जा के हाथ राम नाम तन संचिए नानक निभे साथ संत साथियड़ा प्रभ एक दूसर नाहे कोए थान थनंतर आप जल थल पूर सोए जल थल मैयल पूर रहा सर्वदाता प्रभ तनी गोपाल गोविंद अंत नाही बेअंत गुणता के क्या गनी पज शरण स्वामी सुखे गामी तिस बिना अन नाहे कोए बिनवंत नानक दया तारो तिस प्राप्त नाम होए श्लोक चित जे चित व्या सो मैं पाया नानक नाम त्याए सुख समाया संत अब मन छूट गया साधु संग मिले गुरमुख नाम लया ज्योति ज्योत रले हर नाम सिमरत मिटे किलबिख बुझी तप्त अगान्या गह पुजाली ने दया की ने अपने कर मान्या ले अंक लाए हर मिलाए जन्म मरना दुख जले बिनवंत नानक दया तारी मेल लीने एक पले जैतरी छंत मैला पंजवा पाधानो संसार गर्व अटिया करते पाप अनेक माया रंग रटिया लोभ मोह अभिमान बूढ़े मरण चीतना आवे पुत्र मित्र व्यवहार बनता ए कर्त बिहावे पुज दिवस आए लिखे माए दुख धर्म दूते डिठिया किरत कर्म ना मिटे नानक हर नाम तन नहीं खटिया उदम करे अनेक हर नाम न गावही पर मैं जोन असंख मर जन में आवही पशु पंखी सैल तरवर गणत कछु न आवे बीज बोवस पोग पोगे किया अपना पावे रतन जन्म हार अंत जुए प्रभु आप न पावही बिनवंत नानक पर मैं परमाए खिन एक टिकन न पावही।